करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो क्या करो, दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके अंतर्गत जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंख लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि लगेगी, योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम।

ओम शांति। परम सदगुरु सेवा बने आकर हम सभी की झोली वरदानों से भर दी है। वरदानी जीवन बड़ा सुंदर और सरल जीवन है। किसी को सफलता का वरदान मिल गया, किसी को योगी भव का वरदान मिल गया, किसी को माया पर विजय का वरदान मिल गया, किसी को सभी के विघ्न नष्ट करने का वरदान मिल गया, तो किसी को वरदान मिल गया कि तुम जिसे चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हो। कितने सुंदर वरदान हैं ये। पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वरदान स्वतः ही काम करते रहते हैं। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य है, वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदल देने की। अर्थात आग जैसी समस्या क्यों ना हो, उसको भी पानी जैसा बना देना, शीतल कर देना, वरदान में ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन बाबा का एक सुंदर महावाक्य कुछ रहस्यों को स्पष्ट करता है। वरदानों को धारण करने की शक्ति हमारी बुद्धि में चाहिए। तो जो मनुष्य, जो आत्मा लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में शक्ति आ जाती है वरदानों को धारण करने की। ईश्वरीय नशा स्वमान हमारी बुद्धि को बहुत समर्थ बना देता है, बड़ा महान बना देता है, बड़ा तेजस्वी बना देता है। तीसरी बात है, हम वरदानों को वरदान रूप में स्वीकार करें और एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज किया करें। अब कैसे इनको प्रैक्टिस में लाना है, सवेरे सूक्ष्म लोक में जाएं, फील करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। एक वरदान लें आप और उसे 7 दिन तक लें, जैसे बच्चे विजयी भव वरदान दिया, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव, सदा सुखी भव, ये वरदान है। एक वरदान को हफ्ते तक चलाएंगे। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी बुद्धि से स्वीकार कर ले कि वरदाता परम सदगुरु से मुझे ये वरदान मिल गया है, अब ये वरदान ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपने वरदान ले लिया विघ्न विनाशक भव, तो जहां भी जाएं, जिसके भी विघ्न आप सुने, आपको याद आए कि मेरे पास परम सदगुरु का वरदान है, मैं जहां भी जाऊंगी, जहां भी जाऊंगा, वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, जिस पर मैं दृष्टि डालूंगा उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे, जिसके लिए मैं शुभ भावनाएं रखूंगी, संकल्प करूंगी, उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये स्मृति और नशा बहुत गहराई से हमारे अंदर समा जाए। दूसरा सुंदर वरदान है विजयी भव। तो माया पर हमारी विजय निश्चित है, ये वरदान ले लें सवेरे और स्वीकार कर लें कि बाबा ने मुझे माया के सभी रूपों पर विजय प्राप्त करने का वरदान दे दिया है। मेरी विजय हर पल निश्चित है, कोई भी मायावी विकार मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मुझे भगवान के द्वारा विजय का वरदान मिला है। और जिनकी विजय यहां होगी वही विजयी रत्न बन जाएंगे, 108 की माला में आ जाएंगे। बार बार का विजयी होना विजय माला का अधिकारी बनाएगा और जन्म जन्म भी हर कदम पर उनको विजय की अनुभूति होती रहेगी, हार का सामना उन्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तो आओ हम सभी बाबा के वरदानों से अपनी झोली भरें, अपने लिए कोई 5 सुंदर वरदान चुन लें और उन पर इस तरह कार्य करें। आज सारा दिन बाबा से ऐसे ही कोई वरदान लेकर उसकी स्मृति रखेंगे
और साथ साथ उस वरदान को फलीभूत करने के लिए उस वरदान में बीज रूप स्थिति की शक्ति भरेंगे, परम धाम में पहुंचेंगे और कुछ कुछ मिनटों के लिए, सेकंड्स के लिए भी सर्वशक्तिवान के पास रहेंगे, उनकी एनर्जी स्वयं में भरेंगे। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। यह सुनना आसान नहीं है जिसे क्वेकर के सदस्य एक स्थिर छोटी अंदर की आवाज बुलाते हैं, वह आंतरिक मार्गदर्शक जो आपके ज्ञान का निजी स्रोत होता है। यह अक्सर मुश्किल होता है कि हम अपने ही बनाए हुए ड्रम की धुन पर परेड करें और इस दुनिया के तानाशाही रूपी दबावों पर ध्यान न देकर अपनी सहज प्रवृत्तियों के निर्देशों का पालन करें। फिर भी वह परिपूर्णता और परिपक्वता जिसकी हमें तलाश है, उसके लिए हमें अपनी सहजताओं और भावनाओं को सुनना चाहिए जो उस वक्त हमारे मन में आती हैं या जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप उतना ही ज़्यादा अपनी सहज प्रवृत्तियों का आदर करने लगेंगे और मूल प्रवृत्ति के उस प्राकृतिक स्रोत का जो एक अचेतन अवस्था में हम सब के अंदर निवास करता है, जब भी किसी इंसान से पहली बार आप मिलेंगे, आपके मन में उसकी एक धारणा बनती है या ज्ञान का वह आंतरिक स्रोत जो हौले से आपको सही दिशा दिखा देता है। इस सहज भावना ने आपके कार्य क्षेत्र और जीवन दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। ऐसा लगता है कि उम्र में बड़े होने के साथ साथ हम सब में एक योग्यता का विकास हो जाता है जो हम में से अपनी मूल प्रवृत्तियों पर विश्वास करने का तालमेल पैदा करती है। आप यह भी पाएंगे कि आपकी सहज प्रवृत्तियां उस समय और प्रबल हो जाती है जब आप किसी उद्देश्य के साथ जी रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपके दिन की प्रक्रियाएं आपको अपनी धरोहर छोड़ने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जब आप सही चीजें कर रहे हैं और उस तरह से जी रहे हैं जैसे कि प्रकृति आपसे अपेक्षा करती है और आप उन विशेषताओं को जान जाते हैं जिनका आपको पता नहीं था, तब आप अपने आप को अपनी वास्तविकता की संपूर्णता से आज़ाद कर देते हैं। जब आप किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके सामने कोई साधारण योजना होती है, तब आपके सब विचार अपनी बाधाओं को तोड़ देते हैं। आपका मस्तिष्क सारी सीमाएं तोड़ देता है। आपकी चेतना हर दिशा में विकसित होने लगती है और अपने आप को एक नई महान और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। आपकी निष्क्रिय शक्तियां, आपके विशेष गुण और आपकी प्रबलताएं जीवित हो जाती हैं और आप अपने आप को एक ऐसे बेहतरीन इंसान के रूप में पाते हैं जिसके बारे में आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने जीवन को प्रसन्नता से जीने का एक और गूढ़ रहस्य है अपने काम से प्यार करना। एक सुनहरा सत्य जो हमें इतिहास के पन्ने पलटने से मिलता है वह यह है कि सबसे ज्यादा संतुष्ट लोग वे थे जो अपनी जीविका के लिए अपनी पसंद का काम करते थे। जब मनोवैज्ञानिक वेरा जॉन स्टाइनर ने करीब 100 सृजनकारों से साक्षात्कार लिया तो पाया कि उन सब में एक बात समान थी, अपने कार्य के प्रति गहन प्रेम। अपना समय ऐसे कार्य में बिताना जो आपको लाभकारी, बौद्धिक एवं मनोरंजक रूप से चुनौतीपूर्ण लगते हैं, वे आपके उत्साह को ऊंचा रखने और आपके हृदय को लीन करने में दुनिया की किसी भी छुट्टियों से ज्यादा बढ़िया असर डाल सकते हैं। थॉमस एडिसन वह इंसान जिसके 1093 आविष्कारों का अभिलेख है, फोनोग्राफ से शुरू होकर चमकते बल्ब और फिल्मों के माइक्रोफोन तक के आविष्कारक का कहना था, मैंने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया बल्कि सिर्फ आनंद लिया है। जब आप अपने पेशे से प्रेम करते हैं आपको यह पता लग जाता है कि आपको अगले दिन काम नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ क्रीड़ा के समान होगा और समय हाथ से ऐसे निकलेगा जैसे आया था। जैसा कि उपन्यासकार जेम्स मिशनरे ने लिखा है, आर्ट ऑफ लिविंग का गुरु अपने काम और क्रीड़ा, अपने परिश्रम और विलासिता, अपने मन और शरीर, अपनी सूचना और मनोरंजन और अपने जीवन और धर्म में बहुत कम अंतर रखता है। उसको इसमें फर्क नहीं मालूम होता है। वह सरलता के साथ अपने असाधारण दृष्टिकोण की राह पर चलता रहता है और यह निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है कि वह काम कर रहा है या खेल रहा है। उसके लिए वह हर समय दोनों कर रहा है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अल्बर्ट श्वाइट्जर ने कहा, मानवीय सेवाओं से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनहित के लिए काम करना सबसे बड़ा धार्मिक मत है। और प्राचीन चीनी विश्वास करते थे कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में जरूर रह जाती है जो दूसरों को गुलाब देता है। एक संतुष्ट जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम सफलता का पीछा करना छोड़कर एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में समर्पित कर दें। और सबसे बढ़िया तरीका अर्थ जोड़ने का है अपने आप से एक साधारण प्रश्न पूछना, मैं किस प्रकार सेवा करता हूँ। सारे महान नेताओं, विचारकों और समाज सुधारकों ने अपने स्वार्थी जीवन को त्याग कर स्वार्थहीन जीवन जिया, और ऐसा करके उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता, प्रचुरता और संतुष्टि का जीवन अपनी कल्पना अनुसार पा लिया। वे सब समझ चुके हैं कि जीवन की सबसे बड़ी मानवीय सच्चाई है कि आप सफलता के पीछे भागकर उसे नहीं पा सकते हैं। सफलता एक परिणाम है, यह स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर आप अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा देते हैं और दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महात्मा गांधी ने सेवा की नीति को दूसरों से बेहतर समझा था। उनके जीवन की कुछ यादगार कहानियों में से एक है कि वे भारत में रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। वे जैसे ही उस कार से निकले जिसमें वे बैठकर आए थे, उनका एक जूता सड़क पर ऐसी जगह गिर गया जो उनकी पहुंच से बाहर था। जूता वापस मिलने के बारे में चिंतित होने के बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उनके सह यात्रियों को चौंका दिया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी उसी जगह फेंक दिया जहां पहला गिरा था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह गरीब इंसान जिसको पहला वाला जूता मिलेगा उसे अब कम से कम उसकी जोड़ी मिल जाएगी जिसे वह पहन सकेगा। तो ऐसी होती है स्वार्थहीन सेवा।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ज्यादातर लोग जीवन का अर्थ अपनी मृत्यु तक नहीं खोज पाते हैं। जब हम युवा होते हैं, हम अपना समय संघर्ष करते हुए और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बिता देते हैं। हम जीवन में बड़ी खुशियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी खुशियां जैसे बारिश के दिन, किसी पार्क में अपने बच्चों के संग नंगे पांव नाचना या गुलाब का बगीचा बोना या सूर्य को निकलते हुए देखने से वंचित रह जाते हैं। हम उस युग में रह रहे हैं जहां हमने सर्वोच्च पर्वत की ऊंचाइयों को जीत लिया है, परंतु अपने आप को नहीं जीत पाए हैं। हमारे पास ऊंची इमारतें हैं, पर हमारा पारा अपने बस में नहीं है। भौतिक संपत्ति है, पर खुशी नहीं के बराबर है। दिमाग में प्रचुरता है, पर जीवन खोखला है। जीवन का अर्थ पाने के लिए उसमें आपका बहुमूल्य पात्र जो आपको अभिनीत करना है, उसको समझने के लिए उस वक्त तक इंतजार मत करिए जब आप अपनी मृत्यु की शैया पर ना पहुंच जाए। ज्यादातर लोग अपने जीवन को अतीत में जीने की कोशिश करते हैं। वे अपना समय उन चीजों को पाने के संघर्ष में नष्ट कर देते हैं जो उनको खुशी दे सकती है। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रसन्नता कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, बल्कि वह मानसिक अवस्था है जिसकी हम स्वयं संरचना करते हैं। खुशी और गहन संतोष का जीवन तब तक आता है जब तक हम अपने आप को अपनी आत्मा की गहराइयों से अपने सर्वोच्च मानवीय विशेष गुणों को दूसरों के जीवन में आशा की किरण लाने के उद्देश्य के लिए लगा देने की जिम्मेदारी उठाते हैं। जब सब प्रकार का कोलाहल आपके जीवन से हट जाएगा तो इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, जो यह है कि हमें अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर दूसरों के लिए भी जीना है। सरल शब्दों में जीवन का उद्देश्य है उद्देश्य से भरा हुआ जीवन। जैसा कि यह हम आपको एक महान जीवन जो ज्ञान, खुशी और संपूर्णता से भरा हो, उसकी शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे दिन बिताएं जो आपको उन कार्यों में व्यस्त रखें जो प्रेरणा देने के साथ आपको अपने प्रिय लोगों की संगति में रखें। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता इस सत्य में है कि हमारा जीवन किसी उद्देश्यपूर्ण मकसद के लिए काम आए। वह उद्देश्य जिसे हमने खुद शक्तिशाली और प्रकृति की एक सच्ची देन माना था, न कि बीमारियों और शिकायतों से भरे हुए छोटे निरर्थक इंसान के रूप में, जिसको प्रसन्न करने के लिए दुनिया कुछ नहीं करेगी। हमारा जीवन पूरे समाज के लिए हो, और जब तक हम जिंदा रहें, हम वह सब करें जो हम कर सकते हैं। हमारी यही चाहत हो कि हमारे जीवन का पूरा सदुपयोग हो। आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा जिएंगे। जीवन के लिए जीवन का आनंद उठाइए। यह एक तरह से शानदार मशाल है जिसे आपने इस पल पकड़ा है, और आप इसे अगली पीढ़ी के हाथों में देने से पहले संपूर्ण रूप से प्रज्वलित रखना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मुहिम में

0: रेडियो मधुबन ये छोटी सी कोशिश आपके सामने लेकर आया है जहां पर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम बीमार हों और फिर जाके हम स्वास्थ्य लाभ करें। क्या हम ऐसा ना करें कि हम पहले से ही स्वस्थ बने रहें, स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता ही न पड़े। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, क्या चीज करना पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम हर दिन कुछ न कुछ जानकारी सुन रहे हैं। और जब हम इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम वास्तविकता में अपने स्वास्थ्य के रक्षक बनते हैं। प्रायः स्वास्थ्य के रक्षकों के रूप में चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर्स को देखा जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य को वापस लौटाने में बहुत मदद करते हैं। अब उनकी मदद को याद रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, न कि बार बार हम उनके पास जाएं और उनके काम को बढ़ाएं। ऐसे में क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो आसान उत्तर यही है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम उनकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े हुए विशेषज्ञों से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। वे पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम ये बात कर रहे थे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति को स्वयं सजग रहने की आवश्यकता है। अगर वो स्वयं स्वस्थ रहता है तो वो स्वास्थ्य के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस ढांचे को बेहतर करने में एक बड़ा सहयोग देता है, वो राष्ट्र के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मददगार साबित होता है। और आपने स्वयं ये कहा था कि अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम, एक सकारात्मक कदम ले सकते हैं। आपने बातचीत में ये भी बताई थी कि विटामिन्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही आवश्यक विटामिन्स में गिना जाता है और इसकी कमी से क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमने समझा। आपने ये भी बताया था कि मनोरोगों में भी, जब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, उसमें भी विटामिन बी 12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपने शरीर में कमी ना होने दे, उसके लिए उसे क्या करना है, कहां से ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये समझा जाए।
1: कल की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है ये बात मैंने कही, तो एक बार फिर से इसकी कमी के बारे में बोलना चाहूंगा। और इसकी कमी अगर आदमी देखे तो ऊपर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई इफेक्ट करता है। आपके सर के बाल कमजोर हो जाएंगे, आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, आपकी जो त्वचा है उसमें पपड़ी जमने लगेगी, आपकी जो जीभ है वो मोटी हो जाएगी, सूज जाएगी, आपके गले में खराश, सोर थ्रोट हो जाएगा, आपकी आंखें हो सकता है गुलाबी रंग की हो जाए, आपकी होंठ है जो फट जाए हो सकता है, और आप ओवरऑल एक थके हुए, कंफ्यूज्ड, कमजोर व्यक्ति के रूप में समाज को दिखेंगे। हम लोग ने दोनों परिचर्चाओं में ये कहा कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। तो थका हुआ, अगर आप जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं कि अगर वो बहुत उनको थकान लग रही है, उनको नींद पूरी नहीं हो रही है, उनका मूड स्विंग कर रहा है, तो सबसे पहले अपना विटामिन बी प्लीज चेक करा लीजिए और आप उसकी पूर्ति कर लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे।
0: करने की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो प्राय प्रश्न उठता है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है तो हम सबको पता भी होना चाहिए कि आखिर ये कहां से मिलता है, इसका स्रोत क्या है।
1: ये हमको सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, दूध, दही, चीज, जो भी भोजन जो प्रोसेस नहीं किया गया है, होल व्हीट। मतलब होल व्हीट का ये मतलब है कि आपने गेहूं लिया और उसको पीस दिया, उसको छान करके उसके अंदर से चोकर नहीं निकाला है, अनपॉलिश्ड राइस या जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। चावल के सबसे ऊपर हस्क होता है, फिर उसके ऊपर बार्न होता है और फिर राइस होता है। तो जब पान अगर चावल पे लगा रहे तो वो भूरे रंग का दिखता है, तो उसको ब्राउन राइस बोला जाता है। राइस की सबसे ज्यादा खूबी उसी बार में होती है और उसी को निकाल के भैया आजकल राइस बान ऑयल आ गया है। जो ऊपर का जो हस्क है वो चारे के रूप में प्रयोग होता है या उसको लोग जलाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बान है उससे ऑयल निकालती हैं कंपनीज और राइस आपको मिल जाता है। हम आरोग्य मंदिर में अनपॉलिश्ड राइस मतलब चावल जिसपे बान लगा है वो पेशेंट्स को या जो हमारे यहाँ रहने आते हैं उनको देते हैं, और उसका स्वाद और पॉलिश राइस का स्वाद लगभग एक है, लगभग एक है। थोड़ा सा ये रफ कभी कभी फील होता है मगर ये एकदम एक है। तो होल व्हीट और होल राइस में भी विटामिन बी बहुत अच्छा मिलता है। सारे फैट्स वॉल्युबल विटामिन में भी हमने बात की। सबसे वंडर मेडिसिन वंडर वेजिटेबल जो है वो स्पिनच, पालक, बनाना, केला, उसके बाद संतरा, अनार, कीवी, वाटरमेलन में भी है। ये हमारे अखरोट वॉलनट में भी विटामिन बी मिलता है हमको, और राजमा में भी विटामिन बी है। कुछ तरह के यीस्ट प्रोडक्ट्स में भी जिसमें खमीर उठाना कहते हैं उसमें भी हमें विटामिन बी 12 बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग इन भोजनों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें दूध से एलर्जी है, कुछ लोग कोई एक पर्टिकुलर जो अनाज है उसको नहीं खाते हैं, उन लोगों को सीधे सीधे ये कहा जाता है कि आप इसकी कोई भी बाजार में मिलने वाली जो गोली उसका प्रयोग कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल्क एलर्जी देखी जा रही है, वीट से एलर्जी देखी जा रही है, जिसको हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोल रहे हैं, इन दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसकी गोली का प्रयोग कर लें।
0: यानी ये बात समझ में आ रही है कि जो दो मोटी चीजें हैं या दो ऐसे अनाज हैं जिसका भारत भर में या विश्व भर में कहीं ना कहीं हर दिन सेवन हो रहा है, उन्हीं अनाजों से ये चीज मिल सकता है। जैसे भारत के दक्षिणी प्रांतों में और पूर्व के प्रांतों में चावल का भरपूर मात्रा में सेवन होता है, भारत के मध्य और उत्तरी प्रांतों में, पश्चिमी प्रांतों में गेहूं का भरपूर मात्रा में उपयोग होता है, वहीं पर इसके स्रोत हैं, मगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से इसकी कमी देखते हैं, ये बात समझ में आती है। और जैसे आपने कहा दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध, दही, चीज इत्यादि, इन चीजों में भी इसकी बहुत आयत है, मगर लोग इन चीजों को नहीं समझने के कारण इन विटामिन्स की कमी का उनको सामना करना पड़ता है।
1: ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन बी12 कि ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उसमें भी इसका प्रयोग है, जितने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें भी प्रयोग है, हमारे RBC रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बन रहे हैं, हमारे नसों की झिल्ली, तो आप सोचिए कितना जरूरी है। और इसकी कमी भी सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो आपने बोला कि भोजन का स्रोत हमें मालूम है पर हम उस भोजन को ठीक से नहीं कर रहे। हम गेहूं में से चोकर निकाल के, अब आप ये देखिए ना कि गाय अच्छा दूध देगी उसको चोकर खिला दो,
0: बिल्कुल,
1: और हम आटा खा ले, हम एकदम चिकना सॉफ्ट आटा खा ले, अब तो बहुत सारे ग्लू चिपकाने के पदार्थ आ गए, नहीं तो नॉर्मली पहले लेई बनती थी, लेई मैदे से बनती है, ये सबको एक एक आप हम लोग अपने कैंपस में आरोग्य मंदिर प्रकाशन में किताबें बनाते हैं और हमारा एक 1960 से चलता आ रहा एक प्रकाश एक मैगजीन है आरोग्य, उसके सर्कुलेशन में हम जब उसे पैक करते थे तो लेई बना के लगाते थे, और मैं हमेशा जब छोटा था तो देखता था एक ही बर्तन है एल्युमिनियम का, उसके अंदर ये गम ये चिपकाने वाला मिल रहा, और हम लोग को स्कूल ले जाने के लिए तो एक हमारे माता पिता एक छोटी सी ट्यूब देते थे, तो मैं हमेशा बोलता था ये क्या चीज है जो हम स्कूल नहीं ले जा रहे हैं वो। तो पहली बार मुझे मालूम चला कि मैदे से इसको बनाया जा रहा है और ये चिपकाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग आता है। तो आप ये देखिए, जो हमारी आंतों में चिपक जाता है जिससे हम बाहर चिपकाने का प्रयोग कर रहे हैं, वही मैदा हमारी आंतों में भी चिपक जाता है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तब भी हम उसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं वनस्पत, और हम जो सबसे अच्छी चीज आटे की है चोकर, वो हम जानवर को खिला रहे हैं।
0: ये बात बड़ी सोचने वाली लगती है कि एक तो अगर व्यक्ति स्वयं गेहूं ले जा रहा है आटा बनवाने के लिए, पिसवाने के लिए चक्की में ले जा रहा है और लेकर वापस आ रहा है, और घर में उसे चोकर को हटा दिया जाता है, उसको छान दिया जाता है, और जैसे आप आजकल तो अगर हम देखते हैं तो हम सीधे बाजार से बने हुए आटे को ले आते हैं और उसमें चोकर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलती। लोग तो कहते हैं कि भाई ये रेडी टू मेक है, इसमें आपको फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज फाइन आटा ये देखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे भोजन को जहां से हम ले रहे हैं वहीं पर ये गड़बड़ियां हम कर रहे हैं, अगर हम इसको सुधारें तो फिर ये चीज ठीक हो सकती है। और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं मगर परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही आवश्यक सी चीज है। जब आप चावल की बात करते हैं डॉक्टर साहब, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि राइस बान से तेल बनने लगा है और आज पॉलिश्ड राइस मिलने लगा है, तो क्या व्यक्ति को अभी अनपॉलिश्ड राइस खाना चाहिए, या अगर वो अनपॉलिश्ड राइस नहीं खा रहे हैं, अगर पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो क्या उन्हें राइस बान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए?
1: मैं अनपॉलिश्ड राइस खाने का सुझाव जरूर दूंगा, इसको हफ्ते में एक दो दिन जरूर खाना चाहिए, और अब तो यह हर बड़े शहर में मिलने लगा है। राइस बान ऑयल का प्रयोग के लिए उतना मैं प्रेरित नहीं करता हूं लोगों को, पर अनपॉलिश राइस के लिए जरूर प्रेरित करूंगा। और ये जैसे आप चावल बनाते हैं वैसे ही ये बनता है, और ये कोई एक टाइप ऑफ राइस नहीं है, किसी भी चावल से अगर उसका बान नहीं निकाला गया है तो वो अनपॉलिश्ड राइस है। आप अगर इस समय हेल्थ सेंटर्स में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में या हेल्थ स्पास में जाएंगे, वहां ये एक डेलिकेसी के रूप में आपको खिलाया जाता है कि ये अनपॉलिश्ड राइस दिया जा रहा है। हम लोग अपने यहाँ खुद चावल उगा रहे हैं अपने जो भी स्वास्थ्यार्थियों के लिए, हमारे पास एक कैंपस से अलग एक जमीन है जहां पर हम गेहूं चावल सरसों तीनों उगाते हैं और ऑर्गेनिक उगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे जो जितने लाभार्थी हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। ब्राउन राइस या अनपॉलिश राइस में रफेज भी ज्यादा है, जो खुज्जा है। हम लोग ने पहले जब हम लोग ने फ्रूट्स के बारे में बात की थी, या हम लोग ने डिफरेंट चीजों के फाइबर के बारे में जब भोजन में बात की थी, तो आप जो चोकर है वो आटे का फाइबर है, और जो चावल के ऊपर की कोटिंग है वो चावल का फाइबर है, तो वो हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है।
0: जैसे आपने साथ में जो विटामिन बी 12 के सोर्सेस के रूप, विटामिन बी के सोर्सेस के रूप में आपने बताया कि पालक है, आपने फ्रूट्स गिनाए हमें, संतरा कहा, वाटरमेलन कहा, अलग अलग फ्रूट्स, बनाना बताया आपने, केला बताया, और आपने वो भी चीजें बताई जो फर्मेंट होती हैं, ऐसी चीजें जो हम बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान और गुजरात में खमन ढोकला इत्यादि बनाया जाता है, दक्षिण में इडली डोसा इत्यादि बनाया जाता है, ये सारी फर्मेंट होने वाली चीजें हैं, तो क्या इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है?
1: यीस्ट के प्रोडक्ट्स में इसका बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, टमाटर में, एवोकाडो में, वाटरमेलन, कीवी, अनार, ऑरेंज, इन सब में इसका अच्छा स्रोत है। और ये सारी चीजें अब हमें बहुत आसानी से मिलने लगी हैं। फोर्टिफाइड, जैसे आपने बोला बाजार से आटा खरीद के आ रहे हैं, तो अब सरकार ने भी इसमें निर्देश दिया है कि हम इसमें इसको थोड़ा सा मिलाकर अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको दें, तो उससे भी हमको ये अच्छा मिल रहा है इस समय हमारी जनता को।
0: डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई कि विटामिन बी की आवश्यकता क्या है, क्या इनके स्रोत हैं। अब जब आप सब्जियों और फलों के बारे में बता रहे थे, साथ में आपने ये भी कहा था कि दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, दही है, भारत में तो पनीर, चीज इत्यादि के जो प्रचलन है, उनसे भी इन चीजों की कमी पूरी होती है। तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या हर दिन के भोजन में हम इन चीजों को शामिल करें, और क्या भोजन मात्र से ही इसकी कमी पूरी हो सकती है?
1: ये दूध, दही, पनीर, चीज, इसमें इसका बहुत अच्छा स्रोत मिल जाता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका हमें दही और पनीर में मिलता है। दूध में अधिकतम पानी है, तो जब दूध का पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो दही बन जाती है, और पूरा जब दूध से पानी हम निकाल देते हैं, उसका प्रोटीन पार्ट बदल लेते हैं, तब पनीर बनता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि सबसे इसका अच्छा स्रोत हमें पनीर से, चीज से और दही से मिलेगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, तो अगर इसको किसी भोजन में जो है, अगर हम उसे बार बार गर्म करेंगे और बहुत गर्म करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन बी की अगर हम बात करें या हम किसी भी पोषक तत्व की बात करें भोजन में, तो कहा जाता है खाने को बार बार गर्म मत करिए, क्योंकि वो जितनी बार गर्म होगा उतनी बार वो अपने अंदर की कुछ ना कुछ क्वालिटी को लूज करेगा। इसीलिए रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट खाने की भी बात होती है, सलाद की खाने की और फल के खाने की बात होती है, कि हमने उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाया नहीं है और उसको उसके पोषक तत्व को पूरा बना के रखा है। तो आप इसे दही, पनीर, दूध उससे ले सकते हैं। ध्यान बस इतना देना चाहिए कि इसको दूध को बार बार गर्म ना करके उसका प्रयोग करें।
0: जैसे आपने कहा कि भोजन से ये चीजें हम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या भोजन मात्र में अगर हम चीजों का ध्यान रखेंगे तो इतना काफी है? क्योंकि आजकल ये सुनने को मिलता है कि जो लोग दही भी खा रहे हैं, जो दूध भी पी रहे हैं, उनके अंदर भी इन चीजों की कमी महसूस की जा रही है।
1: अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, और सबसे कॉमन सिम्टम थकान, कमजोरी ये है, या आपको कहीं भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या आपको कहीं काम करने मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो ये आपके भोजन से ये पूरा नहीं हो पा रहा, तब उस स्थिति में आप इसको ऊपर से ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी गोलियां आती हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, मगर मैं सबसे पहले गोली लेने को बोलता हूं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन अपने शरीर के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। तो आप अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप गोली ले सकते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन है तो आप इसका इंजेक्शन ले सकते हैं। और ये किसी स्वास्थ्य कर्मी को डिसाइड करने दीजिएगा कि आपको कितनी कमी है और आपको कितना ही चाहिए।
0: यानी आप स्वयं से ये निर्णय नहीं ले सकते कि मुझे इंजेक्शन ले लेना चाहिए या गोली खा लेनी चाहिए, मगर अगर आप में विटामिन बी की कमी महसूस होती है, अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो ये चीज पता चल जाता है। अगर आपको कोई ऐसे चिन्ह नजर आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कमजोरी हो रही है, तो आप स्वाभाविक रीति से जाके स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से मिल सकते हैं, और वो जैसे आपको गाइड करें उसी हिसाब से आप इस चीज को करें। मगर साथ साथ भोजन में जो चीजें हैं उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में बहुत ही कम मात्रा है विटामिन बी की, तो फिर गोलियां खाना आवश्यक है, और जैसे डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं वैसे ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त ये कहता है कि यहाँ रुकना चाहिए, मगर जाते जाते मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अनाज में, दूध में, चावल, जो अनपॉलिश्ड राइस है, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत किचन में ना होकर जहां से हम चीजें खरीद रहे हैं वहां से हमें ध्यान देने की जरूरत है।
1: एकदम सही कहा, लुक व्हाट आर यू बाइंग। और मैं एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और मैं लंबे समय तक विदेश भी रहा, तो उसमें मेरे साथ कुछ जो लोग थे उन्होंने एक ही सलाह दी थी कि आप जो भी खरीदें उसमें कंटेंट को एक बार जरूर देख लें, आधा मिनट

0: नहीं लगता है एक बार पलट के उसको देखने में, और आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी चीज का कंटेंट पढ़ते हैं, जो पहले नंबर पे चीज लिखी है वो सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर। ये चीज का प्लीज हम ध्यान रखें कि जो भी चीज उसके अंदर डाली गई है वो उस हिसाब से लिखी जाती है कि क्या है। ये सरकार का नियम है। हाँ, कुछ कंपनी वाले इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो चीज सबसे पहले लिखी गई है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसी की।
1: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है और बहुत ही नई जानकारियां आज हम सबको हासिल हुई है दोस्तों। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमें अपने स्वास्थ्य की शुरुआत करनी है, तो स्वास्थ्य की शुरुआत सिर्फ किचन से नहीं, जहां भोजन बन रहा है उस रसोई घर से नहीं, मगर कहां से अनाज आ रहा है, घर में हम क्या खा रहे हैं और वो चीज कहां से खरीदी जा रही है और हम क्या खरीद रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो चीजें जब घर में आएंगी तो उसे कैसे पकाया जाना चाहिए, कैसे उसका सेवन किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को, जो विटामिन जो कम मात्रा में ही आवश्यक है मगर वो सब कुछ हमारे भोजन के, प्रतिदिन के भोजन में उनकी भूमिका है, तो उन्हें हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में यहीं पे विराम लेंगे। आज जो नई नई चीजें विटामिन बी के बारे में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने सुनी है, उन सब की अहमियत को समझते हुए उन सब को हम अपने भोजन में शामिल करेंगे। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय गेहूं के चोखर को आप छान कर बाहर न फेंके, उसको भी भोजन में शामिल करें, चोखर के साथ रोटियां बनाएं। अगर आप चावल खरीद रहे हैं तो पॉलिश्ड राइस न खरीदें, सीधे सफेद चावल न लेकर जो ब्राउन राइस होता है, जो पूरे रंग का चावल मिलता है, जो छिलका सहित है, उस चावल को खरीदने पर आप ज्यादा आसक्त हों। भोजन में पालक, वाटरमेलन और साथ में अलग फ्रूट्स जो विटामिन बी के सोर्सेज हैं उसके रूप में उन्होंने बताया, दूध, दही, चीज इत्यादि के बारे में बताया, उन सभी पर ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ रखने और घर को स्वस्थ रखने में हम ध्यान रखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं। आज हमारे प्रश्न पर डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार सर।
1: आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों, अगली बातचीत में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी तो हमें लगा था कि अच्छा सेल्फ को मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम देख रहे हैं सेल्फ कहीं बाहर की बात नहीं बल्कि अपने ही अंदर जो मैं हूँ उसको पहचानने की बात थी। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम सारे लेबल्स, सारे पर्दों को हटाकर, सारे बाहरी आवरणों को हटाकर खुद तक पहुंचे थे कि मेरी अपनी सही पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जहां मेरी अपनी पर पहचान हुई, कौन हूं मैं ये जाना, तो उसके बाद वैल्यूज़ कौन सी होंगे मेरे पास और फिर जीवन का पर्पस क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ पिछली कड़ी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी बातें करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, बहुत सी और चीज़ें देखी थी, तो फिर हमने पिछली कड़ी में ये जाना था कि मेरी अपनी सही पहचान क्या होती है, कौन हूँ मैं। आई थिंक फाइनली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी, वो बीइंग हूँ। अब आगे हम वैल्यूज़ इसी पर बेस करें,
1: क्योंकि जब हम देखते कि जब तक आइडेंटिटी का आंसर राइट नहीं आता, हु एम आई, तब तक हम एक अलग ही दिशा में चल रहे होते हैं। जैसे हमने वो सारे लेबल्स देखे तो लेबल्स के आधार से हमने वैल्यूज़ देखे कि इफ़ आई एम अ प्रोफेशनल तो मेरी वैल्यूज़ क्या है, इफ़ आई एम अ मदर तो मेरी वैल्यूज़ क्या है, इफ़ आई सी माई सेल्फ ओनली एज एन इंडियन तो मेरी वैल्यूज़ क्या है। सिमिलरली अपने पर्पस को भी देखे उसी के साथ, राइट। अब आपके इतने सारे लेबल्स हैं, लेट्स से आप एक लेबल ले, आई एम अ मदर, तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन जाता?
0: टू टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन इन द राइट वे, द राइट यू नो डायरेक्शन।
1: तो किसी भी आप हाउसवाइफ को पूछे कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, मेरे बच्चों को बड़ा करना, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, तुरंत व्हिच इज फाइन, वेरी फाइन। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, पूछिए आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो तुरंत क्या आंसर निकल कर आएगा?
0: मेरा अपना काम अच्छा करना, पेशेंट्स को ठीक करना, और
1: विच इज़ वेरी नोबल, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन इज दिस माय पर्पस ऑफ लाइफ और इज दिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग इन लाइफ? हीलिंग, इज दिस द पर्पस ऑफ माय लाइफ या इज दिस माय जॉब, माय प्रोफेशन, माय रोल? अब कई बार हम समझते कि ये है मेरा जॉब, लेकिन उसमें मैं इतना पैशनेट हूँ, मैं उसको इतना दिल से कर रहा हूँ, एंड विच इज़ ट्रू के मैं ना पूरी सिंसियरिटी से कर रहा हूँ, तो यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है।
0: मैं मिशन भी बना लेता हूँ
1: मेरे जीवन का, जो मिशन
0: है जीवन का मिशन,
1: यस। तो हु एम आई आंसर के ऊपर ही हमारा पर्पस और वैल्यूज डिपेंड करता। तो आज जो एक छोटी सी हम गलती कर बैठे वो ये कि अपने रोल्स को, अपने रिश्तों को, अपने जिम्मेवारियों को ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। जो जॉब में हम थे वही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। एक प्रोफेशनल को ही देख लो, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ? टू बिकम सो एंड सो इन द कॉर्पोरेट लैडर, रीच हियर एंड देयर, दैट कैन बी माय गोल। लेट्स मी नॉट मिक्स कि मेरा गोल क्या है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ किसका है? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने क्या किया, जो हम आई होप एवरीवन डिड इट विद अस यस्टरडे, कि अपने लेबल्स को जैसे जैसे हम साइड पर रखते गए तो वी केम टू द फाइनल आंसर कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि ये शरीर भी ये मेरा है। मैं हूँ वो शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस जो इसको चलाती है, जो ये सारे रोल्स
0: प्ले करती है,
1: जो ये सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन मैं, आई कौन है, वो आई का आंसर आ गया। तो जो हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि जो अपने जीवन में बहुत फोकस्ड होकर चलेंगे, उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर। दीज थ्री आंसर्स वी वांट। तो हु एम आई आया कि आई एम दिस प्योर बीइंग, एनर्जी। जैसे हम ये कॉन्शियसनेस में बैठते कि मैं ये वो चैतन्य शक्ति हूँ, अगर रोज इसको थोड़ा बार बार करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो व्हाई एम आई हियर, यू नो, एंड वेयर एम आई, तो जो जब हु एम आई आता तो उसका नेचुरल इम्पल्स ये आता कि थॉट क्रिएट करना, कर्म में आना और लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, दिस इज वेयर आई एम इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। मेरा इस सृष्टि पर शरीर लेकर आकर ये पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ, टू कम इनटू रिलेशनशिप और टू कम इनटू एक्शन विद अदर सोल्स. आत्मा का नेचुरल इम्पल्स है एनर्जी लेना,
0: टू इंटरैक्ट. यस,
1: टू इंटरैक्ट, ये नेचुरल इम्पल्स है. लेकिन वो मुझे तभी समझ में आता जब मुझे याद आता कि हु एम आई एंड वेयर एम आई. आई एम इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाई एम आई हियर. कि ये जो मेरा नेचुरल सेल्फ पता चला तो मेरी जो क्वालिटीज हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं, उनको औरों के साथ शेयर करना ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है. इफ आई रिमेंबर दैट आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, देन टू गिव लव टू पीपल विल बिकम माय नेचुरल. दैट्स व्हाई आई एम हियर. लेकिन जब वो आंसर नहीं हो रहा होता,
0: पर्पस ऑफ माय लाइफ बिकम्स लाइक टू गिव लव टू पीपल.
1: व्हाट डू यू थिंक?
0: यस, दैट मेक्स सेंस.
1: What do you think? Now think about it. Because a purpose of life kiska dhoondna hai?
0: The being.
1: Who am I? I am a human being. I am not a human doing. Abhi tak purpose of life kiska dhoond rahe the? Jo doing tha. Mujhe kya karna hai, kya karna hai, kya karna hai. Kyunki who am I? Mother. To purpose of life usse connected. Who am I? Doctor. Purpose of life usse connected. Who am I? A pure being. Purpose of life?
0: उससे कनेक्टेड.
1: इसीलिए जब तक वो हुए माई आंसर नहीं हो रहा था तो पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना वॉज इम्पॉसिबल. सो नाउ वेन आई सिट बैक, सो इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या इट डजेंट मीन कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखने वाली.
0: कितना ईजी हो जाता है पता है पर्पज ऑफ लाइफ को समझ पाना फिर.
1: Yeah.
0: और हम सारा टाइम ढूंढते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और हर चीज़ में उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है. इन द वे यू सेड वेरी ट्रू. कितनी बार हम अपने प्रोफेशंस बदल रहे होते हैं.
1: Yeah.
0: कितनी बार
1: purpose
0: हमारी पर्पस ऑफ लाइफ बार बार बदलता जाएगा हमारा.
1: Yes. नहीं, और कई बार लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मैं अपना जॉब बदल कर देखता हूँ, आई विल फाइंड इट देयर. इट वॉन्ट कम टिल आई रिमेंबर पर्पस ऑफ लाइफ किसका. आपको याद हो जब हम बचपन में खेलते हैं आपस में तो हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यू नो, मैं ये बनूंगा, आप ये बनोगे, एंड ऑल दैट. वी ड्रेस अप इन डिफरेंट वेज और हमें वो खेल खेलना अच्छा लगता है. लेकिन खेल खेलते खेलते हमें ये तो याद रहता है ना
0: कि हम कौन हैं
1: और ये हमारा खेल है. और हमें ये भी पता होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे जो हमने ओढ़े हैं अपने ऊपर, ये सारे उतर जाएंगे. यही खेल हम अपने जीवन की यात्रा में खेलते हैं. जैसे जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग, हम एक एक लेबल अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन सिर्फ ये था कि बचपन में ये याद था कि मैं कौन हूँ और ये मैंने सारा कुछ ओढ़ा है. लेकिन अब क्या हो गया, जो मैं ओढ़ा है वही मैं हो गया. और उसको ही हमने मैं ये हूँ, तो सारा कुछ जो मेरे जीवन में कनेक्टेड था अब वो उससे हो गया. एंड देन जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर माई फैमिली आई हैव टू डू दिस जॉब. Why? Because my values and my purpose of life was first taking care of family. लेकिन जहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा. तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई, ये सब कुछ आपका है, आप एक चैतन्य शक्ति, और वो भी कैसे, प्योर लवफुल. क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें अपनी ही पर्सनालिटी, जो कि हमें पता थी लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, उसकी स्मृति में नहीं थे, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, प्योर बींग, लवफुल बींग, हैप्पी बींग, ब्लिसफुल बींग, पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप. जब आप एक मदर हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ था बच्चों को बड़ा करना. जब आप एक पीसफुल बीइंग हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ
0: टू क्रिएट पीस. ओह यस,
1: सिंपल. जब आप एक हैप्पी ब्लिसफुल बीइंग हैं, पर्पस ऑफ लाइफ
0: टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस.
1: आंसर चेंजेस. नाउ आई एम अ पीसफुल बीइंग playing the role of a mother. The sentence change ho gaya.
0: It becomes so easy to create happiness then, you know, playing mother also.
1: Yeah.
0: Pehle kyunki wo responsibility
1: change ho jayega aapka.
0: Kyunki pehle responsibility bachcho ko dekhni itni zyada hai ki bacche ne doodh piya ya nahi piya, bacche ne homework kiya ya nahi hai. Ye to yaad hi nahi rehta ki happiness bhi create karni hai. Tension is baat ki hoti hai ki wo doodh pi le ya wo khana kha le ya wo apna homework kar le. एंड उसमें हम कितना एंग्री और कितनी बार कितने परेशान.
1: अब ये जो हम एंगर क्रिएट कर देते, दर्द क्रिएट करते, हर्ट क्रिएट करते, ये सब करते करते हम क्या भूल गए, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था. और इसलिए वो बार बार बीच में वो क्वेश्चन ट्रबल करता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. क्योंकि सब कुछ करते हुए मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव नहीं कर रहा था. क्योंकि मैं जो हूँ उसको मैं भूला हुआ हूँ ना, मैं खुद अपने को ही भूला हुआ हूँ. और मैंने वो जो ओढ़ लिया अपने अराउंड बॉडी, फिर रिलेशनशिप, प्रोफेशन और लेबल्स, तो वो सब को ओढ़कर उसी को बचाने में और उसी को प्रोटेक्ट करने में मैंने जो अपने आप को कहा कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम करते गए, और अंदर ही अंदर मैं जो था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता गया. एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी हैज टुडे इज डिससैटिस्फैक्शन. दे लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन. व्हाई आर वी लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन?
0: इफ आई एम डूइंग द रोल, सी इफ आई एम डूइंग द कैरेक्टर,
1: Why am I not satisfied? अपना तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, संतुष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस दैट. तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, यू नो, जैसे लेट्स लुक एट इट लाइक अ लिटिल गेम, कि अंदर कोई है जो बंद है, ठीक है, ऊपर से किसी ने सारा उसको ढक लिया, तो जो अंदर वाला है वो तो अंदर बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है, सफोकेटेड, कि मैं जो हूँ मैं अपने आप को
0: एक्सप्रेस
1: नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन इन्हीं का ध्यान रख रहा हूँ. तो फिर मेरे अंदर वो घुटन होती है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं डिससैटिस्फाइड हूँ. सब कुछ कर लिया जीवन में, प्राप्त भी कर लिए वो सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए, प्रॉपर्टी भी सारी है, क्या चीज़ नहीं है आपके पास? सैटिस्फैक्शन. कॉमन आंसर है आज, सैटिस्फैक्शन अंदर वो एक वैक्यूम है. क्यों? ये सब डूइंग पार्ट सारा कर लिया. क्यों वैक्यूम है? क्योंकि पूरी जीवन कैसे बिता रहे हैं, हु एम आई, ये लेबल, तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या समझा, ये करना, वैल्यूज क्या समझी, इसका ध्यान रखना, इसको सेफ रखना. मैं निग्लेक्ट हो गया पूरी तरह से. तो मेरे अपने ही जीवन की यात्रा में अपनी वैल्यूज और अपना पर्पस नहीं एक्सपीरियंस किया, तो संतुष्टता संतुष्टता कहाँ से आएगी?
0: नहीं आ सकती.
1: आई विल फील वेरी सफोकेटेड.
0: एंड वी आर ऑल फीलिंग दैट. यस.
1: अब हम गुस्सा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें तकलीफ तो देती है, बिकॉज हु एम आई इज अ पीसफुल बींग. तो जैसे ही
0: हमने अपने साथ ही कितना अन्याय किया है,
1: क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं थे ना, इसलिए. तो न जानने के कारण हम बाहर ही ढूंढते रह गए सारा कुछ, और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा मेरा.
0: हम अदरवाइज वैसे कितने अच्छे हैं, मतलब अब देखें अगर
1: सारे तो, बहुत अच्छे हैं.
0: इसलिए कि हमारे पास जो जो जिम्मेदारी थी, जो जो हमने अपना पर्पस माना, जो जो हमने देखा कि हम ये चीजें हैं, लेबल्स को समझा, तो वो तो हमने अच्छी तरह से निभाया ही,
1: लेकिन निभाते हुए अपना ध्यान नहीं रखा. कल से भी हमने वही निभाना है. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरा रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारी चेंज हो जाएंगे, बट सिर्फ पर्पस ऑफ लाइफ होगा टू क्रिएट हैप्पीनेस, टू क्रिएट लव. क्रिएट, नॉट टेक. अगेन
0: क्रिएट. यस.
1: अभी क्या था, क्योंकि मैंने अपने को नहीं पहचाना, तो मैं अपनी वो वैल्यूज और पर्पस कहाँ ढूंढ रहा था. चाहिए तो था मुझे, क्योंकि दैट्स हु एम आई, लेकिन मैं उसको फिर कहाँ ढूंढ रहा था.
0: मेरा बच्चा अच्छा होमवर्क कर ले तो मेरे को खुशी होगी, उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो होगी.
1: तो क्योंकि मैंने अपने पर्पस ऑफ लाइफ डूइंग में डाल दिया कि कुछ करने से मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो मैंने सोचा वो लक्ष्य प्राप्त करने से मुझे खुशी मिलेगी. क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए?
0: खुशी,
1: संतुष्टता, शांति. कहाँ ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा होगा लक्ष्य तो मुझे मिलेगा, ये लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मिलेगा. क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तभी संतुष्टता होती है, नहीं तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन हमने लक्ष्य क्योंकि बाहर बना दिए, तो फिर हम खुशी को भी कहाँ ढूंढने लगे?
0: बाहर. इनफैक्ट वही, क्योंकि पहचान ही नहीं थी, पहचान ही जिसको माना उसी से जुड़ा हुआ तो लक्ष्य बनाया. और हम अमेजिंग, यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, हम ये बार बार कहते हैं कि मैंने अचीव तो कर लिया, लेकिन फिर एक अचीवमेंट के बाद इसीलिए हम दूसरे अचीवमेंट की तरफ भागते,
1: बिकॉज खुशी तो मिली नहीं थी.
0: और तब हम ये कहते हैं कि हम तो भागते ही रहेंगे फिर इस चक्कर में.
1: तो अब क्या हुआ, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से कि मैं ये सब नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सिंपल हो गया एंड माय पर्पस इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस माय क्वालिटीज एंड टू एक्सप्रेस देम. शांति, प्यार, पवित्रता, इसका अनुभव करना. और अनुभव कब होगा? जब हम उनको अपने इंटरैक्शंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे. अब हम ना अनुभव करते हैं, ना उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्चुअली उनकी डिमांड करते हैं. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो. मिल नहीं रहा, अगेन क्वेश्चन, मैं यह क्या कर रहा हूँ? सो नाउ द ट्रांजैक्शन साइड हैज टू चेंज. ऐसा नहीं, ऐसा. एंड नाउ लेट्स ट्राई एंड पुट दिस एज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. पर्पस ऑफ माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड देन प्ले माई रोल्स. पर्पस ऑफ माई लाइफ बी पीसफुल देन प्ले माई रोल्स.
0: इट्स माई कोर वैल्यू.
1: अब अपनी वैल्यूज की लिस्ट निकालिए. जब हमने पहले लेबल के आधार से वैल्यूज की लिस्ट निकाली तो निकली पावर, पोजिशन, फैमिली, ये सब वैल्यूज की लिस्ट. आई केयर फॉर देम. लेकिन जब मुझे ये समझ में आता कि मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो आत्मा की वैल्यूज की लिस्ट क्या निकलेगी?
0: पीस,
1: पीस, हैप्पीनेस, लव. अब आने दो सिचुएशन आपके सामने. अब प्रायोरिटाइज करना.
0: आई कैन एक्चुअली जस्ट विजुलाइज, यू नो, कि अब अगर बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अब अगर हैप्पीनेस क्रिएट करना है, लव क्रिएट करना है, वो क्रिएट करके अगर मैं खिलाती हूँ,
1: क्रिएट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना है, तो सारा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा.
0: And in fact, it will become much easier to do all these things, you know.
1: And most important is ki sab kuch karte hue bhi andar se kaisa feel karenge.
0: Bahut acha. In fact, hamari energy utni waste nahi hogi. Because hame bahut zyada efforts nahi karna pad raha hoga.
1: And for jo cheeze hum anubhav karna chahte hain, hum unko bahar nahi dhoondenge. And we will be very clear ki mere jeevan ka purpose hai, apne ko pehchan liya, ab usko har sambandh mein, har role mein, हर प्रोफेशन में. आई एम अ डॉक्टर, हीलिंग इज माई प्रोफेशन, लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ
0: लव, हैप्पीनेस.
1: लव और हैप्पीनेस के साथ वो करना. हॉस्पिटल गए, बहुत सारे मरीजों को ठीक तो कर दिया, लेकिन इन द प्रोसेस कई बार गुस्सा क्रिएट किया, कई बार दर्द क्रिएट किया, किसी और को डांट दिया, ये किया, तो आई विल नॉट फील कंटेंटेड even after healing so many people.
0: उस वक्त जब वो सर्जरी करके that momentarily जो happiness है वो definitely देखे.
1: वो तो achievement है. Achievement है, which is very good. मैंने एक task लिया, एक जिम्मेवारी उठाई, वो achieve कर लिया, very nice. लेकिन करते हुए experience क्या किया, express क्या किया, इस पर अब ध्यान रखना शुरू करना है कि energy कौन सी है. क्योंकि my purpose of life is the being, उसका पर्पज ऑफ लाइफ नॉट द डूइंग. बस वो छोटी सी एक जो कहे ना कंफ्यूजन जो हो गई, उससे हर स्टेप पर गलती होती गई. हर स्टेप पर. इसीलिए परमात्मा ने आकर कहा सिर्फ एक छोटी सी भूल कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गया, और मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर से जुड़े हुए जो सारे लेबल्स थे, इस एक विस्मृति से, इस एक भूल से एवरीथिंग वेंट all over wrong. Today, all our anger, stress, pain, everything is only because of this one illusion. And that's why one correction, bahut mehnat nahi hai gusse ko khatam karna, isko no, one correction.
0: Actually, wo wahi baat hai na ki jaise hame ye kahe ki hame ye cheeze hatani hai, wo bahut mushkil ho jata hai. Lekin agar ye thought create hona hai ki ye mere jeevan ka purpose hai, you know, to create happiness.
1: Simple है, मेरे जीवन का पर्पस क्या? खुश रहना. खुशी चाहिए नहीं. अभी तक क्या था जीवन में, क्या चाहिए? खुशी चाहिए, खुश रहना. और फिर खुश रह कर क्या करना? ऑटोमेटिकली औरों को वो तो मुझसे ट्रांसमिट होती जाएगी. टुमारो लेट्स गो बैक टू आर ऑफिस
0: खुश खुश.
1: विद दिस पर्पस वेरी क्लियरली रिटन हियर, पर्पस ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल एंड डू द वर्क. Answer yourself in the evening. आज का दिन कैसा बीता? अब contentment कहाँ ढूंढ रहे हैं बाहर?
0: अब purpose लेकर अगर जाएंगे तो हम कर भी लेंगे.
1: कर भी लेंगे, क्योंकि जो भी purpose हम उठाते हैं उसको हम कर लेते हैं. सिर्फ वो fill in the blank पर ही अगर गलत answer लिख दिया था, तो फिर उसी के ऊपर सारा focus था. तो purpose of life tomorrow morning, right from सुबह जब अपने बच्चों को उठाना है,
0: happiness से उठाना है, Oh, yes, that's challenging.
1: No, that's not challenging. That's the purpose of your life. Purpose of life situation dependent to nahi hota. लोग अपना पर्पस अचीव करने के लिए बड़े से बड़े चैलेंजेस को क्रॉस करते हैं. इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट. ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ. तो मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है? मेरे से ही तो जुड़ा हुआ हो सकता है.
0: मेरी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना. यस.
1: तो कल से बस ये वो ही काम करना है सारा जो पहले कर रहे थे. नथिंग एल्स इज चेंजिंग आउटसाइड. फोकस इज चेंजिंग इनसाइड.
0: मुझे लगता है सचिन शिवानी इसमें काम सिर्फ ये करना होगा,
1: ध्यान रखना
0: है. सिर्फ याद रखना है. बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही होनी है.
1: इसीलिए तो परमात्मा बार बार कहते हैं एक छोटी सी बात, सोल कॉन्शियसनेस.
0: अच्छा, हमने क्या किया? ऑटोमेटेड हमने ये चीज कर ली और उन पे काम करते गए. वो जो सारे काम है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे. अब
1: वो ऑटोमेटेड हो जाएगा. यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा. अपना क्रिएट हमें करना है. काम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब राइट अभी भी काम तो वैसे भी हो रहा है. सामकारा काम तो हमें करना ही आता है. सिर्फ क्या करना नहीं आ रहा था, क्रिएट कैसे करना है. और क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि शांति कैसे क्रिएट करनी, खुशी कैसे क्रिएट करनी, मैं औरों से मांगने लगे आई विल अचीव दिस, तब मुझे ये होगा. और वो अचीव, लाइक मेनी पीपल आई हैव मेट, दे विल से मेरे जीवन का पर्पस है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस रोल तक, यू नो, इस टाइटल तक पहुंचना है. और टेंशन हुई है उस बात की कि मैं पहुंचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, पहुंच पाया या नहीं, रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे. तो पर्पस ऑफ लाइफ चैलेंजिंग हो. तो मैं कौन ध्यान में रखकर अब जीवन की यात्रा पर कल चले. तो देखते हैं कल का दिन कैसा बीतता है.
0: बिल्कुल. लेकिन सिस्टर शिवानी एक बात यहाँ ये जानना चाहेंगे कि मुझे अपने आप को पहचानते हुए मैंने अपने वैल्यूज और पर्पस ऑफ लाइफ को तो समझा, लेकिन मैं जो अभी तक जिंदगी जी रहा था या जी रही थी उसमें बहुत सारे चीज़ों को मैंने पर्पस बनाया हुआ था और वो एक ऐसा ट्रेंड पे जी रहा था. तो ये पर्पस ऑफ लाइफ मेरे साथ हमेशा हर पल याद रहे मुझे, इसके लिए यू नो हाउ शुड आई
1: प्रिपेयर? इसके लिए मुझे सुबह अपने आप के साथ बैठकर, जो हम कहते हैं मेडिटेशन, तो हम मेडिटेशन में अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को फिर याद दिलाते. शुड वी डू इट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स?
0: दैट विल बी नीडेड. की
1: लेट द बॉडी सिट वेरी रिलैक्स्ड कंफर्टेबल, और शरीर को हल्का रखते हुए अपने आप को महसूस करने की, देखने की कोशिश करें. ये शरीर तो जड़ है, मैटर है. ये हाथ तो वही करता जो मैं इसे कराता हूँ. ये आंखें वही देखती जो मैं इसके द्वारा देखना चाहता हूँ. मैं कौन हूँ जो चूज करता है इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूँ. आई एम एन इटर्नल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल. अपने आप को धीरे धीरे देखने का प्रयास करें. शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अति सूक्ष्म छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ लिटिल स्टार in the center of the forehead. This is me. ये मैं हूँ जो ये शरीर धारण कर अपनी roles और responsibilities निभाता. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. I am a powerful being. हर परिस्थिति का मैं master हूँ. शांति, खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी नेचर है. दिस इज हु आई एम. आई एम अ पीसफुल सोल. आई एम अ ब्लिसफुल सोल. मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को अनुभव करना और अपने संबंधों में लेकर आना. टू एक्सपीरियंस पीस and to express it in every interaction, to feel love and to express it in every interaction, because this is who I am. Tomorrow, as I go on in the journey of my life, mujhe sirf यही याद रखना है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ ब्लिसफुल बींग एंड आई विल एक्सप्रेस इट विद एवरीवन आई मीट बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. ओम शांति.
0: ओम शांति. लाइफ बिकम्स एक्चुअली सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच कि आज हम जो अभी तक इतने पर्पस ढूंढ रहे थे, सचमुच में एक क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अपनी वैल्यूज, अपनी पहचान, बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है. ओम शांति. आज तक जो भी हमने बीड़ा उठाया, जो भी हमें कर्तव्य निभाने को कहा गया, हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया. हमें पर्पस मिला लाइफ का, जो भी रोल था उसमें, जो भी पर्पस था उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया. हम कर्मठ लोग हैं, अच्छा काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं. लेकिन जब अपनी पहचान हुई तब समझ में आया कि सबसे बड़ा अन्याय तो अपने ही साथ हो रहा था, क्योंकि जो मेरी अपनी पहचान है, जो मैं हूँ, उसकी कोर वैल्यूज़ को ना समझते हुए मैं अपना ही पर्पस नहीं जान पा रहा था. सो आज जब ये पता चला है, एक ऐसा पर्पस जो मेरा रियल पर्पस है लाइफ का, वो जब समझ में आ रहा है तो उसे भी मैं उसी खूबी से निभाऊंगा, ये मैं समझ सकता हूँ. सो कौन हूँ मैं, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये अब समझ में आया. निभाऊंगा कैसे, वो भी उसी शिद्दत से और उसी कर्मठता से. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो @pkmail.org.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां,
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 8:30 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। बुधवार का दिन है, बुधवार यानी बुध यानी शुद्ध, और आज गणेश जी का दिन है, तो गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में हम लोग बातें करेंगे दिन विशेष के बारे में। और हमारे एक मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
3: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बोलिए कैसे हैं आप?
3: बहुत आनंद ले रहे हैं
2: सर। बिल्कुल आनंद लेना ही चाहिए। जी कौन सा सुनाना सुनना चाहते हैं?
3: समय मेरा बलवान है, समय के आगे कितना भी बलवान है वो नहीं चलेगा। समय का खेल आवाज आ रही है?
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। समय बड़ा बलवान
3: आज हमारे बहुत कम आ रही है। और
2: जी, जी।
3: मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार, प्यार भरा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बुधवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी बातें हमारे साथ साझा कर रहे थे, और समय बड़ा बलवान रे, इस तरह से ये गीत सुनना चाहते हैं, जरूर सुनाएंगे। और आज जैसे कि 8 जुलाई हो गया है, 8 जुलाई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शिक्षा 1948, शके 17, गदे 24, आषाढ़ बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083, आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी नवमी बुधवार रेवती आज है। इस्लामी हिजरी 1448, 22 मुहर्रम बुध आज है। और शीतला अष्टमी आज है। और आज के इस यादगार दिन को याद करते हुए शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए एक बहुत ही चेतावनी गीत जो हमारे गुड़ीलाल जी ने याद किया है, उसे भी सुन लेते हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। 8:35 हो रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हुए। समय बड़ा बलवान, ये गीत आपने सुना। निश्चित तौर पे हमारे जीवन में समय का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो समय के साथ हम नहीं चल पाएंगे। और कभी कभी समय जो है अपना खेल दिखाई देता है और उसके सामने सब कुछ फीका हो जाता है। तो इसीलिए समय का सम्मान करना, समय का सदुपयोग करना, समय को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सूरज जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: और समय से हम आ ही जाते हैं आपके पास। अगर अगर समय से बाद हम आएंगे, 10 बजे के बाद आएंगे, तो क्या आपसे बात हो सकती है? नहीं हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो समय से ही सब कुछ करना है। समय से जाना, समय से आना, समय से काम करना, समय से सब कुछ साथ में लेके करना, तो ही तो समय आपका साथ देगा, वरना साथ नहीं देगा। तो बहुत अच्छा भजन था हमारे गुड़ी लाल जी ने जो पसंद किया था, समय बड़ा बलवान है। समय से निकल जाने के बाद हम कुछ भी करे कोई फायदा नहीं है सर। तो चलो, आज गणपति जी का दिन है, बुधवार है, तो सभी को अच्छे दिन की बहुत शुभकामनाएं सर। हमारे सभी मित्रों को, आपको, हमारे गुड़ी लाल जी, हमारे बुरा राम जी को भी राम राम है आज के दिन का। और जाना भी मैं चलो एक दे दूं कि गणपति जी का है कि सूट सुडाला सूट सुडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव मां भगवान, गणपति देव मां भगवान। तो वही गाना है सर
0: जी, जी।
1: गणपति देव बड़ा भगवान।
0: चलिए सूर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा गीत याद करने के लिए और गणेश जी का प्यारा भजन याद किया है आपने। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी भजन सुनाऊँ। 8:37 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: हेलो भाई और बहनों, मैं हूँ स्वप्निल शाह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन FM विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष संगीता जी उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। और आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं और कुछ खास गाने भी आप बनाते हैं और गाते भी हैं, तो आप सभी की तरफ से संगीता जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: हाँ, अच्छी हूँ।
1: जी जी जी, थोड़ा सा बताइए अब यहाँ कैसे आना हुआ शांतिवन माउंट आबू?
2: यहाँ मैं अभी से 3-4 साल पहले यहाँ आई थी
1: जी,
2: घूमने के ख्याल से।
1: हाँ।
2: तो मुझे यहाँ का वातावरण मैंने इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ के सेंटर से मैं जुड़ गई जहाँ पे मैं रहती हूँ। और अभी तो हमारा ये है कि मैं डेली मुरली सुनने जाती हूँ और मैं बाबा के घर में हमसे जितना सहयोग बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि बाबा के सहयोगी बनूं। और मैं पिछले बार जब आई थी
1: जी जी,
2: तो मेरा बाबू जो है, लड़का है एक मेरा,
1: हाँ,
2: वो
1: हाँ,
2: पढ़ता था
1: हाँ,
2: तो ऐसे ही सब बोला कि चिट्ठी बाबा के घर में लिखा जाता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो मैं कुछ ऐसा, मेरे में भाव ऐसा नहीं था कि बाबा ऐसा पूरा ही कर देंगे, ऐसा मेरे मन में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सोची कि बाबा को जांचने के ख्याल से ही कि मैं एक चिट्ठी ऐसा ही लिख दी। मेरा बेटा UPSC का तैयारी करता था तो, और वो जब एग्जाम दिया तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका BPSC कम्प्लीट हो गया।
1: अरे वाह।
2: और उसके बाद से मैं क्या बताऊं आपको मैं बाबा को कैसे भूल सकती हूँ। मैं
1: जी,
2: सदा सदा के लिए बाबा की हो गई। बाबा ने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया, इसलिए मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: जी, जी, जी।
2: और ऐसे हमारा फिर ये दूसरी बार यहाँ पे आना हुआ है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो यहाँ एक सॉन्ग गाई थी
1: जी,
2: और इस बार भी एक छोटा सा सॉन्ग मैं खुद से बना करके लाई हूँ।
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या भाव है उस गीत में,
2: मैं गा करके ही सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है आपका।
2: ये दीदियों के ऊपर मैं बनाई थी।
1: अच्छा।
2: गाना हमारे जो ब्रह्म कुमारी जो दीदियाँ हैं उनके ऊपर ये गाना, उनको मैं डेडिकेट करती हूँ ये गाने को
1: जी,
2: और उनके लिए ही बनाई थी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए संगीता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया और आपने खास दीदियों के लिए गीत बनाया, धन्यवाद आपका। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आपने अभी शिखर सम्मेलन को अटेंड किया है, तो इसमें क्या सीखा, क्या संकल्प लेके जा रहे हैं?
1: यहाँ आने पर तो सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
0: जी, जी जी।
1: अगर मैं यहाँ आने पर बाबा की एक बात भी अपने अंदर ग्रहण करती हूँ,
0: जी जी,
1: तो मैं सोचती हूँ कि हमारा जिंदगी जो है वो धन्य हो जाएगा, जीवन मेरा सफल हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मैं ये सीख कर जा रही हूँ कि निराकार शिव ही हम सभी मनुष्यों के माता भी है और पिता भी हैं। और आज उषा दीदी ये बतलाई हैं कि बाबा की याद में दिन रात रहना ही राजयोग कहलाता है, तो मैं यही यहाँ से सीख कर जा रही हूँ और जो मैं लेकर के जा रही हूँ और जो हमारे साथ हुआ है, मैं दूसरे को भी इस संदेश को दूसरे तक भी पहुँचाऊँगी। और यही बाबा के यहाँ से मैं सौगात लेकर के जा रही हूँ, जो अपने लिए भी ले जा रही हूँ, औरों के लिए भी लेकर के जाऊँगी और जितना हो सकेगा मैं बाबा के बताए हुए पद चिन्हों पर चलूँगी, कोशिश करूँगी।
0: जी जी,
1: बस
0: जी।
1: यही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। और आप अपनी अच्छी भावनाओं को लेकर यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर आप जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि आप जो संकल्प लेके जा रहे हैं वो पूरा हो और बाबा के इस कार्य में आप हमेशा साथ रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
1: सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूँ अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है, इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप जवार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है, उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं, चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया समाचारों का, आप सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। अभी
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
2: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास

0: 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप अंदाज गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
4: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
5: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
6: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये पर्व किसी न किसी रूप में भारत में हर कोने में मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की पष्टी को वैशाखाष्ट कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगातार ये जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के इस पर्व को मनाया जाता है। शीतला माता हर तरह के तपों का नाश करती हैं और अपने भक्तों के तन मन को शीतल करती हैं। इस पर्व को बूढ़ा बसोड़ा बसोड़ा या फिर लसोड़ा या फिर बैसी सोयरा भी कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताते हैं। तो वंदना जी, शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू रमेश जी, आपको भी और हमारे लिसनर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ,
0: और बताइए शीतला अष्टमी के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: शीतला अष्टमी के बारे में जैसे बताया ना कि पसौड़ा जैसे पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो बासी खाना होता है, पता रात में बना लेते हैं, पुए हैं, और बहुत से लोग उड़द की दाल की बढ़िया बनाते हैं और हलवा बनाते हैं, बहुत से लोग बहुत से पूरी बनाते हैं। और बसौड़ा कहा जाता है कि मतलब बासी खाना, तो मतलब रात में बना के और सुबह चौराहों पर जैसे रखते हैं ना, आपने भी अगर देखा होगा चौराहे पे बहुत सारा खाना वाना रखा जाता है, तो बसौड़ा ये होता है उसको, और वही फिर खाना खाते हैं, है ना। तो मतलब ताजी इसमें नहीं खाया जाता है, विशेषकर पुए जरूर बनाए जाते हैं, मतलब पक्का खाना बनता है, कच्चा खाना नहीं बनता है इसमें। पक्का खाना मतलब जो तल कर बनाया जाता है, तो उसमें वो होता है। और जैसे शीतला माता का है तो जैसे मतलब बॉडी में प्रॉब्लम होती है कुछ, चिकन पॉक्स वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो इस उसके लिए भी होता है, उससे रक्षा करती हैं।
0: अच्छा थी।
1: जी
0: चलिए वंदना जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया प्रैक्टिकल। और विशेष तिथि के रूप में अगर देखा जाए शीतला पूजन भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तिथियों में किया जाता है, और विशेषकर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी या सप्तमी का पर्व माना जाता है या मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से एक दिन पहले का भोजन, जैसे वंदना जी ने बताया, उसे फिर दूसरे दिन प्रातकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सभी लोग बासी भोजन को खाते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे फिर व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
0: चलिए आपका फ़ोन जो है फिर से कट गया है, कोई बात नहीं, आप फिर से फ़ोन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गणेश जी का प्यारा भजन के लिए। हेलो जी नमस्कार।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति सुभाष जी, बोलिए कैसे हैं आप? शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: कम आ रहा है।
0: अच्छा अच्छा।
2: और बाकी इधर भी बारिश हो रही है अभी जलगांव को ठीक से।
0: अरे वाह,
2: इसी कारण आवाज नहीं आ रहा। आपके साथ वंदना दीदी है क्या?
0: आवाज। हाँ जी हाँ जी,
2: वंदना दीदी का।
3: हाँ जी हाँ, मैं हूँ सुभाष जी। ओम शांति।
2: वंदना जी, ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: आपको हमने आज रमेश जी का 2000वां एपिसोड बातें मुलाकातें में आपको समक्ष देखा, आपको सुना, आपके विचार, आपके प्रश्न, आपका चुलबुलापन, चैलेंज और नौटीपन भी हम सुनकर देखकर बहुत ही खुश हो गए वंदना जी। तो आपको, रमेश जी को, रेडियो मधुबन परिवार, हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का जलगांव से प्रणाम। ओम शांति, नमस्कार, खम्मा गणी।
0: ओम शांति। ओम शांति गणी खम्मार सुरेश जी, बहुत बहुत आशीर्वाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग विशेष शीतला अष्टमी के बारे में बातें कर रहे थे, इसके साथ ही ज्योति बसु इनका जन्मदिन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी नेताओं में से एक थे और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर संसदीय राजनीति में विशेष ख्याति पाई थी और भारत में विशेष राजनीति के अंदर जो इन्होंने अपनी छवि को स्थापित करने वालों में से एक अच्छी छवि और लंबा समय तक छवि बनाए रखने वालों में से एक नाम ज्योति बसु का भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देवा हो देवा गणपति देवा आपके लिए ये खूबसूरत गीत जो खास बड़ा ही आनंददायक है और सुनते हैं इस गीत को जो सुरेश जी ने याद किया था।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा ही प्यारा सा गजानंद का गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आइए ज्योति बसु की जीवन कहानी से आप रूबरू हो रहे थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति। काफिर जी, कैसे हैं आप
1: जी? मैं खुर्शीद खान जागीरदार बोल रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड।
0: ओल्ड इज गोल्ड, जागीरदार जी, कैसे हैं आप
1: जी? बहुत बढ़िया
0: है। बहुत दिनों के बाद याद किया आपने, कहाँ चले गए थे क्या?
1: याद तो हमारे प्रेम भाई के लिए किया है कि बहुत दुख हुआ प्रेम भाई के बारे में सुन के।
0: जी जी जी जी,
1: बस भगवान उनको स्वर्ग में अच्छा स्थान दे और हमेशा वो अपने बच्चों को याद करते रहे और बच्चों के लिए दुआ भगवान से करते रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत दुख हुआ, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं।
0: जी जी, आज शाम को है, आप आएंगे तो अच्छा होगा। और भी
1: तो देख लेंगे।
0: देखिए, ठीक है, 5:30 तक पहुंचेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि शाम का है।
1: जी जी, बस उनके लिए कुछ अच्छा सा भजन बजा दीजिएगा, मुरली वाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बजाते
1: और हमारी हृदय पूर्वक हमारी श्रद्धांजलि पहुँचाइएगा उनके।
0: जी जी जी जी
1: जी, थैंक यू वेरी मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये थे ओल्ड एज गोल्ड जागीरदार जी, जो प्रेम भाई के लिए अपनी भावनाएं शुभ और श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे। तो पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से प्रेम जी को जो है श्रद्धा सुमन समर्पित है। और आज पूरा दोपहर में उनकी जो है पार्थिव शरीर को माउंट आबू से शांतिवन नीचे तक ले आया जाएगा, अलग अलग स्थानों से होते हुए, और फिर शाम को 5:30 बजे मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जीवन परिचय के बारे में बातें कर रहे थे, ज्योति बसु के बारे में। ज्योति बसु का जन्म आज के दिन पूर्व बंगाल में एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार में 8 जुलाई 1914 को हुआ था। कोलकाता के कैथलिक स्कूल और सेंट जेविस स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और फिर उसके बाद अपनी हायर एजुकेशन में इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की और लंदन में इन्होंने पूरा किया। और रजनी पाम दत्त जैसे कम्युनिस्ट नेताओं से संबंध के चलते इन्होंने 1930 में पार्टी में ज्वाइन किया और फिर सदस्यता ले ली। उसके बाद ज्योति बसु कितने पुराने हैं ये इस बात से जाना जा सकता है कि वे कुख्यात जलियांवाला बाग कांड के 5 साल पहले पैदा हुए थे और उन्हें भारत में लगातार किसी भी राज्य का सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 1977 से 2000 तक वे बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 1964 में जब वो पार्टी बनी तो वे उनके पोलित ब्यूरो में थे और 2008 में स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। ज्योति बसु का पूरा नाम ज्योतिन्द्र नाथ बसु है। पिताजी बंगाल देश के बारूदी गांव में ढाका जिले से आए हुए थे और डॉक्टर थे। सेंट जेवियर और प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1935 में ग्रेजुएट हुए, जब आज के महारथी मार्क्सवादी नेताओं में से ज़्यादातर उस समय थे ही नहीं। फिर इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बनकर आए। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनने वाले भूपेश गुप्ता उस समय ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने ही ज्योति बसु को कामरेड बनाया और वकालत की पढ़ाई पर पूरा करके भारत 1940 में लौटे। ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विशेष फुल टाइम कामरेड हो गए और सबसे पहले मजदूर संगठन चलाया। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई, स्वागत है, बोलिए, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ, बस आज मौसम नरमा गरमा है, गरमा गरमा।
0: अच्छा,
2: गर्मी का ही जल्दी अच्छा जी लगता है कहीं हवा तो कहीं धूप तो कहीं अंखे तो कहीं ऐसी सब चल रहा है। और आपको नमस्कार करते हैं नवीन किरण को, और
0: नमस्कार,
2: तो बहुत अच्छे लगे हैं और आपका भी शो लगता ही है, लगता रहेगा और सब अच्छे लगे। हमारे सुप्रभाष, ओम शांति, हमारे डॉक्टर साहब जी भैया, और अगर सुने कहीं मौसम खराब होने से नहीं भी सुने हैं तो उनको भी नमस्कार करते हैं, और खुशी के नगमे दिल की बातें वो भी उनको भी सुनाता है, अच्छा है। और आपको नमस्कार करते हैं, और आपके साथ अगर कोई बैठे हैं उनको भी नमस्कार। अच्छा, हमारे कमलेश मैन आया क्या?
0: कमलेश मैन आने वाले हैं अभी
2: आने वाली स्वागत है उनका
3: एडवांस में
2: स्वागत है उनका, बहुत इंतजार, शायद हंस रहे हैं बाद में उनसे मैं अंदर की आंखों से देखता हूँ अंग्रेजी को बहुत अच्छा है कि हम की और भी खुशी हो रही है और मैं खड़ा हूँ, वहाँ माहौल अच्छा लग रहा है। आज का टॉपिक यही कह रहा है अगर कोई गलती हो गई है तो ईश्वर से बड़ी खुशी से क्षमा मांगे और अच्छा काम किया तो ईश्वर का धन्यवाद करिए और उन सामने वाले का भी। और आपको रेडियो मधुबन को नमस्कार करते हैं और बहुत सारी कल हमने शराबी पिक्चर देखा था शायद बहुत समय में और उसको पिक्चर बनाई थी प्रकाश मेहरे ने और अच्छी पिक्चर थी। अमिताभ बच्चन जो होते हैं उनका जो बर्थडे होता कुछ होता है तो वहाँ बैठे रहते तो नथुलाल जी होते मुखरी जी तो उनको देख के बच्चन साहब बोलते मैं मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना मुझे ना हो तो वहाँ सब खड़े रहते हैं तो एक भाई और भी अंदर काम करते तो बोले मिस्टर लोगो क्या बात है तो दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई इनकी बच्ची का ऑपरेशन है और 25,000 रुपये की जरूरत है उनके पास पैसे की सेवत नहीं है तो 25,000 रुपये की जरूरत है भैया पैसे की वजह से बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए कौन सी से इन्हें 50,000 का चेक लिख दिए और गॉड फादर से उस अल्लाह से हमारी दुआ मांगे और ऐसा कोई चिंता मत करिए। और फिर देखते हैं नथुलाल की तरफ और कहते हैं भाई मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना मुझे ना हो तो ये हमने देखा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था
0: जी।
2: और भी फिर नथुलाल जी बोलते हैं भाई हमारी चार लड़कियां है उसकी से दो लड़कियों की शादी करनी है और उनके लिए दहेज के लिए 2,00,000 रुपए की जरूरत है तो अमिताभ जी बोलते हैं भाई चार लड़कियां हैं और 2,00,000 की जरूरत है भैया ऐसे कैसे हो सकता है नहीं भैया हमारी चार बेटियां हैं तो चारों के हिसाब से भाई 4,00,000 रुपया मुंशी जी हमारे नथुलाल जी को दे दिए और नथुलाल जी घबराइए मत और बस मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना मुझे ना हो तो ये अमिताभ जी का डायलॉग और बड़ा अच्छा लगा हमको भी। पैसे की वजह से कोई मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए, समय पे कोई करता है कार्य तो वो भगवान ही कराता है। तो हम चाहते हैं कि आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को
0: नमस्कार
2: और फिर जी और अच्छा गाना दिन और उनकी के साए मुझे गिर
3: अमिताभ बच्चन का गाना नहीं सुनेंगे आप
2: ये बाहों के साए नमस्कार शांति
3: शांति
2: भी बहुत सारी बातें हैं मगर
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मदन लाल जी जी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। चलिए मैं ज्योतु बस्सी के बारे में बात कर रहा था। ज्योति जी जो है अपने देश के सबसे लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले ज्योति बसु जी 17 जनवरी 2010 को कोलकाता के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली और भारतीय राजनीतिक विद्रोह में उनकी भूमिका को एक और संसदीय राजनीति में मार्क्सवाद के अंगत के रूप में हमेशा याद रखेगा क्योंकि उनके कामों का और व्यक्तित्व की तारीफ करें या आलोचनाओं का इन दोनों भूमिकाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके लिए कहते हैं जब कभी भी लौटकर उन राहों में गुजरेंगे हम जीत के ये गीत कई कई बार फिर हम गाएंगे भूल कैसे पाएंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों जर्रे जर्रे में तुम्हारी ही समाधि पाएंगे। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए 9:41 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और वंदना जी
3: जी बताइए
0: क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: मैं बताइए आपको क्या सुनना है वही सुना देंगे आपको क्या सुनना है बताइए
0: सुनाइए आप जो आपका पसंदीदा गीत है
3: आप सुनाएंगे ना जो मेरी पसंदीदा गीत है
0: बताइए तो सही आप फिर
3: आप वो गाना उसका बुलेट राजा का गाना नहीं उसे बंगाल का भी है जरा जर सर से सरकने लगा मेरा आसमां वैसे बंगाली का भी, अभी आप ज्योति बसु के बारे में बता रहे थे ना, तो वो मिक्स है, जरा जरा सर से सरकने लगा मेरा आसमा, उसमें बंगाली है गाने में। हाँ, ये सुनवाइए, कल से तो आपको दिल्ली में सुनेंगे फिर हम लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जरा जरा सर से सरकने लगा।
1: झरा झरा कहा गया?
0: सर से सरकने लगा मेरा आसमां। बुलेट राजा का सॉन्ग है ये। सामने है सवेरा। हाँ यही सामने है सवेरा
1: जी,
0: यही है।
2: तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा।

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूँगा आपको ये गीत जो है बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और इसमें गुजराती जो सॉरी बंगाली टेक्स्ट था, बंगाली जो हमने ज्योति बसु जी को सुना, उनकी जीवन कहानी को याद करते हुए ये गीत उनके लिए डेडिकेट था। और आइए अब बात करते हैं 8 जुलाई को विशेष महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में। एक अगर नज़र डालें तो वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की पहली जल यात्रा शुरू की थी आज ही के दिन 8 जुलाई 1497 को। ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी। और 1918 में हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार बाबू।
0: नमस्कार जी नमस्कार।
1: आज जगदीश जी का जन्मदिन है
0: जी।
1: जगदीश
0: जी बोलिए।
1: जगदीश जी का जन्मदिन है तो उनका ये क्या हमने गाना है थे सर टाइम लगा करके नाम बन गए आलिशान पढ़ाई में है जीरो सर।
2: किसका जन्मदिन?
1: हाँ जगदीश जी का है जन्मदिन।
2: जगजीत सिंह।
1: जगदीश
2: जगदीश जगदीप व्हाट इज सेइंग
0: जगदीप
2: जगदीप जगदीप जो एक्टर है
1: जन्मदिन है सर उनका ये गाना है सर टाइप लगा करके बन गए हीरो हीरो हीरो पढ़ाई में हीरो।
0: ठीक है
1: ठीक है। गाना सर उनका
0: जी जी ठीक है।
1: सभी को मेरा प्यार बड़ा कमलाधन को भी मेरा प्यार बड़ा नमस्कार।
0: नमस्कार चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ीलाल जी, बहुत ही प्यारी बातें आपने बताई। और आइए आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई की विशेष बातों पर हम ध्यान दे रहे थे। और भारतीय संविधान के सुधार के लिए विशेष जेम्स फोर्ड पार्ट प्रकाशित की गई थी 1918 में। और सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नंगाल पान बिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का विशेष प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था आज के दिन 1954 को। म्यांमार के भागों में आए भूकंप में हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए थे तथा भारी जनमाल की क्षति हुई थी 1975 में। और शिमाकी मुखाई जापान की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी 1994 में आज के दिन। प्रशांत महासागरीय देश प्रधानमंत्री बिल स्कोट का इस्तीफा पापुआ न्यू गिनी का 1999 में।

0: दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त हुआ 2002 में। स्वीडन में आए हुए विमान हादसों में 115 लोग मारे गए थे 2003 में। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी 2005 में। आज के दिन पेरिस की सरकार ने बांग्लादेश की विवादग्रस्त लेखिका तस्लीम नासरीन को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया 2008 में आज के दिन। और 2012 में आज के दिन आसाम में बैवा बाढ़ में विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गौंड समेत 500 से अधिक वन प्राणियों को लिया गया। तो आइए एक और दो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: बुराराम बोल रहा हूँ सर।
0: बुराराम जी, स्वागत है आपका।
1: बस मैं बोला, मैं आज 3-4 दिन से आपको फोन करता हूँ, आप फोन नहीं उठाते, तो मैं बोला मेरे ऊपर नाराज
0: है। और बताइए जी। जी
1: बस, तो मिला सुबह सुबह राम राम करने का मेरा फर्ज है सब मधुबन भाइयों को और सब सुरेश भाई, रमेश भाई, भूरेलाल जी और सबको मेरा राम राम बोलने का सुबह सुबह।
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शीतलाष्टमी की। अच्छा किया आपने याद किया, धन्यवाद।
1: आज तो फोन लगा, मैं तो 3-4 दिन से कर तो आपको फोन ही
0: जी जी जी, शुक्रिया,
1: कोई बात नहीं,
0: ओम शांति। तो आइए, ये थे बुराराम जी जिन्हें याद कर रहे थे हम भी और आप भी, तो उन्होंने याद भेजा है सबके लिए। तो चलिए, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करूंगा कि आपके आस पड़ोस में भी जिनका भी जन्मदिन है या नए बच्चे का जन्म हुआ हो, तो उन सभी बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जिनका भी जन्मदिन है, रेडियो मधुबन करता है बड़े प्यार से हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। 9:50 हो रहे हैं और चलिए वंदना जी बताइए, आज बहुत सारे अच्छे लोगों का भी जन्मदिन है तो थोड़ा सा आप सुनाइए उनका नाम।
1: आज ही के दिन 1991 में अनीता कुंडू, भारत की जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उनका जन्मदिन है। 1980 में चेतन आनंद, जो कि भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और फिर 1972 में सौरव गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, और 1958 में नीतू सिंह, जो अभिनेत्री रही हैं, और इसके बाद में 1949 में गेगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, एंड उसके बाद है 1949 में YS राजशेखर रेड्डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे और जो आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में 1946 में गिरिजा व्यास, राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। फिर 1939 में गंगा प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। 1937 में गिरिराज किशोर, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक। उसके बाद 1914 में ज्योति बसु, भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद में 1912 में बनारसी दास, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनका भी जन्मदिन आज है। और 1909 में विष्णु डे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 से सम्मानित, जो कि बंगला साहित्यकार थे। उसके बाद में 1898 में P.S. कुमार स्वामी राजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। तो ये थे आज के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में
0: जिनका जन्मदिन था। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रेम जी को याद करते हैं। प्रेम जी के लिए उनको श्रद्धा सुमन देते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबकी तरफ से।

चलिए मित्रों, आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं और ये खूबसूरत गीत सुनकर प्रेम जी की कुछ यादें भी ताज़ा हो गई होगी। तो चलिए, जीवन में जन्म और मृत्यु दो पहलू हैं, दो छोर है, जिसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो जीवन में जीवन भर का जो बीच का काल रहता है वो हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जन्म है मृत्यु की रहस्यमय चीज़ों को समझ लें तो एक नया जो है जीवन का अंदाज आपको आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है जन्म और मृत्यु को समझने वाले जीवन में बेहतर करते हैं या जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणेशा।

अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आशियाना में इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे तुलसी पर बहुत ही अच्छे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे कि अपने दृष्टिकोण को बदल करके तो देखिए, खुशियाँ बनी रहेगी। और रेसिपी में परवल का अचार जो बनाएंगे, जरूर बना करके खाइएगा। और फिर ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हो ना कि उषा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आशियाना जरूर सुनना। अरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपने बच्चों को संस्कारशील बनाना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा सर्विस करते हुए देखना चाहते हैं, तो आशियाना जरूर सुनना। तो मनीषा जी भोसले, जिनका मैं परिचय आपको दे रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी के 10वें वंशज है, उनके कुल की कुल बहू है और आप साइकोलॉजिस्ट है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको उसी समय बताएंगे जब आप जीके सुनेंगे। तो मनीषा जी बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे कि किस तरह गर्भवती बहनें गर्भ में ही अपने बच्चे का ख्याल रखे तो बच्चा आपके मन पसंद का होगा, संस्कारशील बनेगा। और जो आप करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस, बिजनेस, वो करेगा, लेकिन शुरुआत में 13 सप्ताह बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत के जो 13 सप्ताह होते हैं उसी समय दिमाग डेवलप होता है। और अगर इस समय आप पॉजिटिव किरणें अगर देते हो आप अपने बच्चे को, तो आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो, उसके बाद भी ध्यान देना है। तो ये सारी बातें मनीषा जी के द्वारा जानेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नामे पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसके संबंध। बच्चे के जन्मते ही संबंध उसे सौगात के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये संबंध ही उसके भविष्य की उन्नति का आधार बनते हैं। संबंध वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द रहकर व्यक्ति अपने अंदर अनेक योग्यताओं कलाओं का विकास करता है। श्रेष्ठ संबंधों के माध्यम से ही छिपे हुए आंतरिक मानवीय मूल्यों व देवीय गुणों को जीवन में अनुभव किया जा सकता है। संबंध वह सीढ़ी है जिसके सहारे व्यक्ति कुशलता पूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए कहा गया है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और सुखी रहना हो तो अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साईराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बनियो। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। जैसा कि मैंने गीत की लाइन गुनगुनाई है, तुलसी मेरे आंगन तुलसी का झाड़। तो तुलसी के ऊपर आपको नुस्खे दूंगी। तुलसी वैसे ही बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और तुलसी को पवित्र भी माना जाता है। दूषित जल में तुलसी की हरी स्वच्छ पत्तियां डाल दीजिए, आप जल का दूषितपन समाप्त हो जाएगा। 4 लीटर पानी लीजिए, 4 लीटर पानी में 25-30 तुलसी की पत्ती डालिए। अब कैसे डालेंगे वो आपको बता रही हूँ। पानी छानते हैं ना, छानते समय ही कपड़े में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए 25-30, ठीक है। फिर 4 लीटर पानी उससे छान लीजिए ताकि तुलसी का कस पानी में चला जाए, तो पानी का दूषित समाप्त हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएंगे। तो कितना अच्छा नुस्खा है, कोई खर्चा ही नहीं है, और तुलसी तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। आप 4 लीटर पानी लीजिए, पानी छानते समय कपड़ा, जो कपड़े से छानते हैं ना, स्वच्छ कपड़े से, उस कपड़े में 25-30 तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। फिर आप पानी छानिए तो तुलसी का कस पानी में उतरेगा और पानी स्वच्छ हो जाएगा, तो दूषित पानी के होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तुलसी के पत्तियों में खाद्य वस्तुओं को विकृत होने से बचाने का अद्भुत गुण है। तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी खाना बचता है हमारा, तो उसमें या तो डाब डालते हैं या तुलसी के पत्ते। अब डाब तो हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन तुलसी हर जगह मिल जाती है, क्योंकि तुलसी, भले आप शहर में जाओ, गांवों में जाओ, तुलसी के पौधे सभी अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो बस तुलसी के पत्ते खाद्य सामग्री में डाल दीजिए तो खाद्य सामग्री विकृत नहीं होगी, और उसको बाद में आप खा सकते हैं, शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। ग्रहण में भी ऐसी मान्यता है। तो तुलसी के पत्ते इस तरह फायदेमंद है, और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है ना, उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए आज से ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो गमला लाइए और गमले में लगा दीजिए, इसका ज्यादा खर्चा नहीं है। और गांवों में तो खुली जगह भी बहुत होती है, तो आप एक छोटी से जगह देख करके वहाँ एक क्यारी बना दीजिए और क्यारी में तुलसी लगा दीजिए। तो इस तरह भी आप तुलसी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके घर में कोई बाल्टी है, बाल्टी टूट गई हो, फूट गई हो, तो उस बाल्टी में भी आप खाद भरकर, मिट्टी भर करके तुलसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना फायदा है कि तुलसी का पौधा जहाँ पर भी होता है उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान दीजिएगा। और दूषित जल सेवन से बच्चों के पेट में कृमि से बचने के लिए अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक अवस्था के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए। दूषित जल सेवन करने से बच्चों के पेट में कृमि हो जाती है, और फिर पेट दर्द होता है, तो कृमि ना हो इसके लिए आप इस नुस्खे को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक आवश्यकता के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए, तो बच्चों के पेट की समस्या से भी बच्चे बचे रहेंगे, और पेट दर्द भी नहीं होगा, कृमि भी नहीं पड़ेंगे, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरह सारे ही नुस्खे लाजवाब है, इनको आजमा करके स्वयं भी ठीक रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए फिर से सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहे। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा दृष्टिकोण में बदलाव करके तो देखो। कहते हैं कि दृष्टि बदली तो नजरिया, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगी खुशनुमा जीवन में दृष्टिकोण का किस तरह बदलाव करेंगे, इस बारे में बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको सुना रही हूँ। एक बार एक यूनानी दार्शनिक का शिष्य, जिसे उसके गुरु ने 3 साल तक हर उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा जो उसका अपमान करता था, जब परीक्षण की अवधि समाप्त हो गई, तो गुरु ने उससे कहा अब तुम एथेंस जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब शिष्य ने एथेंस में प्रवेश किया तो उसे छत पर एक ज्ञानी पुरुष बैठा मिला जो हर आते जाते व्यक्ति को अपमानित करता था। उसने शिष्य को भी अपमानित किया तो वह शिष्य जोर से हंसा। ज्ञानी पुरुष ने उससे पूछा, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रहे हो? शिष्य ने उत्तर क्या दिया होगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप अंदाजा लगा सकते हो? चलिए मैं ही सुना देती हूँ कि शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इस तरह की बात के लिए लोगों को पैसा देता रहता हूँ और तुम मुझे ये मुफ्त में दे रहे हो। नगर के भीतर प्रवेश करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, यह नगर तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी में डेजर्ट फादर्स ने, जो कि सन की पात्रों का एक संकलन था, स्किटी के निकट रेगिस्तान में जाकर के पूजा और त्याग का जीवन जीते हुए त्याग एवं परेशानियों के महत्व को दर्शाने वाली ये कथा बताई। हालांकि वह सिर्फ कष्ट नहीं था, उसने शिष्य को ज्ञान के नगर में प्रवेश दे दिया। कठिन परिस्थितियों में उतने प्रभावी ढंग से जीने के पीछे दृष्टिकोण में बदलाव लाने की स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की उसकी क्षमता मुख्य कारण था। नजरिए में बदलाव लाने की क्षमता एक अत्यंत ताकतवर एवं प्रभावशाली उपकरण है जो हमें जीवन में रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। दलाई लामा ने बताया, चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता बहुत लाभकारी होती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति कुछ अनुभवों, कुछ त्रासदियों की मदद से दिमाग को शांत कर सकता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर बात और घटना के विभिन्न पहलू होते हैं, हर चीज सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए मेरे मामले में मैंने अपना देश खो दिया, उस दृष्टिकोण से ये बहुत दुख की बात है। इससे भी ज्यादा दुख की और कई बातें हुई है, हमारे देश में बहुत तबाही हो रही है, परंतु मैं अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि यदि स्थिति यथावत होती, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो बहुत से अवसरों पर आज सिर्फ चलते रहते हैं, आप दिखावा करते रहते हैं। परंतु जब आपके सामने निराशाजनक विपरीत परिस्थितियां आती है तो दिखावा करने का समय नहीं मिलता, तो उस दृष्टिकोण से वह दुख भरा अनुभव मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये बात कौन कह रहे हैं? दलाई लामा। मैं नहीं कह रही हूँ, दलाई लामा। तो शरणार्थी होने के नाते कई नए लोगों से भेंट होने के अवसर मिलते हैं, भिन्न धार्मिक परंपराओं और अलग अलग व्यवसाय के लोग मिलते हैं, जिनसे यदि मैं अपने देश में रह रहा होता तो कभी ना मिला होता, तो इस नजर से ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। ऐसा देखने में आता है कि जब कभी समस्या आती है तो हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। हमारा पूरा ध्यान उस समस्या के बारे में चिंता करने पर होता है और हमें ऐसा लगता है मानो उस तरह की समस्या सिर्फ हमें ही हो रही है। इससे व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है, जिसके कारण समस्या और भी बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से चीजों को अलग नजरिए से देखने से काफी मदद मिलेगी। जैसे ये सोचना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की समस्या का सामना किया है और जिन्हें इससे भी बुरे अनुभव हुए हैं। किसी विशिष्ट बीमारी या पीड़ा के समय इस तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत लाभकारी हो सकता है। पीड़ा के समय निश्चित रूप से शांत रहने के लिए औपचारिक ध्यान का अभ्यास करना बहुत कठिन होता है, परंतु यदि आप तुलना करें उस स्थिति को किसी अन्य नजरिए से देखें, तो कैसे भी कुछ हो ही जाता है। अगर आप सिर्फ उस घटना को देखते रहेंगे तो वह और भी बड़ी लगने लगती है। अगर आप किसी समस्या को बहुत नजदीक से बहुत ध्यान से देखने लगेंगे तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ज्यादा बड़ी घटना से उसकी तुलना करेंगे तो वह आपको छोटी दिखाई देगी और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। तो समझे, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। समस्याएं तो आएगी, लेकिन हमें किस नजरिए से उसे लेना है, किस दृष्टिकोण से उसे लेना है और उसका सामना करना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो आइए अभी तो सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। ये खुश मिजाज दोस्ती का बंधन भी बड़ा अजीब है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। ये शेर तो ऐसे ही मुझे याद आ गया तो आपको सुना दिया है। हर शेर में अच्छे अच्छे भाव छिपे हुए होते हैं, तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सुना ही देती हूँ आप सभी को कि इसके भाव कितने सुंदर है। तो हम बात कर रहे थे दृष्टिकोण के, दृष्टिकोण किस तरह का रखना वो अपने हाथ में होता है। मान लीजिए किसी पर आपको गुस्सा आता है, आहत होने के बाद स्वाभाविक और तत्काल प्रतिक्रिया गुस्सा आना है। बहुत से मामलों में दुख होने के बाद सिर्फ गुस्सा आने की बात नहीं है, आप उस घटना के बारे में बाद में सोचते हैं और हर बार उसके विषय में सोच करके गुस्सा आता है ना। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जिस व्यक्ति के कारण आपको गुस्सा आता है उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ गुण भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस बात से आपको गुस्सा आता है उसी ने आपको कुछ अवसर भी दिए हैं, जो अन्यथा आपके अपने नजरिए से मिलना संभव नहीं थे। तो प्रयास करने से आप एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इससे लाभ होता है। परंतु यदि आप उस व्यक्ति की अच्छी बातों को देखना चाहें लेकिन उसमें ऐसा कुछ न हो, तो यहाँ मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ समय निकाल करके उस परिस्थिति पर किसी अलग नजरिए से विचार कीजिए, परंतु ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अत्यंत पेने और प्रत्यक्ष ढंग से। आपको तर्क करने की अपने समस्त सामर्थ्य का उपयोग करके उस स्थिति को जितना हो सके निष्पक्ष रूप से देखना होगा। उदाहरण के लिए आप ये सोचे कि जब आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है तो वह आपको 100% गलत दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपको कोई अच्छा लगता है तो उसमें आपको 100% गुण ही नजर आते हैं। परंतु ये सोच सच्चाई से मेल नहीं खाती। यदि आपका मित्र, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपको किसी तरह की हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो अचानक आपको लगेगा कि आपके मित्र में 100% अच्छे गुण नहीं है। इसी तरह आपका शत्रु, जिसे आप ना पसंद करते हैं, यदि आपसे क्षमा मांगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो शायद आपको वह 100% बुरा नहीं लगेगा। तो बदल गया ना दृष्टिकोण। इस तरह समय समय पर हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कोई अच्छा गुण नहीं है, तो भी यह सच है कि कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता। अगर आप कोशिश करें तो आपको उसमें कुछ सद्गुण मिल जाएंगे। किसी को बुरा या नकारात्मक मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के असली स्वभाव के कारण नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक सोच पर आधारित धारणा के कारण है। इसी तरह जिस परिस्थिति को शुरू में आप 100% नकारात्मक मान लेते हैं उसमें भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। परंतु मेरा ख्याल है कि अगर आपको खराब परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल भी जाए तो ये काफी नहीं होता। आपको इस विचार को पुष्ट करना चाहिए, आपको वह सकारात्मक बात तब तक बार बार याद दिलानी होगी जब तक आपकी भावना न बदल जाए। सामान्य तौर पर बात करें तो अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति हो तो किसी विचार को एक या दो बार अपनाने से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। सीखने, प्रशिक्षण लेने और नए दृष्टिकोण से अभ्यस्त होकर ही आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। तो यह हुआ आज का खुशनुमा जीवन की बातें। तो बस हमेशा अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखें और सदैव खुश रहें। तो आइए, समय हो चला है फिर से आपको एक गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में परवल का अचार। परवल की सब्जी तो हम बनाते ही है, आइए आज आपको अचार बनाना सिखाएंगे। तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और सामग्री लिखिएगा 250 ग्राम परवल, फिर आप लीजिए 2 चम्मच राई के, 2.5 चम्मच सौंफ लेना है और 1.5 चम्मच लीजिएगा जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, थोड़ी सी हींग ले लीजिए चुटकी भर और 3 कच्चे आम ले लीजिए, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो ये हो गए परवल के अचार की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। परवल 250 ग्राम 2 चम्मच ले लीजिए राई और 2.5 चम्मच सौंफ लेना है, फिर आप 1.5 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए और कच्चे आम ले लीजिए 3, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद परवल का अचार कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है परवल का अचार। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। परवल, राई, सौंफ, जीरा, हल्दी, हींग, कच्चे आम, सरसों का तेल और नमक। आइए अब अचार बनाएंगे। आप पहले तो परवल की धुलाई कर लीजिए, पोंछ लीजिए इसको स्वच्छ कपड़े से, फिर परवल को खुरच कर गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है? फिर राई बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीस लीजिए। अब आप एक पतीले में पानी उबाल लिए और जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ठीक है? जिससे परवल हल्का नरम हो जाएगा। इसे अब धूप में कपड़े पर सूखने डाल दीजिए। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम को कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो इस तरह परवल का अचार बन गया है। अगर आम न हो तो, आम नहीं मिलता हो तो अमचूर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? फिर इस मिश्रण को आप एक बर्नी में भर दीजिए। यदि तेल कम हो तो ऊपर से तेल डाल दीजिए और 8-10 दिन धूप दीजिए। धूप में लगा करके फिर आप हींग डालिए बारीक, ठीक है? बारीक थोड़ी सी हींग डालिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और बस, फिर आप खाइए और खिलाइए। तो इस तरह परवल का अचार बनाया जाता है। पुनः विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परवल की धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके खुरच करके गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है? फिर राई को बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीसना है। अब आप एक पतीले में पानी उबालिए, जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ताकि परवल हल्के से नरम हो जाए। फिर इसे अब धूप में कपड़े पर सुखाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है? स्वच्छ कपड़े पर सुखा दीजिए और धूप लगाइए इसको, ठीक है? फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम अगर हो तो कद्दूकस करके डालिए, नहीं है तो बस आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए इसमें, और इस मिश्रण को एक बर्नी में भर दीजिए, और इसमें अगर तेल कम हो तो डाल दीजिए। तेल तरमा रखिए, मसाला डूब जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको 8-10 दिन धूप में लगाइए बर्नी को। उसके बाद बस आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके अब आप खा सकते हैं। तो ठहरिए, खाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले क्या करेंगे? आप सभी को पता है, तो लीजिए एक सच्चा थाली। थाली में परोठे रखिए, क्योंकि अचार के साथ परोठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो परोठे रखिए, अचार रखिए, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा परवल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आइए, अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, और आप छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके ही वंशज है। तो मनीषा जी भोसले हमारे साथ बने हुए हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो आपको पहले ही बताया है कि आप छत्रपति शिवाजी के 14वें वंशज हैं, उनके ही कुल की बहुरानी हैं। फिर VIT आपने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं, और आप MBA HR एंड मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, और माइंड साइकोलॉजी का भी आप काम करते हैं, सोशल वर्कर भी है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब किन किन विशेषताओं का आपके सामने बताऊं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आइए उनसे मिलेंगे। और आज हमको बहुत ही अच्छे सामान्य जानकारी देंगे कि गर्भवती बहनें, जैसे कि शिवाजी जब जीजाबाई के गर्भ में थे तो किस तरह जीजाबाई ने शिवाजी को अच्छे अच्छे संस्कार दिए गर्भ के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बातें हमको बताएंगे। मनीषा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार सभी श्रोतागणों का।
1: तो मनीषा जी आप हमें बताइएगा कि किस तरह गर्भवती बहनें जो है वो अपने बच्चों को गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे सके।
2: पहले तो गर्भ संस्कार, हम तो पहले से जानते हैं कि शिशु एक चैतन्य जीव है जो अपनी माता के गर्भ में हर बातें माता की ग्रहण करता है, सुनता है, और जो भी व्यवहार है वो सभी आदि को ग्रहण करता है। हमारे पूर्वजों के काल से ही ये बातें सुनते आए हैं कि गर्भ संस्कार होते हैं, और वो हम जानते हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। जैसे कि आपने कहा कि शिवाजी महाराज की माता छत्रपति शिवाजी को अपनी माता जीजा माता ने उनको अपने गर्भ में ही तलवारबाजी से लेकर हर एक कला उन्होंने गर्भ में ही सिखाई। वो हर कला से निपुण थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पूरा गढ़ जीत लिया था। ये जो है ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है। पहले तो हम गर्भ संस्कार का ज्ञान और विज्ञान के बारे में समझते हैं। बच्चे के गर्भ में आने से ही उसके विकास की जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता की होती है। उनके योगदान भी, उनका सहयोग भी उनके माता पिता का बच्चे की विशेष जीवन यात्रा को सुधारने में मदद करता है। पहले तो गर्भ संस्कार क्या है? मैं तो संस्कार तो हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्भ में क्यों और संस्कार क्या है? माँ का हर क्षण हर पल बच्चों से जुड़ा होता है। वो माता की हर बात को ग्रहण करता है। माता की हर बात इंक्लूडिंग माँ का खाना पीना, विचारधारा, मानसिक स्थिति और परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में रह रही है, इन सभी बातों का सूक्ष्म असर अपने बच्चों पे पड़ता है।
1: गर्भ में भी?
2: गर्भ में भी,
1: चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो,
2: वो सभी परिस्थिति को वो महसूस करता है। चैतन्य जीव है तो उसको हर चीज ग्रहण कर लेता है। तो इस सभी बातों को गहराई से समझने की बात है। इनका परिणाम हम प्रत्यक्ष जो समय के बाद ही देख सकते हैं, अभी तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले तो जानते हैं कि हमारा साइंस भी इस बात से सहमत है और उसको सिद्ध कर चुका है। हम लोगों ने देखा है, साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे गर्भ के बच्चों में असर पड़ता है माता का। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक प्रिंसेस है, उन्होंने मतलब जिस परिस्थिति में किसी लड़के से शादी किया तो वो सामान्य घर का था। इसका उसके माता की वजह से, उसके परिवार में जो बच्चे उसके गोद में था उसकी वजह से उनको जो रॉयल फैमिली बिलोंग्स करती थी, तो उनका जो भी बच्चा हुआ वो बहुत रॉयल हुआ। उसके पिता का कोई भी संस्कार उसने ग्रहण नहीं किया। हालांकि ये ऐसा तभी हो सकता है जब माता पूरी तरह से वो खुशी, वो रॉयल्टी को महसूस करे। और अगर वो परिस्थिति में वो रॉयल्टी को, जिस परिस्थिति में वो 13 हफ्ते, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं गर्भ के, वो 13 हफ्ते को उन्होंने बहुत रॉयल्टी से इंजॉय किया, हर चीजों ने उनमें रॉयल्टी से देखा, इसलिए उनके बच्चों पर उनके पिता का कोई असर नहीं हुआ। ओनली सिंगल पेरेंट माँ एज अ माँ वो हर अपने बच्चे को अपने जैसा बना सकती है। वो जैसा चाहती है, जिस तरह का संतान चाहती है, जिस तरह की चरित्र से लेकर स्वभाव, उसकी हर चीज को वो स्वतः ही बिल्ड कर सकती है। वो माँ खुद जिम्मेदार होती है और पिता का कर्तव्य है कि वो उनको सहयोग दे, प्यार और सहयोग उनका उनके बच्चों को हेल्प करता है। ये सारी बातें उनके इज्जत करती है। तो जानते हैं कि माताओं का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माताओं की आदतें कैसी होनी चाहिए, उनका इच्छा क्या चल रही है, उनकी इच्छा मनोकामनाएं जो है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। ये शारीरिक, मानसिक और इच्छाएं ये भावनात्मक स्वास्थ्य बनाती है बच्चों की। स्वास्थ्य तो हेल्थ भी होता है, लेकिन ये जो है माइंड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये सब बचपन में डेवलप होता है, ये 13 हफ्तों के अंदर ही डेवलप हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने सुना है महाभारत में, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अभिमन्यु एक चक्रव्यूह को काटने के लिए कौरवों ने अर्जुन को बहुत फुसला कर दूर लेके गया। जब वो चक्रव्यूह में पड़े फंसे तो 23 साल का अभिमन्यु बोला कि मैं जानता हूँ इस चक्रव्यूह को कैसे काटा जा सकता है। उससे पूछा गया कि युधिष्ठिर ने कि आप कैसे जानते हो, तो उसने बताया मैं अपने माता के कोख में, सुभद्रा के कोख में जब था, तब मेरे माता को लेबर पेन से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह को कैसे काटना चाहता, कैसे भेदा जा सकता है, तब मैंने वो बात सुनी थी और अब मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। इसका ये सिद्ध प्रमाण है जो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, महाभारत में ये जो घटना दिखाई गई है स्पष्ट होता है कि ये होता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। हम समझते हैं कि जो भी गर्भ का संस्कार है वो कैसे दे सकते हैं। वैसे तो 14वें दिन तक कुछ होता नहीं है बॉडी में चेंजेस, लेकिन आफ्टर 14 डे फर्स्ट न्यूरॉन डेवलप होता है और उसके बाद ही हर 2.5 घंटे में, हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, वो पूरे ब्रेन साइकिल पूरे बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो उनमें छोटा सा ही होता है। हमें करना क्या चाहिए, उसके बाद जो शरीर डेवलप होता है, ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है, उसमें हम विशेष योगदान माँ का क्या हो सकता है, उनका आहार कैसा होना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, शरीर और मानसिकता, उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा जी, ये सब हम आपसे जानेंगे जरूर कि ये क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी समय का ध्यान में रखते हुए अभी तो एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद आपसे फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, मनीषा जी हमारे साथ बने हुए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि गर्भ में किस तरह माँ के हर क्रिया का असर पड़ता है बच्चे में। तो माताएं चाहे तो गर्भ में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया है अभिमन्यु का, शिवाजी का। तो इस तरह आप जिस तरह अपने बच्चे को चाहती है उस तरह का आप बना सकती है, गर्भ के अंदर ही तैयार कर सकती है, ठीक है ना। तो इस बारे में और भी विस्तृत जानेंगे, लेकिन तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है मधुवन।

उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है मधुवन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं कि किस तरह दूषित जल से स्वयं को बचाना है और स्वस्थ रखना है तो आप तुलसी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। और खुशनुमा जीवन की भी बहुत ही अच्छी बातें की है, अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए, सचमुच खुशियां हमारे सामने खड़ी है। और परवल का जो अचार बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और मनीषा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह गर्भ में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आज की किचन टिप्स इस प्रकार है, आलू की सब्जी बनाते समय नमक सब्जी बन जाने के बाद डालिए। ऐसा करने से सब्जी स्वादिष्ट बनने के साथ साथ जल्दी गल भी जाएगी। आज का अनमोल वाणी इस प्रकार है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआ की होती है, जो जुबा तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, आपको एक प्यारा सा भजन भी सुनाऊंगी और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है। परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
2: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनूंगी सबसे महान।

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोर बेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
3: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
3: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मैंने पूरा विश्वास है।
4: साथी डारे छोरा चोरी जद देखू जद घर भरियो उमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हाल रियो।
5: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
6: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
5: अरे वाह वाह बीनणी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कही राजू, तू बीनणी ने कही क्यों जो बीनणी उदास लाग रही?
6: माँ, थारी बीनणी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
5: देख बीनणी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
7: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
5: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी? मैं सब समझू, डिलीवरी अपना घर में वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
7: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहू खुश रह सके।
5: कई सोच में पड़ गई बीनणी।
7: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
8: दिवाली में तो खूब मनावा, सब मिलकर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिरदाम समाओ।
7: पापा जी, मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना, सब सफाई कर ले, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेले मनाई?
7: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
9: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
10: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
3: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
7: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
1: बेटा, थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तू ध्यान सु करजे। सुन, मिठाई तू अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
7: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
1: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा, सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
10: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
1: वाह, हावरो वे तो एड़ो। रखो बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
9: बिन्नी, ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो, और मैं थने देऊं, थारी भी पहली दिवाली है, आंसू यो थारो है।
0: बिंदनिया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आज सो छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके, किपे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
7: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुक्सु कयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणी खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिलियो, मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थाने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊं पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया, तो वे सब मिली मारा ननदोई जी ने खूब समझायो। अच्छे वे सगला रे सामने माफी मांगी, हाज आज हूँ अबे हल्की होगी। मारा सास ससुर मारो खूब मनोबल बढ़ायो और मारो खूब साथ दियो।
1: काई बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया नाई?
2: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, हिला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनी डिसीजन सो तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही हूं कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
2: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
4: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ, पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो जाते थे शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको, बोला आप तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ, वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया भाई, कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ, तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं, और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा, कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे, उनके पति गुजर गए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो अपनी माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार ज़बरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
5: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, यानी कि 35 साल होगी। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है कि कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे हैं, मेरा पीर का दियड़ दहेज है, मारे पीर की दियड़ कोई भी चीज़ है, मैं कोई अधिकार नहीं जमाई हूँ और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे या करो था को जो चीज़ बाप दादा को लिया वह आपको ही अधिकार है, तुम्हारे सासू से लगा नण देवरणी जिठानी कोई मेरा हक नहीं जमाओ, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी, जब से भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी 50 की करी, जो मारे मन में हुई हो कि वह चीज़ खरीदनी है वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो और वही पैसा मारकन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा वहाँ न दो मैं कोई सामान लेवा करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे, और जो भी सिलाई करो भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे कोई काज बटन करो रहे कोई भी काम करा पा तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ, और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी लेनो देनो हो चाहे आगे सास ससुराल को देनो लेनो हो तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो, तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर भी खेऊँ, और कहते डरो मत कोई भी मत डरो अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो सबने साथ में लेट चालनो, और जो आप काम करा और बीमे भी कोई हुआ तो बिना ज्ञान बतावा कि बेटा यूँ नहीं करनो और यूँ करवाऊँ आगे आपने अच्छे काम हुई आगे पैसा टक्का घर बार परिवार सब आपा नहीं चलानो है तो सब भी हिसाब चालो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वो भी बात पूछे कि भाभी साहब मैं तो यूँ परेशान आ घर हूँ दहेज की खातरी मन लड़े मगर आदमी भी कोई यूँ मान लड़े टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूँ खे देवे कि भाई थे थाना यूँ लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ, मैं एक ही बात हूँ कोई अलग नहीं होना कोई इशू भी, जो भी कह आपने काम करो मजबूती के साथ करो मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
6: नमस्कार मेरा नाम तमन्ना है, हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं, उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने की उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं है, उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए पोती नहीं चाहिए, पोतियाँ मतलब बड़ी होगी इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना, वो इतनी सास ससुर से परेशान हो जाए वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है एक बेटी हमसे पाली नहीं जा रही है या दूसरी पर ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई, फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई, फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, अब वो क्या करे वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
3: तो सुना दोस्तों हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव

तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई

0: तो लीजिए श्रोताओं, रविवार हो गया है और हमराही के एक और ताजा ताजा गर्मा गर्म एपिसोड को लेकर के हाजिर हूं मैं संदीप कुमार त्रिवेदी रेडियो मधुबन के इस बेहद खास मंच पर। जाहिर सी बात है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम हमराही पर प्रतिक्रियाएं हमेशा हर बार देते रहो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे इस कार्यक्रम को अलग बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं और कहीं ना कहीं आप सब तक कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और श्रोताओं, जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम इन्हें जब जानते थे बचपन में या सीनियर क्लासेस में, तो अक्सर हम सब ये कहा करते थे कि अरे यार तुम्हारा क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सीधा साधा इंसान, बहुत ही एकदम हर बात को सादगी के साथ रखना और अपने मतलब किसी के प्रति मन में कोई भी जो है खटपट नहीं रखना, इस तरह का इनका व्यवहार हुआ करता था। इस वजह से इन्हें हर कोई बहुत ही सीधा साधा इंसान मान करके चलता था और निश्चित रूप से वो हैं भी, आज तक भी हैं और उनको देख करके लगता है कि वो आगे भी रहेंगे। ऐसे में अपना अध्ययन पूरा करना, उसके बाद समाज परिवार के बीच में रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपनी मेहनत के बल पर राजकीय सेवा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना और ये सब हो जाने के बाद अपने हमराही की तलाश पूरी करना, ये सब इन्होंने कर लिया है। कहने का मतलब ये है श्रोताओं कि अगर आपका प्रयास सकारात्मक है, आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत तरह की भावना अगर नहीं है और आप बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। बहुत सारी भूमिका हो गई, आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ चले गए हम, कौन सी भावनाओं में बह गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज के हमारे जो मेहमान हैं ये हाल ही में विवाह सूत्र में बंधे हैं 25 अक्टूबर को, तो जो लोग जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे और जो नहीं समझे हैं उनको बता दूं मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए कि आज के हमारे मेहमान हैं डूंगरपुर राजस्थान से राकेश पांचाल और उनकी श्रीमती जी निवृता पांचाल। तो राकेश जी और निवृता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद संदीप सर, और थैंक यू रिकॉर्डिंग क्लब एवं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्ते, और आपने हमें इस प्रोग्राम में अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: जी जी राकेश, नहीं निश्चित रूप से अवसर तो हमने दिया भी है और आपने लिया भी है, क्योंकि अब आप विवाह सूत्र में बंध गए तो इस कार्यक्रम में तो लाना ही था आपको। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत सालों से जानता हूं आपको, तो निवृता जी जरा आप भी अपनी आवाज सुनवा दें हमारे सुनने वालों को।
2: नमस्ते
0: जी। जी तो आज निवृता जी से ही शुरुआत करते हैं। निवृता जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह की दिव्यांगता है और है या नहीं है, और आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है।
2: हाँ सर, मेरा नाम है निवृता, मैं

0: डूंगरपुर की रहने वाली हूँ।
1: जी
0: और मेरे बचपन यानी 5 साल की थी तब मेरे पोलियो हो गया था।
1: ओ अच्छा
0: पोलियो की वजह से दोनों पैर यानी विकलांगता आ गई।
1: जी जी जी जी
0: फिर
1: जी
0: बाद में बड़ी बहुत इलाज भी करवाया मेरे मम्मी पापा ने,
1: जी
0: सब कुछ किया पर कुछ प्रतिफल यानी कुछ परिमाण सामने नहीं आए। फिर
1: अच्छा
0: दो तीन बार तो ऑपरेशन भी हुआ। फिर मेरे फिर पहले यानी बैसाखी की सहायता से मैं अभी चल रही हूँ
1: अच्छा
0: और बाकी सब घर का भी काम कर लेती हूँ। फिलहाल
1: अच्छा
0: मेरे सेल्फ पर सब कुछ कर लेती हूँ।
1: जी
0: मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हम 5 बहने हैं
1: जी
0: और भैया एक ही है
1: जी
0: यानी स्टेप मदर का है और
1: जी
0: मेरी रियली मम्मी है नहीं।
1: अच्छा
0: और पांच यानी चारों बहनों की शादी भी हो गई है, वो भी अच्छे हैं, उनके घर पर खुश हैं और मेरी भी अभी इनके साथ शादी हो गई है। और
1: बहुत बढ़िया
0: मैंने मेरे ना शिक्षा मैंने यानी एसटीसी बीएड की है और
1: जी
0: बड़ी मुश्किल से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है।
1: ओ
0: सब जगह
1: तो
0: रहे, हमारे गांव में स्कूल था नहीं यानी दूसरी जगह रह रह के मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है।
1: की है तो ये
0: अगर दो
1: जो
0: बार
1: जी हाँ बताइए दो बार
0: हाँ 2 बार मैंने रीट में भी दिया। रीट तो मेरे 55.33% बना था पर विकलांग की यानी ओबीसी में आ रही थी ना, इसकी वजह से मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन।
1: जी
0: और 2013 में हुआ पर केस लड़ा है उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं मेरी।
1: ओ अच्छा
0: जोधपुर मैंने केस किया है पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक, 2.5 साल हो गए।
1: अरे बाप तो निव्रता आपको जो ये पोलियो की परेशानी जो रही है इसका अब कोई इलाज संभव नहीं है।
0: संभव तो पहले हमारी स्थिति मेरे पापा की ऐसी थी, फिर धीरे धीरे वहाँ दवाइयाँ बहुत करवाई
1: जी
0: यानी अहमदाबाद में भी सिविल हॉस्पिटल में भी करवाई, बहुत बहुत कुछ किया। पर इसके बाद में यहाँ कैंप भी लगा था भिलवाड़ा में, तो एक डॉक्टर बोल रहे थे यानी विशाखापट्टनम में आपका इलाज अच्छा हो सकता है पर इतना हमारे पास में बैलेंस था नहीं। फिर हमने कुछ ज्यादा उनको बोला नहीं। अभी मैं अपने बैसाखी की सहायता से सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपना सब काम कर लेती हूँ यानी डूंगरपुर आना जाना और घर का भी काम, घर में भी कुछ भी काम लाना हो ले जाना वो भी मैं कर लेती
1: अच्छा बहुत
0: हूँ।
1: बढ़िया। और ये जो विशेष तरह की जो साइकिलें हैं और जो गाड़ियां होती हैं वो चला लेती हैं आप या नहीं?
0: यानी मुझे स्कूटी मिली है पर मैं चला नहीं पा रही हूँ,
1: अच्छा अभी
0: डर
1: चला नहीं।
0: लगता
1: अरे कोई बात
0: है। ये 2 बार ऐसे गिर गई है ना इसलिए।
1: नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमें लगता है कि अब राकेश जी ये संभव बनाएंगे कि आप एक दिन स्कूटी भी चलाने लगे।
0: हाँ सर ये तो आज से मेरे मैं चलाऊंगी ऐसा।
1: बहुत बढ़िया
0: बिल्कुल
1: वेरी नाइस बहुत
0: सर
1: बढ़िया। और हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं अब
0: जी
1: निव्रता जी को सुना अब राकेश जी को सुनते हैं। जी राकेश जी थोड़ा
0: सर
1: जरा अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और अपनी समस्या के बारे में भी बताएं। जी
0: तो रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को एक बार फिर राकेश लोहार का प्यार भरा नमस्ते। तो मैं हमारे लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर के ऋषभदेव के एक छोटे
1: जी
0: से गांव से हूँ, कल्याणपुर।
1: जी
0: और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, विजुअली
1: जी
0: इम्पेयर्ड। तो दरअसल ये ब्लाइंडनेस बचपन से ही है और हमने डॉक्टरों से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि वेन में ब्लड सूख चुका है तो
1: अच्छा
0: इसकी कोई संभावना नहीं है। अहमदाबाद में ये डॉक्टर नागपाल हैं, उस समय हमारी स्थिति भी बहुत कमजोरी थी लेकिन मामा वगैरह सक्षम थे तो उन्होंने भी काफी इस संबंध में कहा। तो डॉक्टर ने कहा कोई संभव नहीं है। तो इसके बाद में मैं उदयपुर अंध विद्यालय से 8th क्लास की पढ़ाई की मैंने
1: जी
0: और 9th से 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंध विद्यालय अजमेर से
1: जी
0: और ग्रेजुएशन जय नारायण व्यास जोधपुर से, कोटा बीएड से और एमए मैंने किया जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से
1: जी
0: सर।
1: जी बहुत बढ़िया। तो राकेश जी आप जॉब कब से कर रहे हैं?
0: सर मेरा जॉब लगा ये 2017 में, 16 मई 2017 में मेरी 3rd ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी जो वैसे मेरा चयन हो चुका था 2012 में परंतु वो कोर्ट के मैं अटक गई थी वो भर्ती। तो 2017 से 3rd ग्रेड में मैंने ज्वाइनिंग की। फिर 18 अक्टूबर 2018 को 2nd ग्रेड में सोशल स्टडीज से मैंने ज्वाइन किया। अभी
2: मतलब कम से कम 27 महीने हुए हैं, 27-28 महीने सेकंड ग्रेड में। जी सर,
1: बहुत बढ़िया। तो राकेश भाई, आप मुख्य रूप से थोड़ा सा बताएं आपके जिंदगी के अभी तक के क्या अनुभव रहे हैं। विवाह पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके अलावा आपका अपना अनुभव क्या रहा है अभी तक
2: जिंदगी में? सर ये मेरा अनुभव ये रहा है कि सर हालांकि कहीं भी जैसे पढ़ते हैं तो या जहां भी हम रहते हैं तो सब प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अपने अंदर किसी के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो मिलती रहती है। जैसा कि मैं उदयपुर में भी रहा तो वहां सभी साथियों का सहयोग मिलता था, और अजमेर में जहां भी रहा तो मेरा ये मानना है कि बस अपना कर्म करते चलो
1: जी,
2: और सबके प्रति अच्छी सोच रखो तो अपने आप सहयोग मिलता रहता है, और ये सभी की दुआओं का परिणाम भी होता है कि हम जीवन में सफल होते हैं तो बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं हमारे सहयोग में हाथ होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
1: निश्चित रूप से।
2: और जो अपना रिकॉर्डिंग क्लब है इसके जरिए हमको, जैसे हम लोग ऑडियो कैसेट से पढ़ते हैं तो जो तैयारी करते हैं उसमें भी बहुत योगदान रहता है, सीडी वगैरह हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो हर प्रकार से कहीं कहीं हमारी मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए तो सहयोग अपने आप मिलता रहता है सर।
1: जी बहुत खूब राकेश भाई। तो थोड़ा सा अब बात कर लें कि कब से सोचना शुरू कर दिया था शादी के बारे में, या कभी सोचा ही नहीं था?
2: नहीं सर, शादी के बारे में तो सोचना शुरू हुआ था कि ये जो मैडम है
1: जी,
2: इनसे शुरुआत करूंगा कि सर ये हमारे जब भाई साहब की शादी हुई तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन या एमए कर रहा था तब बहुत बार हमारे मतलब ये तो मेरे परिवार में था कि माता पिता को भाई को सबको कि भाई इनकी शादी तो करवानी
1: है, करवानी है जी।
2: हाँ, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये चाह रहे थे कि भाई इनकी शादी हो, और मैडम को भी बोला कि, और हम मम्मी को भी बोलते थे कि इनसे शादी हो जाए इनकी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कि भाई ये कोई भी शॉप वगैरह चला कर रहे हैं, अपना काम कर सकते हैं अगर इनकी जॉब में लेके, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि नहीं
1: जी, जी।
2: शादी किसी से भी हो कहीं भी हो लेकिन सेल्फ डिपेंड होना जरूरी था, और मेरी मम्मी का भी यही मानना था। इस जरिए से फिर प्रक्रिया, फिर मुझ तो शादी का वहां से मामला शुरू हुआ सर। लेकिन मैं बहुत बार ये सोचता था कि यार शादी तो होगी लेकिन कोई ब्लाइंड से हो शायद तक वो अपन को समझ पाए। फिर मैं जॉब में आया, इसके बाद मैं प्रयास शुरू किया तो एक दोस्त ने बताया भी सही कि भाई एक ब्लाइंड व्यक्ति है तुम्हारे समाज का, तो भाई तुम जब भी जॉब लगोगे तब देखना ही। मैंने कहा फिर जॉब के बाद, और लकीली ये हुआ कि मेरा सेकंड ग्रेड में जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी उस दिन उसका फोन आया।
1: अच्छा,
2: मैंने कहा चलो देखेंगे। फिर हमारे फादर आए कुवैत से और वहां फिर चर्चा चली, चलो हमने प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले मैडम की आई तो उन्होंने कहा चलो विचार करेंगे, तो फिर बस इनके साथ जो ईश्वर ने लिखा था और अच्छा है इनसे हो गई।
1: बहुत खूब, लेकिन मतलब ये सब कुछ बहुत आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना राकेश जी?
2: नहीं सर, इसमें बड़ी दिक्कतें भी रही थोड़ी दिक्कतें रही कि पहले वो अभी आगे मैडम बताएंगे कि इनको भाई साहब ने भी बोला, फिर इन्होंने कहा कि चलो।
1: आपके आपके बड़े भाई की बात कर रहे हैं आप?
2: जी सर।
1: अच्छा,
2: मेरे बड़े भाई साहब।
1: जी जी जी।
2: और फिर इनको बोला, फिर उनका चलो देखेंगे।
1: अच्छा एक बात बताओ राकेश जी, इनको आप पहले से जानते थे निव्रता जी को?
2: हाँ जी, ये आते जाते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन मैंने उन टाइम पे कोई खास गौर नहीं किया हुआ, चलो कभी बोल लेते आते कभी, मतलब बहन के हिसाब से भाभी के यहाँ ना, इन्होंने कभी ना गौर किया हुआ चलो
1: जी।
2: कोई अगर वैसे मानसिक सहयोग चलो भाई कुछ बताना होता है एक अलग बात है, बाकी कोई भी इस प्रकार इंटरेस्ट नहीं लिया
1: जी
2: ना हमने ना इन्होंने
1: जी। मतलब इनके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं था?
2: नहीं सोचा था, मेरा तो मानना यह था कि नहीं हो सकता है कि अपन को कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी। मैं बहुत बार जब चर्चा चली और तब भी मैं बहुत बार इनसे पूछा करता था कि भाई देखो आपका इंटरेस्ट है, किसी के प्रेशर में तो नहीं आप हाँ भर रहे हो?
1: हाँ।
2: और क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगता था कि शायद तक अपना मुझे कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी या वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगी या ऐसा फील होता था, तो इसलिए मतलब मैंने तब तक सोचा भी नहीं था। हाँ, फिर थोड़ा बाद में जब चर्चा हुई तब दिमाग में लगा चलो कोई बात नहीं।
1: अच्छा।
2: हाँ सर।
1: जी तो निव्रता जी,
0: हाँ सर,
1: आपके तो आपने बताया कि जैसे माताजी आपकी है नहीं, तो
0: मेरी मम्मी है अभी फिलहाल, यानी स्टेप मदर है, तो भी यानी रियली माँ से भी बढ़कर है।
1: अरे वाह,
0: उन्होंने
1: बहुत
0: मुझे
1: बढ़िया।
0: बहुत कुछ सहायता दी, हर समय हर पल हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे
1: क्या
0: मम्मी
1: बात
0: पापा
1: है,
0: ने।
1: ये बहुत कम देखने में आता है निव्रता जी,
0: हाँ सर,
1: बहुत बढ़िया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको स्टेप मदर भी बहुत अच्छी मिली। तो
0: हाँ।
1: आपके घर परिवार ने आपके बारे में सोचना कब से शुरू कर दिया था?
0: तो मेरे जीजू बोलते थे, आए दिन आते थे ना, तू कर दे शादी। फिर मैंने ज्यादा गौर किया नहीं, चलो जो भी होगा परिवार वाले सोचेंगे, अपनी भी जिंदगी अपना तो फैसला ही करना ही है, पर
1: सही है
0: मम्मी पापा से बढ़कर तो कर भी नहीं सकते अपन कुछ
1: जी
0: भी।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: मैंने सोचा, वह मम्मी पापा से बात की, मेरी दीदी ने और मेरे जीजू ने, तो मम्मी पापा ने बोला तो उनसे बात करो पहले, उनको है ना पसंद है नहीं है उसके बारे में, उनके साथ में रहना पूरी जिंदगी, इसको कहाँ निकालनी है, हमारे तो कुछ नहीं, हम ऐसा भी फैसला करके हम शादी करवा देंगे, पर इसके साथ में कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसे। मुझे भी ऐसा लगा उनको देखकर, नहीं वो मुझे समझ सकते हैं, यानी उनकी हर भावना को मैं, ऐसा हो गया कि या मुझे हर पल हर समय कभी भी किसी भी चीज के बारे में दुख नहीं देंगे, यानी अच्छा समझते।
1: तो निव्रता जी, जैसा कि हम लोग सोचा करते थे इनके बारे में कि बहुत सीधा साधा इंसान है, आपको भी ऐसा ही लगा इनको देख करके?
0: सर तो हाँ ऐसा ही, अच्छा ही नेचर, सरल है, सरल सरल है ना स्वभाव है, अच्छा है, साफ दिल वाले, कुछ कहते हैं तो भी कुछ नहीं
1: ये बात तो सही है। नहीं तो फिर आपको
0: अच्छे
1: पहली
0: हैं।
1: बार किसने बताया राकेश जी के बारे में कि भाई इनसे शादी करवानी है तुम्हारी? आपकी
0: मेरी दीदी ने बोला था,
1: दीदी ने बोला था, वो कब की बात रही होगी?
0: यानी 3 साल पहले की बात है, कि तुझे कैसे लगते मेरे देवर, वो ऐसे बोला, तो मुझे तो अच्छे लग रहे, वह मुझे समझे ऐसा इंसान होना चाहिए ऐसे।
1: देखो, शादी की बात शुरू हुई आप लोगों की और पीछे डीजे भी बजना शुरू हो गया आपके यहाँ
0: हाँ सर,
1: तो वो मतलब, तो निव्रता जी फिर मतलब आपको कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पूछें कि कंफर्म करें यार कि भाई इंसान वापस वाकई में मेरा ध्यान रख पाए? जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि ये अपना काम कैसे कर लेते होंगे, ये वो आपके मन में भी सारी भावनाएं रही होंगी।
0: हाँ सर रही है, मुझे लगा कि वो अपना अपना काम कर लेते हैं या मुझे करना पड़ेगा, या मैं ना कैसे कर पाऊंगी, ऐसे तो सवाल तो उठता ही है। फिर उन्होंने, मैंने उनसे बात की, नहीं मैं तो अपना सब काम कर लेता हूँ, और कहीं जाना हो कहीं आना हो तो मेरी मम्मी है वो साथ में आएंगे मेरे को। देखो मैं तो दोनों यानी विकलांग हूँ, मैं आ नहीं जा सकती, और मैं स्कूटी भी नहीं चला सकती, यानी स्कूटी चलाती तो भी मैं उनको हर जगह ले जाऊं या सब कुछ करवा सकूं, पर मैं स्कूटी चला नहीं पाती, इसलिए फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, अपन सेट हो जाएंगे।
1: मतलब जो कुछ था वो आपने साफ साफ कह दिया,
0: हाँ सर,
1: ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपने जीवन साथी को, दोनों को, एक दूसरे को ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए कि भाई किसकी क्या सीमाएं हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं। क्यों,
0: हाँ सर ये सही बात है।
1: फिर आपकी माताजी तैयार हो गई थी तुरंत?
0: मेरी मम्मी यहाँ मुझे बोला कि तेरे क्या विचार है, तू बता, तू यस बोलेगी तो मैं भी यस बोल दूंगी, तू ना बोलेगी तो मैं भी ना बोल दूंगी, तेरे पर पूरा डिपेंड करता है कि तुझे फैसला लेना, ये पूरी जिंदगी का सवाल है।
1: सही बात है।
0: मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कहा कि देख 10 बार, यानी इस जिंदगी में आने से पहले अपने बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी नॉर्मल लोग होते हैं उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, और ऐसे होते हैं ना तो उनको ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी जीवन भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ, हर तरह से सोचना जरूरी होता है।
1: बहुत जरूरी। जी जी
0: मम्मी पापा के भी ऐसे ही था कि नहीं मेरी बेटी कहीं भी जाए, यानी दूसरी जगह भी शादी करवाए, पर उसका ना उसको समझने वाला, यानी भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके मम्मी पापा तो यस ही थे।
1: तो एक जो हमारा प्रश्न हर किसी से रहता है निव्रता जी, वो आपसे भी है
0: हाँ
1: कि
0: सर,
1: क्या और भी कहीं आपके रिश्ते की बात चली थी?
0: हाँ सर आते थे रिश्ते तो बहुत आते थे,
1: फिर
0: फिर
1: क्या
0: मैंने
1: उसके बाद? हाँ
0: हाँ मैंने कुछ जवाब दिया नहीं, और मेरे घर वालों ने भी नहीं बोला कि नहीं नहीं करनी। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं सरकारी जॉब करूं, बस शादी तो देखी जाएगी, शोक के बाद में भी शादी हो जाएगी ऐसे
1: जी,
0: पर नसीब तो बस कहाँ ले जाता इसलिए जॉब आई थी वो भी चली गई, फिर दुख तो होता ही है।
1: थोड़ा सा निवृत्ता जी मैं अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत, हम और हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे
0: हाँ।
1: कि जब दोनों पैर इंसान के काम नहीं करें
0: हाँ।
1: तो देखिए हमें आंखों का पता है कि आंखें अगर नहीं हो, रोशनी नहीं हो तो क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन दोनों पैर अगर काम नहीं करते हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा सा ये आप अपने अनुभव से बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: सर दोनों पैर नहीं होते तो अपन यानी ऐसे ही मोहताज हो जाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते ऐसे। पर मैंने इतने आईटीआई यानी कुछ पढ़ा कहानी और प्रेरणा ली दूसरों के बलबूतों से कि नहीं पैर नहीं हो तो भी अपन सब कुछ कर सकते हैं, अपन दोनों हाथ तो है, अपन सब कुछ काम कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने ना रीढ़ की तैयारी यानी कोचिंग की, मैंने 3 मंजिल चढ़कर मैंने कोचिंग की सीढ़ियों से।
1: जी जी जी वाह क्या बात है जी।
0: हाँ सर 3-3 मंजिल यानी गुरुकुल, हमारे डूंगरपुर में गुरुकुल सेंटर था ना उसमें।
1: अच्छा
0: हौसला होता है तो कुछ भी कर है ना गुजर सकते हैं, हौसला नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते, आत्मविश्वास मनोबल ज्यादा होना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया बहुत अच्छी। आपने अभी कहा कि आपने कईयों की कहानियां पढ़ी, तो कुछ याद है कि किस किस की कहानियां पढ़ी आप?
0: यानी जैसे कि पर्वतारोही में जैसे वो नहीं प्रेमिला अग्रवाल थी, उनके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे, उन्होंने तो भी वहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया, दिव्यांग पर्वतारोही का नाम रोशन किया।
1: और अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना आपने?
0: हाँ हाँ सर
1: जी जी
0: वो भूल गई सॉरी।
1: बहुत बढ़िया बहुत खूब। अच्छा जब शादी के बाद तो फिर निवृत्ता घर परिवार के भी बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और थोड़ा सास ससुर को भी बहू से कुछ उम्मीदें होती हैं, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर रही हैं आप?
0: अभी तो फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है, यानी मैं भी काम वाम कर लेती हूँ, मेरी सास यानी मेरी मम्मी जी है वो भी बस हेल्प करने लगते हैं, और कहीं जाना है तो भी हेल्प मिल जाती है, उनका सपोर्ट रहता है, घर वालों का भी रहता है।
1: अच्छा और ये जो खाना वगैरह बनाने में?
0: खाना मैं बना देती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ भी हाँ प्रॉब्लम नहीं, खाना बनाना कपड़े धोना ये कर लेती हूँ,
1: सारा काम कर लेती हैं आप?
0: हाँ सर मैं कर लेती हूँ।
1: अच्छा एक ये जो जयपुर फुट जो होता है काफी फेमस है, तो वो आपके केस में वो नहीं काम आ सकता?
0: नहीं सर मेरे यानी कमर से है ना इसलिए नहीं काम।
1: अच्छा इसलिए काम नहीं आ सकता जी। हाँ तो राकेश
2: जी सर,
1: तो विवाह तो आपका 25 अक्टूबर को हुआ?
2: जी सर 25 नवंबर सर।
1: 25 नवंबर को, अच्छा अच्छा जी जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको।
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। तो
1: जी जी बताइए
2: इसके बीच की सर एक और मैं बताना चाहूंगा।
1: हाँ जरूर जरूर
2: बताया था कि
1: हम सुनना चाहेंगे।
2: जोधपुर से बात चली तो फिर सडनली एक दिन हम उदयपुर गए, हमारे हालांकि हमारे मन में भी था कि नहीं अपन चलो जहां तक संभव हो सके यही, बस मन में ये था कि क्या पता कि इनकी फैमिली वाले अगर मना करें या फिर इनको क्या पता मतलब ब्लाइंड व्यक्ति से करना उचित लगे नहीं लगे। तो हम दरअसल एक बार उन्हीं दिनों में फादर मम्मी और मैं उदयपुर गए थे, तो हमारे एक सर हैं जो उदयपुर में वीरेंद्र जी सर, तो वहां गए तो फिर जैसे जॉब के तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मम्मी को कि भाई इनकी शादी के लिए क्या कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो? फिर हमने कहा कि वो हमारे भाभी जी की बहन है उनसे कोशिश कर रहे हैं, चलो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। फिर उन्होंने भी इनसे बातचीत की, उनका बहुत बढ़िया इनका स्वभाव। फिर तब से फिर हमने और कहीं सोचना और मतलब पहले से इच्छा थी, लेकिन उनकी फैमिली ने भी फिर हमको बोला कि नहीं नहीं अब चलो यही करेंगे 5-6 महीने बाद। तो फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत शुरू हुई फोन पर, और इनको मैं बस एक ही बात पूछा करता था कि आपके मन से कि इच्छा है ना मेरे प्रति, हाँ कि मैं जो भी हुआ संभव आपका सहयोग करूंगी, हम दोनों एक दूसरे को समझे वही बहुत है। तो कम से कम हमारी सगाई सर रही 1.5-2 साल, और फिर 25 नवंबर को फिर अभी इस साल शादी हुई, अरेंज मैरिज।
1: तो आप जो सर के पास गए थे,
2: जी सर,
1: तो ऐसे ही सर को मिलने गए थे या मतलब यही सब राय लेने गए थे कि हम करें क्या?
2: ऐसे ही मिलने गए थे।
1: अच्छा, मिलने गए थे,
2: वहाँ उदयपुर आए थे तो वैसे ही मिलने गए थे। उस समय तम विवाह चलो साल भर ही हुआ था, तो वह हमारे काम था तो हम वैसे ही गए थे। तो वह फिर थोड़ी देर बैठे और फिर सर ने जानकारी दी, क्योंकि हमारे दिमाग में ही था चलो भी पहला प्रयास को तो नहीं करेंगे और कहीं नहीं।
1: तो ये जो आपके घर वाले क्या सोच रहे थे इनको लेकर के, जैसे आप लोगों की आपस में बातें होती होंगी?
2: जी सर।
1: हाँ, आपके घर तो परिवार में क्या चर्चा चलती थी निव्रता को लेकर के?
2: घर परिवार में तो मेरे माता पिता भाभी सब तो तैयार थे कि कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भाई परिवार जाना पहचाना सब कुछ, आप एक दूसरे को जानते भी हैं फैमिली में, तो अच्छी बात है अगर। और मेरी मम्मी की भी ये इच्छा थी कि भाई मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी अगर जो काम वो नहीं कर सकते हैं, और आराम से जीवन चलेगा। तो शुरू से उनका ये मानना, वो तो चाहते थे कि बस हमको इनकी ओर से इंतजार था कि भाई क्या वो चाहते हैं कि नहीं।
1: अच्छा राकेश, ये बताइए, लगभग 4 महीने हो गए आप दोनों की शादी को, तो 4 महीने में मतलब कभी कोई ऐसा पल आया कि किसी वजह से थोड़ी बहुत नोकझोंक और थोड़ी बहुत खटपट खड़ लड़ाई हुई?
2: नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं तो मैं भी समझ जाता हूँ, और मैं भी कोई भी काम है या कोई बात है कहता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर क्या है कि थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर।
1: दिक्कतें होती हैं?
2: दिक्कतें है सर, कहने का मतलब जैसे मान लो जैसे कबूत की कोई, जैसे हालांकि ये मेरे सब काम में जैसे अभी कॉपी चेक करने में है
1: जी, जी, जी,
2: या अन्य कामों में भी सहयोग कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी
1: कभी ये व्यस्त हो किसी और काम में।
2: हाँ, तो
1: और भी आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी करना पड़ेगा ऐसा?
2: कभी कभी सर ऐसा हो जाता है, कभी मैं कहता हूँ नहीं यार कल देनी है, अभी टेस्ट है ये कल देना है, वह कोई फिर वो फिर कैसे करके एडजस्ट करके कभी कर भी देते हैं। और फिर मैं भी क्या है फिर मैं भी समझ लेता हूँ नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी क्या है इन दिनों में विशेष कर ये तैयारी कर रहे हैं
1: जी।
2: तो मैं इनको फिर क्या है ज्यादा
1: परेशान नहीं करते हो?
2: नहीं करता हूँ, चलो इनका भी अगर फ्यूचर बन जाए और अच्छी बात है, हर किसी की तमन्ना रहती है सर कि भाई इतना कुछ पड़ा है संघर्ष करके तो जो पाना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राकेश
2: जी,
1: आपके मतलब शादी से पहले
2: जी
1: आपने बहुत सारे साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को देखा होगा जो विवाहित रहे हैं, तो उनकी जिंदगी को भी देख करके कुछ आप अध्ययन करते थे अपने मन में कि यार ऐसा होता है वैसा होता है या हमारा कैसे क्या होगा, इस तरह से कुछ सोचते थे आप?
2: हाँ, मैं बहुत बार सोचता था, जैसे कई बार ये देखता था
1: जी
2: कि यार जैसे किसी की जॉब लगी 3-4 साल तक, जैसे शादी नहीं हो पाई, कई बार 5-7 साल तक बहुत सुखी।
1: हाँ,
2: तो फिर मैं सोचता था ये लोग इतने टैलेंट है, मतलब टैलेंट का मतलब इतने चतुर भी है, समझदार भी है, और जब यार इनकी दिक्कत आई है तो क्या पता कोई अपने लिए ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि अपन को समझ पाएगा या अपने को अपनाएगा
1: जी,
2: ऐसा बहुत बार ख्याल आता था
1: जी जी जी
2: सर कि वाकई।
1: फिर आप मतलब थोड़ा दुखी हो जाते थे, थोड़ा निराश हो जाते थे ऐसे में कि भाई मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ होता था मन में?
2: फिर मैं ये सोचता था कि नहीं, ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है तो कहीं कहीं उसने अपना भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा। जैसे सर मेरा सर जो भी काम होते हैं वो बड़ी मुश्किलों के बाद होते हैं।
1: जी जी जी जी जी,
2: तो
1: वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए, क्यों है कि नहीं, वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए।
2: हाँ सर सही बात है, और मुश्किल है जब इंतजार के बाद कुछ चीज मिलती है तो उसका मजा कुछ और है सर।
1: तो अब मजा आ रहा है?
2: हाँ सर आप सभी।
1: अच्छा, कहीं कभी आप दोनों का अकेले इधर उधर जाना हुआ?
2: नहीं सर, अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि नवंबर के बाद छुट्टियां भी नहीं मिली और इसलिए अभी तक तो नहीं होना पाया, हो पाया सर।
1: अच्छा, निवृत्ति को गुस्सा कितना आता राकेश? निवृत्ता को
2: नहीं, बहुत कम
1: कम आता है। अच्छा अच्छा और आपके मम्मी पापा और बाकी भाई भाभियों से सबसे अच्छा इनका तालमेल है एकदम?
2: हाँ नहीं, अच्छा है, और सभी इनको घर में अच्छा इनकी वैल्यू करते हैं और इनका सबसे अच्छा तालमेल है, सभी प्यार से रखते हैं इनको और सबसे अच्छा तालमेल है इनका।
1: तो जैसे आमतौर पर होता है इस तरह की शादियों में कि लोग बड़े उत्सुकता से देखना चाहते हैं, अरे और एक ब्लाइंड व्यक्ति की और एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी है, तो आप लोगों के केस में भी ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग आए होंगे?
2: हाँ सर हुआ ना।
1: हाँ
2: ये जब हमारी बातचीत चल रही थी तभी बहुत कहते थे, अरे यार फिर आपकी लाइफ कैसे मैनेज होगी, फिर वो आपको कहीं जाओगे तो भी यार इससे अच्छा तो तुम कहीं जैसे बाहर से ले आओ, कोई दिखने वाले ले आओ।
1: अच्छा,
2: लेकिन मेरा मानना सर हमेशा से ये रहा कि कोई अपने समकक्ष होगा समस्याग्रस्त व्यक्ति, वो अपने को ज्यादा अच्छे से, या बाहर से ले आओ मैंने कहा। और जब शादी हुई हमारी तो बहुत से लोग उस उत्सुकता वश ही इनको मिलने आते थे, चलो देखने चले कैसी है क्या है।
1: पीछे इसी कार्यक्रम में हम एक ऐसे परिवार से मिल चुके हैं राकेश जी, तो जैसे गोपाल जी और उनकी जो मैडम थी वो लोग बहुत ही उत्साह से और बहुत मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और गांव में रह करके उनकी भी कहानी आपकी तरह ही मतलब रही है जी।
2: तो सर हमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से बढ़िया एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अच्छे से लाइफ चल रही है सर।
1: वेरी
2: और फैमिली का फुल सहयोग हमारे मामले में है सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो निव्रता,
0: हाँ सर,
1: कोई शिकायत आपको राकेश जी से?
0: नहीं अभी तक तो कुछ नहीं।
1: बोल दीजिए आज तो इस मंच पर बोल दीजिए आज तो।
0: नहीं
2: आज तो बोल दो कोई शिकायत।
1: नहीं कभी लगता नहीं है कि ये भी चाय बना करके मुझे पिलाए है?
0: वो कहते हैं मुझे, रोज बोलते हैं मुझे चाय बनाना सिखाओ ऐसे।
1: अच्छा
0: करना, मैं तो आ गई हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है।
2: मैं बोलता हूँ यार मुझे प्रेस करना सिखा।
1: अच्छा
0: सब कुछ मैं कर लेती फिर आपकी क्या जरूरत है।
1: नहीं लेकिन क्या होता है ना निव्रता कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर सीखने की एक लगन होती है ना।
0: हाँ सर
1: वही लगन राकेश जी के, वही लगन राकेश जी के अंदर भी है, तो एक ये होता है की हमें भी आनी चाहिए ये चीज। क्यों
0: सर,
1: चलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके।
0: हाँ सर।
1: और कुछ अपने जिंदगी का कोई अनुभव जो रह गया हो आप बताना चाहें निव्रता?
0: हाँ सर, तो अनुभव तो क्या, बस सबका सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते ही जाएंगे, सबका सहयोग मिलेगा, आपका भी मिलेगा सर।
1: हाँ नहीं नहीं वो तो खैर है ही, हम लोग तो सब साथी हैं आपस में, और इसका कार्यक्रम का और रेडियो मधुबन का और हम सब का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे का साथ हम सब निभाते चले जाएं, और समाज जो कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हट जाता है, तो उस समाज को भी हम समझा पाए कि दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति की या सहारे की जरूरत नहीं है, उसको तो बराबरी की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है।
0: हाँ सर।
1: है कि नहीं?
0: हाँ सर पक्का। ये
1: तो कभी ऐसा लगता है आपको कि भाई आप दोनों को मतलब देख करके लोग जो हैं वो सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको?
0: हाँ सर होता है, तो होता है? जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सामने सामने देखते हैं लोग
1: जी।
0: बाहर भी यानी वो शर्म आती है निकलते तो भी।
1: ओ अच्छा। कोई बात नहीं, उनको देखने दो, अपने को क्या करना है।
0: हाँ यही तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
1: है कि नहीं? और आपके क्या क्या शौक है निव्रता ये बताइए, इसके अलावा आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करती हैं?
0: मैं एक तो पढ़ाई यानी बुके पढ़ना अच्छा लगता है,
1: बुक्स पढ़ना
0: यानी अभी पढ़ना यानी हाँ अच्छी वाली कहानियाँ यानी प्रेरणा मिले ऐसी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना है, गाने गुनगुना है,
1: क्या बात है। तो राकेश जी के लिए कौन सा गाना गुनगुना रही हैं आज आप? बताइए
0: बीच में से स्टार्ट करो या शुरू से?
1: कहीं से भी करो आप, तो जहाँ से करना है करो।

もうちょっと自分を立ち上げる永遠に頼む打ちぽくる

0: क्या बात है,
1: हाँ
0: बहुत
1: सर।
0: बढ़िया, बहुत शानदार लगता है। आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये,
1: हाँ सर,
0: काफी
1: मुझे
0: दिल
1: ना
0: से।
1: पुराने गानों से बहुत लगाव है।
0: और सर राज की बात ये कि ये भी मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि
1: अच्छा, ओहो
0: मैडम
1: हो,
0: गाती भी है यूं। क्या बात है, क्या बात
1: एक
0: है,
1: दिन
0: ओहो।
1: मैंने भी पूछ लिया बस यूं ही, तो बताया कि मैं कॉलेज में भी जब एसटीसी कर रही थी तब सांस्कृतिक प्रोग्राम में गाती थी, और कभी स्कूल में जैसे
0: प्रार्थना सभा
1: प्रार्थना
0: होती थी
1: सभा
0: तो
1: होती थी
0: उसमें
1: उसमें।
0: कमांड भी मैं करती थी और गाना भी अच्छा लगता था।
1: ये राज
0: क्या
1: मुझे
0: बात,
1: भी थोड़े दिन पहले ही पता चला सर।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा तो राकेश,
1: जी सर,
0: देवरता जी ने तो गा दिया, अब आप क्या गाएंगे?
1: मैं इनके
0: जी
1: लिए एक गाना गाना चाहूंगा, थोड़ा सा दो लाइन
0: जी जी
1: बस।
0: जी बताइए बताइए।
1: एक गाना है सर,
0: लगता है,
1: जिंदगी से जंग
0: हाँ
1: जीत
0: हाँ
1: लेंगे
0: वाह
1: हम,
0: वाह,

0: जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो तो। सर
1: वाह वाह वाह गजब, बहुत बढ़िया, सच में बात सच है, बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा राकेश, एक बात बताइए कि हम ये जो इलाका है जहाँ के आप रहने वाले हैं,
0: जी सर,
1: थोड़ा सा अपेक्षाकृत ये मतलब इलाका पिछड़ा हुआ है,
0: जी सर,
1: और हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये सुनना चाहेंगे कि वहां पर खासकर दृष्टिबाधितों को लेकर के लोगों की क्या सोच है और आपने क्या अनुभव किया है, और कोई अगर घटना आपके साथ भी इस तरह की हुई हो तो वो बताना बड़ा अच्छा रहेगा आज के इस कार्यक्रम में।
0: जी सर, यहाँ पर क्या है कि अब हालांकि समय के साथ में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, बाकी यहाँ सोच यही है कि जैसे यहाँ ये रहता था कि बहुत बार जैसे कहीं जाता मम्मी के साथ में, अरे यार इनका तो क्या होगा यार, चलो इनको वाह, चलो आप हो तब तक इनको, बस हो तब तक इनको रोटी दो, बाकी इनका जीवन में क्या होगा, ये सोच रहती है। और फिर जब धीरे धीरे मुझे देखते मतलब पढ़ के कभी उदयपुर से आता, तब लोगों को लगता हाँ भाई कि अब कुछ कर पाएंगे, बाकी अभी सोच में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मेरे विवाह के संबंध में भी करे भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इनकी शादी करा के क्या करोगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत रहेगी, अभी आप फोन फिर बाद में इनका कैसे जीवन चलेगा, तो बहुत से लोग ये बात करते हैं।
1: कोई घटना ऐसी आपके साथ कोई हुई हो बहुत करीब से इस तरह का? अच्छा, स्कूल में जहाँ पढ़ाने जाते हैं
0: हाँ
1: वहां
0: जी
1: भी
0: सर,
1: लोगों के, क्योंकि आपका तो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलना जुलना रहता होगा, माँ बाप से भी मिलना जुलना रहता होगा, तो वहां पर लोगों का क्या रुख रहता है?
0: हाँ सर, वहां पर सर जैसे कहीं भी शुरू शुरू में ज्वाइनिंग होती है तब तो स्टाफ भी जैसे वो रोकता ही है कि जय अरे यार इनका तो बड़ी दिक्कत ही है क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने काम को देखा और अच्छा, तो पेरेंट्स भी मिलकर बड़े खुश होते हैं। हाँ बस कई लोगों का कुछ कुछ ये मानते हैं कि वाह चलो भैया आज आ रहे हैं जा रहे हैं, वाह इनका चल रहा है, बाकी अब जो है पेरेंट्स का भी अच्छा सोचना है कि जब बच्चे घर जाके कहते हैं कि नहीं ये इनको दिखा नहीं परंतु अच्छा पढ़ाते हैं और अपना आना जाना समय पे सब करते हैं, तो वो जब भी आते हैं मीटिंग्स में तो मुझे देखकर जरूर आवाज लगाते हैं, सर नमस्ते कैसे हो क्या है, और लोगों को कहते हैं कि भाई ये तो आवाज से पहचान जाते हैं,
1: अच्छा,
0: और हमारे बच्चे घर पे आकर बताते हैं कि भाई हमारे जो सर आए हैं वो अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो अब सकारात्मक सोच आने लगी है सर
1: कुलना के
0: वहां।
1: अब जो है वो परिवर्तन होने लगा है।
0: हाँ बस शुरू शुरू में कहीं भी सर जैसे ज्वाइनिंग होती है लाइन की तो बहुत समय तक बच्चे पेरेंट्स स्टाफ सब में ये रहता है कि यार चलो ठीक है वाह, और तब मेरे को ज्वाइनिंग में भी ऐसी दिक्कत रही
1: क्या?
0: जब सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करने गया, यार इनके तो जहाँ पास में है अभी जैसे मैं जाता हूँ तो वहाँ कम से कम 15-20 किलोमीटर है, तो अरे यार इनको अभी पास में ही रहते तो ठीक था, तो अभी एक सेकंड ग्रेड में क्यों ज्वाइन किया, मतलब दिक्कत आती आएगी इनको कैसे आएंगे जाएंगे 15-20 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर हाईवे है। तो फिर जब उन्होंने देखा अभी मुझे आते जाते कम से कम वहां 2 साल हो गए, एक सोम कागदर नहर है सर वहां मेरी पोस्टिंग है
1: अच्छा
0: ऋषभदेव के आगे,
1: जी,
0: तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये हमसे पहले आ जाते हैं और समय पे आते हैं,
1: क्या बात है।
0: यार हम तो सोच ही नहीं रहे थे कहा पापा हो गए यार 20 किलोमीटर और
1: अच्छा
0: हाईवे पार कैसे करोगे। हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो निव्रता,
0: हाँ सर,
1: आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा कॉलेज में या घर परिवार में समाज में कि भाई लोग विकलांगता को लेकर के थोड़ा सा कुछ परेशान करते हैं, इस तरह की कोई बात रही हो आपके साथ?
0: हाँ सर, लोगों की तो सोच ऐसी होती है तो उनके नतीजे के अनुसार तो ऐसा ही होता है कि ये ना क्या कर पाएंगे, दोनों पैरों से ऐसे विकलांग है, इसको कौन यानी भविष्य इसका कैसा होगा, शादी कौन करेगा, सो सवाल लोग उठाते हैं, यानी शिक्षा ऐसी चीजें लोगों को उनकी सोच भी बदल देती है, यानी एकदम परिवर्तन कर देते हैं, यानी शिक्षित लोग लोग होते हैं एक दूसरे से अपन अटैच में रहते हैं तो उनके बारे में अपनी चर्चा निकलती है,
2: अपना सभा होता है, अपना कुछ भी होता है, तो लोगों के बीच में बात निकलती है तो वो उनका यानी सोच परिवर्तन हो जाता है, नहीं ये भी हमारे जैसी नॉर्मल है, यानी सब कुछ कर सकते हैं। और मैं मुझे यानी ऐसा लगता है, हम घर पर काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जिससे ना लोग होते हैं वो काम नहीं कर पाते, तो आप है ना इतना काम कर लेते हो, क्या बात है।
1: अच्छा, और आपके कोई साथ रहे हैं इस तरह के, आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी और को समस्या रही हो कुछ भी दिव्यांगता की, ऐसा कोई रहा है आपके,
2: क्या
1: आपके दोस्तों में किसी को और, किसी और कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जानने वालों में जिसको भी ये विकलांगता रही हो?
2: नहीं है,
1: ऐसा
2: मेरे
1: कोई नहीं है,
2: कोई भी नहीं, मेरे तो सब नॉर्मल ही है और अच्छे ही है सब।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ यानी दो मिनट भी नहीं लगते तो दोस्ती बना देती हूँ।
1: अच्छा, अरे वाह।
2: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात, क्या बात है।
2: यानी इंटर्नशिप में भी जाती थी ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहीं भी मेरे दो दिन में पहचान बन गई सर से, पूरे स्टाफ वालों से, बच्चों से। फिर बच्चों भी बोलते नहीं मैडम आप ही आना और आप ही हमको पढ़ाना।
1: जी जी,
2: आप मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते है, हमें तुरंत याद हो जाता है, तुरंत याद रहता है इसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं काबिलियत होनी चाहिए। चलिए, आप दोनों को रेडियो मधुबन की तरफ से हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से आप भी जो है आपकी भी जॉब लग जाए। और जो है राकेश जी,
0: जी सर,
1: अब लगभग कार्यक्रम के अंत में है हम
0: जी,
1: तो आप हमारे सुनने वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे?
0: वह सर, अपने अनुभव से मैंने महसूस किया कि जीवन में हर सकारात्मक काम होने से पहले समस्याएं बहुत आती है, कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बेहतर अच्छा सोच के रखता है, बस उसको पाने में समय लगता है। तो बस जीवन में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ में जिए और ईश्वर पर भरोसा करें, वो समस्याओं का हल सतही करेगा अगर आप प्रयास करते रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और निवृता जी, आप क्या संदेश देंगी सुनने वाली अपने जैसी सहेलियों को और बाकी साथियों को?
2: मैं भी ये इच्छा रखती हूँ कि यानी ब्लाइंड या विकलांग कोई भी है, उनको ना नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक रूप देखना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला देना चाहिए, यानी हर काम यानी हर संभव काम कर सके, यानी ये नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ नहीं कर पाते इसे, उनको आगे हौसला बढ़ाते रहना चाहिए और अभी प्रेरित करना चाहिए कि वो हर काम कर सके और आगे बढ़ सके, वो ही कहना चाहिए।
1: बहुत खूब, तो निवृता जी और राकेश जी, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और
0: धन्यवाद सर,
1: एक बड़ा ही अलग तरह का अनुभव रहा आप दोनों से बात करते हुए, कि बहुत साधारण तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग हमेशा जो है वो चलते रहे, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपसे भी समाज को प्रेरणा मिले। तो
0: जी सर,
1: जी जी राकेश जी,
0: और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अवसर प्रदान किया रेडियो मधुबन के तहत अपनी कहानी को बताने का और प्रोग्राम में इनवाइट किया, धन्यवाद सर।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं ये था कार्यक्रम हमराही आज का, उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे 94-14-15-14-15 पे। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड का ऐप, और इसके अलावा यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in आपका इंतजार करता ही रहेगा हमेशा। तो एक बार पुनः सुनते रहें रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो अगर आप विवाहित हैं और आपकी कहानी कुछ खास है और आप अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आपकी बातों से शायद किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, तो हम सबको आपका इंतजार रहेगा हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो बस आज के लिए इतना ही श्रोताओ, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान, हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है, हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं, शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर और परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

0: 107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम विशेष मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेडियो मधुबन आपके पास लेकर आता है कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को इस प्रोग्राम के माध्यम से, जहां से आप उन व्यक्तियों को जानते तो हैं लेकिन उन विशेषताओं को समझते हुए आप अपने जीवन में भी उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं तो कई बार हमें अपने जीवन को डिसीजंस लेने में काफ़ी आसानी होती है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व तो आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं, जिनका नाम है अभिषेक कालरा। अभिषेक जी वर्तमान समय तो न्यूयॉर्क में रहते हैं और भारत में इन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग किया था मैकेनिकल ब्रांच में, और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी सारी देशों की यात्रा की और अलग अलग जगह पे काम किया, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में उन्होंने कुछ समय काम किया, उसके साथ साथ साउथ कोरिया में काम किया, जर्मनी में और USA में। पिछले 10 सालों से आप USA में रह रहे हैं और USA में रहने के दौरान वर्तमान समय आप मॉर्फ सिस्टम्स में वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और यहाँ पर आकर।
0: हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत में आपने शिक्षा प्राप्त की, अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दी और अभी USA में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई बार हम कई अखबारों को सोशल मीडिया पर ये बातचीत होते हुए देखते हैं कि अमुक कंपनियों का CEO भारत का है, अमुक कंपनी का जो चीफ व्यक्ति है वो भारत के हैं विदेशों में भी। तो कई बार एक भारतीय होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस होता है हमारे भारत की जनता को कि विदेशों में भी इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में हम मुख्य रूप से अपनी एक संचालक के रूप में, फाउंडर के रूप में या रिसर्चर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो जो भी इन्वेंशन होते हैं वो कंपनियां जब पूरी दुनिया में अपने कारोबार के द्वारा लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेवाएं, भारतीयों के द्वारा बनाई गई चीज़ों की सेवाएं लोगों को प्राप्त सकती हैं
1: जी।
0: तो जैसा आप वर्तमान समय यहाँ पर प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में देख रहे हैं, साथ साथ आप वहाँ पर AI को भी इंटीग्रेशन करने का, आपकी कंपनी जो काम करती है वो सॉफ्टवेयर्स को कैसे AI के माध्यम से बनाया जा सके, इस चीज़ पे वो रिसर्च कर रही है और डेवलपमेंट कर रही है। तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि AI क्या होता है और आपकी कंपनी किस प्रकार से काम करती है।
1: जी ज़रूर, AI एक तरह का कहेंगे मैथमेटिक्स है। जैसे इंसान का दिमाग जब महसूस करता है, चीज़ों को देखता है, पढ़ता है तो वो याद रह जाता है। एक बच्चे को आप दिखाएंगे कि देखो ये बिल्ली है और ये कुत्ता है तो उनको दिखाएंगे तो उनको फ़र्क समझ में आ जाता है। तो ऐसे जैसे इंसान सीखता है वैसे ही लोगों ने मैथमेटिक्स को यूज़ करके AI को सिखा दिया है कि कैसे आपको चीज़ें परखनी हैं, समझनी हैं। तो मूल रूप से तो AI ये है। और फिर AI को इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ों को आप अलग अलग रीति से जल्दी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा मौसम विभाग बताता है कल कितना तापमान होगा
0: जी।
1: वो भी AI के द्वारा प्रेडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है, वो भी AI है
0: जी।
1: या आप अनुमान लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है कौन जीतेगा, वो भी लोग अनुमान लगाते हैं, AI को यूज़ करते हैं, उस रीति से टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। शेयर प्राइस है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वहाँ भी यूज़ होता है। तो AI तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी समय से अलग अलग तरीके से आता है लेकिन कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तरक्की हुई है टेक्नोलॉजीज़ में। और एक नया तरीके का AI जो है पिछले 10 साल में काफ़ी डेवलप हुआ है, जिसको हम जनरेटिव AI कहते हैं, जो आजकल लोग ChatGPT से या Gemini के तरीके से इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कि AI ने ऐसी काबिलियत समझ ली है कि उसे कैसे चीज़ें जनरेट करनी है। मानो कि आपने उसको बोला कि चलो एक, जैसे बच्चे को बोलते हैं स्कूल में कि आप पेड़ के ऊपर निबंध लिख कर आओ, तो बच्चा लिख कर आता है निबंध जो पेड़ की समझ है उसके बच्चे के बारे में। ऐसे ही आप AI को बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए ये करो, ये लिख कर लाओ या ये बताओ। तो AI को ट्रेन किया गया है पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन में, सारी वेबसाइट्स में, सारी बुक्स के ऊपर। तो

0: वो उसने जो पढ़ा है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो आपको ढूंढ करके ला देता है।
1: तो एक प्रकार की ऐसी बात होगी जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, दादाजी के पास जाते हैं, दादाजी दादाजी ये क्या होता है, दादाजी ये पंछी का नाम क्या है, इस ब्रिज का नाम क्या है, इस शहर का नाम क्या है, तो कुछ भी सवाल हमारे मन में होता है। तो जो हमारे घर में बड़े होते हैं, पर्टिकुलरली अगर छोटे बच्चों को देखें तो वो अपने दादाजी होते हैं, तो उनको बड़ी सहज रीति से एक ही सवाल 10 बार भी पूछ लेते हैं, तो उन्हें एक विश्वास होता है अंदर की कहीं इनको सब कुछ पता है।
0: हाँ, इसमें एक मैं डिफरेंस बताऊंगा, एक होता है पता होना और जानना, और एक होता है समझ आना।
1: ओके,
0: तो मूल रूप से एआई को पता है क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जो समझ है, जैसे इंसान जिस रीति से जब अनुभव होता है तो चीजों को समझते हैं, वो अपने अंदर एक एक उसकी एक इमेज बनाते हैं कि सो वो समझ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैथमेटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, वो समझ एआई में ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो इसीलिए जब जब भी एआई यूज करते हैं तो हम जितना ज्यादा बताएं एआई को जो समझ वाला हिस्सा है उसका, तो वो उतना सटीक रूप से उसका जवाब देता है। तो ये थोड़ा फर्क है जिस तरह से हम इंसान समझते हैं
1: जी,
0: और जानने के साथ साथ समझते भी हैं अपने अनुभव से, तो वो थोड़ा फर्क आता है।
1: बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि एक इंसानी समझ और एक मशीन की समझ में क्या फर्क है। तो जैसे आपने बोला कि आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है या उसे सॉफ्टवेयर को आप एआई का नाम दे रहे हैं क्योंकि वो अपने आप से समझ को विकसित करता है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के द्वारा, तो ये जो सॉफ्ट प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो किस प्रकार से किसे यूज में आएगा?
0: सो जैसे सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी लैंग्वेज में, भाषा में लिखा होता है, तो जिस एआई को आप कुछ हिंदी या इंग्लिश भाषा में बोलो तो वो इंग्लिश भाषा में उसका जवाब देता है। इसी तरह एआई को आप बोलो कि मुझे जावा भाषा में या सी भाषा में आप प्रोग्राम लिख के दो, तो वो अपनी रीति से उसका जवाब दे रहा है। वो इंग्लिश में नहीं लिख रहा, वो जावा में वो प्रोग्राम लिख
1: करके दे रहा है,
0: वो कंप्यूटर लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिख करके दे रहा है।
1: जी,
0: तो इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर चलाने हैं उसके चलाने का तरीका तो जैसे आप चलाते आए हैं वो सेम रहा है। तो बस इतना फर्क है कि एआई से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है प्रोग्रामिंग, कई साल काम करना पड़ता है, फिर जाके आप प्रोग्राम लिख पाते हो। लेकिन अभी एआई के चलते तो इंग्लिश बोल करके कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है ना?
1: ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो एक पीरियड में मैं कुछ कॉलेज में पढ़ाता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनालिसिस, तो जैसे बच्चों से बात कर रहे थे वो लोग काफी समय से अपने अपने फील्ड पे वो कर रहे थे, तो एक समय पे मैं भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या सोचना है, और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे जो हैं कंप्यूटर वाली लैंग्वेजेस तो पढ़ रहे थे पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर अभी खुद ही समझने लगे हैं और सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, तो काफी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, पर ये कुछ ही वर्ष हुए हैं जब हम एआई का इतना नाम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने भी जब शुरुआत की होगी तब इसका नाम इस प्रकार से नहीं रहा होगा जैसे अभी।
0: हाँ, एआई तो जैसे 50-60 साल से वर्ल्ड वॉर टू के टाइम से डेवलप है, बिकॉज जब भी आपको अनुमान लगाना होता है कि कहाँ पे कितनी प्लानिंग करें, उस टाइम पे ये मैथमेटिक्स डेवलप होनी शुरू हुई थी। बट क्योंकि अभी इंटरनेट से, सोशल मीडिया से इतना सारा डेटा जनरेट हुआ है जो अवेलेबल है, तो जो हमने इंसानों ने पिछले 10-15-20 सालों में इंटरनेट को बताया है
1: जी।
0: तो अब एआई ने उस डेटा पे ट्रेनिंग कर ली है, उस इंफॉर्मेशन पे ट्रेनिंग करके, इसलिए वो स्ट्रांग हो गया या इसलिए कैपेबल हो गया, स्ट्रांग इज सक्षम हो गया है कि इंसान की तरह उसका जवाब देने का। तो आपने दादाजी का एग्जांपल दिया तो मैं यही बोलूंगा कि जानते हैं बट समझ जो अनुभव के साथ आती है, तो वो समझ है बट उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना, तो जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो यही मदद करेगा कि कैसे एक आम आदमी भी इंग्लिश को यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बना सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है।
1: बिल्कुल, ये एक बहस का सब्जेक्ट रहा है काफी समय से, जब से एआई का शब्द ज्यादा प्रचलन में है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एआई के आने से कई सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, और कई बार ऐसा सुनने में भी आया है। सेम टाइम पे आर्टिस्ट जो काम करते थे, जो कि एक ओरिजिनल क्रिएटिविटी का वर्क होता था, चाहे वो इमेज बनाना हो, पेंटिंग बनानी हो, या कुछ बोलना हो, गाने बनाने हो, लिखने हो, म्यूजिक कंपोज करना हो, इन सब फील्ड में एआई का दखल काफ़ी गहरे तरह से बढ़ रहा है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कई बार ऐसा लगता है कि जैसे संगीत के फील्ड में अगर एआई आ रहा है तो वो गानों में उतनी भावना अभी तक महसूस नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्करेजमेंट है कि समाज में जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो लोग एक महीने का समय लेकर के गाना कंपोज करते थे या मेहनत करके एक मास्टरपीस बनाते थे, तो एक डीमोटिवेशन भी उनके लिए हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस बारे में?
0: जी, एक एक रीति से बात सही है, लेकिन आप ये भी देखें कि आज से पिछले साल या 5 साल पहले भी शायद 1 साल में 1,000 या 5,000 गाने बने होंगे, हमें याद तो 10 रह जाते हैं सिर्फ, क्योंकि वो जो बाकी 990 गाने थे, वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो भी अपनी रीति से गाना बनाया, बट कहीं ना कहीं वो आसपास की जो चल रहा था उससे प्रभावित हुए, तो वो ओरिजिनैलिटी नहीं आई। तो AI तो सिर्फ जो उसको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर दिखती है वो ही पढ़ सकता है, लेकिन जो एक इंसान के अंदर एक ओरिजिनलिटी है, एक
1: मौलिकता है
0: एक
1: वो।
0: हाँ मौलिकता है, स्पेशलिटी है, वो तो एक इंसान ही समझ सकता है और इंसान ही लेकर आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, AI के चलते मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इंसानों को, क्योंकि जो बना हुआ है, बना बनाया तो बनाते ही जाएंगे, लेकिन कैसे जो अगला गीता बनाएं, उसमें कैसे वो अपनी उस समय की भावनाओं को लेकर आएं, जो उस समय की पुकार है उसको लेकर के आएंगे, तो वो ज़रूर सबको अलग लगेगा,
1: अपील
0: सबको
1: करेगा।
0: अपील करेगा, पसंद आएगा, क्योंकि वो जो आपके अंदर इन्फॉर्मेशन है, जो आपके अंदर स्पेशलिटी है, वो तो AI को नहीं पता। AI का तो सिर्फ वही पता है
1: जो ऑलरेडी
0: जो
1: बाहर।
0: बाहर इंटरनेट पर पड़ा हुआ है।
1: तो जैसा आप काम कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लेवल की बातें हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, कैसे इम्प्रूव करना है। लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी में AI का जो इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव, उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जो हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं?
0: पॉजिटिव रूप से मुझे ये लगता है कि AI ने काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, जैसे हम ईमेल काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और कई बार फ़ोन पर बात नहीं होती, ईमेल पर बात होती है और समझ नहीं आता इसका कि इन्होंने क्या लिखा है और हम इसका कैसे जवाब दें, क्योंकि कई बार कल्चर का फ़र्क हो जाता है या भाषा का फ़र्क हो जाता है, बोली का फ़र्क हो जाता है, तो और हर बार आप किसी से बात करके नहीं समझ सकते, कई बार कुछ प्राइवेट निजी बातें होती हैं, तो वो चीज़ आसान हो गई है, तो वो फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके
1: अच्छी तरीके
0: परखने
1: से
0: की,
1: ड्राफ्ट कर सके।
0: और आप ईमेल को रिस्पॉन्स भी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं छोटा हो बड़ा हो किस तरीके से। और दूसरी चीज़, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ हो गई, बट जैसे आपको ट्रैवल करना है, फ्लाइट बुक करनी है, तो काफ़ी सारा काम जो फिज़िकली जा करके हम आधा घंटा पौना घंटा इंटरनेट पर लगाते थे एक डिसीजन लेने में, तो AI उन चीज़ों को 5 मिनट में कर सकता
1: फ्लाइट
0: है।
1: भी बुक कर सकते हैं।
0: AI फ्लाइट भी बुक कर सकता है, क्योंकि ऐसे ब्राउजर्स भी आ गए हैं, AI ब्राउजर्स, जिसमें आप जाके बोले कि जो आप 3 स्टेप खुद करते थे कि एक वेबसाइट पे जाएं, फ्लाइट ढूंढें, फिर उस पे जाएं, फ्लाइट ढूंढें, फिर सबसे कम कॉस्ट या सबसे छोटा ड्यूरेशन, फिर थर्ड पे जाके बुक करें या फोर्थ पे जाके पे करें, तो आप AI को बोल सकते हैं आप फर्स्ट स्टेप 1 2 3 आप करें, जब पेमेंट करना हो तो मुझे बुला लें, मैं आकर के उसको पेमेंट कर दूंगा, तो जो समय 45 मिनट 1 घंटा लगना था वो आपका भी 10 ही मिनट
1: तो ये तो
0: लगे।
1: ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्तिगत सहायक हमारा हो, कोई पर्सनल असिस्टेंट हो।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा जी, तो AI को पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं, तो अब देखिए हर किसी के पास पर्सनल असिस्टेंट है, तो हमारा समय बच गया, अब समय बच गया तो अब यहाँ पर दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर समय बच गया तो उसमें आलस्य भी आ सकता है, लेकिन समय बच गया तो उसमें हम अपने दिमाग को एक्टिव रख करके कुछ नया भी कर सकते हैं,
1: ओरिजिनल
0: अपने
1: वर्क भी कर
0: अपने
1: सकते
0: अंदर जा करके
1: हैं।
0: अपनी ओरिजिनलिटी को ढूंढ के क्रिएटिविटी कुछ नई भी क्रिएट कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: वो
1: कहा
0: समझने
1: आपने।
0: की जरूरत।
1: एक ख्याल जो मुझे कई बार आता है कि अभी वर्तमान समय स्टूडेंट्स जो है AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम किताबों को पढ़ते थे और उनमें से नोट्स बनाते थे और फिर उनको कई बार रिपीट करते थे, जिससे हमारी समझ जो है बढ़ती थी। कई बार ये भी कहा जाता था कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं डेवलप होगी। जब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बुद्धि में जा भी रहा है, लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको। पर अभी तो ऐसा हो रहा है कि ना बुद्धि चलाना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। आप यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाल देंगे AI को तो वो आपको समराइज़ करके दे देगा कि भी इस 45 मिनट के क्लास से ये 5 मिनट का आप पढ़ लो तो आपको सब पता चल जाएगा। तो क्या इससे ये एक चुनौती नहीं है हमारी बौद्धिक क्षमता को?
0: जी ज़रूर, ये चुनौती तो है, क्योंकि और स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा खास करके मुश्किल है, क्योंकि जो लोग व्यवसाय में या फिर जॉब में कई सालों से हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा अनुभव, AI को अनुभव नहीं है, वो जानता है पर समझता नहीं है, और समझ अनुभव से आती है लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि अभी जो स्किल पढ़ रहे हैं उसमें भी प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़रूरत है तो
1: बिल्कुल
0: एक तो ये है कि AI का यूसेज क्यों बढ़ रहा है पहले ये सवाल पूछें AI का यूसेज इसलिए बढ़ रहा है कि जो कंपनीज AI बना रही हैं वो चाहती हैं कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वो उसको इसी तरह से बताते हैं कि एक तरह से उसका एडिक्शन भी हो जाता है ना क्योंकि वो आपको अच्छा महसूस कराते हैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये जवाब आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रोसेस है वो AI में ही ना चलता रहे AI ने जवाब दिया फिर आप उसको एक मिनट सोचें कि इसने क्यों बोला और ये आगे क्यों बोल रहा है और मुझे क्या करना है जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं बट उस इन्फॉर्मेशन को मुझे अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है या अगर मुझे कुछ टेक्नोलॉजी बनानी है तो मैं कैसे एक बार उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के थ्रू लेकर के जाएं और महसूस करें उसको क्योंकि वहां से फिर समझ आएगी तो यही
1: एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में यूज करें तो ज्यादा बेहतर है स्टूडेंट उसको रादर देन कि आप अपना एवरीडे ट्यूटर बना लें उसके बजाय रिसर्च सपोर्ट
0: जी जी हाँ ये है कि जो किताब को पढ़ने में 10 दिन लगे या 5 दिन लगे वो किताब 3 घंटे में उसका सारांश पता लग सकता है उसमें वैल्यू भी है लेकिन वो किताब जिस लेखक ने लिखी ऑथर ने लिखी है उसने जो महसूस किया उसकी कहानी उसमें निकल करके आती है शब्दों से तो अगर हमने AI का यूज करा तो हमने उसको बाईपास कर लिया तो वो जो विजडम है एक्सपीरियंस है जो हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें आता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा तो उसका एक अपना मजा भी है और उसका एक अपना एक्सपीरियंस
1: भी है
0: लर्निंग एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है तो हाँ आप उसी समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन किताब को पढ़ने की एक जो हैबिट है उसका अपना एक लर्निंग और ग्रोथ एक्सपीरियंस है वो तो नहीं छोड़ना चाहिए।
1: साइकोलॉजिकल या जैसे आध्यात्मिक वाला जो पक्ष है वो भी इससे कुछ प्रभावित होगा।
0: एक रीति से AI ने सब कुछ पढ़ा है तो उसने मेडिकल किताबें भी पढ़ी हुई हैं तो AI तो आपके लिए साइकोलॉजिस्ट बन सकता है उसको आप साइकोलॉजी वाले सवाल पूछ सकते हैं बट जैसे कि मैंने कहा आदत नहीं हो एडिक्शन नहीं हो और वो ख्याल रखना जरूरी है कि
1: डिपेंडेंट ना हो जाए।
0: हाँ डिपेंडेंट ना हो जाए। और दूसरा पहलू क्या बोला था आपने साइकोलॉजिस्ट के स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल तो AI में कॉन्शियसनेस तो नहीं है AI में आत्मा तो नहीं है क्योंकि हर इंसान का अपना अलग पार्ट होता है। हर इंसान समझता है कि मेरे अंदर कुछ खूबी है और मैं ये जीवन जी रहा हूँ अपना उस स्टेज तक पहुँचने के लिए उस लेवल तक पहुँचने के लिए। हर सबकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं तमन्ना अपने गोल्स होते हैं तो वो तो प्रिजर्व करके रखने चाहिए और अध्यात्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम असल रूप में अंदर से तरक्की करते हैं आगे बढ़ते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं वो स्थूल रूप से निकल के आता है। जैसे मैं ये भी बोलूँगा कि कई लोग सवाल कर रहे हैं कि हम अब प्रोग्रामिंग सीखें ना सीखें क्योंकि अब तो AI ही प्रोग्राम बना देगा तो मुझे क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी भी चाहिए। तो अब ये सवाल वैलिड है लेकिन इसका जवाब भी अपने अंदर जा कर के मिलेगा कि मुझे ऐसा क्या सीखना है आज जो मेरी स्पेशलिटी से मेरी खूबी से कनेक्ट करता हो जो मुझे आगे काम आएगा। तो वो सवाल तो AI भी नहीं बता पाएगा तो अध्यात्म उस रीति से हेल्प करता है। तो और दूसरा ये भी पहलू है कि AI इतना सारा काम कर रहा है तो अपनी देख रेख के लिए अपनी स्पिरिचुअल सस्टेनेंस के लिए अध्यात्म प्रैक्टिस करने के लिए तो और समय है तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल AI हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मैं समझता हूँ कि SI भी एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अगर हासिल करना है तो कहीं ना कहीं हमें खुद उसको अभ्यास के रूप में लाना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा
0: जी।
1: आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं?
0: जी मैं ब्रह्म कुमारीज संस्था को फॉलो करता हूँ। मेरे जो युगल हैं मेरे जो वाइफ हैं वो उनसे मुझे ये प्राप्ति हुई। मैंने 2009 में ब्रह्म कुमारीज का कोर्स पहली बार किया।
1: अच्छा।
0: और तब से लेकर आज तक टच में रहा हूँ पिछले 10 सालों से और उसको प्रैक्टिस को डीप किया तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने आप को समझ पाते हैं और रोज के बेसिस पे जो हम एक्शंस लेते हैं या सही या गलत नहीं दिखता या कभी किसी अपनी वजह से या कहीं और की वजह से कुछ जैसे आजकल इतना न्यूज़ में आता है उसकी वजह से कई बार अंदर जब इमोशंस आते हैं प्रभाव होता है तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो टूल्स देती है कि कैसे उसको सही पहलू से देख पाएं चीज़ों को और उन परिस्थितियों को देख करके उनमें जा करके कैसे परिस्थिति को समझ भी पाएं और उससे प्रभावित ना होकर के उल्टा अपने आप को और आगे बढ़ाएं। तो जैसे मैं एग्जांपल जो समझता हूँ, हम जिम जाते हैं, फिटनेस सेंटर जाते हैं, हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं ना, तो स्पिरिचुअल भी एक एक्सरसाइज है, परिस्थितियाँ एक एक्सरसाइज है हमारी अध्यात्म के लिए, हमारे अंदर खूबियों को बढ़ाने के लिए। तो हर परिस्थिति मौका देती है कि हम उससे एक्सरसाइज करके और मसल्स बढ़ाएं, वनस्पत की चोट लगे या हम इंजर हुए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वो पर्सपेक्टिव देता है, वो नजरिया।
1: कई बार ये देखने में आता है कि व्यक्ति पढ़ाई तो काफी सारी कर लेता है, दुनिया में जो भौतिक प्रगति है वो भी कर लेता है, रिसर्च कर लेता है, पोस्ट मिल जाती है, लेकिन जब ये वाली बात आती है, कुछ परिस्थिति आ जाती है व्यक्तिगत जीवन में, रिलेशन में, जॉब में या हेल्थ में, तो एक टूट सा जाता है। तो उस समय अक्सर कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये पढ़ाई काफ़ी थी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आपके जीवन में ये मैं देखने में मुझे आ रहा है कि आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, और कई बार लोग उसको काफ़ी लॉजिकल नज़रियों से देखते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं एज ए इंजीनियर, तो लोग उनको देखते हैं कि ये लॉजिकल बंदा है, ये साइंस पर विश्वास करता है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन ये कहीं थोड़े से मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, आसपास साथ साथ चलते हैं, तो तब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा साइंस वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी पर क्यों जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि आपने IIT दिल्ली से पढ़ाई की मैकेनिकल इंजीनियर, और वर्तमान समय भी टेक्नोलॉजी वाइज आपने काफ़ी चीज़ों को पिछले एक दो दशकों से देखा है करीब से, तो ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस में क्या मेल जोल है?
0: देखिए, साइंस में हम जब साइंस पढ़ते भी हैं तो सबसे पहली चीज़ करते हैं हम, जब हम सुबह हम कुछ नया इक्वेशन पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, फिर दोपहर को लंच के बाद जाके उसका प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि जो हमने सुना है वो सच में है भी या नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही करते हैं
1: जी।
0: हमने जब शुरू शुरू में स्पिरिचुअल अध्यात्म को समझा, उसको जाना, या ये समझा कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, या समझा कि हमें अपने को परिस्थिति से अलग रख के देखना चाहिए, तो हमने कहा ऐसे कैसे, तो हमने उसका प्रयोग करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। तो जब प्रयोग किया कि हम जैसे किसी से बात वार्तालाप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम सीखते हैं कि जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ बातों से नहीं होता, वो दृष्टि से भी होता है, वो जो हम सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में उससे भी होता है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ हम सोचे कुछ इस एक तरीके से और बात अलग तरीके से करें। तो हमने इसमें बहुत प्रयोग करे कि बार हमने जब किसी से मिलने गए तो कोई थॉट क्रिएट नहीं किया, न्यूट्रल जस्ट जाके उनको बोला कि मिलना चाहते हैं। फिर दूसरी बारी में हमने उन्हीं व्यक्ति को बहुत सकारात्मक दृष्टि से उनको बोला कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा उस समय पर सेल्स का रोल था कि, और जब भी कोई सेल्स का व्यक्ति आपसे बात करना आता है तो कोई बात नहीं करना चाहता ना, क्योंकि सेल्स में तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो हमने बोला कि हम अपना जॉब कर रहे हैं, हमने ऐसा सोचा, और उनको एक तरह से वाइब्रेशंस भेजी कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं कल, और हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमारी कंपनी ने हमें जॉब करने के लिए बोला है, हम आएंगे जॉब करेंगे आपसे, आपसे जानना पहचान हो जाएगा, अगर कुछ निकल के आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको कुछ मदद कर पाए तो हम जरूर करेंगे। ऐसा हमने सोचा, बोला नहीं, बोला तो वही जो औपचारिक रीति से बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब उनसे मिलने गए तो फिर वो अच्छे से खुल के मिले, वही जो पहले नहीं मिलते थे, और अच्छे से बात भी करी। तो हमने सो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेरिमेंटेशन कॉमन है, तो अगर हम वो प्रयोग की थीम को अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर दोनों ही हैं, साइंस को भी हम प्रयोग से समझते हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी हम प्रयोग से समझते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से, और मैं समझता हूँ कि समझ में आने वाले उदाहरण के द्वारा आपने बताया कि कैसे प्रयोग करना जरूरी है, खाली जानना या समझना काफ़ी नहीं, कि साइंस की किताब मैंने पढ़ ली तो वो एक्सपेरिमेंट मेरे जहन में उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता को हम जब नॉलेज के रूप में सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो उसका बेनिफिट हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन आपका प्रारंभ हुआ, उसका पहले का जीवन भी आपके सामने है और वर्तमान जीवन आपके सामने, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया?
0: सो चीज़ों को सही दृष्टिकोण से समझने की एक कला जो है वो आ जाती है, और एक जब हम अध्यात्म में प्रैक्टिसेस में जाते हैं और उसको डिसिप्लिन तरीके से करते हैं तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, अपनी समझ आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक स्थिरता आती है। और जैसे अपने अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि सबके अंदर एक खूबी होती है, एक बीज होता है, तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उसको सींच सकते हैं, तो वो ब्रीज ग्रो करता है, सैपलिंग बनता है, फिर छोटा पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है. तो जब वो अंदर अपने ग्रो होते हुए बढ़ते हुए उसको देखते हैं तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है. तो ये डिफरेंस फील
1: महसूस
0: होता
1: किया
0: है,
1: आपने?
0: क्योंकि फिर जब वो पौधे से पेड़ बन जाता है, पेड़ पे हवा चले, बारिश आए, आंधी तूफान आए, तो पेड़ तो स्थिर रहता है, टिका रहता है ना. तो जितना अपने आप को अंदर स्थिर और सक्षम करते जाते हैं, उतना फिर परिस्थितियों से, अलग अलग तरह के इंसानों से, और जो जो भी जीवन में आता है हमारे सामने, उसको उससे डील करने का तरीका आ जाता है. ऐसे भी नहीं कि पीछे हटना है. अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि पीछे हट के बैठ जाना है, क्योंकि हमें परिपक्व बनने के लिए फेस तो करना पड़ेगा, जाके उनका सामना करना पड़ेगा. लेकिन वो सामना में नज़रिया क्या है कि हमने अपने आप को बढ़ना है, सिचुएशन को ठीक करना है और उसको इम्प्रूव करना है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है.
1: बहुत अच्छा, आपके जो विचार हैं या दृष्टिकोण है उसको समझ करके भी काफ़ी खुशी हो रही है कि किस प्रकार से आप जीवन को देखते हैं, उसको सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से ना देख करके उसमें आध्यात्मिक एंगल ऐड करने के द्वारा वो जीवन कैसे खूबसूरत हो सकता है। परिस्थितियाँ वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, चुनौतियाँ भी शायद वही रहती होंगी, लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी के साथ जब हम उसको फेस करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जीवन में वो चुनौतियाँ जो हैं वो पेन नहीं पैदा करती बल्कि एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है।
0: जी
1: तो जैसे कि आप दोनों एक यंग कपल हैं और पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा समय से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, लेकिन कई बार युवा इसको अलग रीति से देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा धार्मिक एंगल देते हैं या स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, और कई लोगों को लगता है कि एक एज आने के बाद में इसके करने की आवश्यकता है, अभी तो हम यूथ हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में क्या आपकी समझ कहती है?
0: ये भी एक हमारी प्रैक्टिस रही है, क्योंकि हम जिस परिवार में थे, जिस परिवार में बड़े हमारे बड़े बूढ़े भी एक समय के बाद जैसे संन्यास का रास्ता उन्होंने अपनाया, तो हमें शुरू से लगता था कि हमें उस तरफ इवेंचुअली जाना है. लेकिन जब हम ब्रह्म कुमारी इसके टच में आए और हमें समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म कहीं अलग से बैठ करके प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, ये तो जहाँ पर आप खड़े हैं और वहीं पे खड़े खड़े इसको प्रैक्टिस करना है, तो फिर हमने ये सोचा, इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि कैसे हम अपनी जॉब को, अपनी पारिवारिक लाइफ को, मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेट करें, क्योंकि चुनौतियां तो वहीं पर आती हैं, परिस्थितियां तो वहीं पर आती हैं. तो मेरे लिए तो यही रहेगा कि कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी डील करने की. जिस काम को करने में 5 घंटे लगेंगे स्पिरिचुअलिटी से, स्थिरता से, वही काम 2 घंटे में हो जाएगा. या फिर आप 4 तरह की चीज़ें करके आपको पता लगेगा कि सही क्या था उसमें से, तो वो जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि अपने आप से कनेक्शन बेटर हो जाता है और उसकी रीति हम जल्दी आगे बढ़ पाते हैं. तो युवा एनर्जी तो फिर युवा एनर्जी है, और उस एज में हमारे पास बहुत टाइम भी होता है, समय भी होता है, और पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं. तो बट कहीं ना कहीं लोग जूझते रहते हैं, चाहे करियर में क्या पिक करें, या आगे जॉब कौन सा करें, या फिर पढ़ाई कौन सी करें, या फिर जीवन साथी है. तो अध्यात्म इन सबको सही रीति से देखने का,
1: स्पष्टता देता है,
0: हाँ, स्पष्टता देता है, मौका देता है.
1: क्लैरिटी क्रिएट करता
0: बट
1: है।
0: अगेन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस और समझने और अनुभव करने की बात है ये, क्योंकि धर्म में कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, जैसे हम भी बचपन में हमारे पेरेंट्स जो तो करते थे, हम उनको फॉलो करते थे, ये करना है, जानते नहीं थे क्योंकि, बट उनके लगाव में या जैसे भी जो भी सही रीति रिवाज होते हैं, हम वो करते हैं, जानते नहीं हैं क्यों कर रहे हैं. लेकिन अध्यात्म में ये हमें बताया जाता है कि जो भी आप करें अपने समय के साथ, वो जान समझ के करें, उसे एक्सपीरियंस करके करें, और सही लगता है तो करें. तो ये बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम अध्यात्म और धर्म को एक
1: आंख
0: तरह
1: मूंद
0: से,
1: के फॉलो नहीं कर रहे हैं,
0: हाँ
1: जो चीज़ें हैं उस सामने हैं, स्पष्ट हैं,
0: जी
1: पहले उसको समझें, फिर
0: जी
1: प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ अभ्यास करें,
0: जी
1: और जैसे उसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं सफलता मिलती जाएगी।
0: जी
1: तो बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवाओं के लिए कि कैसे आध्यात्मिकता को किस दृष्टिकोण से अगर वो देखेंगे तो उन्हें इसे अपनाने में मदद मिलेगी।
0: जी
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष मुलाकात, और आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं अभिषेक कालरा जी। आप वर्तमान समय यूएसए में रहते हैं पिछले 10 वर्षों से, और एआई फील्ड में जो एक कंपनी काम करती है उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और आपने अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की, चाहे आप पढ़ाई जो कर रहे थे उसके बारे में बताया, जहाँ अलग अलग देशों में अपने अपने कारोबार जहाँ पर किया उसके बारे में थोड़ी थोड़ी धारणाएं दी, और एआई के फील्ड में आपकी कंपनी कैसे काम करी वो भी बताया, और साथ साथ एक हमारे दोस्त कैसे एआई को अपना सकते हैं और एआई की क्या चुनौतियां हैं और क्या विशेषताएं हैं उन पर बातचीत की। फिर आपने आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में बताया कि कैसे आध्यात्मिकता का अवेयरनेस है, अवेयरनेस को अगर हम प्रैक्टिस के रूप में रखते हैं तो वो हमको स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी लेके आती है हमारे को, ताकि हमको बेटर डिसीजन मेकिंग करने में एक मदद मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप रेडियो मधुबन पर जुड़े। जाने से पहले एक और आखिरी संदेश आपसे सुनना चाहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मंच से।
0: उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अपने आप पर विश्वास रखें। कई बार समय ऊपर नीचे होता है, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, लेकिन एक फर्क रखें जो आप देखते हैं परिस्थिति में, उसमें झट से जाने के बजाय हल्का सा फर्क रखें, सोचें समझें, फिर उस पर आगे चलें। बाकी तो सब अच्छा ही है, सबके साथ अच्छा ही होता है, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं। तो यही कहना चाहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, आज आप रेडियो मधुबन पर पधारे और अपने जीवन के अनुभवों को हमारे दोस्तों से साझा किया, और भी कभी मौका लेंगे जब आपसे और भी अनुभवों को हमारे दोस्तों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मोनिका जी। आप एक फैशन डिजाइनर हैं दिल्ली से, लेकिन रहते अमेरिका में हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। वर्तमान समय में आप एक स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हैं, यानी कि आध्यात्मिकता को अपनी आर्ट के माध्यम से दुनिया को कुछ संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश क्या है और वो प्रेरणा वो कहाँ से लेती है और उस आर्ट के द्वारा क्या संदेश दे रही है, चलिए जानते हैं और बातचीत करते हैं। उससे पहले हम स्वागत करते हैं मोनिका जी को आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में। नमस्कार मोनिका जी।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: सो भारत में जन्मे, भारत में पले पड़े और अभी आप वर्तमान समय में अमेरिका में हैं और वहाँ पे भारत की आध्यात्मिकता को रंगों के द्वारा उस दुनिया में फैला रहे हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक लगता है ये सब चीज़ें सुनने में। करते हुए आपको कैसा महसूस होता है और ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी?
1: हमारी जर्नी ये 2017 में शुरू हुई, जब आध्यात्मिकता के बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। तो ये एक अटेम्प्ट था कि जो अनुभव अंदर हो रहे हैं उनको हम एक्सप्रेशन में पेपर पे कैसे उतारें, कैनवस पे कैसे उतारें। और ये जर्नी ऐसे ही शुरू हुई कि इसको हम अपने अंदर की जो हमारी स्थिति थी या जो खुशी या जो शांति अनुभव कर रहे थे उसका एक बहुत प्रेरणा हुई कि इसको हम कैनवस पे उतारें। और एक और जो संकल्प आया कि अगर हमें इसको बनाते हुए इतनी खुशी हो रही है तो जो उसे देखेगा उसको भी उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि हम कोई भी कार्य जिस स्मृति से करते हैं उसमें एक वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन उस कार्य में कैप्चर हो जाता है। जैसे कि कभी हम किसी से मिलते हैं और चाहे हम कोई शब्द या कोई हमारी वार्तालाप ना भी हो, पर जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, मतलब कि जो हमारी स्मृति होती है या हमारे मन अगर शांत है तो सामने वाले को वो शांति का अनुभव होता है और वो बोलता है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, चाहे कोई एक्सचेंज भी ना हो, कोई वार्तालाप या आपने कोई बात भी नहीं की हो। तो ऐसे ही कर्म के लिए है, अगर आप कोई भी कर्म उस कॉन्शियसनेस या उस स्मृति में करते हैं तो वो जैसे कि वो कर्म में जो आपने जो बनाया जिस स्मृति से, वो वाइब्रेशन उस कर्म में जैसे रजिस्टर हो जाती हैं। और हम एज एन आर्टिस्ट हम बहुत गैलरीज, बहुत म्यूजियम देखे, यूके में भी पहले रहते थे, यूरोप में, तो दुनिया भर के हमने लूवर म्यूजियम्स देखे हैं। तो ऐसा लगता था कि जो कला है वो आज की जो दुनिया की जो हालत है वो व्यक्त करती है ना, स्पेशली कंटेम्प्रेरी आर्ट। और ज़्यादातर जगहों पे 1800 से आगे की आर्ट लगी हुई है, तो बहुत ही ना हर जगह म्यूजियम से बाहर आके अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि बहुत दुख है, दर्द है। तो ये फिर धीरे धीरे नेचुरली एक लक्ष्य डेवलप हुआ कि इसके द्वारा लोगों को खुशी और शांति का अनुभव कराया जाए। अगर हम अपनी इस स्थिति में इस कला को बनाएंगे तो लोगों को भी यही अनुभव होगा।
0: और इट इज सो थॉटफुल कि जब भी हम किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी विचारों में बहुत क्लैरिटी रखता है। आर्टिस्ट तो लगभग वही होता है जिनके पास वो क्या सोच रहा है उसको एक कागज़ में लिखने का या फिर उसको कैनवास में रंगों के द्वारा बताने का एक माध्यम है, मतलब उसको एक कॉन्सेप्ट है, उस स्टोरी का क्लैरिटी है और वो विचारों को वो जी रहा है, तभी फिर वो ऊर्जा भी बनती है। जैसे आपने कहा कि जब भी आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, तो फिर उस समय वो क्या सोच रहा था और क्या सोच करके उस चीज़ को बनाया है और वो उस कमरे के माहौल भी वैसी तरीके से बनी होती है। जैसे आप एक फैशन डिज़ाइनर से आर्टिस्ट बने हैं तो हम सबसे पहले वो कहानी जानना चाहेंगे कि हम पहले ऐसे मतलब आपने इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया लाइफ में?
1: बचपन से ही ये हम एक बहुत यूनिक चाइल्ड थे ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ बहुत इंटरेस्ट था और बहुत क्यूरोसिटी थी, बहुत क्वेश्चंस पूछते थे जो भक्ति करते हुए देखते थे या मंदिर में जाते थे, तो बहुत इंटरेस्ट था। तो हमारे पेरेंट्स जब ब्रह्मा कुमारीज में आए तो जैसे कि हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए, तो एक जैसे क्लैरिटी तो मिलना शुरू हो गई थी, पर हम काफ़ी यंग थे तभी, तो करियर तो साथ साथ पैरेलल जैसे हमारा चल रहा था, ये दो दुनिया चल रही थी, पर अंदर में खिंचाव एक बहुत था कि जैसे कह सकते हैं ना कि कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो हम उस एक कैटेगरी में आते हैं जो परफेक्शनिस्ट हैं, जिनको टेबल पे सामान आजकल उसके लिए ओसीडी टर्म होता है, बट नॉट इन दैट मैनर, बट हमें सब कुछ बहुत सुंदर और एक्यूरेट, वो एक अंदर में बहुत भावना हमेशा से रहती थी, पर स्पिरिचुअलिटी में हमने आध्यात्मिकता में समझा कि एक्चुअली अंदर सब कुछ परफेक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो एक ऐसा नहीं कि एकदम एक दिन कुछ हुआ, तो अंदर अंदर जैसे मन बुद्धि में वो एक जैसे आपका पार्ट है दुनिया में, तो वो आपको जैसे खींच रहा है, जैसे आप उस पर बस स्टेप रखते जा रहे हैं, तो उस कहेंगे समय था, और ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन में कुछ हुआ ऐसे, पर अंदर से ही लगा कि अभी ये हमें ये करना है, एक जो एक पर्टिकुलर मोमेंट हम बता सकते हैं कि आध्यात्मिकता से कनेक्टेड तो थे ही, पर हम जब पहले यूके में थे और यूके से जब हम यूएस से मूव हुए, तो हम दो सूटकेस लेके मूव हुए क्योंकि हमारा सामान मूव नहीं हो सकता था उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट, बहुत हल्का कि अभी मेरे पास सारा समय है एकांत में जाने का और एक बहुत शांति का अनुभव करने का, क्योंकि बहुत एक्सपेंशन था यूके में, बहुत फ्रेंड्स थे, बहुत आउट एंड अबाउट थे, तो उसने हमें बहुत अच्छा मौका दिया एक अंतर्मुखता में जाने का, और बहुत अच्छे अनुभव हुए, तब वैराग्य आना शुरू हो गया, लगा कि ये बहुत आउटवर्ड इंडस्ट्री है, और पैरेलल में आध्यात्मिकता के बहुत अच्छे अनुभव भी हो रहे थे, तो बहुत खुशी और बहुत शांति का अनुभव और एक अलौकिकता का अनुभव, बहुत ही अच्छे अनुभव हो रहे थे, तो तब जीवन का एक निर्णय कर लिया कि ये तो हमें इसी पे ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है।
0: मतलब फैशन इंडस्ट्री में आपको एक्स्ट्रावर्टनेस इतना जो आनंद नहीं दे रहा था, वो आपको जब उससे आप दूर हुए और आपके लाइफ में जब स्पेस मिला, तो आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन में आपको मदद किया कि खुद को समझने के लिए कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा आनंद आ रहा है और आपको अभी क्या करना है
1: आगे? जी, क्योंकि जो भी अचीव करना चाहते थे उस फैशन इंडस्ट्री में वो कर चुके थे। हमारा अपना एक ब्रांड था जो काफ़ी बुटीक्स में जाता था, और जो भी प्रसिद्धि जो भी चाहते थे वो सब कुछ जैसे मिल चुका था, तो और समझ भी रहे थे अंदर कि क्या इम्पोर्टेंट है जीवन में, क्या ये खुशी देता है, तो वो एक डिसर्नमेंट, एक निर्णय शक्ति भी काम कर रही थी, तो ये
0: ब्यूटीफुल। सो मनिका जी, जैसे आपने कहा कि आप जब आर्ट करते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि स्पिरिचुअल डायमेंशंस में उसका आर्ट करें और कोई कॉन्सेप्ट से लोगों को एक संदेश दे, तो ऐसा क्या चीज़ है आप करते हैं ओवर, आई मीन लाइक आर्ट एग्जीबिशंस, इन सभी चीज़ों में तो कोई ना कोई थीम होता है और हर एक आर्टिस्ट का अपना एक नेचर या फिर एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो समाज को कुछ बताना चाहता है अपनी लकीरें और रंगों के द्वारा, तो आप क्या ऐसा मैसेज देते हैं आपकी आर्ट एग्जीबिशन से, और कैसे आप उस मैसेज तक आते हैं अपनी प्रोसेस में, हाउ डू यू डेवलप दोस कॉन्सेप्ट्स?
1: जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो ही स्टडीज पे इंस्पिरेशन उसी से ही आता है, तो मोस्टली इंस्पिरेशन हमें स्टडी जो हमारी
0: स्पिरिचुअल नॉलेज
1: की जो क्लास है उसी के दौरान आता है, फिर उसको फर्दर डेवलप करते हैं, जैसे किसी डिज़ाइन प्रोसेस में होता है कि उसको थोड़ा सा आपने रफ स्केच किया, थोड़ा लेआउटिंग की, मूड बोर्ड बनाया, फिर उसके साथ हमारा एक एडिशनल प्रोसेस ये होता है कि हम उसे एक डिवाइन गाइडेंस पे भी करते हैं कि उसको एक साक्षी होके देख के एट द सेम टाइम जो डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है उसके बाद फिर उसे उस लेवल पे इवैल्यूएट करते हैं, पहले उसे डिवाइन कॉन्शियस पे इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसे जो प्रैक्टिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग है डिज़ाइन की उस पे उसे इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसका एक रफ प्रोटोटाइप बनाते हैं उसे कैनवस पे पुट करने से पहले, जो कि कभी आईपैड डिजिटली बनाते हैं या कभी नोट पैड किसी पे भी बन जाता है. फिर उसके बाद उसे जब हम शुरुआत करते हैं, अगेन एक डिवाइन कॉन्शियसनेस को टुगेदर रख के ही करते हैं, और उसी प्रोसेस में कोशिश रहती है कि उसी कॉन्शियस में रह के उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें. पर जैसे कि बताया कि ऐसा नहीं है कि आप एक सब कॉन्शियस स्टेट में हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस स्टेट. इसकी पूरी प्लानिंग भी होती है किसी भी आर्टवर्क को करने से पहले, कि कौन सी लेयर को पहले करेंगे, कौन सी लेयर को सेकेंड करेंगे, कितने दिन का गैप देना पड़ेगा, कौन से कलर्स, कितनी डेंसिटी. एक विजन पहले बहुत क्लियर होना जरूरी होता है, फिर उसको क्रिस्टलाइज करके टुकड़ों में बांट के किसी भी पेंटिंग को, फिर एक के बाद उसके स्टेप्स पूरे करते हैं. और वो जब बन भी जाती है, उसके बाद एक जो लास्ट स्टेप रहता है कि उस पेंटिंग को हम अपने सामने रखते हैं अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि बाद में जो आपको रिफाइनमेंट के लिए थॉट्स आते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. कि जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तब तो आप उस प्रोसेस में हैं, एक कर रहे हैं, पर अंत में आप उसको पूरा इवैल्यूएट कर सकते हैं.
0: बहुत अच्छा. सब रंग वही है, लकीरें वही हैं, लेकिन एक कलाकार उसको करते हैं, वो एक चित्र बन जाता है, लेकिन हर किसी का वो नहीं बनता है. और दूसरी बात यह है कि उसमें एक प्राण भी होता है. ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है जो बच्चे हैं या जो जिसको हम आर्टिस्ट नहीं कह सकते हैं, उनकी लकीरों में और उनकी रंगों में, और एक आर्टिस्ट जब लकीर खींचता है और रंग भरता है उसमें एक जान आ जाती है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ चेतना की बात है, तो जैसी चेतना वैसा एक्सप्रेशन. आर्टिस्ट उसे कलर के द्वारा व्यक्त करता है, कोई कुकिंग के द्वारा व्यक्त करता है, कोई अपनी राइटिंग के द्वारा, तो सब कुछ चेतना पे ही डिपेंड है. तो जैसी हमारी चेतना होगी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने स्टडी नहीं किया है आर्ट, पर अपने आप जैसे आपको एक ना इंस्टिंक्ट आ जाती है, इंट्यूशंस आ जाती है. जैसे कि मैं बहुत एंजल्स बनाती हूँ, फरिश्ते, तो फरिश्ते बहुत सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो एक इंट्यूशन आ जाती है कि वो सटल चीज़ में आप कौन सा ब्रश लें, कितनी डेंसिटी रखें, किस तरह से वो आप जो विजन देख रहे हैं वो व्यक्त में होगा. तो सब कुछ चेतना पे है. कला तो इंट्यूटिव है, टेक्निक तो बहुत ईजिली सीखी भी जा सकती है, और आपको टचिंग्स आपको मिलते भी रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा, जैसे एकाग्रता बढ़ेगी पता लगता रहेगा कि अब क्या स्टेप ले, पर चेतना ज्यादा विशेष है मैं समझती.
0: मतलब जैसे महान कवि ने कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो, तो जो रचयिता है वो परमात्मा ये कहे या निराकार कहे, जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया है, तो फिर उनकी याद में जब आप करते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही एनर्जी फ्लोट होती है. ब्यूटीफुल. सो मोनिका जी, आप अभी अपनी आर्ट एग्जीबिशंस करते हैं, तो किस प्रकार की थीम्स के ऊपर आर्ट एग्जीबिशंस करते हैं आप?
1: स्पिरिचुअलिटी में भी हम काफी वैरायटी थीम्स करते हैं. जैसे कि एक थीम हमने की थी सोल कॉन्शियसनेस पे, जिसमें हमने एक दृष्टि सीरीज की थी. तो दृष्टि मतलब
0: कि नजरिया
1: सिर्फ आपकी आंखें नहीं, आंखों में आपकी जो नजरिया है वो भी, और वो एक वर्चूस पे थी, जो आत्मा के गुण है. तो हर एक दृष्टि एक गुण को दर्शाता था.
0: मतलब तो, अगर माँ का प्यार है तो उसमें बहुत ही सॉफ्टनेस होता है,
1: सॉफ्टनेस.
0: अगर दुर्गा की आंखें है तो फिर उसमें थोड़ी सी
1: जी
0: गंभीरता भी होगी, शक्ति भी होगी
1: जी. तो ये पूरी एक सीरीज की थी जिसमें सिर्फ दृष्टि दिखाई थी. ऐसे और भी बहुत अलग तरह तरह की डीप स्पिरिचुअलिटी की भी सीरीज हमने की है. अभी जो रीसेंट हमारा काम है, जिसको हमने 2 साल तक किया और पिछले साल लॉन्च किया है, उस काम का नाम है रोजरी ऑफ विक्ट्री. उस सीरीज का नाम है विजय माला. तो वो सीरीज एक सेक्रेट ज्योमेट्री स्टाइल पे है, जो कि एक बहुत पुराना भारत का ही एक आर्ट स्टाइल है, बट वो बहुत मैथमेटिकल होता है, ज्योमेट्रिकल होता है. तो उसमें हमने जो आत्मा विजयी आत्मा होगी, मतलब उनकी अंदर की चेतना विजयी होगी, फिजिकल सक्सेस नहीं बट इंटरनल विक्टोरियस होंगे, तो उसका हमने उनके चरित्र दिखाए हैं सेक्रेट ज्योमेट्री स्टाइल से. और ये सीरीज जो है रिसेंटली एक्नॉलेज्ड हुई है हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में, बॉस्टन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्कूल है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक्नॉलेज हुई और भी काफ़ी जगह इस सीरीज़ को एक्सेप्टेंस मिली है. तो पिछले पूरे साल हमने उसको एग्जिबिट किया डिफरेंट जगह पे, और पीस विलेज रिट्रीट सेंटर जो न्यूयॉर्क में है वहाँ पे ये फुल सीरीज़ एग्जिबिटेड है. तो अभी हमारा ये कार्य चल रहा है इस सीरीज़ को ही डिफरेंट जगह पे ले जाना, और अभी हम एक और सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि शक्तियों पे है, जो कि होपफुली हम इस साल प्रत्यक्ष होगी.
0: जैसे आप शक्तियों की बातचीत करते हैं, दुनिया में भी पावर्स को लेकर के अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हैं. जैसे हम अगर वेस्ट में देखते हैं तो उनको एवेंजर्स के रूप में दिखाते हैं, किसी के पास विजन का पावर है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास स्पीड का बल है. ऐसे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर्स में. और वही चीज़ अगर हम इंडिया में या भारत में देखते हैं, उसको पांडव या फिर यू नो गॉड्स एंड गॉडेसेस के रूप में दिखाते हैं. तो आखिर ये पावर्स क्या है? जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन में इन चीज़ों को दिखाते हैं, तो व्हाट इज दिस पावर्स और उसका आप एक्सप्रेशन कैसे देते हैं?
1: हमारे हर गुण एक शक्ति है. तो किसी भी गुण को हम कार्य में लाएंगे, और अगर लाते लाते वो हमारा संस्कार बन गया है तो वो एक शक्ति है. जैसे कि अगर हमारे में प्रेम का गुण है और हम हर इंटरेक्शन में किसी भी संबंध संपर्क में आते उस प्रेम के गुण को यूज़ करते हैं. ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहां आपको लगेगा कि हम क्यों प्रेम यूज़ करें, हम क्रोध क्यों ना यूज़ करें, पर आपको प्रेम अच्छा लगता है कि आपका नेचर ही प्रेम स्वरूप है तो आप प्रेम यूज़ करते हैं. तो वो प्रेम आपकी शक्ति है. अब कोई ये स्थूल चीज़ तो नहीं है प्रेम, जिसको दुनिया में हार्ट बना देते हैं, एक दिल की शेप दे देते हैं, बट ये बहुत अंदर की भावना है. तो हम तो ऐसे समझते हैं कि कुछ भी पेपर पे उतारने से या कैनवस पे उतारने से पहले आपको उसका अनुभव, विशेष अनुभव में रहना, उसको उसका मनन करना, उसका एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आप कुछ बनाएंगे भी तो उसका वो अनुभव नहीं होगा जो देखने वाला होगा. तो जो स्टाइल है हमारा यूजुअली वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, फोकस अनुभव पे रहता है. जैसे कि अभी मैंने सेक्रेट ज्योमेट्री बोला, वो एक स्टाइल है. एक हमारा जो स्टाइल रहता है वो थोड़ा मॉडर्न भी रहता है, और कुछ में एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट रहता है. तो डिफरेंट स्टाइल में उसका एक्सप्रेशन करते हैं.
0: सुंदर. सो जैसे आपने कहा कि आपकी जो आर्ट एग्जीबिशंस है वो ऑक्सफर्ड में भी वो कॉन्सेप्ट्स को एक्नॉलेज किया गया है. यूरोप में खास करके हम देखते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, एक तो भगवान को मानने वाले हैं और दूसरा भगवान को नहीं मानने वाले. और हर किसी की समझ या भारत के नज़रों से देखते हैं तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है भारत में बहुत ही डिफरेंट है. सो वेस्टर्न कल्चर्स में या विदेशी देशों में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो भारत की भक्ति का है या अध्यात्म का है वो इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं. लेकिन ऐसे में आपने एक आर्ट के द्वारा भारत की कल्चर को अपने या भारत की आध्यात्मिकता जो सबसे रिच है, जिसके लिए भारत को भी जाना जाता है, कैसे आपने रिप्रेजेंट किया जिसे उनको भी उस चीज़ की अनुभूति हुई और उन्होंने भी उस चीज़ को स्वीकार किया?
1: अगेन मैं यही कहूँगी कि आप जो खुद होते हैं आपके चरित्र ही ज़्यादा अनुभव करा सकते हैं. मान्यता तो सबकी होती है और उसको चेंज होने में भी थोड़ा समय लगता है, पर एक बात को तो सभी मानते हैं कि जो भगवान है वो ऊँचे से ऊँचा है. और कोई भी जब दुखी होता है तो उनके अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस कोई भी होगा, पर वो याद तो भगवान को ही करता है. और जहाँ से जब आत्माओं को वो वाइब्रेशंस मिलती हैं इंटरैक्शन में आते हुए, आपके जो चरित्र हैं वो ही उन्हें अनुभव कराते हैं. आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी जो हमने नोट किया कि आपका जो व्यवहार रहता है उससे वो बहुत इंस्पायर होते, उसको वो बहुत देखना चाहते हैं. नॉलेज अगर आध्यात्मिकता में तो वो धीरे धीरे, जो ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है और इसकी जो डेप्थ को समझने में भी थोड़ा समय लगता है, बट वाइब्रेशन सब कैच कर पाते हैं तो उससे उनको कि अगर भगवान होगा तो उसके बच्चे कैसे होंगे, तो उनको वो अनुभव।
0: बहुत सुंदर। सो मोनिका जी, हम कितना भी बात करें, जब तक हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं और वो अलग ही होती है। लेकिन हम अंत में आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आजकल मॉडर्न जमाने में हो सकता है जब आप आर्ट करना शुरू किया उस समय कॉन्टेम्प्ररी आर्ट या मॉडर्न आर्ट था जो ट्रेडिशनल आर्ट से बहुत हटके है, फिर भी आपके हाथ में एक ब्रश और कलर्स का पैलेट था। वर्तमान समय में तो सिर्फ माउस है, उसी से सब कुछ हो जाता है
1: जी।
0: और आजकल और भी एडवांस ये हो गया है कि आप बस इंस्ट्रक्शन दो कि मेरे को ऐसा चित्र चाहिए और वो बन जाता है। मतलब इंसान की क्रिएशन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक रह गया है और वो अपनी थॉट प्रोसेस को गहराई में जा कर के उसको समझ के उसको एक रूप देना वो शायद भूल गया है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ऑटोमेशन की दुनिया आई है वो ओरिजिनलिटी को ढकते जा रही है और उनके अस्तित्व को चैलेंज करते जा रही, क्योंकि ये इंस्टेंटली बन जाता है चीज। ऐसे में एक आर्टिस्ट को सोचना करना क्यों जरूरी है? और दूसरा, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस भीड़ में, कि आपको लगता है कि अभी भी आपके जैसे जो आर्टिस्ट है सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं?
1: हमें तो ऐसा लगता है कि जो ऑथेंटिसिटी पे है वो ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आर्ट हिस्ट्री देखेंगे तो जो हमारी आर्ट है वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि उस समय दुनिया की हालत क्या थी। और जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है वो बहुत मैथमेटिकल है, वो प्रीवियस फैक्ट्स को ज़्यादा देखता है क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है, बट एज अ ह्यूमन बींग हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत आपको जैसे ना बोरिंग लगने लग जाती है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं लगती और वो आपको वो एक्सपीरियंस भी नहीं देती है। तो ऑथेंटिसिटी की बहुत वैल्यू रहेगी क्योंकि, और दूसरी बात जैसे कि जो मैंने बहुत बार बोला अभी इस इंटरव्यू में, कि वाइब्रेशंस जो हैं, जो आपके कर्म से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो AI वाली आर्ट में आपको नहीं आएंगी। अगर आप डिजिटल आर्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि वो भी आप बना तो या तो आप डिजिटल पेन से बनाएंगे या माउस से बनाएंगे, उसमें भी एक भावना है जो आप अनुभव कर रहे हैं ना, वो आप ही अनुभव करेंगे। तो इसको काम की तरह नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह अगर आप करेंगे तो दुनिया भी वही एक्सपीरियंस करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट इस समय पे, कि ऑथेंटिसिटी को, अपनी जो आपकी रियलिटी है उसको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि ये एक होप है दुनिया के लिए, लाइव एक्सपीरियंस को भी वो अनुभव कर पाए, जो कि कंप्यूटराइज नहीं है, जो एक इंसान ने, चेतना ने, एक जीव, एक उसमें प्राण शक्ति है, उससे बनाया हुआ है।
0: बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मोनिका जी। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए और हमारी जो श्रोता है उनको एक कलाकार और उनकी जो सोच और उनके काम क्या होता है और वो कैसे करता है उसका आपने परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए जी। थैंक यू कृष्णा जी। ओम शांति।
0: दोस्तों, ये थे मोनिका जी, जो फैशन डिजाइनर से एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बन गए हैं और अभी अब अपनी आर्ट के द्वारा दुनिया को कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं, खुद को जानने का, समझने का और अनुभव करने का। ऐसे ही अनुभवों को सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 2। एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: नमस्ते दोस्तों,
1: पता है इस रविवार को मैं कहां जा रहा हूँ? क्या कहा नहीं पता? हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया ही कहाँ है। इस रविवार को मैं जा रहा हूँ अपने चाचा जी के घर, उनके बेटे का जन्मदिन जो है। दोस्तों सच में कितना मजा आता है ना जब कोई अपने जन्मदिन की दावत देता है, खेलना कूदना खाना पीना, भाई मुझे तो बहुत मजा आता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं जमाल के घर।
2: क्या कहा, जमाल के घर क्यों?
1: अरे भाई आज जमाल का जन्मदिन जो है और आज उसके घर में है दावत।
3: नहीं पकड़ पाया ना, दिखाता हूँ सबको।
4: बच्चों चलो जल्दी से शरबत पी लो,
5: अभी खेलने दो ना अम्मी।
4: अरे जमाल सुना तो,
5: ए पकड़ लिया।
4: देखिए ना जमाल के अब्बू, जमाल ना खुद शरबत पी रहा है ना ही अपने दोस्तों को पीने दे रहा है।
6: जमाल की माँ, यही तो मजा है बचपन का, एक बार खेलने लगे तो फिर कुछ याद नहीं रहता, ना भूख ना प्यास।
7: ना भूख ना प्यास, बचपन के दिन बड़े खास।
4: मीना, मीना बेटी।
8: जी चाची।
4: जमाल से कहना कि शरबत पी ले।
8: अभी कहती हूँ चाची। जमाल, जमाल।
5: जी मीना दीदी।
8: आओ शरबत पीते हैं।
5: बाद में पी लूंगा मीना दीदी, चलो ना खेलते हैं। राजू अब तेरी बारी है।
7: अब तेरी बारी है, तेरे बाद हमारी है।
5: हाँ, तेरी बारी है।
8: नहीं नहीं तेरी बारी है।
9: हाँ हाँ,
8: अब राजू हम सबको पकड़ेगा। अच्छा फिर से।
4: क्या करूं इन बच्चों का।
6: जमाल की माँ, मेरे पास एक तरकीब है।
4: तरकीब?
6: हाँ, पहले तुम जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, फिर बताता हूँ।
4: लो बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप।
7: बाप रे बाप, चाय बनाओ आप।
0: जमाल की माँ चाय बनाने के लिए रसोई में गई।
5: राजू अब तुम भागो, मैं पकड़ता हूँ।
8: ठीक है, आओ
7: आओ दौड़ लगाओ।
5: अम्मी अम्मी, राजू ना।
4: जमाल ध्यान से।
5: क्या हुआ अम्मी?
4: देखो तो ये क्या है?
5: चूल्हा।
4: और चूल्हे में क्या है?
5: आग।
4: और आग से क्या उठ रहा है?
5: धुआं।
4: इसीलिए रसोई से दूर जाके खेलो, वरना इस धुएं से खांसी आ जाएगी।
7: खांसी आ जाएगी, बड़ा सताएगी।
5: लेकिन अम्मी
4: जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। देखो एक तो रसोई में चूल्हा भी जल रहा है और कढ़ाई भी गर्म है, अगर तुम खेलते खेलते उस पे गिर गए या गलती से उसे छू लिया तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा।
7: हाथ जल जाएगा, छाला पड़ जाएगा।
5: ठीक है अम्मी, चल मिठू।
7: चल मिठू, चल मिठू।
4: ये लीजिए जमाल के अब्बू चाय। अब बताइए इन बच्चों को एक जगह बैठाने की तरकीब।
6: अभी लो जमाल, जमाल।
5: जी अब्बू।
6: पता है तुम्हारी अम्मी ने क्या बनाया है?
5: क्या बनाया है अब्बू?
6: सोचो।
5: अम्मी ने हाँ आपके लिए चाय बनाई है।
7: चाय बनाई है, आपको पिलाई है।

0: हाँ भाई मिट्टू, चाय तो बनाई है लेकिन उसने जमाल और उसके दोस्तों के लिए हलवा भी बनाया है।
1: गाजर का हलवा?
2: हाँ, गाजर का हलवा गर्मा गर्म।
3: गर्मा गर्म खाने में कैसी शर्म।
1: मीना दीदी, राजू आओ, गाजर का हलवा खाते हैं।
3: हलवा खाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं।
0: देखा जमाल की माँ, काम कर गई ना मेरी तरकीब।
2: ये रहा गर्मा गर्म गाजर का हलवा।
1: सबसे पहले मैं खाऊंगा।
4: रुको जमाल,
1: क्या हुआ अम्मी?
4: जरा देखो तो हलवे में से क्या उठ रहा है?
1: धुआं। ओ समझ गया, धुएं से खांसी आ जाती है।
4: इस धुएं से खांसी नहीं आएगी।
5: मैं समझ गई जमाल, चाची का मतलब है हलवा ठंडा करके खाओ, नहीं तो जीभ जल जाएगी।
3: जीभ जल जाएगी, नानी याद आएगी।
6: उस दिन जमाल की दावत में मिट्ठू ने सबको खूब हंसाया। जमाल और मिट्ठू की तो मानो पक्की दोस्ती हो गई थी। और अगले दिन मीना के घर में।
5: मीना, मीना क्या हुआ राजू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
1: मीना, मिट्ठू का कुछ पता नहीं चल रहा।
5: मतलब?
1: पता नहीं कहाँ चला गया, सब जगह देखा लेकिन मिट्ठू कहीं नहीं मिला। कहीं फिर से जंगल में तो?
5: राजू तुम स्कूल में देख के आओ, मैं जंगल में जाके देखती हूँ।
6: मीना और राजू ने हर जगह ढूंढा लेकिन मिट्ठू कहीं नहीं मिला। वो दोनों उदास होके अपने घर के बाहर बैठ गए। तभी उन्हें सामने से आती दिखी जमाल की माँ। और पता है जमाल की माँ के साथ कौन था? उनके साथ था मिट्ठू।
5: चाची जी, मिट्ठू आपके साथ?
3: आपके साथ, मिट्ठू आपके साथ।
5: मिट्ठू कहाँ चले गए थे, शरारती कहीं के?
4: मीना बेटी, आज मिट्ठू की समझदारी की वजह से ही जमाल का हाथ जलने से बच गया।
5: मैं समझी नहीं चाची।
4: दरअसल जमाल के अब्बू के खेत पे जाने के बाद जब मैं हैंडपंप पे पानी भरने गई तो मिट्ठू तुम यहाँ?
3: तुम यहाँ? जमाल रसोई में है वहाँ।
4: क्या? मैं भाग के घर पहुँची तो देखा कि जमाल गरम गरम हलवे का बर्तन उठाने की कोशिश कर रहा था। जमाल ये क्या कर रहे हो?
1: हलवा ले रहा था अम्मी।
4: कितनी बार तुमसे कहा है कि आग और गरम चीजों से दूर रहो?
1: गलती हो गई अम्मी।
4: गलती तो मेरी भी है, मुझे तुम्हें घर में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम ही सोचो, गरम बर्तन उठाते हुए अगर तुम्हारा हाथ जल जाता तो?
3: हाथ जल जाता, चीखता चिल्लाता।
1: आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं आज के बाद कभी भी आग और गरम चीजों के पास नहीं जाऊंगा।
3: नहीं जाऊंगा, हलवा भी ठंडा करके खाऊंगा।
5: अरे वाह मिट्ठू, तुम तो बड़े समझदार निकले।
3: समझदार निकले, होशियार निकले।
5: लेकिन चाची, मिट्ठू था कहाँ? हमने तो इसे पूरे गांव में ढूंढा, आपके घर भी गए थे।
4: मिट्ठू हमारे खेत में जमाल के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। जब आते जाते लोगों ने मुझे बताया कि तुम और राजू मिट्ठू को ढूंढ रहे हो तो मैं इसे सीधा यहाँ ले आई।
3: यहाँ ले आई, समझदारी दिखाई।
6: भाई वाह, आज तो खूब हंसाया मिट्ठू ने। दोस्तों आप सब भी अपने छोटे भाई बहनों का खूब ख्याल रखना और उन्हें कभी भी गर्म चीजों या आग के पास नहीं जाने देना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
5: बात हमारी ध्यान से सुनना, रखना याद जरूर।
3: गर्म चीज और आग से रखना तुम बच्चों को दूर।
6: भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। तो क्या कहते हो, इसी बात पे हो जाए एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना सुन के तो दिल बाग बाग हो गया। चलो अपनी खुशी को थोड़ा और बढ़ाते हैं कुछ खेल के।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? हाँ, तो आज का शब्द है कुर्सी। चलो अब कुर्सी शब्द के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
2: बहन जी, कुर्सी का पहला अक्षर है क, और क से होता है काजल।
1: शाबाश कृष्णा। और मुहावरा,
3: आँख से काजल चुराना यानी बड़ी सफाई से कोई चीज चुरा लेना।
1: बिल्कुल ठीक दीपू। चलो अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
4: क के बाद कुर्सी में आता है र, और र से होता है रंग।
1: शाबाश रानो। और मुहावरा,
5: रंग में भंग डालना मतलब खुशी में विघ्न डालना।
1: बिल्कुल सही गोलू। चलो बच्चों कौन बताएगा आखिरी शब्द?
6: बहन जी, क और र के बाद कुर्सी में आता है स, और स से सफेद।
1: बिल्कुल ठीक कहा मीना ने। अब बताओ सफेद से जुड़ा मुहावरा?
2: चेहरा सफेद पड़ना मतलब बहुत घबरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक कृष्णा। शाबाश, मजा आया ना बच्चों?
0: मजा तो मुझे भी खूब आया, और आया भी क्यों ना, मीना से मिलके दिल खुश जो हो जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कॉमिक चीकू,
3: कहीं कोई हलवा पका रहा है।
4: हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। मेरा मन तो हलवा खाने का कर रहा है।
3: लालच मत कर।
2: चलते चलते मिकू को पत्थर से ठोकर लग गई।
4: मोच आ गई।
3: देखकर चला कर, बिट्टू के घर चल, उसके पास कोई दवाई जरूर होगी।
2: दोनों बिट्टू के घर आए।
3: आंटी, आपके पास कोई दवाई है क्या? मिकू के पैर में मोच आ गई है।
0: अभी देती हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर इस छोटू को देखो, मैं दुकान से आती हूँ।
3: आप चिंता मत कीजिए आंटी, जाइए।
2: आंटी छोटू को छोड़कर दुकान चली गई।
3: अरे ले ले ले, रो मत।
4: अरे यार, ये तो रो रहा है।
2: उसी समय हाथ में केले लेकर बिट्टू आ गया।
5: अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
3: एक केला तो दे दो, तेरे भाई को चुप कराना है।
4: अरे देखो, केला मिलते ही चुप हो गया।
2: उसी समय आंटी आ गई।
0: तुम सभी बैठो, मैं अभी सबके लिए हलवा बनाती हूँ।
2: और सभी दोस्तों ने मिलकर खूब मजे से हलवा खाया।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, दूसरा पाठ, लंबा और छोटा, पृष्ठ 13। कितने दूर हैं बिंदु? यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं और साथ ही हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है? एक स्केल से इसे नापकर देखो। क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं? अपने उत्तर की जांच करो। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं? अपने उत्तर की जांच करो। शिक्षकों के लिए निर्देश, बिंदुओं को सफेद कागज पर बनाकर बच्चे इस खेल को दो दो करके खेल सकते हैं और बच्चे अपने साथियों से दूरी को बताने के लिए कह सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए बच्चे फर्श पर खेलते हुए अधिक दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पाठ में लगी किनारी का उपयोग भी स्केल के रूप में किया जाना चाहिए। पृष्ठ 14। कौन सी छोटी रेखा? अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। राजा बोला,
2: बीरबल, यहां एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो।
1: बीरबल ने कहा,
3: देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई।
1: यहां पर बीरबल और अकबर का चित्र है। अकबर की बनाई रेखा भी बनी है और साथ ही उसके नीचे बीरबल अपनी रेखा बना रहा है। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब तुम कोशिश करके देखो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। यहां पर एक बच्चे को सीधा हाथ करके दिखाया गया है। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। यहां पर एक कप का चित्र है। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। यहां पर एक झाड़ू का चित्र है। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। यहां पर एक चेहरे का चित्र है जिसके सिर पर एक बाल दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 15। तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे? रिक्त स्थान सेंटीमीटर। क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले में लिखा है मित्र का नाम, दूसरे में पिछले वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर, तीसरे में इस वर्ष की लंबाई सेंटीमीटर और चौथे में लिखा है पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। अब यहां दी गई तालिका में तुम अपने मित्रों का नाम लिखो और उनके पिछले वर्ष की लंबाई और इस वर्ष की लंबाई के साथ यह भी लिखो कि वो पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। यहां पर सबसे नीचे बाई तरफ एक बच्चे का चित्र बना है और दाई तरफ एक छोटी लड़की का चित्र है। झुंपा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुंपा की लंबाई से 2 गुना था। झुंपा कितनी लंबी है? रिक्त स्थान सेंटीमीटर। झुंपा ने कहा,
4: अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दुगनी है।
1: सोचो, क्या ये व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? रिक्त स्थान, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 16। अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़। ये लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वो उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है। कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। चित्र को देखो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। इस पृष्ठ पर अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता का चित्र है, जिसमें सबसे आगे अरुंधति को दिखाया गया है, जो समाप्ति रेखा से केवल 6 मीटर की दूरी पर है। उसके पीछे रेहाना दौड़ती दिखाई दे रही है और उन दोनों के पीछे कोंकणा और उमा दिखाई दे रही हैं। क, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? रिक्त स्थान मीटर। ख, कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? रिक्त स्थान मीटर। ग, कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं? रिक्त स्थान मीटर। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 3000 मीटर की दौड़ के लिए रिक्त स्थान किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। पृष्ठ 17। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर रिक्त स्थान किलोमीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के रिक्त स्थान चक्कर लगाने पड़ेंगे। लंबी कूद, ये लड़कों की लंबी कूद है। यहां पर एक चित्र है जिसमें बच्चों को कूदते हुए दिखाया गया है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब तुम स्वयं बताओ, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? रिक्त स्थान मीटर। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में लिखा है खेल, दूसरे हिस्से में विश्व कीर्तिमान और तीसरे में भारतीय कीर्तिमान लिखा हुआ है। खेल, ऊंची कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, भारतीय कीर्तिमान चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद पुरुष, विश्व कीर्तिमान माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, भारतीय कीर्तिमान अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। खेल, ऊंची कूद महिला, विश्व कीर्तिमान स्टेफका के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, भारतीय कीर्तिमान बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। खेल, लंबी कूद महिला विश्व कीर्तिमान गालिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और भारतीय कीर्तिमान अंजू जॉर्ज 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। दी गई तालिका से पता करो। 1. चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? 2. बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? याद रहे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर बराबर रिक्त स्थान। 3. गालिना की लंबी कूद लगभग क 7 मीटर है, ख 7.5 मीटर है और ग 8 मीटर है। 4. महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है? रिक्त स्थान। 5. यदि माइक पी रिक्त स्थान सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। 6. किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है? क स्टेफका के, ख चंद्रपाल, ग जेवियर एस और घ बॉबी ए। रिक्त स्थान। पृष्ठ 19, दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वो कितनी दूर दौड़ा? यहां पर एक वर्गाकार खेत का चित्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 500 मीटर है। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। यहां पर एक गोलाकार बगीचे का चित्र है जिसकी परिधि 400 मीटर है। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वो रिक्त स्थान किलोमीटर और रिक्त स्थान मीटर दौड़ा। कितने कमरे ऊंचा? यहां पर कुतुब मीनार का एक चित्र बना है। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे? रिक्त स्थान। बताओ कि तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? पृष्ठ 20, कोझीकोड से थैलसरी तक। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझीकोड जा रहा है। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। कोझीकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सुबोध और मंजनी को दिखाया गया है, साथ ही उन दोनों को विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाया गया है। तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वो तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वो चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वो स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। यहां पर एक स्कूल का चित्र, एक ताल का चित्र, एक सड़क का चित्र और साथ ही मोमन और उसके स्कूल का चित्र बना है। स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है? रिक्त स्थान। क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 21, पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। यहां पर एक तालिका बनी है जिसके दो भाग हैं। पहले में लिखा है दोस्त और दूसरे में घर से स्कूल तक की दूरी। इस तालिका को तुमने स्वयं पूरा करना है। तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? रिक्त स्थान। कौन स्कूल में सबसे दूर रहता है? रिक्त स्थान। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? रिक्त स्थान। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है? वो स्कूल किस प्रकार आता है? रिक्त स्थान। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम इस तालिका को देखकर पूरा करो। अनुमान लगाओ और पता करो। एक रील में कितना लंबा धागा होता है? रिक्त स्थान। 2, पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है? रिक्त स्थान। 3, अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर पर ले जाएं, जिससे कि उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान हो। यह अच्छा रहेगा कि यदि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। पृष्ठ 22। काश ऐसा हो पाता। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें हवाई जहाज, एक पक्षी और एक घर का चित्र है। साथ में एक बच्चे को पतंग के साथ दर्शाया गया है। यहां पर एक कविता भी लिखी है जो इस प्रकार है। काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता, इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता, इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। इस चित्र में एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए भी दिखाया गया है। पता लगाओ। 1, तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है? वो कितने कमरे ऊंची है? रिक्त स्थान। 2, एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? रिक्त स्थान। 3, एक हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? और 4, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बहुत अच्छा रहेगा यदि बच्चों के अनुभवों की चर्चा की जाए, विशेष रूप से जब वो बादलों और उनकी ऊंचाई की बातें कर रहे हों। तो संबंधित ऊंचाई का अनुभव मन से करें और लंबी दूरियों का अनुमान लगाना शुरू करें। इसी के साथ दूसरा पाठ, लंबा और छोटा, यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 2, अभी निष्क्रमण,
2: पृष्ठ संख्या 18।
1: अभी निष्क्रमण, गृह त्याग। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त वाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष।
2: पृष्ठ संख्या 19।
1: इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूं। मैं मोक्ष की खोज में हूं। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूं, अतः अब विचरण ही करता रहता हूं। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूं, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूं। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में और कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा। वहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूं। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है।
2: पृष्ठ संख्या 20।
1: इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार घोड़े पर बैठा है और पीछे उनके पिताजी उनसे अनुनय याचना कर रहे हैं। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी चार बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे चार बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उठपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो।
2: पृष्ठ संख्या 21।
1: परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों ना चुन लूं? नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निःशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंथक यानी घोड़े को ले आओ, मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्वरक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो, इसका लाभ तुम्हें भी होगा

0: राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र अनुरक्त गृह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया।
1: पृष्ठ संख्या 22।
0: यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ पलंग पर बैठे हैं और अपनी पत्नी और पुत्र राहुल से बातचीत या विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की, जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चला जा रहा था। उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल आया था। छंदक की वापसी। थोड़े समय बाद भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर स्निग्ध दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझमें भक्ति दिखाई है, उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूं, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ, मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है।
1: पृष्ठ संख्या 23।
0: इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना, हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूं। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूं। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूं, अतः आप मेरे लिए शोक न करें। मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा, इसलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा? कहां कोमल शैया पर सोने योग्य यह शरीर और कहां यह कंटकाकीर्ण कठोर तपोभूमि? न जाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया।

0: यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी ना लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ आए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता।
1: पृष्ठ संख्या 24।
0: इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सारथी छंदक से वार्तालाप कर रहा है और वो वन में जाने की बात उससे कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो जाकर राजा को क्या कहे। उसने अपने वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग कर दिया है और अब वो तपोवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सुनते हैं पाठ।
1: पृष्ठ संख्या 25।
0: उसने आगे कहा, हे तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे? अंतःपुर की रानियां क्या कहेंगी? यदि मैं झूठ मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा? इसीलिए हे दयालु, आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चलें। छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़ें, फिर भी वे एक ना एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं। जिस माता ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया, वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूं? जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातःकाल फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। इसीलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन ना माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अभी तो तुम कपिल वस्तु लौट जाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिल वस्तु लौटूंगा और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह जीव से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा, हे कंथक, रो मत। तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाण ले ली, उससे अपने केश काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से पूछा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काषाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह ना हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काषाय वस्त्र मुझे दे दें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे काषाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने काषाय वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काषायधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपटकर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोरकर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता, वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता चला गया।
1: पृष्ठ संख्या 26।
0: तपोवन प्रवेश। जाते हुए छंदक को विदा कर जब सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। उनके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। जो किसान अपनी स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण कुमार हाथों में समिधा और फूल लिए हुए लौट रहे थे एक टक कुमार की ओर देखते रह गए और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। काशाय वेशधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूलकर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतः दूध चूने लगा। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह आठवां वसु है या अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया है? इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ बातचीत की और तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के विविध रूपों के विषय में चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूं, मैं यहां के नियमों से नितांत अपरिचित हूं, कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय में बताया और उनके फलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ बाम्बियों में सांपों के साथ रहकर वायु पर ही जीवित रहते हैं, कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निकृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है।
1: पृष्ठ संख्या 27।
0: राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, किंतु जब सब कुछ परिवर्तनशील है तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोक में सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। यह निंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ ना बचे। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त है और उनसे निवृत्त होता है, अतः मन का दमन करना ही उचित होगा। इस तरह का विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यज्ञ का धुआं फैला हुआ था। अग्निहोत्र की पूर्णाहुति दी जा रही थी। ऋषिगण एकत्रित थे। उनके मंत्रों के स्वरों से देव मंदिर गूंज रहा था और सारा वातावरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्होंने यहां पर चल रही सारी तप विधियों का गहन अध्ययन और परीक्षण किया, किंतु उन्हें इन तप विधियों से संतोष नहीं मिला। अतः एक दिन उन्होंने इस तपोवन को छोड़ देने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप, व्यवहार और विचारों से उस तपोभूमि के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि सभी आश्रमवासी उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं तो वे रुके और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा, हे तात, आपके आने से यह आश्रम हरा भरा सा लगने लगा था और अब आपके जाने से यह सूना सूना सा होता जा रहा है, इसलिए आप इसे न छोड़ें। यह निकट ही ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों और देवर्षियों द्वारा सेवित हिमालय है। चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या आपने इस आश्रम में किसी को नकारा या संकुचित विचार वाला देखा है? किसी को अपवित्र देखा है जिसके कारण आप यहां रहना नहीं चाहते? आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहीं रहें। ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहां रहने से इन सब का अभ्युदय होगा।
1: पृष्ठ संख्या 28।
0: उस वृद्ध तपस्वी के विनय वचनों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे तपोधन, आप सबने मेरे प्रति ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो स्नेह और आदर दिया है उससे मैं अभिभूत अभिभूसा हो गया हूं। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है जैसे अपने बंधुओं को छोड़ने पर होता है, किंतु आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरी अभिलाषा मोक्ष की है, इसीलिए मैं तपोवन को छोड़ना चाहता हूं। यहां के प्रति मेरे मन में न अरुचि है और न ही मैंने यहां कोई अपकार दुराचार देखा है। आप महर्षि सदृश हैं, पूर्व युग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं, परंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। इस तरह तपस्वी कुमार के मनोहर, अर्थयुक्त और स्निग्ध वचन सुनकर सभी अत्यंत संतुष्ट हुए। तभी उनके बीच से एक भस्म लगाए तपस्वी बोला, हे प्राज्ञ, आपका निश्चय सचमुच ही प्रशंसनीय है। आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देख लिया है, इसीलिए आपने स्वर्ग का नहीं अपितु अपवर्ग यानी मोक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यही निर्णय है तो आप शीघ्र ही विंध्य कोष्ठ नामक स्थान पर जाइए। वहां अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्व ज्ञान सुनिए और यदि आपको रुचिकर लगे तो स्वीकार कर दीजिए, परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाध गंभीरता है, जो तेज है तथा जो लक्षण है, उसके कारण आप स्वयं उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किया है। यह सुनकर राजकुमार ने सबको नमस्कार किया। सभी आश्रमवासी तपस्वियों ने विधिवत उन्हें प्रणाम किया और फिर राजकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रमवासी धीरे धीरे लौट गए। पृष्ठ संख्या 29। अंतःपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्ववतः अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तब से घोड़े ने न घास खाई है न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया। यहां एक चित्र है जहां अंतःपुर विलाप का दृश्य दिखाया गया है। आप सुनते हैं पाठ, पृष्ठ संख्या 30। कपिल वस्तु के वन उपवन जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खीज आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहां छोड़ आए हो। बेचारा छंदक सबको यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। छंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है, हम सब वहीं जाएंगे क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थीं, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगीं। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट को सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगीं। अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गईं। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहां छोड़ आए हो। अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे यह कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है, रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था तब क्या यह गूंगा हो गया था। यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा ना करें न ही मुझे दोष दें, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए, तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट फेंका और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे न मेरी इच्छा थी न घोड़े की, लगता है यह सब कुछ दैवी प्रेरणा से ही हुआ है। पृष्ठ संख्या 31। छंदक के मुख से राजकुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मौसी गौतमी बिलख बिलख कर रो रही थीं और कई बार मूर्छित हो जाती थीं। यशोधरा रो रो कर कहती थीं कि मैं ही अभागिन हूं, तभी तो वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है और न कोई और, मैं तो बस यही चाहती हूं कि वे मुझे इस लोक या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हाय, उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था, उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गईं और अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगीं। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोधन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान

कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोदन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहां मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे। जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि इस कुमार को ना स्वर्ग रोक सकता है ना चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाएं और बुला लाएं। राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। पृष्ठ संख्या 32। कुमार की खोज। राजा शुद्धोदन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राज पुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहां आए थे, वे युवक अवश्य हैं परंतु अबोध नहीं है। वे यहां कुछ समय रहे थे परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राज पुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। वो बैठे हैं और राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे वापस चलें। पीछे एक राजरथ दिखाई पड़ रहा है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 33। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूं, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है, उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूं। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है।
अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन्न की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए, जैसे भृग पुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं जैसे अपने बछड़े के ना रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी के साथ आप स्नाथ कीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। राज पुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्यंभावी है, इसलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूं, अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत हैं। इसमें संताप का कोई कारण नहीं, संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। पृष्ठ संख्या 34। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहां आता है और फिर यहां स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान अग्राह्य है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूं, मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में पड़ना नहीं चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता।
तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूं, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर आगे चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे राजकुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, यही सोचते सोचते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे। पृष्ठ संख्या 35। बिंबसार से भेंट। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ पैर, चलने की गति, जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ हैं। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहां जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है, वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निर्झर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काषाय वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। राज कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबसार को सूचित किया। बिंबसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व यानी सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर बिंबसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए,
आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काषाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति की इच्छा है, तो त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोकों को जीतने में सक्षम हैं, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूं, ना ऐश्वर्य के राग से और ना अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समयानुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 37। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से राजकुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हर्यंक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूं। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूं। इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूं। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोह पाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा शासन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसीलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा? आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाते हैं, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं ना राजा सदा हंसता रहता है और ना दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। पृष्ठ संख्या 38। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूं।
आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूं, न पराजित होकर किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूं। मैं तो संसार रूपी वाण से धायता होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूं। मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूं जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद भी कुछ करणीय नहीं रहता है। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है, इसलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है। मैं वह सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूं। आपका कल्याण हो, आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगधराज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हों और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चले गए। मगधराज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक के रूप में विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट गए। प्रश्न एक, सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली? दो, राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या क्या शर्तें रखी? पृष्ठ संख्या 39। तीन, छंदक कौन था? सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया? चार, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पांच, तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा? छह, वन से लौटने के संबंध में राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा? सात, बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा? यहां अध्याय दो समाप्त होता है। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

रहे देखो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, 8 जुलाई आज का तारीख है और आज विशेष ज्योति बसु, बनारसी दास, YS चंद्रशेखर रेड्डी, गिरिराज किशोर, विष्णु डे, सौरव गांगुली, चेतन आनंद, अनिता कुडू और गिरिराज व्यास, इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही चंद्रशेखर, जगदीप, वीर भद्रा सिंह, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो

के और साहित्यकारों के, फिल्म डायरेक्टरों के, तो आपके जीवन में भी एक नई खुशी, एक नया उत्साह आएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, सॉरी गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन एक सुंदर विचार के साथ। जी कहते हैं, जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हर चीज़ को अलग तरीके से देखें और इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हम कैसे देखते हैं हर व्यक्ति को, उसके चेहरे को देखकर परखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन हमने कभी कोई अलग काम नहीं किया। लेकिन अलग तरीके से देखने का यही है कि ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, उसमें उसको चलाने वाली जो चेतना है, उसकी तरफ अगर हम देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ये अलग तरीके से आप सोचेंगे और अलग कर पाएंगे, है ना, और जीवन को ठीक से समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं आज के दिन विशेष के बारे में, और कुछ खास लोगों के जीवन कहानी से आपको रूबरू कराना का जो कार्य मैं हमेशा करता हूं सफ़र कार्यक्रम में, आपके शाम को यादगार बनाते हुए। आइए बात करते हैं एक राजनेता के बारे में, और ये भारतीय कम्युनिस्ट के अग्रणी नेताओं में से एक थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर संसदीय राजनीति में विशेष ख्याति पाई और भारत में विशेष राजनीति को स्थापित करने वालों में से एक नाम आता है, वो नाम है ज्योति बसु। जी हाँ, ज्योति बसु जी का जन्म आज ही के दिन पूर्वी बंगाल के समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार में 8 जुलाई 1914 को हुआ, और उन्होंने कोलकाता में एक कैथलिक स्कूल और सेंट जोवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद वकालत की पढ़ाई बासु ने लंदन में की। रजनी पाम दत्त जैसे कम्युनिस्ट नेताओं के संबंध में चलते उन्होंने 1930 में फिर ऑफ इंडिया की सदस्यता ले ली और राजनीति में उनका कार्य शुरू कर दिया। ज्योति बसु कितने पुराने हैं ये इसी से जाना जा सकता है कि वे कुख्यात जलियांवाला बाग खंड के 5 साल पहले पैदा हुए थे। उन्होंने भारत में लगातार किसी भी राज्य का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो आइए इनके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हमारे साथ कृष्णमूर्ति जी गुजरात से हमारे बीच में है, और जैसे कि कल भी एक गाना उन्होंने सुनाया था एक दो दिन पहले, तो आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनसे हम लोग एक और गीत सुनेंगे। तो कृष्णमूर्ति जी कैसे हैं आप? अच्छा, कौन सा गीत आज हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे आप?
2: आज हमरा चरण सर झुका के।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।

नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, हो न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।

और न सर झुका के जियो, हो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गट्टा में

के जियो और न सर झुका के जियो, हो ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की।

0: के जियो और न सर झुका के जियो और न सर झुका के जियो और मुस्कुरा के जियो और भी मुस्कुरा के जियो।
1: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और ये इस खूबसूरत गीत के साथ आपको बड़ा आनंद आया होगा और आप भी इस तरह के गीत सुनते रहते हैं, लेकिन अब कृष्णमूर्ति जी ने गाया है आपके लिए, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं आप सभी को ले चलता हूँ विशेष जीवन यात्रा के बारे में। हम बात कर रहे थे ज्योति बसु के बारे में। 1977 से 2000 तक वे बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और 1964 में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो वे उसके पोलित ब्यूरो में थे और 2008 में स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। ज्योति बसु का पूरा नाम जितेंद्र नाथ बसु है। पिताजी बांग्लादेश के बोरीदी गांव ढाका जिले में आए थे और डॉक्टर थे। सेंट जेवियर और प्रेसिडेंट कॉलेज से 1935 में ग्रेजुएट हुए, जब आज के महारथी मार्क्सवादी नेताओं में से ज़्यादातर पैदा भी नहीं हुए थे। फिर इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बन गए और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनने वाले भूपेश गुप्ता उस समय ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और फिर उन्होंने ज्योति बसु को कामरेड बनाया और वकालत की पढ़ाई कर भारत 1940 में लौटे। ज्योति बसु फिर भारत में इस राजनीति में फुल टाइम कामरेड हो गए और सबसे पहले मजदूर संगठन चलाया। इस तरह से ये राजनीति में सफल रहे और फिर आगे बढ़ते हुए अंतिम पड़ाव तक बने रहे। जब कभी भी लौट कर उन राहों में गुजरेंगे हम, जीत के ये गीत कई कई बार फिर हम गाएंगे। भूल कैसे पाएंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों, जर्रे जर्रे में तुम्हारी ही समाधि पाएंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति बसु के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐतिहासिक मुख्यमंत्री का जो दौर है उनका लंबा चला और राजनीति का सफ़र भी उनका लंबा चला और देश में सबसे लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने का गौरव उन्हें हासिल था और 17 जनवरी 2010 को कोलकाता के एक अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। भारतीय राजनीतिक समाज नक्सलवादी विरोध में उनकी भूमिका और संसदीय राजनीति में मार्क्सवाद के अंगद के रूप में हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उनके कामों और व्यक्तित्व की तरफ तारीफ करे या आलोचना, इन दोनों भूमिकाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हुए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, बनारसी दास के बारे में। भारत के बहुत ही पॉपुलर आज़ादी के दीवाने, उन्हें बाबू बनारसी दास के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ मात्र 15 वर्ष की आयु में मोर्चा खोल दिया था। आज़ादी के संग्राम में उनका अहम योगदान रहा और 1979 में बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1962 में सिकंदराबाद सीट से वो विधायक चुने गए। फिर खुर्जा से भी विधायक चुने गए और इसके बाद 28 फरवरी 1979 को से लेकर 17 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आज़ादी के संग्राम सेनानियों के परिचय ग्रंथों का प्रकाशन करवाया था। तो ये थी कुछ खास बातें बनारसी दास जी के कार्यकाल के बारे में और आइए उनके जन्म के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। बाबू बनारसी दास का जन्म आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इनका जन्म हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी वहीं प्राइमरी स्कूल में पूरी हुई। 6ठी कक्षा में उन्होंने बुलंदशहर के राजकीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही दास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और 1928 में नव भारत सभा और भारतीय राष्ट्रीय सभा में सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और 1929 में महात्मा गांधी ने बुलंदशहर का दौरा किया था तो वह एकदम माहौल बन गया था और ये कार्य उन्होंने किया था। और 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो माहौल जज्बे में बदल गया और 1930 का साल बनारसी दास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा और 1 अप्रैल 1930 को यूपी के तत्कालीन गवर्नर सर मैलकॉम हेली ने बुलंदशहर की यात्रा की। लोगों ने दबा के विरोध किया और विरोध का पुलिस के जमकर दामन किया और युवाओं पर जमकर लाठियां बरसी। बनारसी दास की उन्हीं युवाओं में से थे और साइकिल पर गांव-गांव घूमते थे और 16 की उम्र में बनारसी दास ने अपने गांव में कन्या पाठशाला लगाई थी जिसमें वो खुद पढ़ाते थे। उसी वक्त गांधी जी की बातों पर प्रभावित होकर उन्होंने छूताछूत मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और चलते चलते गांव-गांव में जाकर परिवारों को इनका बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया और ऐसा किया। बनारसी दास ने 1936 में विद्यावती देवी के साथ विवाह भी किया। ये तो कुछ खास बातें आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे बनारसी दास के बारे में और क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर बात करें तो 12 सितंबर 1930 को गुलावटी में एक भयानक कांड हुआ और बाबू बनारसी दास की नेतागिरी में गुलाकाठी में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई और ये शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने उस पर हमला कर 23 राउंड गोली चला दी। आज़ादी के 8 दीवान शहीद हो गए। इसके बाद तो उग्र किसानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस कांड में पुलिस ने करीब 1000 लोगों की गिरफ्तार कर लिया और भारी यातनाएं दी। 45 लोगों पर मुकदमा चला। 2 अक्टूबर 1930 को बनारसी दास को मथुरा से गिरफ्तार करके बुलंदशहर लाया गया, लेकिन जिला और सेशन जज ने बनारसी दास को 14 जुलाई 1931 को छोड़ दिया। हालांकि गुलावटी खान के कई कैदी 1937 में यूपी में विशेष सरकार बनाने के बाद ही छूट गए थे। तो ये थी कुछ खास बातें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। आइए उत्तर प्रदेश में फिर कैसे बनारसी दास जी मुख्यमंत्री बने, वो वक्त भी आया जब बनारसी दास को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। राम नरेश यादव के जाने के बाद 28 फरवरी 1979 और से लेकर 17 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वे प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कालिदास मार्ग की मुख्यमंत्री की सरकारी कोटी के बजाय कैंट के अपने मकान में ही रहना पसंद किया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लंबा ताम जाम नहीं रखा। बनारसी दास ने खादी और ग्राम उद्योग के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई। वो कई सालों तक उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे और 1977 में खादी ग्राम उद्योग चिकन संस्थान में संस्थापक और रहे और जनसेवा ट्रस्ट बुलंदशहर के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और इनके नाम एक अनूठा रिकॉर्ड भी है। और विशेष रूप से ये जो है चेयरमैन थे बाबू बनारसी दास, तो ये मौका आया 1977 में उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा और उपसभापति गोदे मोहारी लोकसभा के संसद चुन लिए गए और 20 मार्च 1977 को ये पद भी खाली हो गया। तो राष्ट्रपति के आदेश पर 20 मार्च से 30 मार्च 1977 तक बाबू बनारसी दास को राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया और ये एक इतिहास बन गया। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें बनारसी दास के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शाम का समय है। चाय नाश्ते के साथ साथ लीजिए एक और खूबसूरत गाना आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहा और मुस्कुराता
1: रहा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और चेतन आनंद के बारे में बात करते हैं। भारत के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, 3 बार कॉमनवेल्थ मेडल जीत चुके हैं और 4 बार नेशनल चैंपियन बन चुके चेतन आनंद भारतीय बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साल 2006 में चेतन आनंद को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 8 जुलाई 1980 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जन्मे चेतन आनंद के पिता हर्षवर्धन ने उन्हें इस खेल के लिए अवगत कराया था और उसके बाद इतिहास ने अपने आप में ही गवाही दी है। बचपन से ही चेतन आनंद को बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों दिलचस्प खेल लगते थे और वो ऑलराउंडर भी बनना चाहते थे। एक समय ऐसा भी आया, बैडमिंटन कोच भास्कर बाबू ने इस 9 साल के खिलाड़ी को एक प्रतियोगिता में खेलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उन्होंने इनका कौशल पहचानते हुए इनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया और फिर शुरुआती दौर में चेतन आनंद के लिए डबल्स में सफलता आने लगी और अंडर 12 इवेंट को इस युवा खिलाड़ी ने अपने नाम भी किया और ये कीर्तिमान डबल्स में दिखाते हुए खुद को स्थापित किया। इतना ही नहीं बल्कि 10 साल की उम्र में वो जूनियर नेशनल से रनर अप भी रहे और कम उम्र में ही अच्छे तजुर्बे के साथ चेतन ने आगे चलकर अंडर 15 नेशनल डबल खिताब भी अपने नाम किया था। लेकिन सिंगल में कभी भी अव्वल आना अभी भी बाकी था। आखिरकार 1998 में ये सूखा भी हटा और चेतन ने नेशनल जूनियर सिंगल्स टाइटल जीतकर अपने नाम अपने करियर को 4 चांद लगा दिया। फिर कहानी में आगे बढ़ते गए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं अनेक बातें हैं, अनेक टॉपिक्स हैं, और आप सभी भी अपनी बातें शेयर करते हैं, और हम कभी म्यूजिक तो कभी जिंदगी के बारे में तो कभी करियर के बारे में अनेक अनेक मुद्दों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं. लेकिन दोस्तों, सबसे स्पेशल मुझे लगता है एपिसोड वो होता है जब कोई युवा अपने अनुभव को हमारे साथ बांटते हैं, अपने सफर को हमारे साथ शेयर करते हैं, और उनको सुन के हमें भी महसूस होता है कि कहीं मेरा सफर भी ऐसा ही तो नहीं, या मैं कुछ कर सकती हूँ, या कुछ और रिलेटेबल बात हमें मिल जाती है. और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं पर हम पूछ नहीं पाते. आजकल तो वैसे गूगल है, एआई है, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन दोस्तों अनुभव से जो सीखने को मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता. और आज हमारे साथ हमारे एक युवा साथी जुड़ गई हैं. जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है ब्रह्मानी राजकुमार रावी जी, जो कि

0: मेरा इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरह से दे सकती हूँ कि मेरा नाम है ब्रह्मानी और करेंटली मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ वोडाफोन इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस में. एंड इससे पहले मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और साथ में मैंने बीए भी किया है वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में. और अभी जॉब चल रही है, काफ़ी कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है.
1: That's wonderful. मतलब सीखना तो कभी नहीं रुकता ना लाइफ में. और आजकल तो हम जानते हैं टेक्नोलॉजी भी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, तो लर्निंग भी उतनी फास्ट होती आती है.
0: हाँ जी, अभी अगर मैं कहूँ तो कॉरपोरेट में अगर आप हैं तो एवरी डे इज़ अ न्यू लेसन. आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ नया पढ़ना ही पड़ता है. सो बस ऐसे ही चल रहा है.
1: मतलब होमवर्क स्कूल और कॉलेज के बाद ख़त्म नहीं होता.
0: जी
1: जॉब में भी करना पड़ता है.
0: जी
1: अच्छा ब्रह्मानी जी, सबसे पहले अगर शुरुआत से शुरू करें, सबसे आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपने अपनी पढ़ाई का जो रास्ता है वो कैसे चुना, अगर उसके बारे में कुछ बताएं.
0: जी, तो बचपन में मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मेडिकल फील्ड में जाऊंगी. मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता थी डॉक्टर्स की लाइफ. बट धीरे धीरे जैसे मुझे पता चला कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है डॉक्टर बनना, और शायद अगर मैं मेडिकल कर रही होती तो अभी भी पढ़ाई चली रही होती.
1: एंड बहुत पढ़ना पड़ता है.
0: तो मुझे लगा कि थोड़ी इजी लाइफ चूज़ कर लेते हैं.
1: ईजी तो नहीं होगी वैसे मुझे लगता है.
0: जी, ये बात मुझे कॉर्पोरेट में आने के बाद पता चली.
1: बाद में पता चला.
0: जी,
1: मेहनत तो उतनी है
0: बिल्कुल
1: हर करियर में. तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि मैं ये करूं?
0: तो जब इनिशियली मैंने सोच रखा था मेडिकल करना है, बट फिर लगा कि नहीं, थोड़ा एज आई सेड कि ईजी लाइफ चूज़ करनी है. फिर मैंने पॉलीटेक्निक करने का डिसीजन लिया. मैं पेरेंट्स ने एक्चुअली उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है. तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं करना चाहती हूँ. बट जैसे ही फर्स्ट ईयर के बाद जो रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट रिजल्ट.
1: अच्छा,
0: तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया. एंड आई एम नॉट श्योर बट हाउ somehow I got very good percentage.
1: जबकि आप करना नहीं चाह रहे थे और आप सोच रहे थे मैं सही जगह हूँ या नहीं, फिर भी अच्छा रिजल्ट आया आपका, यानी आपने पढ़ाई अच्छे से की.
0: हाँ जी, उसके बाद बस इंटरेस्ट आते गया, फिर लगा कि नहीं यार एक चांस देना चाहिए इस फील्ड को भी. और बस फिर पॉलिटेक्निक कम्प्लीट हुई. एंड पॉलिटेक्निक के फाइनल सेमेस्टर में मुझे ऑल सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स आए थे.
1: 100% मार्क्स?
0: जी.
1: Oh my God, मतलब ये पॉसिबल है इतना मार्क्स स्कोर करना, कैसे किया आपने? ये तो चमत्कार जैसा है.
0: जी, बट मतलब, बस गॉड की हेल्प साथ में.
1: वंडरफुल. मतलब सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में बताएं, क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें?
0: जी, सो पॉलिटेक्निक आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप 10th के बाद फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, इट्स अ 3 ईयर्स कोर्स. या फिर आप 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर इट्स अ 2 ईयर्स कोर्स. एंड पॉलिटेक्निक इज प्री इंजीनियरिंग.
1: अच्छा,
0: मतलब जो भी इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आप पहले ही पॉली में मोस्टली कवर कर चुके होंगे. पॉलीटेक्निक को डिप्लोमा भी कहते हैं लोग. सो ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप इंजीनियरिंग से पहले पॉलिटेक्निक चूज़ कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा पुशअप मिल जाता है कि नहीं, आपको जो करना है आगे उसकी आपको पहली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. कि जैसे कोडिंग है, जैसे C++ लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज. तो जहाँ मैंने देखा इंजीनियरिंग में मेरे फ्रेंड जिस चीज़ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ मुझे पहले से आती थी. तो विच हेल्प मी अ लॉट इन इंजीनियरिंग कि हाँ वहाँ जाके मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. हाँ, बस एक बार ब्रशअप करनी थी चीज़ें एंड बाकी फिर हो गया.
1: क्या बात है, आप जितना आसानी से बोल रहे हैं उतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा. मतलब इतने अच्छे से आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉक पे निकले हैं, उतना ही आसान है. लेकिन डेफिनेटली आपका राज ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब आपने इतना स्कोर कैसे किया, क्या आपने ऐसा किया, किस तरह किसे पढ़ाई की, क्या कोई नियम बनाए थे, शेड्यूल बनाया था, क्या किया था?
0: मेरा नियम शेड्यूल ऐसा था कि जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, मैं बचपन से ही ज्ञान परिवार में हूँ. एंड बचपन से मुझे आदत थी स्कूल टाइम से ही कि मैं अमृत वेला या

0: मैं 5 बजे तक से पहले उठ जाऊं और तब से मैं पढ़ाई शुरू करूं।
1: अच्छा,
0: तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही साथ पहली जो चीज़ पढ़ो या देखो तो वो आपके माइंड में एकदम प्रिंट हो जाती है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। सो मेरा स्टडी का ये एक फंडा था कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर लूँ और फिर मुझे दिन भर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी।
1: वाओ, मतलब आप सुबह सुबह ही तैयारी कर लेते थे अपनी।
0: जी,
1: वंडरफुल। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली हम देखते हैं उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उनको टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का, बाहर जाना है, खेलना है या फिर कोई हॉबीज हैं। आपको टाइम मिलता था या कैसा होता था?
0: टू बी ऑनेस्ट, टाइम निकालना पड़ता था।
1: ओके,
0: थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन आई थिंक कि अगर आप पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद आने के बाद आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पढ़ाई भी करो, एक प्रॉपर टाइम पढ़ाई को दो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और उसके बाद में आप अपना जो भी काम करना चाहें, कोई हॉबीज़ हैं, कहीं खेलना है, कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, विच इज़ ईजिली मैनेजेबल। फिर जब एक बार पढ़ाई कम्प्लीट हो जाती है, सारे होमवर्क सारे असाइनमेंट्स कम्प्लीट हो जाते हैं, फिर आप फ्री हैं, आपको जो करना है, इट्स योर फ्री विल।
1: ओके, मतलब आपने जारी रखा, आपकी पढ़ाई भी जारी रखी और आपने अपना जो हॉबीज़ है या कुछ और करना है वो भी जारी रखा, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। कई बार हम देखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स का प्रेशर इतना होता है, स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हम ब्लैंक होने लगते हैं, फिर जो पढ़ा वो एकदम से याद नहीं आता या फिर एंग्जाइटी हो जाती है बहुत। हर कोई कह रहा होता है कि एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम क्या करने वाले हो, पूछ रहे होते हैं हर कोई हमसे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आगे, तो कई बार वो प्रेशर भी होता है। तो आपको कभी ऐसा लगा?
0: प्रेशर तो फील होता है क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस होता है और बहुत कम टाइम होता है कवर करने के लिए। मेरा ऐसा ही रहा है बचपन से कि अगर मैं कर रही हूँ पढ़ाई तो आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि हाँ मैं अच्छे से तो कर ही रही हूँ।
1: okay.
0: बस उसके बाद जब भी मुझे लगता था कि नहीं थोड़ा एंग्जाइटी फील हो रहा है कि व्हाट इफ माई पेपर डजंट गो वेल, तो मैं बस अपनी आंखें बंद करती थी, आई टेक डीप ब्रीथ एंड बस भगवान को याद करो, उनसे थोड़ी पावर्स लो, थोड़ी एनर्जी लो एंड फिर वापस लग जाओ।
1: ओके, और ये इसने आपको मदद की?
0: जी, इसने मुझे बहुत मदद की थ्रू आउट माई एजुकेशन, ये तरीका मेरे बहुत काम आया है।
1: क्या बात है, बताइए, इतना सिंपल है फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान को याद करना ये सब करना बहुत मुश्किल होगा या लंबा होगा, टायरिंग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो जैसे आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है आपने दिल से किया।
0: जी,
1: है ना,
0: अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम पहाड़ जितनी बड़ी भी हो सकती है और अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक कॉटन बॉल भी हो सकता है। सो ये सब हमारा पर्सपेक्टिव है, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से अडाप्ट करना चाहते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम तो है लेकिन हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो हम डेफिनेटली इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आवर माइंड इज कैपेबल ऑफ ब्रिलियंट थिंग्स।
1: क्या बात है, क्या बात है। और दोस्तों मुझे लगता है ये सुन के आपको एक हिम्मत और एक नई उम्मीद तो मिली ही होगी, क्योंकि मुझे तो फील हो रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा खुद को चार्ज करना है। भाई फ़ोन की बैटरी भी चार्ज करते हैं तो अपनी क्यों ना करें, है ना भाई। तो कैसे करना है वो भी उन्होंने बताया, बहुत आसान तरीका है और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि उन्होंने 100% मार्क्स भी स्कोर किए। और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, उन्होंने वो नॉलेज भी कमाई और वो आगे भी बढ़े उसको लेके, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सुना रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम एक छोटे से ब्रेक की ओर लौट कर आएंगे और ब्रह्मानी हमारे साथ हैं, उनसे और भी कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, भाई क्या पहुँचा दोगे? हैं कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं ब्रह्मानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है और अभी तक हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी और उसमें 100% स्कोर भी किया और किस तरह से वो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करती हैं और जहाँ थोड़ा सा भी स्ट्रेस आए उसको फटाफट दूर भगाने की ट्रिक भी उनके पास है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई ब्रह्मानी। फिर कैसे आगे बढ़ी, मतलब आपको फिर लगने लगा कि ये अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि पहले तो थोड़ा डाउट था ना?
4: जी पहले डाउट था, लेकिन उसके बाद जब स्कोर देखा, मार्क्स देखे, फिर लगा कि नहीं ये तो सही जा रहा है तो आगे प्रोसीड करना चाहिए। बट फिर कोविड आ गया एंड उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने की बहुत एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन जब कोविड के टाइम पे हमें सबको क्वारंटाइन रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ा था, तो फिर ऐसा बहुत बोर लग रहा था कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। मतलब घर बैठे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी ठीक से, ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट इवेंचुअली वो चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर हम जब कॉलेज गए एंड वहाँ जाके भी मैंने यही ट्राई किया कि मैं अपना स्कोर जो पहले था मैं उसे ही बनाए रखूं। और थैंक्स टू गॉड उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और मेरा इंजीनियरिंग का भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और अच्छा। स्कोर भी बहुत अच्छा रहा।
3: तो जब आप इंजीनियरिंग करने गए तो वहाँ कुछ आपको ऐसा नहीं लगा नया माहौल है या नया कुछ है या फिर एकदम से, या आपको वैसे ही लगा जैसे चल रहा था?
4: आई गेस मुझे इतना न्यूनेस फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मुझे एडमिशन मिल गया था क्योंकि मैंने ये डिप्लोमा कर रखा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया डिप्लोमा में पहले ही बता दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आ रही थी सामने तो इट वॉज़ ईजी कि चलो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने पुराने नोट्स सारे वही लेके गई थी कॉलेज फर्स्ट डे पे और मैं उन्हीं को रेफर करते करते फिर मैंने क्लासेस की। बहुत सारे चैलेंजेस ये थे कि जैसे पॉलिटेक्निक में एक फर्स्ट डे से कुछ एक अलग बन गया था, एक क्या कहते हैं, एक इमेज बन गई थी टीचर्स के सामने क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ ऐसा था कि जो हमारी बैच थी वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से आ रहे थे और मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर से ज्वाइन किया था।
3: नहीं थे एकदम
4: जी, तो मुझे टीचर्स से तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ थोड़ा सा मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लग गया जी। तो बट धीरे धीरे मिक्सअप होते गए और फिर इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो ही गई आखिर।
3: हाँ, क्योंकि वो लोग एक साल साथ थे तो ऑलरेडी उनकी दोस्ती हो चुकी थी आपस में, एक दूसरे को बेहतर जान चुके थे, है ना, जेल हो चुके थे। आप एकदम नए थे तो वो
4: शुरू शुरू में थोड़ा से फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट भी होती थी लेकिन बट धीरे धीरे वो चीज़ें
3: फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स
4: बन गए।
3: मतलब थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो वो भी हो जाता है
4: जी।
3: तो कैसे फ्रेंड्स बने, कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए।
4: पहली चीज़ तो किसी दो स्टूडेंट को जोड़ने के लिए होती है असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स। तो ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स पहले शुरू हुए, फिर धीरे धीरे सबसे बात शुरू हुई, फिर पहचान होने लगी, फिर धीरे धीरे सबके इंटरेस्ट पता चले कि कौन क्या करना चाहता है। अगर किसी को जॉब करनी थी, किसी को एमबीए करना है आगे, तो ऐसी चीज़ें फिर पता चली और फिर बस एक दूसरे की हेल्प करते गए पढ़ाई में। अब मेरा ऐसा था कि मुझे इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे ये वाले कोर्स में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि काफी पढ़ चुकी हूँ इस बारे में, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ यही चीजें पढ़ने को मिल रही है. तो आई वॉज दैट पॉइंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जिससे लोग नोट्स मांगते हैं कि नहीं हमें नोट्स दे दो.
3: एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है कि टीचर की बात समझ में आए ना आए उससे जरूर जाके समझते हैं, नोट्स के लिए पूछते हैं फिर.
4: तो बहुत बार मुझे टीचर्स लोग कहते थे कि तुम्हारी वजह से हमें क्लास में आना पड़ता है, नहीं तो बाकी लोग तो बंक कर रहे होते हैं.
3: आप बंक नहीं करते थे?
4: मैं बंक नहीं करती थी. एंड अगर कभी कर भी रही होती हूँ तो पेरेंट्स को बता देती थी कि मम्मा मैं क्लास बंक करने जा रही हूँ. तो मॉम भी कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल.
3: हाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा
4: कभी कभी चलता है. तो ऐसे ऐसे सबसे फ्रेंडशिप होने लगी और फिर टीचर्स के भी गुड बुक्स में आ गए धीरे धीरे
3: धीरे धीरे. हाँ गए तो मतलब वहाँ भी आपका ये स्कोर और ये जारी रहा, जैसे आप पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर कर रहे थे
4: जी,
3: वैसे वो कंटिन्यू किया?
4: हाँ जी
3: आपने.
4: तो वैसे ही स्कोर चलते रहा और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर पे भी मुझे 9.3 का CGPA आया. तो
3: बहुत हार्ड है उतना लाना. बहुत बड़ी बात है आई थिंक उसको अचीव कर पाना. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उतना कर पाते हैं. मतलब वो तो टॉप मोस्ट में आ गए आप.
4: थैंक्स टू गॉड.
3: हाँ थैंक्स टू गॉड. और आपकी कंसिस्टेंसी भी है, आपकी वो क्षमता को भी आपने पूरी तरह यूज़ किया
4: जी.
3: इट्स वंडरफुल. सो इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो आपको भी फिर या कैंपस इलेक्शंस भी होते हैं या फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है कुछ और करना है, तो कुछ कन्फ्यूजन था या पूरा क्लियर था?
4: लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले ही हमारे कैंपस आने शुरू हो गए थे. सो मैंने भी काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन अभी जो कंपनी में मैं हूँ मेरा इंटरव्यू वहीं क्लियर हो गया कैंपस में. सो तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है लेट्स गो विद द फ्लो, अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मिल रही है तो इस चांस को खोना नहीं चाहिए. तो फिर मैंने ऐसे कंपनी ज्वाइन कर ली. एंड उसके बाद मतलब एग्ज़ाम्स हुए, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर पुणे शिफ्ट हो गए, कंपनी ज्वाइन कर ली.
3: वहाँ आपको ज्वाइनिंग मिली पुणे?
4: हाँ जी पुणे में.
3: ओके. कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है अगर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें, क्या कैसी होती है लाइफ?
4: इन माय वर्ड्स, एक होता है स्टूडेंट वाला फेज होता है. आपको लगता है कि नहीं हम जॉब करेंगे तो भी यही फेज रहेगा, सिमिलर ही होगा, क्या ही करना है,

0: नॉलेज ली है उसी को इम्प्लीमेंट करनी है. नॉलेज ली और इम्प्लीमेंट करना तो है, लेकिन वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार होती है. जैसे अगर आप उसे क्रैक करना आपको आ गया तो फिर इट्स इजी फॉर यू, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है. जैसे हमें जो थ्योरी मिलती है वो बहुत बेसिक होती है, हाँ वो तो बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए. लेकिन हम जैसे किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकली करना पड़ता है हमारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट, वो होता है बिजनेस के साथ एक्सपोजर. तो वहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जो इनिशियली तो आपको समझ ही नहीं आएगी. जब मैं पहले दिन ऑफिस गई एंड समवन वाज सेइंग कि आज वो ओ ओ ओ है विच इज़ आउट ऑफ ऑफिस, सो दे आर ऑन लीव. सो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो इनिशियली तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जाते थे. बट एक महीना तो कैसे भी लगता ही है किसी भी स्टूडेंट को एक एम्प्लॉय बनने में.
1: ये बहुत अच्छी आपने एक्चुअली टर्म यूज़ की, क्योंकि तब तक हम स्टूडेंट होते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय बनते हैं, तो वो ट्रांजिशन एकदम नहीं हो जाता,
0: नहीं होता
1: जॉब मिलते ही नहीं हो जाता कि ऑफर लेटर आया और हम बन गए, ऐसा
0: जी.
1: नहीं होता। तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो युवा साथी सुन रहे होंगे या जो भी लिसनर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि इंटरव्यू देने के पहले जब हम नए होते हैं, हमने इंटरव्यू कभी नहीं दिया होता, तो समझ में नहीं आता कि कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, कपड़ों का ध्यान रखें, बोलें कैसे, जवाब दें, आता है वो सवाल वही बोलें, जो नहीं आता है उसको गैस करें नहीं करें, या क्या लिखे रेज्यूमे में ऐसा जो हमें अलग दिखाए, या क्या ऐसे अलग जवाब दें। तो आपने क्या कुछ तैयारी की थी या इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: सो रेज्यूमे की अगर बात करें तो आई थिंक आपको ऑनेस्टली जो आपको आता है वही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जॉब में जाके तो फंस जाएंगे.
1: डेफिनेटली
0: तो मैंने वही लिखा जो मुझे आता था, जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे मैंने उनको अच्छे से रीड किया. मेरी जो भी थीसिस थी कि मैंने एग्जैक्टली पूरा वर्ड बाय वर्ड जो था मैंने सब वो अच्छे से रीड किया और वही एक्सप्लेन किया इंटरव्यूज़ में. और दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे से किसी भी इंटरव्यूअर की बहुत एक्सपेक्टेशन होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ में उस चीज़ को आंसर किया. और मैं कह सकती हूँ कि बस इंटरव्यू में अगर आप जब भी अपीयर करने जा रहे हो तो खुद को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ स्क्रीन के सामने तो हाँ हम स्माइल कर रहे हैं, दिख रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन नीचे हाथ स्वेट हो रहे होते हैं
1: हाँ, पैर
0: एंड
1: भी कांप रहे होते हैं कभी कभी
0: पैर भी
1: तो।
0: कांप रहे होते हैं. तो बस ऐसे सिचुएशन में आप को अगर नहीं आ रहा है कुछ, कहीं आप अटक रहे हो, तो जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स और आस्क फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कि आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल, एंड फिर आप वापस उस आंसर को बोलने की कोशिश करो, क्योंकि इंटरव्यूअर भी वो चीज़ जानता है, वो भी कभी इसी फेस से गुजरा है.
1: ये भी बात सही है, उन्होंने भी कभी अपना पहला इंटरव्यू ज़रूर दिया होगा।
0: बिल्कुल
1: तो मतलब टाइम देना है, पेशेंस रखना है। क्या मतलब वो सिचुएशन कैसी होती है, मतलब वो कमरा कैसा लगता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या फिर वो आपको जज कर रहे होते हैं आप कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, या सिर्फ आंसर सुन रहे होते हैं, क्या होता है उस वक्त?
0: हाँ, दोनों चीज़ें होती है. हमारा वो फिजिकली भी हमें जज कर रहे होते हैं कि हमने कैसे, हम क्या पोस्चर में बैठे हैं, हमारे जेस्चर्स क्या हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं. प्लस वो लोग हमारी नॉलेज भी देखते हैं. तो नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग उस सिचुएशन को इजी वे में लें. ठीक है, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, हुआ तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो वो आखिरी कंपनी नहीं है.
1: ये बात याद रखनी है
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तभी वो कॉन्फिडेंस हमारे पोस्चर में दिखेगा जब हम कॉन्फिडेंट होंगे एक्चुअली.
0: जी
1: कभी कभी हम कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अंदर से नहीं है, तो वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, है ना, तब तक दिखाओ जब तक नहीं होता, पर अंदर से आप लाएंगे तो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा.
0: जी
1: दैट्स वंडरफुल. तो अगर मान लीजिए लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें क्या मतलब शॉर्ट में आंसर देके ख़त्म करना चाहिए, या कुछ क्या मतलब करना चाहिए एग्जैक्टली अपनी हॉबीज के बारे में भी क्या पूछते हैं या सिर्फ नॉलेज जज करते हैं क्या?
0: मुझे तो हॉबीज नहीं पूछी गई थी, मुझे सिर्फ नॉलेज के बारे में पूछा गया एंड मेरा वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, मैं वॉक इन नहीं गई थी. तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद होता है फिर टेक्निकल राउंड्स होते हैं या ग्रुप डिस्कशंस होते हैं.
1: अच्छा, ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था?
0: हाँ जी, ग्रुप डिस्कशंस भी हुआ था. एंड ग्रुप डिस्कशंस में वो लोग एट द टाइम आपको एक टॉपिक देंगे जिस पे आपको प्रोज या कॉन्स बोलने हैं, एंड वो आई गेस 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास सोचने का.
1: बस 15-20 सेकेंड?
0: हाँ जी. कि क्या क्या बोलना है या क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, क्या पॉइंट रख सकते हैं. तो हाँ, बाकी लोगों के आंसर्स को देखते देखते अपना थोड़ा आंसर तोड़ मरोड़ के बस बोल देना होता है. बस एक चीज़ ये है कि कहीं भी आपको जो लग रहा है कि ये सही हो सकता है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो तो ऐसा नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप सही बोल दो, भले आप गलत हो, लेकिन गलत भी कॉन्फिडेंस से बोलो.
1: ओके, कॉन्फिडेंस इज द की.
0: यस,
1: कॉन्फिडेंस जरूर रखना है. लेकिन जैसे जीडी हो रहा है तो और भी लोग बोल रहे हैं एक के बाद एक के, तो कहाँ अपनी जगह निकाल के बोलना है वो कैसे डिसाइड करें?
0: जैसे ऐसा कर सकते हैं कि जब एक बंदा प्रोज बोल रहा है और उसके ख़त्म होते ही आपको वो चीज़ बोल देनी है कि I do not agree with you, या this is not what I think. I think कि ये ऐसी होनी चाहिए ये चीज़, या कुछ और होना चाहिए. तो ऐसे आप उस चीज़ में एंटर कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन में.
1: मतलब एक धीरे से सटली आप उसको कहें कि मैं आप सहमत नहीं हूँ उस बारे में
0: जी,
1: मुझे ये लगता है
0: जी,
1: फिर अपनी ओपिनियन रखें.
0: हाँ जी,
1: है ना. ऐसा भी नहीं है कि बहुत अग्रेसिव हो जाना है कि नहीं ये आप गलत बोल रहे और या फिर बहुत धीरे अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना जी, है कि नहीं मुझे लगता है ऐसे. धीरे भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जैसा आपने बोला गलत भी बोले कॉन्फिडेंस से बोले
0: जी.
1: ओके अच्छा, जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्टूडेंट को एम्प्लॉय बनने में एक महीना लगता है ना, तो क्या कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं जो आपको लगता है आपको मदद करती हैं एक अच्छे एम्प्लॉय बनने में या वो कंपनी में सेटल होने में वहाँ पे, है ना, वो क्या स्किल्स होती है?
0: सबसे पहली स्किल है किसी भी कंपनी में जाने के बाद कि आप उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सको. आपको आदत नहीं होती है कि आप ऑलमोस्ट 8-9 hours स्क्रीन के सामने बैठो और सिर्फ काम करते रहो काम करते रहो. तो पहले तो एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना होता है. दूसरी चीज़, हर कंपनी में सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते,
1: राइट.
0: तो बहुत बार फैमिली लाइक बिहेवियर भी होता है वहाँ पे, और बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, वी डोंट एग्री विथ यू, यहाँ आप गलत हो. और अगर आप जूनियर हो तो आपको ये चीज़ें बहुत बताई जाती है कि नहीं नहीं आप तो गलत ही हो.
1: ये सुनने को बहुत मिलता है,
0: बहुत मिलता है. और स्टार्टिंग के डेज में तो बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पे The only thing you have to do is आपको सहन शक्ति लानी है अपने अंदर. इस चीज़ को बहुत let go करके चलना है. क्योंकि अगर ये आप एक टोकरा सर पे उठा के चलोगे तो till the day you retire आप यही सब उठा के चलते रहोगे,
1: थक जाएंगे.
0: तो इसीलिए अगर कोई कुछ कह रहा है तो we just need to understand कि ठीक है, हमें सीखना है और ये सीखने के लिए मुझे इस flow से तो जाना ही पड़ेगा.
1: इससे गुजरना ही है आपको
0: जी,
1: ये नदी पार करनी ही उस ओर पहुंचना है तो
0: जी.
1: ओके, तो मतलब सहन शक्ति को बढ़ाना है और सुनना है, सीखना है. ये माइंडसेट के साथ हम जाएं वहाँ पे कि गलती तो होगी मुझसे, या नहीं भी हुई तो मुझे कोई गलत समझेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है
0: जी.
1: खुद को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, समझाना
0: पड़ेगा, खुद को बहुत समझाना पड़ता है. लाइक मेरे इनिशियल डेज में मैं ऑफिस गई हूँ और मुझे ये बोला जाता है नहीं नहीं अभी तो तुम नहीं हो तो तुम्हें हम मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो मेरे माइंड में बहुत थॉट्स चलने लग गए कि अगर मुझे मीटिंग्स में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है. बट देयर इज़ ऑलवेज वन पर्सन इन एनी कंपनी जो आपको पूरा बताता है कि इस कंपनी का फ्लो क्या चल रहा है या इसके बिजनेस प्रोसेसेस कैसे चलते हैं. सो मेरी भी टीम में ऐसे 2-3 लोग थे कि जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, भले वो मुझे डांटते थे कुछ नहीं सीखने पे या कुछ अवॉइड करने पे, लेकिन हाँ उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की पूरे प्रोसेस को सीखने के लिए.
1: वंडरफुल. तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है तो आप बुरा मान जाएं या दुखी हो जाएं, कोई ना कोई आपको वो भी मिलेगा जो आपको मदद करेगा.
0: जी
1: है ना. ओके ग्रेट. तो आपको सीखते जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है. और खुद को क्या आप मतलब क्या लर्निंग भी कॉन्स्टेंट, जैसे आपने कहा ना अंतर है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए क्या हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ पढ़ा, कुछ कोर्सेज में भी या ऑनलाइन क्या कुछ ऐसा किया आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बढ़े?
0: जी मैंने जब मेरा मैं पहली जो टीम में थी वहाँ हम ETL टेस्टिंग करते थे, जिसका मतलब है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड.
1: ओके.
0: सो ये सब पूरा क्लाउड पे होता है वर्क एंड बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. तो एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ कुछ डेटा गलत लोड कर दिया एंड बिजनेस के पास जब वो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई. बट ठीक है, माई मैनेजर हैंडल्ड इट वेल.
1: ओके.
0: बट हाँ, ये चीज़ मैं बहुत मुझे एक वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट या गीक्स फॉर गीक्स या फिर स्टैक ओवरफ्लो, तो ये वेबसाइट्स ने मुझे बहुत हेल्प की मुझे न्यू नॉलेज या न्यू कोई भी टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए.
1: ओके. एक बार फिर से वेबसाइट बता सकते हैं?
0: हाँ जी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, गीक्स फॉर गीक एंड स्टैक ओवरफ्लो.
1: ओके. तो इन वेबसाइट्स पे क्या मिलेगा हमें ऐसा जो हमें मदद करेगा?
0: जैसे मुझे SQL के बारे में थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करना था तो मैं हर वेबसाइट पे गई एंड मैंने SQL रिलेटेड क्वेश्चंस, SQL रिलेटेड जॉब में जो भी आती हैं प्रॉब्लम्स, वो मैंने वहाँ से अंडरस्टैंड की. तो इन वेबसाइट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया जो बिजनेस में क्या हो सकते हैं SQL के इम्प्लीमेंटेशंस, तो वो मुझे यहाँ से काफ़ी समझ आया.
1: ओके. तो मतलब हमें अपने को अपडेटेड रखना है
0: जी
1: नॉलेज में.
0: बिल्कुल.
1: और सीखते जाना है
0: जी.
1: और अगर कभी ऐसा लगे कि हमें मतलब ये तो मुझे आता नहीं है तो क्या करें?
0: जब आपको ऐसा लगे कि आपको ये आता नहीं है तो मैं तो क्या करती हूँ, अपनी कंपनी वेबसाइट पर जाती हूँ. वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है कि बिज़नेस क्या रिक्वायरमेंट रखता है कंपनी के आगे. तो मैं उस वेबसाइट पर जाती हूँ और एक बार गो थ्रू करती हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है.
1: अच्छा, उसको आप और समझते हैं?
0: उसको मैं और समझती हूँ और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इसमें और क्या एनहांस करना है. और कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मैनेजर्स जो होते हैं हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं. हमें लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ बोनस डिस्कस करने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो हमें पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं.
1: हेल्प करते हैं, आपको गाइड भी कर सकते हैं
0: जी.
1: तो उसके लिए हेल्प आपको मांगनी होती है, पूछना भी पड़ता है ना?
0: पूछना भी पड़ता है. आगे से आपको अपना एक क्वेश्चन डालना ही पड़ेगा हमेशा. अगर आपको कुछ सीखना है तो यू हैव टू कम टू दैट ग्राउंड.
1: दैट इज़ वेरी ट्रू. तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई आके आपको सिखाए उसका वेट नहीं करना है.
0: नहीं करना है,
1: हमें पूछना है.
0: क्योंकि कॉरपोरेट में आपको खुद से आके कोई कुछ नहीं सिखाएगा. अगर आप आइडल बैठे हो किसी डेस्क पे तो आप 9 आवर्स आइडल ही बैठे हो. अगर आपको कुछ जानना है सीखना है तो आपको पूछना ही पड़ेगा.
1: आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं
0: जी
1: उनको पूछना है आपको
0: जी
1: ना, और सीखना है. वंडरफुल. लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी ब्रह्मानी, क्योंकि कोई भी बच्चे जब कुछ करते हैं तो उनके घर वालों का भी उसमें रोल ज़रूर होता है, भूमिका ज़रूर होती है. तो आपके घर वालों की क्या उसमें भूमिका रही, या वो आपको क्या कहते थे, किस तरह से वो आपको एग्ज़ाम्स को या चीज़ों को देखने को कहते थे?
0: ओके. सो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फोर्स नहीं किया कि आप नहीं पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो. नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी एफिशिएंसी बनाए रखो, लेकिन आपको जितना इजीली हो रहा है वैसे ही करो.
1: ओके.
0: अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेक अ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है. आप बस शांत रहो और आप जितना कर सकते हो उतना करो. हाँ, ये है कि थोड़े अच्छे परसेंटेज रखना ताकि आगे फ्यूचर अच्छा रहे, जॉब अच्छी मिले एंड ऑल. बट मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे बचपन से.
1: ओके.
0: एंड मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने पॉलिटेक्निक की थी तो बीच में एक ऐसा फेज आ गया था कि मेरे एक सब्जेक्ट में बैक लग गई थी. एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि
1: आप इतने अच्छे स्टूडेंट
0: कि मैं अच्छे स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फिर मेरी पैक नहीं लगनी चाहिए थी. तो उस सिचुएशन में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि इट्स ओके, इट हैपन्स और ठीक है, दोबारा अपियर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, इट्स नॉट अ बिग डील. ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं था, और भी एग्ज़ाम्स हैं और इससे लाइफ ख़त्म नहीं हो गई है.
1: ये बच्चों को बताना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है
0: जी,
1: है ना, क्योंकि अंडर प्रेशर उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद नहीं कर सकते जितना आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तब कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस माता पिता के घर वालों के सपोर्ट से बहुत बढ़ता है
0: जी,
1: है ना, उनका विश्वास है हमारे ऊपर. या ये एग्ज़ाम ही सिर्फ आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ये कितनी अच्छी बात है. एक्चुअली आपने भी कहा था ये कंपनी भी कोई ऐसी आखिरी कंपनी नहीं है कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो आप आगे बढ़िए और यही अप्रोच रखिए, पर मेहनत पूरी करनी है उसके लिए.
0: बिल्कुल,
1: है ना, ऐसा नहीं कि अरे देखा जाएगा
0: जी
1: वो फिर गड़बड़ जाती है. तो बहुत अच्छा लगा प्रमाणी आपसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने जानी और स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हमारी जर्नी चलती है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम अकेले, हमें मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे इतना सुनना पड़ रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो बाकी लोग तो लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन देखिए प्रोसेस सभी के साथ सेम है
0: जी,
1: है ना.
0: हर कोई किसी ना किसी पॉइंट में उनकी लाइफ में ऐसे फेज़ में ज़रूर आता है जब उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो एकदम लोएस्ट लेवल पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. बट आपको बने रहना है,
1: बने रहना है.
0: जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे. अगर आप सोच के बैठ गए कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आप एक थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करोगे तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प.
1: अच्छा, जो आपने बताया था कि जैसे आप बीच बीच में भगवान को याद करते हैं या उनसे पावर्स लेते हैं, तो कैसे करते हैं वो, क्या हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या करना है उसके लिए.
0: पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ कि मैं तो क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि स्ट्रेस आउट हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ रही है, कुछ नहीं, थोड़ी सी डीप ब्रीथ लेनी है, आँखें बंद रखो या ओपन रखो, जैसा भी आपको कम्फर्टेबल है.
1: ओके,
0: एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपका जो ब्रीथिंग है उस पर आपको आपकी नज़र डालनी है कि मेरी ब्रीथिंग कैसे जा रही है, एंड धीरे धीरे उस ब्रीथिंग को स्लो करना है,
1: कॉन्सेंट्रेट
0: करना है ब्रीथिंग पे. और फिर उसके बाद आपको ये फील करना है कि आप सेल्फ में कौन हो.
1: ओके,
0: हर पर्सन जो होता है इसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक सोल होती है, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सोल रियलाइजेशन करना है, तभी आप गॉड रियलाइजेशन कर सकते हो.
1: ओके,
0: तो जब आप खुद को जान जाओगे तो आप परमात्मा को भी जान जाओगे. तो बस खुद में आना है और फिर गॉड से बस जुड़ना है कि गॉड प्लीज़ आप अपनी जो भी पावर्स हैं वो आप मेरे अंदर फ्लो करिए, जिससे मुझे हर डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे डील करने की शक्ति मिले.
1: ओके, और फिर आपको वो पावर्स महसूस होती हैं आप में आती हुई.
0: जी, वो पावर्स महसूस होती है.
1: It's wonderful. तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत टाइम भी नहीं लग रहा है ना, और बहुत जल्दी यू कैन डू इट, बट थोड़ा टाइम खुद को देना चाहिए.
0: थोड़ा टाइम नहीं, बहुत टाइम खुद को देना चाहिए. क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम खुद से अगर आप जोड़ रहे हो तो वो आप ही उस चीज़ का सोल्यूशन हो. अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आप ही प्रॉब्लम हो किसी चीज़ का, तो सोल्यूशन भी आप ही हो.
1: राइट, प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है आपसे जुड़ी है तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है दोस्तों. और अगर हम सोच रहे हैं ये करने से सब कुछ ठीक होगा, अपने ऊपर ध्यान देने से, अपने ऊपर हम काम जब फील करेंगे, अपने आप को कराएंगे, तब बाहर की चीज़ें और आसान होती हैं ना. इट्स द अदर वे राउंड. हमें लगता है बाहर चीज़ें ठीक होंगी तो मैं ठीक होंगी, पर आपने जैसा बताया मैं ठीक हूँ तो बाहर की चीज़ें ठीक होंगी.
0: जी,
1: वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा प्रमाणी आपसे बात करके. आपने समय निकाला, हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, और 6 बजे आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम उड़ान, जो कि लेकर आएंगे आरजे मोना जी. और दोस्तों युवाओं तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा. अगर आपको कभी भी लग रहा है ना कि ये आप नहीं कर पा रहे, तो आप कोशिश अपनी जारी रखिए, क्योंकि सोल्यूशन भी आप ही के पास है. और ये कोई आखिरी मंजिल, आखिरी एग्जाम या आखिरी कंपनी नहीं है, जीवन में और बहुत कुछ बाकी है, बस आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति की शक्ति से इस गीत के साथ साथ दुआएं दो दुआएं लो ये अगला गीत जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी का अभिनंदन करूंगी। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के लिए आज के इस कार्यक्रम में कविता, कहानी, सवाल, साथ ही साथ अमेजिंग जानकारी जरूर लेकर आऊंगी। और तो और कुछ बेहतरीन सा गीत, मौसम बादल सा छाया हुआ है लेकिन आबू रोड में बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं। गिनती से दो दिन बारिश हुई, एक दिन एक मिनट की और एक दिन शायद 15 मिनट की, लेकिन उसी में ही यहाँ वहाँ पानी जम गया और ऐसा मौसम दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बारिश हुआ। खैर, उम्मीद अब भी है कि बारिश का सीजन सचमुच आएगा, लेकिन उससे पहले दुआओं दो दुआएं दो दुआएं लो ये गाना पहुंचा देती हूँ, क्योंकि आप सुन रहे हो उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

यही शुभकामनाएं आप सबके लिए भी है कि आप आगे बढ़ते चलो, अपने अंदर शांति का अस्तित्व बढ़ाते चलो और दूसरों को भी प्यार देते चलो। वैसे कई बार आप हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ हाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आए। आप सभी मेरे श्रोतागण स्वस्थ रहे, मुस्कुराते जरूर रहे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको डॉक्टर के सफ़ेद कोट दिखते हैं, डॉक्टर सफ़ेद कोट पहने रहते हैं, पर सोचते होंगे ऐसा क्या है कि इन्हें सफ़ेद कोट पहनना पड़ता है, कोई इनको पनिशमेंट मिली हुई है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफ़ेद रंग एक्चुअली हमेशा से स्वच्छता और भरोसे का प्रतीक बना रहा है और माना जाता है कि डॉक्टरों ने सफ़ेद कोट पहनना लगभग 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के अंत 1880 के दशक से शुरू किया। जैसे जैसे चिकित्सक में वैज्ञानिक खोजें बढ़ने लगी, साफ सफाई हाइजीन का महत्व समझ में आया, डॉक्टरों ने सफ़ेद कोट पहनना शुरू किया। चूँकि सफ़ेद रंग पर दाग जल्दी नज़र आ जाते हैं, जिससे डॉक्टरों में स्वच्छता और सफाई को लेकर अवेयरनेस बनी रहती है। साथ ही साथ मरीज जब सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर को देखते तो उन्हें भरोसा भी हो जाता है और उन्हें सही और सुरक्षित इलाज मिल रहा है ये वो समझने लगते हैं। इस तरह सफ़ेद कोट डॉक्टर को प्रोफेशनल और भरोसेमंद बनाता है, मरीजों को शांति और सुकून ज़रूर देता है। तो चलिए इसके साथ साथ ये जो खूबसूरत लाइन है वो प्रेरणादायक कविता है। श्वेत वस्त्र में देव समान करते हैं ये जन कल्याण, पीड़ा हरते जीवन देते धरती पर है ये कहते हैं भगवान। रात

0: दिन एक कर जो जागते हैं, मरीजों की हर तकलीफ को समझते हैं, आशा की एक नई किरण जगाकर मौत से भी कई बार ये लड़ भिड़ते हैं, त्याग कर अपना सुख चैन मिटाते हैं ये सारे दर्द और बैन, दवा से ज्यादा मीठी बोली से कर देते हर घाव को चैन, भगवान को बस नाम सुना है पर डॉक्टर ही सच्चा जीवन दाता है, हर मुकाम पर ये फर्ज निभाते हमारा जीवन भी ये खास सवारते, तो ये डॉक्टर्स को विशेष कविता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाते, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं, इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: की जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज निकली।
3: दिल से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे कोई।
4: दोस्तों, आज का सवाल आप लोग दोस्तों के लिए विशेष, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन, इनमें से किसके उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से किसके उदाहरण है? ए, नोबल गैस के, बी, ज्वलनशील गैस के, या फिर सी, ग्रीन हाउस गैस के? झटपट जवाब दीजिए 9414151415 पर दीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए, तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह लीजिए।
5: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मिशन लाइफ आपके जीवन को सहज बनाता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। कांच की चादर ओढ़े धरती मुस्कुरा रही थी, ठंडी हवाओं में मौसम की कलियां खिल रही थी। जी हाँ, ये आज की कविता है। कांच की चादर ओढ़े धरती मुस्कुरा रही थी, ठंडी हवाओं में मौसम की कलियां खिल रही थी। यह कुदरत का नियम था, एक प्राकृतिक वरदान, जिससे सुरक्षित था यहाँ हर जीवन और इंसान। मगर लालच के पहिए ने बदली अपनी चाल, फैक्ट्रियों और धुओं से हुआ आसमान बेहाल। गैसों की चादर इतनी मोटी हुई, अब यहाँ बुनी जाने लगी, वापस अंतरिक्ष में जा ना पाई, धूप की किरणें ही चुनी। ग्लोबल वार्मिंग का दानव, ग्लोबल वार्मिंग का दानव अब फन फैलाए रहा था, पिघलते ग्लेशियरों से सागर उबल रहा था। हरित घर का यह प्रभाव अब अभिशाप बन चुका था, हरित घर का यह प्रभाव अब अभिशाप बन चुका था। धरती के फेफड़ों का दम यहाँ घुट रहा था, अगर अब भी न जागे हम तो मिट जाएगा ये पूरा संसार। पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ, यही है इस हरित घर का सच्चा उपचार। जी हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए विशेष। तो चलिए सवाल दोबारा रिपीट करते। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन गैस, इनमें से किसके उदाहरण है? क्या ये नोबल गैस है, या फिर ज्वलनशील गैस है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले गैस है? सही जवाब कॉल करके जरूर दीजिए 9414151415 पर दीजिए और अगला गीत जरूर सुन लीजिए। आंचल की तुझी,
7: ये देख, ये बंदूक अच्छी है। हाँ, और ये देख क्या है, मैं बजाऊं तो मैं गाना गाऊं? अरे धत, मुझे गाना कहाँ आता है?

0: प्यार ही प्यार,
1: बस प्यार ही प्यार पले आंचल की तुझे। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और मिथेन गैस किसके उदाहरण है भाई? नोबल गैस के, ज्वलनशील गैस के या ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के? झटपट जवाब दे सकते हैं। मैं मोना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, लाइव कार्यक्रम लेकर आई हूँ, क्यों देर कर रहे हैं? फटाफट हमें कॉल करके सही जवाब दीजिए, 9414151415 पर दीजिए। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी पहले लेकर आती हूँ, उसके बाद आपके लिए लेकर आऊंगी एक और कहानी। ये कहानी होगी उस चीज की जो अनोखा है। हाँ, अनोखा है। हम अनोखी कहानियों को ही तो आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें एक्चुअली आखिर मुझ में क्या कमी है, ये कहानी है आपके लिए। अब
2: क्यों ना करें, हो सकता है समस्या आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपकी 5 ऐसी आदतों में हो जो हर दिन चुपचाप आपका सम्मान छीन रही हैं। आज की कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। घने देवदार के जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे शिवपुर कस्बे में पवन नाम का एक 26 वर्षीय युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था, लेकिन एक बात उसे हमेशा अंदर से तोड़ देती थी। लोग उससे काम तो करवाते थे लेकिन उसकी राय को कभी महत्व नहीं देते थे। छोटी सी बैठक हो या किसी बड़े फैसले की बात, पवन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि शायद उसमें ही कोई कमी है। एक शाम वो अकेला एक पुरानी झील के किनारे बैठा था। ठंडी हवा बह रही थी, झील की लहरें चुपचाप किनारों से टकरा रही थीं और डूबते सूरज की लालिमा पूरे वातावरण को सुनहरा बना रही थी। पवन की आंखें पानी पर थीं, लेकिन मन में केवल एक सवाल घूम रहा था, आखिर मुझ में कमी क्या है? उसी समय एक वृद्ध माली वहां पौधों में पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने पवन की उदासी पहचान ली। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, लोग फूलों की खुशबू का सम्मान करते हैं लेकिन पहले फूल को खुद खिलना पड़ता है। पवन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? माली ने पास रखे 5 सूखे गमलों की ओर इशारा किया और कहा, इन 5 गमलों में कभी सुंदर पौधे थे लेकिन 5 गलतियों ने इन्हें सूखा दिया। इंसान भी अपनी 5 आदतों से ऐसा ही हो जाता है। पवन उत्सुकता से उनके पास बैठ गया। माली ने पहला सूखा गमला उठाया और कहा, ये उस इंसान जैसा है जो हर काम कल पर छोड़ देता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो अवसर आज है वो कल शायद कभी लौट कर ना आए। पवन को याद आया कि कितनी बार उसने बड़े मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि उसने शुरुआत ही देर से की। दूसरा गमला उठाते हुए माली बोले, ये उस पौधे जैसा है जिसे हमेशा लगता रहा कि वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। खुद पर शक करने वाला इंसान अपनी ताकत का आधा हिस्सा शुरुआत से पहले ही खो देता है। पवन की निगाहें झुक गईं। तीसरे गमले की मिट्टी बिल्कुल बंजर थी। माली बोले, जब इंसान हर दिन खुद को ही बुरा कहता रहता है तो उसकी सोच भी इसी मिट्टी की तरह बंजर हो जाती है, अच्छे बीज भी वहां नहीं उगते। पवन को एहसास हुआ कि वह खुद से कितनी कठोर बातें करता था। अब माली चौथे गमले के पास गए और बोले, इस पौधे ने धूप से डरकर कभी सिर ऊपर उठाया ही नहीं। डर हमेशा विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पवन ने गहरी सांस ली। उसे अपनी हर अधूरी कोशिश याद आने लगी। आखिर में माली ने 5वां गमला उठाया। उसमें पौधा था लेकिन उसकी शाखाएं हर दिशा में मुड़ी हुई थीं। माली बोले, ये पौधा हर तरफ मुड़ता रहा ताकि सबको खुश कर सके, नतीजा वो कभी सीधा बढ़ ही नहीं पाया। जो इंसान हमेशा दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता है वो अपनी असली पहचान खो देता है। पवन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहता था। उस रात वो घर लौटा लेकिन इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपना अधूरा काम पूरा किया। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। आईने के सामने खड़े होकर उसने पहली बार खुद से कहा, मैं बदल सकता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब असफलता मिलने पर वो रोता नहीं था। वो अपनी डायरी खोलकर लिखता, आज मैंने क्या सीखा। उसने लोगों को खुश करने की आदत भी छोड़ दी। अब वो वही करता था जो सही होता, चाहे सब उसकी तारीफ करें या नहीं। महीने बीतते गए, पवन पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। कार्यालय में उसकी राय सबसे पहले पूछी जाने लगी। कस्बे के युवा उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ समय बाद वही झील का किनारा फिर से उसकी जिंदगी का गवाह बना। इस बार वहां एक उदास युवक बैठा था, जिसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी पवन की आंखों में था। पवन उसके पास गया, हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। युवक उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। शायद उसी पल उसकी नई शुरुआत हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसी झील के किनारे पवन फिर से खड़ा था। शाम का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। उसने शांत पानी में अपना चेहरा देखा। उसे वो पुराना टूटा हुआ पवन याद आया, जो हर समय दूसरों से सम्मान की उम्मीद करता था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वे हार के नहीं बल्कि बदलाव की खुशी के आंसू थे। तभी वृद्ध माली उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, जब पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है तब उसे ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोग खुद उसकी छांव में आकर बैठते हैं। पवन ने सम्मान से उनके चरण छुए और कहा, आज समझ आया कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, उसे अपने चरित्र, अनुशासन और कर्मों से कमाया जाता है। वृद्ध माली मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि आज पवन सच में बदल चुका है। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी इज्जत आप अपने समय, अपने विचारों और अपने जीवन को देते हैं। जब आप अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब सफलता और सम्मान दोनों बिना बुलाए आपके जीवन में आने लगते हैं।
3: रहता था जो कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसकी मौत के बाद जो सच सामने आया, उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।
4: अरे बाबा, ये लो 10 रुपए।
5: मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए बेटा, बाकी किसी जरूरतमंद को दे देना।
4: पागल बाबा फिर शुरू हो गए। अरे बाबा, तुमसे बड़ा जरूरतमंद कौन है? इस गाँव में तुम अकेले ही तो भिखारी हो इस गाँव के।
5: अरे बेटा, जरूरतमंद बहुत है इस गांव में, कभी तुम दिल से देखो गांव को।
3: भिखारी की ऐसी बातों का गांव वाले मजाक उड़ाते थे। सब यही सोचते थे कि ये तो पागल है।
6: रात होते ही गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद अपने आप हो जाती थी। एक गरीब किसान के दरवाजे पर चावल और आटा रखा आ जाता था। एक बच्ची की स्कूल फीस पहले से जमा हो जाती।
3: गांव वाले सुबह सुबह इस बारे में जानकर खुश भी थे और हैरान भी थे।
7: अरे काका, आपने सुना कोई रामलाल के घर चावल का एक बोरा रख गया रात में?
8: हाँ, मैंने भी सुना। चलो अच्छा ही हुआ, बेचारे के इस बार खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई थी, बिना अनाज के उनका जीना मुश्किल हो रखा था।
9: अरे ये तो पुरानी बात है, मैंने तो सुना है आज जब राधा अपनी बेटी के साथ स्कूल गई तो पता चला किसी ने उसकी स्कूल फीस पूरी जमा करवा दी।
10: चलो अच्छा हुआ, उस बेचारी के घर में आदमी तो है नहीं, जाने कैसे करके अपना घर का खर्चा ही चला पाती थी। स्कूल वाले भी उसकी बच्ची को स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे थे।
3: बस गांव वालों को सब बातों की खबर तो थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांव में ये सब कर कौन रहा था। इसी गांव में एक साहूकार मांगीलाल रहता था। वो इस बात से परेशान था कि कोई गांव वालों को मदद कर रहा है, क्योंकि उसका काम कर्जा देने का था।
11: ये गांव वालों की मदद कौन कर रहा है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा, वरना कोई भी गांव वाला कर्जा लेने मेरे पास नहीं आएगा और फिर मेरा काम कैसे चलेगा।
10: अरे ओ कलिया, यहाँ आना जरा।
12: हाँ मालिक, हुक्म कीजिए। आज तुम कैसे भी करके रात में गांव में छुपकर पता करो कि ये गांव वालों की मदद कौन कर रहा है।
13: ठीक है मालिक।
3: मांगीलाल की बात मानकर कलिया ये पता लगाने के लिए चला जाता है। रात में कलिया देखता है कि गांव का वो बूढ़ा भिखारी अनाज का थैला एक घर के भर रख कर जा रहा था।
13: अरे ये तो वो भिखारी है ना, इसके पास इतने पैसे कहां से आए जो ये गांव वालों की इतनी मदद कर रहा है। लगता है इसने कोई खजाना छुपा रखा है। अब इसका पीछा करके खजाने के बारे में पता लगा लूंगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा।
3: कालिया देखता है गांव का वो भिखारी गांव के भर एक टूटे फूटे घर में चला जाता है।
13: अरे ये तो भूतिया घर है ना, इसमें जाने से तो गांव के सारे लोग डरते हैं। मैं अंदर जाके सारा खजाना लूट लूं तो? नहीं नहीं, ऐसा किया तो वो लालची सेठ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करता हूँ उसको बता देता हूँ, क्या पता वो खुश होके मुझे कुछ हिस्सा दे दे।
6: कालिया वापस मांगी लाल की हवेली पर लौट आता है और सारी बातें उसको बताने लगता है।
14: अरे आ गए तुम कलिया।
13: हाँ मालिक, मैंने सब पता कर लिया मालिक, इसके पीछे कौन है करके, और आप इस बात पर भरोसा नहीं कर पाओगे।
14: क्यों, ऐसा क्या पता लगा लिया तुमने जिस पर मैं भी भरोसा नहीं कर पाऊं?
13: मालिक आपको गांव के उस बूढ़े भिखारी के बारे में तो पता होगा जिसे सब पागल समझते थे, असल में वही है इन सब चीजों के पीछे।
14: ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो कैसे हो सकता है, वो तो खुद भीख मांग मांग कर खाता है ना।
13: अरे मालिक मैं बिल्कुल सच बोल रहा, मैंने खुद उसको रामलाल के भर अनाज रखते हुए देखा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो।
14: उस भिखारी के पास इतना पैसा आखिरी आया कहां से जो वो गांव वालों की ऐसे मदद कर रहा है?
13: वो तो मैं कैसे बताऊं मालिक, लेकिन मैंने उसको गांव के बाहर जो भूतिया घर है उसमें जाते हुए देखा था, शायद उसने वहां कोई खजाना छुपा रखा था।
14: अरे वो कोई भूतिया घर नहीं है, वहां पहले गांव का जमींदार रहता था जो सालों पहले गांव वालों की जमीन का सौदा करके शहर भाग गया था, तो गांव वालों ने उसका पूरा घर तोड़ दिया था। वो तो डराने के लिए गांव वालों ने कहानी बना दी।
13: ठीक है मालिक, मतलब वो कोई भूतिया घर नहीं है, तो मालिक फिर आगे की क्या योजना है?
14: कल रात मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम जो बोल रहे वो सच है कि झूठ, अगर सच हुआ तो हम उसका सारा पैसा अपना बना लेंगे।
6: उस रात कलिया के साथ मांगीलाल भी उस भिखारी का पीछा करता है।
14: अरे कलिया ये तो सच में वही भिखारी है।
13: हाँ मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था।
14: चलो फिर तो आज सारा खजाना अपना बना लेंगे।
6: दोनों उस बूढ़े भिखारी का पीछा करते हुए पुराने घर तक आ जाते हैं।
13: मालिक अंदर जाना सही होगा क्या?
14: अरे ये बुढ़ा अकेला क्या कर लेगा अपना, चलो अब चलते हैं सब अपना बना लेते हैं।
3: दोनों अंदर आते ही जैसे भिखारी को देखते हैं सीधा उससे पैसे के बारे में पूछने लगते हैं।
14: अरे ओ भिखारी, तेरे पास जितना भी खजाना है पैसे हैं सब हमारे हवाले कर दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा।
8: तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए?
13: देख भिखारी फालतू सवाल पूछे मत, जो मालिक ने बोला है वो चुपचाप कर दे है, यही तेरे लिए अच्छा होगा।
8: अरे साहब मेरे पास कहां से खजाना आएगा, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है।
14: गलत फहमी? अबे साले हमको सब पता है इस गांव में, जो तू सबका भला करता रहता है रात में उसके बारे में भी, और कैसे तू दिन में भीख मांगता रहता है, इसलिए ज्यादा अपना दिमाग मत चला और चुपचाप जो भी तेरे पास है हमारे हवाले कर दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा।
3: भिखारी को भी समझ में आ गया था उसका ये नाटक नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने असली पहचान में आ जाता है।
8: अरे ओ मांगीलाल, तू अभी तक नहीं सुधरा, गरीब किसानों का ब्याज का पैसा खा खा कर तेरा पेट नहीं भरा, तो अब तू लूट पाट पर भी आ गया।
14: कौन हो तुम और तुमको कैसे पता मैं गरीब किसानों से ज्यादा ब्याज लूटता हूँ?
8: मुझे सब पता है, तुम अनपढ़ किसानों के साथ ब्याज के नाम पर धोखाधड़ी करती हो, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी तुम्हारे कर्ज पूरे हुए वो सब मैंने ही भरे थे, और ये जो तुम कागज देख रहे हो वो इन सब का सबूत है।
3: मांगीलाल भिखारी की तरफ ध्यान से देखा है और उसको फिर पता चलता है ये तो वही जमींदार है जो बहुत समय पहले गांव वालों के पैसे लेकर भाग गया था।
14: अरे तुम तो वही जमींदार सुखी राम हो ना, जब बहुत समय पहले पैसे लेकर भाग गया था और अब तुम शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो यहाँ।
8: हाँ मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी, और मैं इस गलती का पछतावा करने इन गांव वालों की मदद करने आया हूँ।
14: गांव वालों की मदद? पहले उनको लूटो फिर मदद करने का दिखावा करो। मैं भी देखता हूँ गांव वालों को, जब पता चलेगा कि तुम कौन हो तो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। चलो कालिया यहाँ से चलते हैं।
13: लेकिन मालिक वो खजाना उसका क्या, क्या हम वो खजाना नहीं लूटेंगे इस बूढ़े से?
14: नहीं अब उसकी जरूरत नहीं, ये भिखारी अब इस गांव में नहीं रुक पाएगा, तो हमारा काम वापस अच्छा चलने लग जाएगा।
3: इतना बोलकर मांगीलाल कलिया के साथ वहां से चला जाता है और सुखीराम वहीं खड़ा खड़ा अपने बारे में सोचता है। और उसके बाद उसके भूतकाल में जाने पर पता चलता है क्यों वो भिखारी बनकर गांव वालों की मदद कर रहा है। एक दिन अचानक से सुखीराम की बेटी बीमार पड़ गई।
15: सुखीराम जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें लेकिन आपकी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, बीमार का भी पता नहीं चल पा रहा है।
8: डॉक्टर, आप कैसे भी करके बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए।
15: सर, बात पैसों की नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस भगवान से दुआ कीजिए कि बीमारी का पता चल जाए। अगर बीमारी का पता चल जाएगा तो हम इलाज अच्छे से कर पाएंगे।
3: सुखीराम हॉस्पिटल के बाहर परेशान बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था।
8: भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्ची को क्यों दे रहे हो।
3: तभी वहाँ अचानक से एक बाबा जी सुखीराम के पास जाते हैं।
16: तुम सही सोच रहे हो सुखीराम, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ रहा है।
8: मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हो।
7: क्या तुम भूल गए तुमने गांव वालों के साथ क्या किया था। बस वही कि बद्दुआ तुम्हारी इस हालात का कारण है। अब तुमको समझ आ गया होगा तुम्हें आगे क्या करना है।
16: हाँ बाबा जी, समझ गया, आपका शुक्रिया बाबा जी मुझे अपनी गलती समझाने के लिए,
3: अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए और गांव वालों की मदद करने के लिए ताकि उसकी बेटी सही हो सके। भीखाराम गांव में भिखारी के रूप में आ जाता है। अगर वो असली रूप में आता तो गांव वाले उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, इसलिए सुखीराम ने भिखारी का रूप बनाया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुबह सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि वो भिखारी सुखीराम है। वही सुखीराम है जो सालों पहले गांव वालों का पैसा लेकर भाग गया था। गांव वाले मिलकर सुखीराम को ढूंढने जाते हैं लेकिन वो जाते उससे पहले ही सुखीराम वही उनके पास आ जाता है।
16: सुखीराम, अब तुम्हारे इतनी हिम्मत हो गई तुम हम लोगों के सामने आने से भी नहीं डर रहे।
17: तुमने हमारा पहले सब कुछ छीन लिया, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो।
8: मुझे माफ कर दो आप सभी लोग, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। उस समय मैं लालच में अंधा हो गया था इसलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन अब मैं आप सभी लोगों का कर्ज चुका दिया है। मांगीलाल से मैं आप सभी का कर्ज खत्म कर दिया है और मैं अपनी कमाई हुई आधी जायदाद आप सभी गांव वालों के नाम कर रहा हूँ। जिस काम में आप लोग अस्पताल और स्कूल खुलवा सकते हो, बस मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो आप लोगों को। आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद हमेशा के लिए करूंगा।
18: अरे अब इसको अपनी गलती का एहसास है तो आप लोग भी इसको माफ कर दो।
16: ठीक है, अगर तुमको अपनी गलती का एहसास है तो माफ कर देते हैं। वैसे भी तुमने हम लोगों से जितना छीना था उससे ज्यादा का तुम भुगतान कर चुके हो।
8: जाते जाते आप लोगों को बताता जाता हूँ, मांगीलाल आप लोगों से ज्यादा कर्ज वसूल था। उसके खिलाफ जितने सबूत हैं वो सब मैंने अपने पुराने हवेली में रखे हुए हैं। आप लोगों को तो ठीक लगे उसके साथ कर सकते हैं।
3: कुछ गांव वाले पुरानी हवेली में जाते हैं और वहां देखते हैं सारे कर्ज के कागज जो उन्होंने मांगीलाल से कर्जा लिया था।
16: अरे ये तो सच में कर्ज के कागज हैं। सुखीराम ने सारा कर्जा चुका दिया था, उसके बाद ही मांगीलाल हमसे कर्ज मांग रहा था, और ये देखो इसमें हिसाब में कितनी गड़बड़ी है।
9: चलो फिर चलते हैं मांगीलाल के पास से पूरा हिसाब मांगते हैं।
3: गांव वाले मांगीलाल के घर के आगे पहुंच जाते हैं।
16: मांगीलाल, सुखीराम ने हमारा कर्ज चुका दिया था, उसके बाद भी तुमने हमसे जो पैसे लिए हैं वो पैसे वापस करो।
14: कौन सुखीराम, किसी ने भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया और अभी भी कर्ज बाकी है। अगर तुम लोगों ने समय से नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
9: हमारे पास सारे सबूत के कागज हैं। अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
14: तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो।
3: गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर मांगीलाल की शिकायत कर दे, गांव में पुलिस जाकर मांगीलाल को गिरफ्तार कर लेती है और मांगीलाल को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है।
1: बुरे कर्म की सजा होती ही होती है, किसी न किसी हाल में ही होती है, इसीलिए अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन इनमें से किसके उदाहरण है? नोबल गैस की, ज्वलनशील गैस की या फिर ग्रीन हाउस गैस के? सही जवाब झटपट दीजिएगा 9414151415 पर दीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक और गीत आपके पास अब लेकर आ रहे हैं।

कल दो पल का शायर हूं, ये गीत सुना रहे थे। आज का होमवर्क आपके लिए, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया और दो की दिया कि नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार पहुंचे। हर एक गांव में ढिंडोरा पिटने लगा। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की खूब भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते में एक तरफ वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिए कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक कर था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास किया। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंच गया। हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पर पहुंच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा दुखी में दुखी हो सकता है, उसे दूर करने की कोशिश कर सकता है, राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी वो जरूर बनता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और आज से करमवीर राज्य का नया मंत्री भी बन गया। वाओ दोस्तों, ये छोटा सा होमवर्क आपके लिए था। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन किसके उदाहरण है? नोबल गैस के, ज्वलनशील गैस के या ग्रीन हाउस गैस के? चलिए नोबल गैस के बारे में बता देते। वो गैस जो ग्रुप 18 के होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, रेडॉन, ये सारे गैस काफ़ी हल्के प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही साथ ये ज्वलनशील नहीं होते। इनमें कोई रंग भी नहीं होता और इनमें कोई खुशबू भी नहीं होती और ये नोबल गैस के उदाहरण हैं। वहीं पर ज्वलनशील गैस हैं ऑक्सीजन, जी हाँ, हाइड्रोजन, ये ज्वलनशील गैस के उदाहरण हैं। और ग्रीन हाउस गैस के कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। पर सवाल हमने क्या पूछा था और सही जवाब? चलिए थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते। कॉल किसी ना किसी दोस्त का ज़रूर आएगा, इसी उम्मीद से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं।

अल्लाह तेरो नाम ये गीत आप आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल का जवाब सही देकर चले जाते हैं। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन उदाहरण है नोबल गैस के, नहीं न ही ज्वलनशील गैस के, बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैस हैं ये तीनों। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहते गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते, सभी वर्ग से मिलते, तो आज हमें खुशी है क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं और बच्चे शिकलियत होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबर ब्लॉक और अबरोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही, सभी बच्चे बच्चों के हिस्सा लेंगे क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है। तो अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा पॉलिसी

0: बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने। आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट।
1: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल्ली से आते हैं, कौन सा गांव, कहाँ से?
1: बहादुरपुरा।
0: ओके नेक्स्ट।
2: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गाँव का नाम बहादुरपुर।
0: वेरी गुड।
3: मेरा नाम दुष्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
4: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला आज।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
4: जी
0: फायदा होगा
4: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में, हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब इनकी आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का, मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: हाँ, यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पार्ट पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं माँ बाप। बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता देखिए बहन।
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा
0: बड़ा,
2: दादी, नाना नानी।
0: हाँ, इसको कैसे बोलेंगे भाई? दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया,
2: भैया बहन,
0: बहन, और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स, मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचते हैं बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी हमारा दीदी बड़ा भाई अच्छा बने ऐसे सोचते हैं ना
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा। और बड़ों का क्या बनेगी? टीचर
1: जी।
0: इसलिए मेहनत क्या करती तुम?
2: पढ़ाई करते।
0: कितना घंटा?
2: दो
0: घंटा से नहीं चलेगा, और
2: करते और स्कूल में छह घंटा,
0: छह घंटा, आठ घंटा हुआ, 24 घंटा से 8 घंटा का। और कितना समय कहाँ क्या करती तुम?
2: और खेलते,
0: सोते, खाते पीते खाते हैं खाना, दिन में खा कर दिन को गवा देते हैं, सो सो कर रात को, तो पढ़ते कब?
2: दोपहर को पढ़ते।
0: हाँ, होशियार बच्चे, बोला हम पढ़ते हैं सर, दोपहर को हम पढ़ते हैं, आप ऐसे कैसे बोल देंगे? दिन में हम खा कर सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे, ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे बच्चे
1: जी?
0: जब तक कॉलेज है तब तक तो पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे?
1: मेहनत।
0: जोर से बोलो,
1: मेहनत,
0: मेहनत, 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे? सर्विस। क्या लेंगे?
1: सर्विस,
0: नौकरी लेंगे।

0: है ना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुम क्या बोलेंगे, बड़े होकर टीचर तो बने इसलिए मेहनत करती है तुम, फिर
1: जी
0: नाम बताओ।
1: ईना कुमारी
0: हिना, मेहनत करती है,
1: जी।
0: वेरी गुड। ये तो जी जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी को धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझकर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गाँव में आता है और बड़ा क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं तो हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बात का हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
1: जी खेलते हैं।
0: कौन सा खेल खेलते हैं?
1: कबड्डी।
0: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
1: सर मजबूत बनता है।
0: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा है भाई। शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक का विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
1: टीचर बनना।
0: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर मीन पीटीआई साहब बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त, हेलो क्या नाम है?
2: मोती राम।
0: वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गाँव का नाम पूरा बताओ।
2: बहादुरपुरा।
0: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
2: जी।
0: क्या नाम बताओ?
2: जगदीश।
0: कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए हेलो, नाम बताओ?
2: रमेश।
0: रमेश हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा? फूल का नाम बताओ देखी।
2: कमल
0: फूल। वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना उसका कीचड़ नहीं लगता है लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड। तुम्हारा नाम?
2: जी सर, मैं बहादुरपुर में रहता हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगा?
2: पुलिस वाला।
0: वेरी गुड, पुलिस बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ और छोटा सा।
3: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बहादुरपुरा में रहता हूँ।
0: और अच्छा भोजन करते हैं ना, क्या खाते हैं? अच्छा कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
3: दाल रोटी।
4: मेरा नाम किशन कुमार है, मैं बहादुरपुरा में रहता हूँ।
5: मेरा नाम गमा राम है, मैं बहादुरपुरा में रहता हूँ।
6: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
0: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है बहादुरपुरा के आसपास गांव?
3: सरीफली।
0: हाँ।
3: चनार।
0: मुंगथला
3: जी।
0: फतेहपुरा।
3: फतेहपुरा।
0: डांगफली।
6: साकोड़ा।
0: बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
3: मई खेड़ा।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया खालसी और आप सुन रही है रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।
1: चलिए, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे, सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और गांव का आसपास क्या है सुनने को जा रहे। तो रेडियो मधुबन आज इनको, सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हमारा साथ एक छात्रा है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
1: सोनिया, बहुत अच्छा। सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
2: बाप ने।
1: बाप ने क्या नाम बाप का?
2: कानाराम।
1: कानाराम, अच्छा।
3: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
4: मेरा नाम पंकु कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
1: बहादुरपुरा क्या?
4: मैं बड़ी होकर पुलिस बनू।
1: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना? मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
4: जी।
1: क्या करता पुलिस? चोर को
4: पकड़ता है,
1: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा, उसको जेल में
4: डालेंगे।
1: नेक्स्ट।
5: मेरा नाम सीता कुमारी है, गाँव का नाम बहादुरपुरा है, मेरा पिता का नाम कानाराम है, माता का नाम अंजा देवी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगी?
5: डॉक्टर।
1: सीता है ना नाम? वाह। सीता रामायण में है ना, महाभारत में? सीता किस में है? सीता
5: रामायण में।
1: रामायण में सीता और राम और सीता, श्री राम और श्री सीता कहते हैं। और महाभारत में द्रौपदी क्या बोलते हैं? सबको अच्छा लगा
6: जी?
1: क्या अच्छा लगा? एक बात बताओ, ज्ञान अच्छा लगा ना? रेडियो अच्छा लगा ना? खुद अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा बोलो? अच्छा लगा ना? सब बुरा लगा? क्या अच्छा लगा रे बहन?
6: क्या?
1: ज्ञान अच्छा लगा। ज्ञान माने समझ। समझ में आया
6: जी?
1: समझ में आया
6: जी?
1: तुमको समझ में आया
6: जी?
1: तुम कौन हो? सीता ना आत्मा?
6: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
1: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
4: मैं आत्मा, मेरा नाम पंकु।
1: मेरा नाम,
3: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
1: समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई, किंतु मेरा आ गया, इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी, सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहाँ से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इनाम कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: तेजल बोलो।
4: 9th
0: क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी
0: माँ आई लगता है। गलबा राम सरपंच से पहले, हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कौर, मैं बहादुरपुरा में रहती
0: हूँ। अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा? आज कार्यक्रम कैसे लगा? सभी को अच्छा लगा होगा ना? बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम? आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे?
7: हाँ जी,
0: हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे, मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है? और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को, भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?
8: भाई को।
0: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते?
8: बहन को भी देते
0: हैं। बहन को भी देते हैं पीछे?
8: हाँ।
0: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए?
8: नहीं नहीं,
0: नहीं होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है तो बराबर होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं, और सरकार का जो मंच है आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जो इस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज राज के विद्यालय में पहुंचे हमारा सभी छात्राओं को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब को जाता है और सभी स्टाफ को जाता है। उनका परमिशन के चलते आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे और बारी बारी सभी का आवाज सुनने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ होनहार बच्चे, तो अपना परिचय देंगे और कहां से और कौन सा क्लास में और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे सभी सुनेंगे। चलिए हमारा पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ छात्राएं अपना नाम बताएंगे।
3: मेरा नाम है अनिता कुमारी
2: जी। और कौन सा क्लास?
3: 10th
2: क्लास। और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे अनिता? राजकीय
3: उस्मानी विद्यालय
2: मईखेड़ा, जो कि बादबुरा ग्राम पंचायत में आता है। ये एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया, क्योंकि पहले 8वीं क्लास, इसके बाद 10वीं क्लास, इसके बाद 12वीं क्लास, है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में
3: हैं?
2: 10th में। अच्छा, बोर्ड परीक्षा होगा इस बार, है परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। और घर में कौन कौन है अनिता?
3: बाप, आई
2: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
3: विज्ञान।
2: विज्ञान।
4: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है।
2: हाँ।
4: मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: हाँ। अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ। सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते, क्या नाम है? सभी सभी बच्चे उनका दोस्त है। चलिए, सब शर्माते, शर्माने से नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

पूजा और उनका साथी आए हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से। नन्हे नन्हे सितारे आए हैं, तो इस कार्यक्रम में पूजा को भी स्वागत करते हैं। पूजा साथी।

0: میں تے بیٹھو
1: धन्यवाद लेते छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे और ये अंतिम पड़ाव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी, क्या नाम बताए थे फिर अपना?
1: आरोही कुमारी।
0: आरोही, बस आरोही, अवरोही नहीं, आरोही मीन्स ऊपर उठना है, अवरोही मैंने नीचे डाउन, इनका नाम है आरोही। क्या नाम है?

0: आरोही
1: वाह कितना सुन, मैंने पहला बार सुना आरोही है ना,
0: जी
1: कौन नाम रखा है आरोही?
0: मेरी बहन।
1: आरोही का मतलब क्या जानते हैं ना? आरोही मतलब उठना है, चढ़ना है,
0: जी
1: उड़ना है, आरोही मतलब चढ़ना। चलिए शुरू करिए।

0: आराम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्म जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए, और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चिया आएंगे बर्थ को हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th 10th 11th 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे, और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म उन्नति किए, आत्म अनुसंधान किए, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए, खुद को महसूस किए। हाँ, ये खुद को महसूस किए। हम सब कौन है? हाँ, देखा समझ में, आत्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति हुआ ना, इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन, और गॉड रियलाइजेशन भी किए, परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, केम छो की कैंड हो। दिन भर की दौड़ भाग, काम काज और हर तरह की फिक्र को अभी के लिए बिल्कुल बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि घुमा दिया है आपने रेडियो का डायल और ठंडक पहुंचाइए सीधे अपने दिल को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और वक्त हो चुका है आपके अपने सबसे पसंदीदा शो, जहां सुरों का सिलसिला कभी नहीं टूटेगा और बातें होगी बिल्कुल अपनों जैसी। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना शो खुशी के नगमे दिल की बातें। आज 8 जुलाई की खूबसूरत शाम को हम और आप मिलकर सजाने वाले हैं यादों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसे सुनकर आपके चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अगले कुछ घंटे, सिर्फ एक घंटे, बस आप है, मैं हूँ और सुनहरे दौर के वो नगमे हैं जो सीधे आपके दिल को छू जाएंगे। तो बस थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा नहीं पूरा मुस्कुराइए, अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चलिए इस खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, आज की शाम थोड़ा और सुनहरा बनाते हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सीधे आपके दिल तक पहुँचेगी और कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आप बस आराम से बैठिए, एक कप गरम चाय हाथ में ले लीजिए, मैंने तो ले ली अपने हाथ में गरम चाय, और शाम को अपने नाम कर दीजिए। सुनते हैं पहला ये बेहद ही प्यारा गीत, प्यारा नगमा सुनते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। और दोस्तों, आज आपको अगर याद है तो हमने कल आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी। जी हाँ, हमने कहा था कि बारिश के मौसम में बारिश गिरती है तब, नॉट बचपन में, लेकिन अभी इस समय या हमारी जवानी के समय की अगर हम बात करें या फिर अभी हम क्या करते हैं बारिश के मौसम में, कहीं घूमने का, कहीं बारिश में पकोड़े खाने का प्लान या कुछ भी, जो भी हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कॉल नंबर आपको पता है 9414151415 पर। और बात कर रहे हैं हमारे पास कॉल आने की, तो पहला ही हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े, चले सुनते हैं उनसे, करते हैं बातें। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार भाऊ जी, नमस्कार। क्या कहना है आपके साथ में, हमारे तो भी जिंदगी भर रहना है।
0: क्या बात है, क्या कहना है, जिंदगी भर रहना है। और आपका कॉल सुबह सुबह आता है या हमारे पास सबसे पहला कॉल आता है तो सबसे प्यारा हमें लगता है, क्या बात है।
1: अरे प्यारे से प्यारे

0: अच्छा ये बताइए मुझे कि अभी क्या करते हैं।
1: कहीं के सवाल का जवाब यही है।
0: बिल्कुल। अच्छा अभी मैं तो अभी के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आप इस उम्र में क्या करते हैं?
1: अभी कल होगा, जब कल आज की बात कल होगी।
0: अच्छा आज की बात कल होगी, चलिए ठीक है। एक्चुअली तो प्रश्न यही था, मैंने कल यही पूछा।
1: मेरा एक गाना भी है उसके कान में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सुना दीजिए।
1: कितना प्यारा वादा इन मत वाली आंखों का,
0: क्या बात है,
1: क्या कहना है,
0: क्या कहना है, आपके संग हमें रहना है जिंदगी भर। वाह वाह,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी साथियों के साथ में रहना है, जैसे सूरज भाई है, भजन है
0: जी,
1: और ये सभी साथियों के साथ में रह करके अपने को मस्ती लौटनी है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ मस्ती के साथ में रह करके अपने समय को व्यतीत करते हुए अपना समय निकालना है। अब 77 का हो गया है।
0: अच्छा
1: हाँ थोड़ा दिन और रह जाएगा तो हो जाएंगे 100।
0: अरे
1: डबल मंजिल पे रहते हैं और डबल जीरो पे रहेंगे।
0: नहीं नहीं बहुत बहुत प्यारी बातें करते हैं आप, और हम चाहते हैं कि आप
1: प्यारे जितने जितने दूर है उतने प्यारे है। हाँ। पास में आएंगे तो खारे भी हो जाएंगे, भारी भी हो जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बुरीराम जी, आपसे बात करके हमें
1: धन्यवाद। एक दूसरे से कॉल भी आ जाएगी, मान सुनेंगे और मजे लेंगे, आनंद लेंगे।
0: बिल्कुल। और आज
1: धन्यवाद,
0: आज दिन ही ये है। थैंक यू सो मच। आज दिन ही ये है कि हम तो बस खुशी की बातें करें और ऐसे ही हंसते हंसाते रहे, और हमारी उम्र को हम और भी आगे बढ़ाते रहे। और ये थे हमारे बुरीलाल जी, और आते ही इन्होंने कितना प्यारा गाना, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का। सुनेंगे, ज़रूर से सुनेंगे, इनकी भी ये फरमाइश हम पूरी करेंगे। लेकिन वक्त है हमारे आज के पहले गाने को सुनने का। सुनते हैं आज के दिन का हमारा पहला गाना, और फिर करते हैं गाने के बारे में बातें, और सुनेंगे एक से एक मशहूर हिट आज के दिन में, और करेंगे गानों के बारे में बातें। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये बेहतरीन गाना।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: यहाँ दोस्तों वेलकम बैक। और अभी हम जब सब जिस संगीत की गहराई में डूबे हुए थे वो कोई आम गाना नहीं था। फिल्म गूंज उठी शहनाई से 1959 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई की वो पावन धुन, लता मंगेशकर जी की वो निर्मल आवाज़ और भरत व्यास जी के लिखे वो अद्भुत बोल, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगी प्रीत। जी हाँ, इस गाने के बोल सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि संगीत का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि देखो, जब एक संगीतकार अपने सुर को एक गीतकार के शब्दों के साथ पूरी पाकिजा से मिला देता है तभी ऐसी रचना बनती है जो जमाने की दीवारों को तोड़कर हमेशा के लिए अमर हो जाती है। राजेंद्र कुमार और अमिता जी पर फिल्माया ये गीत हमें बताता है कि प्रेम और संगीत में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ दोस्तों मूवी थी जैसे आपने बताया, मैंने आपको बातें करते, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। चलिए करते कॉलर से हमारी बातें। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ से भाषा
0: जी। बुरा राम जी, कैसे हैं आप?
1: बस आपकी दया से बैठे हैं खाट पे और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और मैं बोला मेरे को पहले राम राम तो कर दो।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया राम राम करने के लिए। क्या है मौसम के हाल चाल वहाँ पे?
1: बस बारिश तो कोई इतना नहीं आ रहा, वो गर्मी पड़ती है और काले बादल छाए रहते, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कोई कुदरत करेंगे वैसा,
0: अच्छा
1: क्या करे। दूसरा सब मधुबन भाइयों को मेरा राम राम है
0: जी।
1: और सुरेश भाई, सूर्यलाल जी, मदन लाल जी, सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम।
0: चले जो भी सुन रहे हो सबकी तरफ से आपको भी राम राम।
1: और भूरे लाल जी का तो मेरे को उनका हंसना और बात करने से मैं और मेरा मन
0: खुश हो जाता है,
1: हो जाता है। और मेरे को भी हंसी आती है।
0: बिल्कुल नहीं, सभी को, क्योंकि वो बात ही इतने प्यार से करते हैं, सभी के साथ हंस के बातें करते हैं और सभी का दिल खुश कर देते हैं, तो बड़ा मजा आता है।
1: खुश करता और मैं हंसने का तो बहुत ही अच्छा उनका ये
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
1: अपन भी हंसते
0: जी।
1: चलो बाकी मेरी भी एक फरमाइश है, सुनाएंगे तो अच्छा सर
0: जी। बिल्कुल सुना देंगे, जरूर से सुनाएंगे, बताइए।
1: फिल्म है प्यासा सावन,
0: हाँ
1: वो गाना है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ऐसा करके गाना है, कुछ
0: सुना
1: है
0: हाँ जी,
1: लेकिन इतना याद नहीं है। प्यासा सावन का तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ऐसा करके गाना है।
0: बिल्कुल, चलिए हम आपको जरूर से सुना देंगे। हाँ बिल्कुल से सुनाते हैं आपको ये गाना। थैंक यू सो मच बुराराम जी कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे बुराराम जी और बहुत ही प्यारे, आज तो हमारे बुरी राम जी ने भी बहुत प्यारा गाना हमें फरमाइश के रूप में दिया है। बुराराम जी ने भी क्या गाना दिया है, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, कितने प्यारे गाने ये, उस वक्त के इतने आइकॉनिक गाने हैं कि सुनते ही आप जहाँ हो वहीं बैठ करके इन गानों के बोलों में खो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात हो रही थी इससे पहले जो हमने गाना सुना था तेरा सुर और मेरे गीत, दोस्तों कुछ मूवी के बारे में हम आपको याद करा दें कि दोस्तों जब बात गूंज उठी शहनाई की निकली है तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी सुनहरी यादें हैं जो अभी भी पुराने दौर के दीवानों के दिलों में ताज़ा है। फिर से हमारे साथ हमारे कोई कॉलर जुड़े, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो
2: नमस्ते, गुड इवनिंग सुरेश भाई, कैसे हो सर?
0: बढ़िया है सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं, बैठा है काम कर रहे हैं तक तो
0: ओके।
2: चलो सभी जुड़ गए हैं तो मैंने सोचा हम भी खूब बाकी रह जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे तो बाकी रह जाए, सही कहा।
2: हाँ बाकी नहीं रह जाना चाहिए क्योंकि हमारे बुरा राम जी आ गए, बुरी लाल जी भी आ गए
0: जी,
2: सभी ने अच्छा एक राम राम जी को कर दिया, तो चलो अच्छी बात है, सभी को एक दूसरे का राम राम पहुँच ही जाता है जब तक
0: जी। बिल्कुल,
2: एक दूसरे से जो बातें करते हैं एक दूसरे का संकल्प पहुँच ही जाता है सर।
0: बिल्कुल,
2: तो एक अच्छा रिश्ता भी बन जाता है, सामने देखा नहीं है एक दूसरे को, देखा नहीं है फिर
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
2: एक रिश्ता बन जाता है। मैंने आपको नहीं देखा, फिर भी हम अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं चलो भाई हमारे केवल भाई बैठे हैं, बात कर रहे हैं आप।
0: शुक्रिया।
2: जैसे हमारे सभी मित्र भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम सामने सामने बात कर
0: बिल्कुल,
2: रहे हैं।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल। तो एक कहते हैं हमारा दीवान परिवार है
0: जी,
2: तो परिवार को तो एक दूसरे का हाल चाल पूछना ही जरूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन में एक कहते हैं अभी रात को ही एक दूसरे की मुलाकात हो जाती है
0: जी।
2: चलो अच्छा गाना भी हमारे बुरा राम जी ने बताया है जी, सावन का
0: जी।
2: मैं भी बता दूं, चलो अच्छा गाना है, चित्तचोर फिल्म का गाना है।
0: चित्तचोर फिल्म का गाना,
2: हाँ चित्तचोर फिल्म का गाना है कि गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। शायद मेरे हिसाब से हमारा बुरा राम जी ने गाना वो एक दिन पसंद किया था मेरे हिसाब से।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि आपको हाँ ये गाना
2: दोबारा सुन ले। चलो कोई बात नहीं,
0: बिल्कुल
2: अच्छा गाना है। सभी हमारे भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की।
0: थैंक यू सो मच।
2: मस्त रहे, अच्छे रहे, व्यस्त रहे, हरदम जैसे हमारे बुरेला जी की तरह मुस्कुराते रहे।
0: बिल्कुल,
2: शुभकामना सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेश जी कॉल करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो आज तो हमारे पास गाने बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए हैं और हम उन सभी गानों को सुनेंगे भी। लेकिन जी हाँ, हम बात कर रहे थे मूवी के बारे में, गूंज उठी शहनाई की निकली है, तो फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी सुनहरी यादें हैं जो अभी भी पुराने दौरों के दीवानों के लिए दिल में ताज़ा है। शायद आप जानते हैं कि इस फिल्म का जो संगीतकार वसंत देसाई जी, इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा जोखिम रिस्क उठा रहे थे। पूरे देश में शहनाई का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। जी हाँ, आप सबको अगर याद हो तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान बहुत ही मशहूर थे उनकी शहनाई की धुनों के लिए। लेकिन फिल्म में उन्हें शहनाई बजाने के लिए राज़ी करना कोई आसान काम नहीं था। वसंत देसाई जी की लगन और उनके संगीत के प्रति आदर को देखकर उस्ताद जी मान गए। और एक दिलचस्प बात बताऊँ, फिल्म के गानों में जहाँ जहाँ राजेंद्र कुमार जी पर्दे पर शहनाई बजाते दिखते हैं, पीछे बैकग्राउंड में सच में उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब अपनी शहनाई फूंक रहे थे, है ना बढ़िया बात। कहते हैं जब ये फिल्म सिनेमा घरों में चली तो लोग सिर्फ उनकी शहनाई की तान सुनने के लिए बार बार टिकट खरीदते थे। पता नहीं ऐसा किसके साथ, कईयों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसी फिल्म का कोई गाना हमें बड़ा पसंद आया हो और उस गाने को सुनने के लिए हम बार बार सिनेमा घरों में गए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो आप हमें बता कॉल कर सकते हैं। और एक और गाना, इस गाने को सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, 1950 का जो हम बात कर रहे हैं, तो अगली मूवी की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं और फिर करते हैं इस अगले गाने के बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
3: माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है।

0: GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: इन

0: ओए रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जी हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। इस गाने को सुनकर किस किस के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी? आएगी ना, बिल्कुल आएगी। 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग से किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज़ में ये सुनहरा दौर का एक ऐसा नगमा है जिसे सुनते ही पैरों की थिरकने रुकने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा। दिल है तेरे पंजों में तो क्या करेगा चूहा, इस गीत के बोल जितने भोले हैं उतने ही शरारत से भरे हैं। वजीरुल सुल्तानपुरी साहब ने अंग्रेज़ी की स्पेलिंग को जिस भोलेपन और मजाक के अंदाज में बूंदे बूंदे डाल दिया है वो सिर्फ उसी दौर में मुमकिन था। और संगीतकार रवि जी की ढोलक और वेस्टर्न रिदम का झोल मेल है वो आज भी दिलों को ताज़ा कर देता है। पर्दे के किशोरदा का वो बेपरवाह अंदाज और नूतन जी की वो खूबसूरत अदाएँ इस गाने को संगीत की दुनिया का एक अनमोल हीरा बनाती है ना दोस्तों? दोस्तों, ये गाना सिर्फ एक मजाकिया गीत नहीं है बल्कि इसके आने वाले दौर के लिए बॉलीवुड में कॉमेडी और रोमांस के मिक्स ट्रिक्स का एक नया ट्रेंड शुरू किया था। हाँ, इसके बाद से बहुत से गाने ऐसे बजने लगे थे। आज के दौर में हम जब भी आड़े टेढ़े और फनी लिरिक्स सुनते हैं तो लगता है ये नया ज़माना है। लेकिन सोचिए, 1958 में ही हमारे संगीतकारों ने कैट माने बिल्ली और चूहा बिल्ली के खेल को संगीत का सबसे बड़ा हिट बना दिया। किशोर कुमार जी ने गाने में जो आवाज़ का उतार चढ़ाव और बीच बीच में जो आवाज़ें निकाली है वो उनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। चलिए, इसी शरारत को दिल में बसाए रखते हैं और जान लेते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें जो याद अपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, सबसे पहली और दिलचस्प बात तो यह है कि दोस्तों की परेड पर हमें किशोर कुमार और नूतन जी की जोड़ी बहुत कम फिल्मों में है एक साथ दिखी, लेकिन जब भी दिखी कमाल कर गई। नूतन जी आमतौर पर बहुत ही गंभीर और इमोशनल किरदार के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने किशोरदा की शरारत का बराबर साथ दिया। और आपको मालूम है, इस फिल्म में एक बड़ा ही आइकॉनिक सीन है जहाँ नूतन जी स्विमिंग पूल में डाइविंग करती है और उनके एक स्विमिंग चैंपियन के रूप में दिखाया गया है 1950 के दशक में। सोचिए, किसी मेन स्ट्रीम हीरोइन का ऐसे बिंदास और प्रोग्रेसिव किरदार निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ दोस्तों, 1950 में। इस फिल्म का एक और गीत है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, याद है आप सभी को ये गाना? चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा इसी फिल्म से एक और गाना। ये मेरी फरमाइश है, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज अपनी फरमाइश का गाना कुछ सुनूं, तो ये है मेरी फरमाइश का गाना, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।
4: ये रातें ये मौसम

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। और जैसे ही हमने गाने के बाद की बात की, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे। चलिए सबसे पहले करते हैं हमारे कॉलर से बातें, फिर गाने के बारे में बातें करेंगे। हेलो हेलो।
1: हाँ जी, हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार मदनलाल जी। जी मदनलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ, और बस किसी चौराहे पे या पुल के नीचे खड़ा हूँ।
0: उसी रेलवे ब्रिज के नीचे।
1: देखिए, स्वाइंग पुल होता है, वहाँ नीचे हवा जोरदार आती है, क्या बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शाम के समय में ठंडी हवाएं।
1: हाँ, ठंडी हवाएं
0: जी।
1: तो ये पुल के नीचे खड़ा हूँ, और अभी आके मैंने बोला कल वाला टाइम हो गया, 8:30 बज के कुछ ही मिनट हो गए। और
0: बिल्कुल,
1: तो आपको नमस्कार है, नवी किरण को नमः है रे बाबा।
0: खुशी के नगमे को,
1: नगमे और दिल की,
0: खुशी
1: के नगमे और दिल की बातों को नमस्कार है। हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं रेडियो से या मोबाइल से दूर दूर से, उनको नमस्कार है, थैंक यू है, ओम शांति है।
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
1: हमारे सभी शो को नमस्कार कर रहे हैं
0: जी।
1: अभी क्या चल रहा है, गाना चल रहा है या
0: नहीं? अभी गाना नहीं चल रहा है, आपको सभी सुन रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, सुन रहे हैं। तो ये गाना, खाना और पहनना ओढ़ना, अभी बहुत लोग कह रहे हैं अभी भी कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, कोई शोक मौत भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला भाई, अब समय पूरा हो गया ना, बहुत शोक मौत कर लिया है, अब सिर्फ ईश्वर को याद करो और क्या है। तो बहुत लोग ऐसे खान पीन में भी, मतलब सब्जी में वगैरह में, पहले जैसा सही बात है
0: जी।
1: वो पहले मतलब खेत में वो दूसरा खेत में हम खातर डालते थे, अभी तो यूरिया खातर है, इसलिए सभी जगह ऐसा ही है।
0: हाँ।
1: सब्जी, हाँ मैं तो सब्जी लाता हूँ ना, तो कल मैंने अजमा है सब्जी ला के, और रात भर रखा और सुबह काटा ना, इतनी मस्त कम्प्लीट बनी ना,
0: अरे
1: वाह। रात भर उसको, उनको आराम करना, उनका स्वागत करना चाहिए, कि घर में लाए हैं।
0: हाँ।
1: उनको आराम से रखिए, एक ही दम उन्हें बिल्कुल वो मत करिए। तो आपको नमस्कार करते हैं, और बस जिनका भी जन्मदिन है इनको भी, और बस गाना गा लेते हैं 2-3 लाइन
0: जी।
1: जिंदगी के सफर में गुहर लाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुहर लाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, तुम मिलते हैं लोग मिलते हैं, तुम मिलते हैं लोग मिलते हैं, पतझर में फूल मुरझाता है, बहारों के आने से खिलते नहीं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं।

0: आते वो फिर नहीं आते।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा
1: बहुत
0: गाना
1: बहुत
0: है।
1: शुक्रिया, चलिए कोशिश करते हैं हम आपका ये गाना आपको सुनाएंगे और आप बिल्कुल जरूर से सुनते रहिए रेडियो मधुबन। ओम शांति, थैंक यू सो मच। या जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के सफर में यूं ही गुजर जाएंगे वो मकाम जो फिर नहीं आते। बिल्कुल, चलिए बातें कर रहे थे अभी जो हमने गाना सुना, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। जी हाँ, फिल्म थी सेम वही दिल्ली का ठग, लेकिन आप देखिए वो जो पहला गाना था जिसमें किशोर कुमार जी की दिल्ली का ठग वाली बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ कितने प्यार से गाने को बोल किए गए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आज गानों की फरमाइशें बहुत है और अगर हम बातें ज़्यादा करेंगे तो हमारे गानों के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। तो बजाते हैं अगला गाना। अब अगला जो गाना है वो है फरमाइशें। हमारी सबसे पहली फरमाइश थी हमारे भूरीराम जी की तरफ से। भूरीराम जी का ये बहुत ही बेहतरीन गाना हमें उन्होंने फरमाइश में दिया था, कितना प्यारा वादा है। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी हमने प्यारा प्यारा वादा सुना, प्यारा प्यारा गाना सुना, और वक्त का पता नहीं चला दोस्तों। वक्त ऐसा चला कि कुछ गाने ऐसे हैं जो अभी भी हमें प्ले करने हैं, और अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे तो ज़्यादा गानों के बारे में हम प्ले नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वक्त ऐसा है कि हम आपसे ले रहे विदा, लेकिन पीछे हम बैक टू बैक गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आप ही की फरमाइश का, जो कि एक फरमाइश है हमारे बुरा राम जी की, जो है गाना है तेरा साथ है तो, और दूसरा एक गाना है हमारे सुरेश जी का गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, और हमारे मदन लाल जी का गाना जो है वो हम अगले सोमवार को प्ले करेंगे। मदन लाल जी, आपका जो गाना है वो हम अगले मंडे को प्ले करेंगे, क्योंकि गानों की फरमाइश लंबी है और समय कम है। तो हम आपसे लेते हैं विदा यहीं पे, क्योंकि जो अगला गाना है वो आप ही की फरमाइश का है। तो आप बने सुनते रहिए रेडियो मधुबन। हम लेते हैं आपसे विदा, और हम आपसे मिलेंगे नॉट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते नहीं, बट उसके अगले हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे कुछ एक वीक के लिए आपसे दूर है, लेकिन आपके दिलों में बसे हुए हैं। तो बिल्कुल से सुनते रहिए रेडियो मधुबन, इसी तरह से आप अपना प्यार हम पर लुटाते रहिए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मुहिम में रेडियो मधुबन ये छोटी सी कोशिश आपके सामने लेकर आया है, जहां पर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम बीमार हों और फिर जाके हम स्वास्थ्य लाभ करें। क्या हम ऐसा ना करें कि हम पहले से ही स्वस्थ बने रहें, स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता ही न पड़े। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, क्या चीज करना पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम हर दिन कुछ न कुछ जानकारी सुन रहे हैं। और जब हम इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम वास्तविकता में अपने स्वास्थ्य के रक्षक बनते हैं। प्रायः स्वास्थ्य के रक्षकों के रूप में चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर्स को देखा जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य को वापस लौटाने में बहुत मदद करते हैं। अब उनकी मदद को याद रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, न कि बार बार हम उनके पास जाएं और उनके काम को बढ़ाएं। ऐसे में क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो आसान उत्तर यही है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम उनकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े हुए विशेषज्ञों से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम ये बात कर रहे थे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति को स्वयं सजग रहने की आवश्यकता है। अगर वो स्वयं स्वस्थ रहता है तो वो स्वास्थ्य के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस ढांचे को बेहतर करने में एक बड़ा सहयोग देता है, वो राष्ट्र के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मददगार साबित होता है। और आपने स्वयं ये कहा था कि अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम, एक सकारात्मक कदम ले सकते हैं। आपने बातचीत में ये भी बताई थी कि विटामिन्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही आवश्यक विटामिन्स में गिना जाता है, और इसकी कमी से क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमने समझा। आपने ये भी बताया था कि मनोरोगों में भी, जब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, उसमें भी विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपने शरीर में कमी ना होने दे, उसके लिए उसे क्या करना है, कहां से ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये समझा जाए।
1: कल की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है ये बात मैंने कही, तो एक बार फिर से इसकी कमी के बारे में बोलना चाहूंगा। और इसकी कमी अगर आदमी देखे तो ऊपर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक को इफेक्ट करता है। आपके सर के बाल कमजोर हो जाएंगे, आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, आपकी

0: जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं कि अगर वो बहुत उनको थकान लग रही है, उनको नींद पूरी नहीं हो रही है, उनका मूड स्विंग कर रहा है, तो सबसे पहले अपना विटामिन बी प्लीज चेक करा लीजिए और आप उसकी पूर्ति कर लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे।
1: करने की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो प्राय प्रश्न उठता है कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है तो हम सबको पता भी होना चाहिए कि आखिर ये कहां से मिलता है, इसका स्रोत क्या है।
0: ये हमको सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, दूध दही चीज, जो भी भोजन जो प्रोसेस नहीं किया गया है, होल व्हीट। मतलब होल व्हीट का ये मतलब है कि आपने गेहूं लिया और उसको पीस दिया, उसको छान करके उसके अंदर से चोकर नहीं निकाला है। अनपॉलिश राइस या जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। चावल के सबसे ऊपर हस्क होता है, फिर उसके ऊपर बार्न होता है और फिर राइस होता है। तो जब बार्न अगर चावल पे लगा रहे तो वो भूरे रंग का दिखता है, तो उसको ब्राउन राइस बोला जाता है। राइस की सबसे ज्यादा खूबी उसी बार में होती है और उसी को निकाल के भैया आजकल राइस बान ऑयल आ गया है। जो ऊपर का जो हस्क है वो चारे के रूप में प्रयोग होता है या उसको लोग जलाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बान है उससे ऑयल निकालते हैं कंपनीज और राइस आपको मिल जाता है। हम आरोग्य मंदिर में अनपॉलिश्ड राइस, मतलब चावल जिसपे बान लगा है, वो पेशेंट्स को या जो हमारे यहाँ रहने आते हैं उनको देते हैं, और उसका स्वाद और पॉलिश राइस का स्वाद लगभग एक है, लगभग एक है। थोड़ा सा ये रफ कभी कभी फील होता है मगर ये एकदम एक है। तो होल व्हीट और होल राइस में भी विटामिन बी बहुत अच्छा मिलता है। सारे फैट्स वॉल्युबल विटामिन में भी हमने बात की, सबसे वंडर मेडिसिन, वंडर वेजिटेबल जो है वो स्पिनच, पालक, बनाना, केला, उसके बाद संतरा, अनार, कीवी, वाटरमेलन में भी है। ये हमारे अखरोट, वॉलनट में भी विटामिन बी मिलता है हमको, और राजमा में भी विटामिन बी है। कुछ तरह के यीस्ट प्रोडक्ट्स में भी, जिसमें खमीर उठाना कहते हैं, उसमें भी हमें विटामिन बी12 बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग इन भोजनों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें दूध से एलर्जी है, कुछ लोग कोई एक पर्टिकुलर जो अनाज है उसको नहीं खाते हैं। उन लोगों को सीधे सीधे ये कहा जाता है कि आप इसकी कोई भी बाजार में मिलने वाली जो गोली उसका प्रयोग कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल्क एलर्जी देखी जा रही है, वीट से एलर्जी देखी जा रही है, जिसको हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोल रहे हैं। इन दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसकी गोली का प्रयोग कर लें।
1: यानी ये बात समझ में आ रही है कि जो दो मोटी चीजें हैं या दो ऐसे अनाज हैं जिसका भारत भर में या विश्व भर में कहीं ना कहीं हर दिन सेवन हो रहा है, उन्हीं अनाजों से ये चीज मिल सकता है। जैसे भारत के दक्षिणी प्रांतों में और पूर्व के प्रांतों में चावल का भरपूर मात्रा में सेवन होता है, भारत के मध्य और उत्तरी प्रांतों में, पश्चिमी प्रांतों में गेहूं का भरपूर मात्रा में उपयोग होता है, वहीं पर इसके स्रोत हैं, मगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से इसकी कमी देखते हैं, ये बात समझ में आती है। और जैसे आपने कहा दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध दही चीज इत्यादि, इन चीजों में भी इसकी बहुत आयत है, मगर लोग इन चीजों को नहीं समझने के कारण इन विटामिन्स की कमी का उनको सामना करना पड़ता है।
0: ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन बी12 कि ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो है उसमें भी इसका प्रयोग है, जितने हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उसमें भी प्रयोग है, हमारे RBC रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बन रहे हैं, हमारे नसों की झिल्ली, तो आप सोचिए कितना जरूरी है। और इसकी कमी भी सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो आपने बोला कि भोजन का स्रोत हमें मालूम है पर हम उस भोजन को ठीक से नहीं कर

0: हम गेहूं में से चोकर निकाल के, अब आप ये देखिए ना कि गाय अच्छा दूध देगी उसको चोकर खिला दो, और हम आटा खा ले, हम एकदम चिकना सॉफ्ट आटा खा ले। हाँ, अब तो बहुत सारे ग्लू चिपकाने के पदार्थ आ गए, नहीं तो नॉर्मली पहले लेई बनती थी, लेई मैदे से बनती है ये सबको एक एक। आप हम लोग अपने कैंपस में एक प्रकाश आरोग्य मंदिर प्रकाशन में किताबें बनाते हैं, और हमारा एक 1960 से चलता आ रहा एक प्रकाश एक मैगजीन है आरोग्य, उसके सर्कुलेशन में हम जब उसे पैक करते थे तो लेई बना के लगाते थे। और मैं हमेशा जब छोटा था तो देखता था एक ही बर्तन है एल्युमिनियम का, उसके अंदर ये गम ये चिपकाने वाला मिल रहा, और हम लोग को स्कूल ले जाने के लिए तो एक हमारे माता पिता एक छोटी सी ट्यूब देते थे, तो मैं हमेशा बोलता था ये क्या चीज है जो हम स्कूल नहीं ले जा रहे हैं। वो तो पहली बार मुझे मालूम चला कि मैदे से इसको बनाया जा रहा है और ये चिपकाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग आता है। तो आप ये देखिए जो हमारी आंतों में चिपक जाता है जिससे हम बाहर चिपकाने का प्रयोग कर रहे हैं, वही मैदा हमारी आंतों में भी चिपक जाता है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तब भी हम उसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं वनस्पत, और हम जो सबसे अच्छी चीज आटे की है चोकर, वो हम जानवर को खिला रहे हैं।
1: ये बात बड़ी सोचने वाली लगती है कि एक तो अगर व्यक्ति स्वयं गेहूं ले जा रहा है आटा बनवाने के लिए, पिसवाने के लिए चक्की में ले जा रहा है और लेकर वापस आ रहा है, और घर में उसे चोकर को हटा दिया जाता है, उसको छान दिया जाता है। और जैसे आप आजकल तो अगर हम देखते हैं तो हम सीधे बाजार से बने हुए आटे को ले आते हैं और उसमें चोकर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलती। लोग तो कहते हैं कि भाई ये रेडी टू मेक है, इसमें आपको फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज फाइन आटा ये देखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे भोजन को जहां से हम ले रहे हैं वहीं पर ये गड़बड़ियां हम कर रहे हैं, और अगर हम इसको सुधारें तो फिर ये चीज ठीक हो सकती है। और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं मगर परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही आवश्यक सी चीज है। जब आप चावल की बात करते हैं डॉक्टर साहब, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि राइस बान से तेल बनने लगा है और आज पॉलिश्ड राइस मिलने लगा है, तो क्या व्यक्ति को अभी अनपॉलिश्ड राइस खाना चाहिए, या अगर वो अनपॉलिश्ड राइस नहीं खा रहे हैं, अगर पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो क्या उन्हें राइस बान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए?
0: मैं अनपॉलिश राइस खाने का सुझाव जरूर दूंगा, इसको हफ्ते में एक दो दिन जरूर खाना चाहिए, और अब तो यह हर बड़े शहर में मिलने लगा है। राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग के लिए उतना मैं प्रेरित नहीं करता हूं लोगों को, पर अनपॉलिश राइस के लिए जरूर प्रेरित करूंगा। और ये जैसे आप चावल बनाते हैं वैसे ही ये बनता है, और ये कोई एक टाइप ऑफ राइस नहीं है, किसी भी चावल से अगर उसका बान नहीं निकाला गया है तो वो अनपॉलिश्ड राइस है। आप अगर इस समय हेल्थ सेंटर्स में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में या हेल्थ स्पाज में जाएंगे, वहां ये एक डेलिकेसी के रूप में आपको खिलाया जाता है कि ये अनपॉलिश्ड राइस दिया जा रहा है। हम लोग अपने यहाँ खुद चावल उगा रहे हैं अपने जो भी स्वास्थ्यार्थियों के लिए, हमारे पास एक कैंपस से अलग एक जमीन है जहां पर हम गेहूं चावल सरसों तीनों उगाते हैं और ऑर्गेनिक उगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे जो जितने लाभार्थी हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। ब्राउन राइस या अनपॉलिश राइस में रफेज भी ज्यादा है, जो खुच्चा है। हम लोग ने पहले जब हम लोग ने फ्रूट्स के बारे में बात की थी, या हम लोग ने डिफरेंट चीजों के फाइबर के बारे में जब भोजन में बात की थी, तो आप जो चोकर है वो आटे का फाइबर है, और जो चावल के ऊपर की कोटिंग है वो चावल का फाइबर है, तो वो हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: जैसे आपने साथ में जो विटामिन बी 12 के सोर्सेस के रूप, विटामिन बी के सोर्सेस के रूप में आपने बताया कि पालक है, आपने फ्रूट्स गिनाए हैं हमें, संतरा कहा, वाटरमेलन कहा, अलग अलग फ्रूट्स, बनाना बताया आपने, केला बताया, और आपने वो भी चीजें बताई जो फर्मेंट होती हैं, ऐसी चीजें जो हम बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान और गुजरात में खमन ढोकला इत्यादि बनाया जाता है, दक्षिण में इडली डोसा इत्यादि बनाया जाता है, ये सारी फर्मेंट होने वाली चीजें हैं, तो क्या इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है?
0: यीस्ट के प्रोडक्ट्स में इसका बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। टमाटर में, एवोकाडो में, वाटरमेलन, कीवी, अनार, ऑरेंज, इन सब में इसका अच्छा स्रोत है। और ये सारी चीजें अब हमें बहुत आसानी से मिलने लगी हैं। फोर्टिफाइड, जैसे आपने बोला बाजार से आटा खरीद के आ रहे हैं, तो अब सरकार ने भी इसमें निर्देश दिया है कि हम इसमें इसको थोड़ा सा मिलाकर अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको दें, तो उससे भी हमको ये अच्छा मिल रहा है इस समय हमारी जनता को।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई कि विटामिन बी की आवश्यकता क्या है, क्या इनके स्रोत हैं। अब जब आप सब्जियों और फलों के बारे में बता रहे थे, साथ में आपने ये भी कहा था कि दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, दही है, भारत में तो पनीर, चीज इत्यादि के जो प्रचलन है, उनसे भी इन चीजों की कमी पूरी होती है, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? क्या हर दिन के भोजन में हम इन चीजों को शामिल करें, और क्या भोजन मात्र से ही इसकी कमी पूरी हो सकती है?
0: ये दूध, दही, पनीर, चीज, इसमें इसका बहुत अच्छा स्रोत मिल जाता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका हमें दही और पनीर में मिलता है। दूध में अधिकतम पानी है, तो जब दूध का पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो दही बन जाती है, और पूरा जब दूध से पानी हम निकाल देते हैं, उसका प्रोटीन पार्ट बदल लेते हैं, तब पनीर बनता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि सबसे इसका अच्छा स्रोत हमें पनीर से, चीज से और दही से मिलेगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, तो अगर इसको किसी भोजन में जो है, अगर हम उसे बार बार गर्म करेंगे और बहुत गर्म करेंगे, तो ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन बी की अगर हम बात करें, या हम किसी भी पोषक तत्व की बात करें भोजन में, तो कहा जाता है खाने को बार बार गर्म मत करिए, क्योंकि वो जितनी बार गर्म होगा उतनी बार वो अपने अंदर की कुछ ना कुछ क्वालिटी को लूज करेगा। इसीलिए रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट खाने की भी बात होती है, सलाद के खाने की और फल के खाने की बात होती है, कि हमने उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाया नहीं है और उसको उसके पोषक तत्व को पूरा बना के रखा है। तो आप इसे दही, पनीर, दूध उससे ले सकते हैं। ध्यान बस इतना देना चाहिए कि इसको दूध को बार बार गर्म ना करके उसका प्रयोग करें।
1: जैसे आपने कहा कि भोजन से ये चीजें हम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या भोजन मात्र में अगर हम चीजों का ध्यान रखेंगे तो उतना काफी है? क्योंकि आजकल ये सुनने को मिलता है कि जो लोग दही भी खा रहे हैं, जो दूध भी पी रहे हैं, उनके अंदर भी इन चीजों की कमी महसूस की जा रही है।
0: अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, और सबसे कॉमन सिम्टम थकान, कमजोरी ये है, या आपको कहीं भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या आपको कहीं काम करने मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो ये आपके भोजन से ये पूरा नहीं हो पा रहा, तब उस स्थिति में आप इसको ऊपर से ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी गोलियां आती हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, मगर मैं सबसे पहले गोली लेने को बोलता हूं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन अपने शरीर के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। तो आप अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप गोली ले सकते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन है तो आप इसका इंजेक्शन ले सकते हैं। और ये किसी स्वास्थ्य कर्मी को डिसाइड करने दीजिएगा कि आपको कितनी कमी है और आपको कितना ही चाहिए।
1: यानी आप स्वयं से ये निर्णय नहीं ले सकते कि मुझे इंजेक्शन ले लेना चाहिए या गोली खा लेनी चाहिए, मगर अगर आपने विटामिन बी की कमी महसूस होती है, अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो ये चीज पता चल जाता है। अगर आपको कोई ऐसे चिन्ह नजर आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कमजोरी हो रही है, तो आप स्वाभाविक रीति से जाके स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से मिल सकते हैं, और वो जैसे आपको गाइड करें उसी हिसाब से आप इस चीज को करें। मगर साथ साथ भोजन में जो चीजें हैं उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में बहुत ही कम मात्रा है विटामिन बी की, तो फिर गोलियां खाना आवश्यक है, और जैसे डॉक्टर डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं वैसे ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त ये कहता है कि यहाँ रुकना चाहिए, मगर जाते जाते मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अनाज में, दूध में, चावल, जो अनपॉलिश्ड राइस है, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत किचन में ना होकर जहां से हम चीजें खरीद रहे हैं वहां से हमें ध्यान देने की जरूरत है।
0: एकदम सही कहा, लुक व्हाट आर यू बाइंग। और मैं एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं और मैं लंबे समय तक विदेश भी रहा, तो उसमें मेरे साथ कुछ जो लोग थे उन्होंने एक ही सलाह दी थी कि आप जो भी खरीदें उसमें कंटेंट को एक बार जरूर देख लें, आधा मिनट भी नहीं लगता है एक बार पलट के उसको देखने में, और आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी चीज का कंटेंट पढ़ते हैं, जो पहले नंबर पे चीज लिखी है वो सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर, ये चीज का प्लीज हम ध्यान रखें कि जो भी चीज उसके अंदर डाली गई है वो उस हिसाब से लिखी जाती है कि क्या है। ये सरकार का नियम है। हाँ, कुछ कंपनी वाले इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो चीज सबसे पहले लिखी गई है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसी की।
1: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है और बहुत ही नई जानकारियां आज हम सबको हासिल हुई है दोस्तों। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमें अपने स्वास्थ्य की शुरुआत करनी है, तो स्वास्थ्य की शुरुआत सिर्फ किचन से नहीं, जहां भोजन बन रहा है उस रसोई घर से नहीं, मगर कहां से अनाज आ रहा है, घर में हम क्या खा रहे हैं और वो चीज कहां से खरीदी जा रही है और हम क्या खरीद रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो चीजें जब घर में आएंगी तो उसे कैसे पकाया जाना चाहिए, कैसे उसका सेवन किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को, जो विटामिन जो कम मात्रा में ही आवश्यक है मगर वो सब कुछ हमारे भोजन के, प्रतिदिन के भोजन में उनकी भूमिका है, तो उन्हें हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में यहीं पे विराम लेंगे। आज जो नई नई चीजें विटामिन बी के बारे में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने सुनी है, उन सब की अहमियत को समझते हुए उन सब को हम अपने भोजन में शामिल करेंगे। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय गेहूं के चोखर को आप छान कर बाहर न फेंके, उसको भी भोजन में शामिल करें, चोखर के साथ रोटियां बनाएं। अगर आप चावल खरीद रहे हैं तो पॉलिश्ड राइस न खरीदें, सीधे सफेद चावल न लेकर, जो ब्राउन राइस होता है, जो पूरे रंग का चावल मिलता है, छिलका सहित है, उस चावल को खरीदने पर आप ज्यादा आसक्त हों। भोजन में पालक, वाटरमेलन और साथ में अनक फ्रूट्स जो विटामिन बी के सोर्सेज हैं उसके रूप में उन्होंने बताया, दूध, दही, चीज इत्यादि के बारे में बताया, उन सभी पर ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ रखने और घर को स्वस्थ रखने में हम ध्यान रखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज हमारे प्रश्न पर डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार सर।
1: आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों, अगली बातचीत में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, चलो बैठो फिर से रेडियो के पास। सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो इधर उधर तो नहीं हो गए?
1: चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी भाई, हम आपसे ही तो ढेर सारी बातें करने आए हैं, और आप ही नहीं आएंगे रेडियो के पास तो कैसे चलेगा भाई बच्चों?
0: हाँ तो परी और मनी दीदी आज आपसे बातें करने वाले हैं आपकी समस्याओं के बारे में, और सिर्फ बातें नहीं लेकिन उसका हल भी तो मिलेगा।
1: हाँ बच्चों, तो बच्चों देखिए मैं आपके ही प्रश्न पढ़कर सुनाती हूँ। ये प्रश्न पूछा है वैभव ने। परी, वैभव कहता है कि मुझे लगता है कि मैं दूसरों के जितना अच्छा नहीं हूँ। दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं वैभव।
0: तो वैभव कभी कंपेयर मत करना, कभी कंप्लेन भी मत करना, और कभी कंफ्लिक्ट भी नहीं करना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जहाँ कंपैरिजन आएगा वहाँ पर झगड़े भी तो होंगे।
1: हाँ बच्चों, और हर एक बच्चे की तो अलग अलग विशेषता होती है। अब जैसे आंखें हैं तो आंखों का काम तो देखना ही है ना, और कान का काम तो सुनना है। अगर आंखें बोले कि मैं कान के जैसे सुनने भी लगूं तो ये हो तो नहीं सकता ना।
0: और बच्चों सारी पांचों उंगलियां तो एक जैसी नहीं होती ना, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। फिर भी पांचों उंगलियां मिलकर ही तो काम करती है, इसलिए हर एक की अपनी विशेषता है।
1: तो अपनी विशेषता पहचानो और उसे निखारो। तो बच्चों चलो अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आओ आओ हो नहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना,

0: ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों, सुनते हैं ये कहानी। परी आ गई है कहानी सुनाने। कौन सी वाली? गधे की परछाई वाली कहानी सुनेंगे। गर्मियों के दिन थे, तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। दोनों गांव के बीच एक निर्जन मैदान था। यात्री ने किराए पर एक गधा ले लिया। गधा तो आलसी था, वो चलते चलते बार बार रुक जाता था, इसलिए गधे का मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब गधा रुकता तो वो उसे डंडा मारता, गधा फिर आगे चलने लगता था। चलते चलते दोपहर हो गई। आराम करने के लिए वे रास्ते में रुक गए। वहाँ आसपास कोई छाया नहीं थी, इसलिए यात्री गधे की परछाई में बैठ गया। गर्मी के कारण बच्चों, गधे का मालिक भी बहुत थक गया था। वो भी गधे की परछाई में बैठना चाहता था, इसलिए उसने यात्री से कहा, देखो भाई, ये गधा मेरा है, इसलिए गधे की परछाई भी मेरी है। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है, उसकी परछाई से हमारा कोई सौदा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे गधे की परछाई में बैठने दो। यात्री ने कहा, मैंने पूरे दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है, इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई का उपयोग करने का भी मेरा ही अधिकार है। तुम गधे से उसकी परछाई को अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों, दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे, फिर उनमें मारपीट भी शुरू हो गई। और इतने में क्या हुआ पता है? गधा तो वहां से भाग गया, वो अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। तो देखा बच्चों, छोटी छोटी बातों पर लड़ना अच्छा नहीं होता, ये कहानी हमें समझाती है ना। कुछ कुछ बातों में बच्चों लड़ाई से काम नहीं होता, समझदारी से काम चलाना पड़ता है ना बच्चों। तो इसीलिए आप भी स्कूल में ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं, समझदारी से काम लेना, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलो बच्चों, चलो चलो, समय हो गया है, मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब को लेकर। और हम पढ़ने वाले हैं मित्र की पहचान, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। और जिसमें पिछली कड़ी में मैंने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें महाराज के बाल सखा जो प्रसन्नचित है वो महाराज के यहाँ 9 वर्ष का कार्यक्रम मनाने के लिए आए हुए हैं। और महाराज अपने बाल सखाओं के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह सभासदों के साथ मीटिंग में भी नहीं पहुँचे। और कार्यक्रम होने के पश्चात उन्होंने अन्य अतिथियों से भी ये भी नहीं पूछा कि उन्हें समारोह में आनंद आया या नहीं, और शुभरात्रि कहने की भी औपचारिकता उन्होंने नहीं निभाई। तो तेनाली राम कैसे महाराज को उनके आचरण में उत्पन्न हो रहे दोष से अवगत कराएगा, तो ये तो हमें पता चलेगा आगे। तो चलो अब मैं बिना देर किए किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। 9 वर्ष का समारोह संपन्न हो चुका था, अतिथि वापस लौट चुके थे, किंतु महाराज राजकाज की सामान्य दिनचर्या में भाग नहीं ले रहे थे। कुछ आवश्यक होता तो संबंधित कर्मचारी को राजभवन में बुलाकर ही निर्देश दे देते और फिर अपने दोनों मित्रों के साथ या तो चौसर खेलने में व्यस्त हो जाते या शिकार करने निकल जाते। एक दिन उन्होंने किसी कार्यवश तेनालीराम को राजभवन में बुलवाया, जो निर्देश देना था दिए, जो बातें करनी थी की। अवसर देखकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज बादल यदि बरसना बंद कर दे तो धरती उर्वर नहीं रहती, हवा यदि बहना बंद कर दे, सूर्य यदि चमकना बंद कर दे, तब प्रकृति का विनाश अवश्यंभावी है। हवा बादल सूरज जिस तरह अपने कर्तव्य में सतत निमग्न रहते हैं, उसी तरह प्रजापालक राजा को भी अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। महाराज कृष्णदेव राय चौके, उन्होंने तेनाली राम की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। किसी राजा के इस तरह देखने का अर्थ होता है अवश्यंभावी दंड, मगर तेनाली राम के चेहरे पर रंचक मात्र भी भय नहीं था। और महाराज ने कुपित स्वर में पूछा, तुम्हारे कहने का आशय क्या है तेनाली राम? तो तेनाली राम ने कहा, महाराज आप अन्नदाता हैं, मेरी विनती है कि आप मेरे और विजयनगर वासियों के अन्नदाता बने रहे। तो बच्चों अब आगे क्या होगा? क्या महाराज सच में क्रोधित होकर तेनाली रामा को दंड दे देंगे? तो ये तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में, तब तक तो थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। तो चलो फिर हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: चलो लास्ट में हम आ गए हैं फिर से आपसे बातें करने और आपसे पहेलियां पूछने के लिए। याद है ना, पिछली कड़ी में हमने पूछा था जनरल नॉलेज का सवाल। सूरज सबसे पहले यहाँ दिखे, सुबह की किरण सबसे पहले खिले, समुद्र किनारे प्यारा देश, बताओ उसका नाम विशेष।
2: और बच्चों, इसके लिए मैंने हिंट दी थी आपको एक गाने के बोल के साथ, मेरा जूता है डैश डैश डैश, तो मेरा जूता है जापानी, यानी कि जो बात है, जो देश है, वो देश है जापान, जहाँ सूर्य की पहली किरण पहले खिलती है, तो सही जवाब है जापान।
1: बिल्कुल सही बच्चों, और फिर से नोट कर लो आज की पहेली। तो पहेलियों का सिलसिला तो चालू ही रहेगा। ऊंचाई में सबको हराए, बर्फ की चद्दर ओढ़ कर आए, पर्वतों का राजा कहलाए, बताओ कौन सा वो शिखर कहलाए।
2: बच्चों, ये भी तो परी ने जनरल नॉलेज का ही सवाल पूछा है। तो भारत में स्थित पर्वतों का राजा जो सबसे ऊंचा है शिखर, तो बताओ उसका नाम। चलो चलो जल्दी से 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेजो।
1: बिल्कुल बच्चों, याद है ना, भगवान को सॉरी और थैंक यू लिखना मत भूलना।
2: हाँ तो चलो अब करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय,
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

आप सबके प्यार भरे बुलावे पर फिर से श्रद्धांजलि पेश कर रही हूँ, जो श्रद्धा से अर्पित की जाती है वो श्रद्धांजलि। ये श्रद्धांजलि उन गायक गायिकाओं, कवि और संगीतकारों को तो है ही, पर उस अतीत को भी है जिसमें इस संगीत का सृजन हुआ।

मुझे याद आ रही हैं वो कलाकार जिन्हें हम सब कानन देवी के नाम से जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और अभिनय में वंग संस्कृति और आवाज़ में बंगाल का जादू था।

अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आशियाना में इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे तुलसी पर बहुत ही अच्छे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे कि अपने दृष्टिकोण को बदल करके तो देखिए, खुशियाँ बनी रहेगी। और रेसिपी में परवल का अचार जो बनाएंगे जरूर बना करके खाइएगा। और फिर ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हो ना कि उषा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आशियाना जरूर सुनना। अरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपने बच्चों को संस्कारशील बनाना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा सर्विस करते हुए देखना चाहते हैं तो आशियाना जरूर सुनना। तो मनीषा जी भोसले, जिनका मैं परिचय आपको दे रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी के 10वें वंशज है, उनके कुल की कुल बहू है और आप साइकोलॉजिस्ट है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको उसी समय बताएंगे जब आप जीके सुनेंगे। तो मनीषा जी बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे कि किस तरह गर्भवती बहनें गर्भ में ही अपने बच्चे का ख्याल रखें तो बच्चा आपके मन पसंद का होगा, संस्कारशील बनेगा और जो आप करवाना चाहते हैं किसी भी प्रकार की सर्विस बिजनेस वो करेगा। लेकिन शुरुआत में 13 सप्ताह बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत के जो 13 सप्ताह होते हैं उसी समय दिमाग डेवलप होता है। और अगर इस समय आप पॉजिटिव किरणें अगर देते हो आप अपने बच्चे को तो आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो। उसके बाद भी ध्यान देना है, तो ये सारी बातें मनीषा जी के द्वारा जानेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशिया नामे पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसके संबंध। बच्चे के जन्मते ही संबंध उसे सौगात के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये संबंध ही उसके भविष्य की उन्नति का आधार बनते हैं। संबंध वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द रहकर व्यक्ति अपने अंदर अनेक योग्यताओं कलाओं का विकास करता है। श्रेष्ठ संबंधों के माध्यम से ही छिपे हुए आंतरिक मानवीय मूल्यों व दैवीय गुणों को जीवन में अनुभव किया जा सकता है। संबंध वह सीढ़ी है जिसके सहारे व्यक्ति कुशलता पूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए कहा गया है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और सुखी रहना हो तो अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

कनियों तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। जैसा कि मैंने गीत की लाइन गुनगुनाई है, तुलसी मेरे आंगन तुलसी का झाड़, तो तुलसी के ऊपर आपको नुस्खे दूंगी। तुलसी वैसे ही बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और तुलसी को पवित्र भी माना जाता है। दूषित जल में तुलसी की हरी स्वच्छ पत्तियां डाल दीजिए, आप जल का दूषितपन समाप्त हो जाएगा। 4 लीटर पानी लीजिए, 4 लीटर पानी में 25-30 तुलसी की पत्ती डालिए। अब कैसे डालेंगे वो आपको बता रही हूँ। पानी छानते हैं ना, छानते समय ही कपड़े में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए 25-30, ठीक है। फिर 4 लीटर पानी उससे छान लीजिए ताकि तुलसी का कस पानी में चला जाए, तो पानी का दूषित समाप्त हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएंगे। तो कितना अच्छा नुस्खा है, कोई खर्चा ही नहीं है, और तुलसी तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। आप 4 लीटर पानी लीजिए, पानी छानते समय कपड़ा, जो कपड़े से छानते हैं ना, स्वच्छ कपड़े से, उस कपड़े में 25-30 तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। फिर आप पानी छानिए तो तुलसी का कस पानी में उतरेगा और पानी स्वच्छ हो जाएगा, तो दूषित पानी के होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तुलसी की पत्तियों में खाद्य वस्तुओं को विकृत होने से बचाने का अद्भुत गुण है। तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी खाना बचता है हमारा, तो उसमें या तो डाब डालते हैं या तुलसी के पत्ते। अब डाब तो हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन तुलसी हर जगह मिल जाती है, क्योंकि तुलसी, भले आप शहर में जाओ, गाँवों में जाओ, तुलसी के पौधे सभी अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो बस तुलसी के पत्ते खाद्य सामग्री में डाल दीजिए तो खाद्य सामग्री विकृत नहीं होगी, और उसको बाद में आप खा सकते हैं, शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। ग्रहण में भी ऐसी मान्यता है, तो तुलसी के पत्ते इस तरह फायदेमंद है। और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है ना, उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए आज से ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो गमला लाइए और गमले में लगा दीजिए, इसका ज्यादा खर्चा नहीं है। और गांवों में तो खुली जगह भी बहुत होती है, तो आप एक छोटी से जगह देख करके वहाँ एक क्यारी बना दीजिए और क्यारी में तुलसी लगा दीजिए, तो इस तरह भी आप तुलसी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके घर में कोई बाल्टी है, बाल्टी टूट गई हो, फूट गई हो, तो उस बाल्टी में भी आप खाद भरकर, मिट्टी भर करके तुलसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना फायदा है कि तुलसी का पौधा जहाँ पर भी होता है उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान दीजिएगा। और दूषित जल सेवन से बच्चों के पेट में कृमि से बचने के लिए अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक अवस्था के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए। दूषित जल सेवन करने से बच्चों के पेट में कृमि हो जाती है और फिर पेट दर्द होता है, तो कृमि ना हो इसके लिए आप इस नुस्खे को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक आवश्यकता के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए, तो बच्चों के पेट की समस्या से भी बच्चे बचे रहेंगे और पेट दर्द भी नहीं होगा, कृमि भी नहीं पड़ेंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरह सारे ही नुस्खे लाजवाब है, इनको आजमा करके स्वयं भी ठीक रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए फिर से सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहे। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा दृष्टिकोण में बदलाव करके तो देखो। कहते हैं कि दृष्टि बदली तो नजरिया, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगी खुशनुमा जीवन में दृष्टिकोण का किस तरह बदलाव करेंगे, इस बारे में बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको सुना रही हूँ। एक बार एक यूनानी दार्शनिक का शिष्य, जिसे उसके गुरु ने 3 साल तक हर उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा जो उसका अपमान करता था, जब परीक्षण की अवधि समाप्त हो गई, तो गुरु ने उससे कहा अब तुम एथेंस जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब शिष्य ने एथेंस में प्रवेश किया तो उसे छत पर एक ज्ञानी पुरुष बैठा मिला जो हर आते जाते व्यक्ति को अपमानित करता था। उसने शिष्य को भी अपमानित किया तो वह शिष्य जोर से हंसा। ज्ञानी पुरुष ने उससे पूछा, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रहे हो? शिष्य ने उत्तर क्या दिया होगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप अंदाजा लगा सकते हो? चलिए मैं ही सुना देती हूँ कि शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इस तरह की बात के लिए लोगों को पैसा देता रहता हूँ और तुम मुझे ये मुफ्त में दे रहे हो। नगर के भीतर प्रवेश करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, यह नगर तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी में डेजर्ट फादर्स ने, जो कि सनकी पात्रों का एक संकलन था, स्किटी के निकट

रेगिस्तान में जाकर के पूजा और त्याग का जीवन जीते हुए त्याग एवं परेशानियों के महत्व को दर्शाने वाली ये कथा बताई। हालांकि वह सिर्फ कष्ट नहीं था, उसने शिष्य को ज्ञान के नगर में प्रवेश दे दिया। कठिन परिस्थितियों में उतने प्रभावी ढंग से जीने के पीछे दृष्टिकोण में बदलाव लाने की स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की उसकी क्षमता मुख्य कारण था। नजरिए में बदलाव लाने की क्षमता एक अत्यंत ताकतवर एवं प्रभावशाली उपकरण है जो हमें जीवन में रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। दलाई लामा ने बताया, चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता बहुत लाभकारी होती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति कुछ अनुभवों, कुछ त्रासदियों की मदद से दिमाग को शांत कर सकता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर बात और घटना के विभिन्न पहलू होते हैं, हर चीज सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए, मेरे मामले में मैंने अपना देश खो दिया, उस दृष्टिकोण से ये बहुत दुख की बात है। इससे भी ज्यादा दुख की और कई बातें हुई है, हमारे देश में बहुत तबाही हो रही है, परंतु मैं अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि यदि स्थिति यथावत होती, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, तो बहुत से अवसरों पर आज सिर्फ चलते रहते हैं, आप दिखावा करते रहते हैं। परंतु जब आपके सामने निराशाजनक विपरीत परिस्थितियां आती है, तो दिखावा करने का समय नहीं मिलता, तो उस दृष्टिकोण से वह दुख भरा अनुभव मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये बात कौन कह रहे हैं? दलाई लामा। मैं नहीं कह रही हूँ, दलाई लामा। तो शरणार्थी होने के नाते कई नए लोगों से भेंट होने के अवसर मिलते हैं, भिन्न धार्मिक परंपराओं और अलग अलग व्यवसाय के लोग मिलते हैं, जिनसे यदि मैं अपने देश में रह रहा होता तो कभी ना मिला होता, तो इस नजर से ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। ऐसा देखने में आता है कि जब कभी समस्या आती है, तो हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है, हमारा पूरा ध्यान उस समस्या के बारे में चिंता करने पर होता है, और हमें ऐसा लगता है मानो उस तरह की समस्या सिर्फ हमें ही हो रही है। इससे व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है, जिसके कारण समस्या और भी बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से चीजों को अलग नजरिए से देखने से काफी मदद मिलेगी। जैसे ये सोचना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की समस्या का सामना किया है और जिन्हें इससे भी बुरे अनुभव हुए हैं। किसी विशिष्ट बीमारी या पीड़ा के समय इस तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत लाभकारी हो सकता है। पीड़ा के समय निश्चित रूप से शांत रहने के लिए औपचारिक ध्यान का अभ्यास करना बहुत कठिन होता है, परंतु यदि आप तुलना करें उस स्थिति को किसी अन्य नजरिए से देखें, तो कैसे भी कुछ हो ही जाता है। अगर आप सिर्फ उस घटना को देखते रहेंगे, तो वह और भी बड़ी लगने लगती है। अगर आप किसी समस्या को बहुत नजदीक से, बहुत ध्यान से देखने लगेंगे, तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ज्यादा बड़ी घटना से उसकी तुलना करेंगे, तो वह आपको छोटी दिखाई देगी और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। तो समझे, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। समस्याएं तो आएगी, लेकिन हमें किस नजरिए से उसे लेना है, किस दृष्टिकोण से उसे लेना है और उसका सामना करना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो आइए अभी तो सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूट जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूट जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। ये खुश मिजाज दोस्ती का बंधन भी बड़ा अजीब है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। ये शेर तो ऐसे ही मुझे याद आ गया तो आपको सुना दिया है। हर शेर में अच्छे अच्छे भाव छिपे हुए होते हैं, तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सुना ही देती हूँ आप सभी को किसके भाव कितने सुंदर है। तो हम बात कर रहे थे दृष्टिकोण के, दृष्टिकोण किस तरह का रखना वो अपने हाथ में होता है। मान लीजिए किसी पर आपको गुस्सा आता है, आहत होने के बाद स्वाभाविक और तत्काल प्रतिक्रिया गुस्सा आना है। बहुत से मामलों में दुख होने के बाद सिर्फ गुस्सा आने की बात नहीं है, आप उस घटना के बारे में बाद में सोचते हैं और हर बार उसके विषय में सोच करके गुस्सा आता है ना। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जिस व्यक्ति के कारण आपको गुस्सा आता है उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ गुण भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस बात से आपको गुस्सा आता है उसी ने आपको कुछ अवसर भी दिए हैं, जो अन्यथा आपके अपने नजरिए से मिलना संभव नहीं थे। तो प्रयास करने से आप एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इससे लाभ होता है। परंतु यदि आप उस व्यक्ति की अच्छी बातों को देखना चाहें लेकिन उसमें ऐसा कुछ न हो, तो यहाँ मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ समय निकाल करके उस परिस्थिति पर किसी अलग नजरिए से विचार कीजिए, परंतु ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अत्यंत पेने और प्रत्यक्ष ढंग से। आपको तर्क करने की अपने समस्त सामर्थ्य का उपयोग करके उस स्थिति को जितना हो सके निष्पक्ष रूप से देखना होगा। उदाहरण के लिए आप ये सोचे कि जब आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है तो वह आपको 100% गलत दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपको कोई अच्छा लगता है तो उसमें आपको 100% गुण ही नजर आते हैं। परंतु ये सोच सच्चाई से मेल नहीं खाती। यदि आपका मित्र, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपको किसी तरह की हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो अचानक आपको लगेगा कि आपके मित्र में 100% अच्छे गुण नहीं है। इसी तरह आपका शत्रु, जिसे आप ना पसंद करते हैं, यदि आपसे क्षमा मांगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो शायद आपको वह 100% बुरा नहीं लगेगा। तो बदल गया ना दृष्टिकोण। इस तरह समय समय पर हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कोई अच्छा गुण नहीं है, तो भी ये सच है कि कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता। अगर आप कोशिश करें तो आपको उसमें कुछ सद्गुण मिल जाएंगे। किसी को बुरा या नकारात्मक मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के असली स्वभाव के कारण नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक सोच पर आधारित धारणा के कारण है। इसी तरह जिस परिस्थिति को शुरू में आप 100% नकारात्मक मान लेते हैं उसमें भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। परंतु मेरा ख्याल है कि अगर आपको खराब परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल भी जाए तो ये काफी नहीं होता। आपको इस विचार को पुष्ट करना चाहिए, आपको वे सकारात्मक बात तब तक बार बार याद दिलानी होगी जब तक आपकी भावना न बदल जाए। सामान्य तौर पर बात करें तो अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति हो तो किसी विचार को एक या दो बार अपनाने से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। सीखने, प्रशिक्षण लेने और नए दृष्टिकोण से अभ्यस्त होकर ही आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और इस तरह अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। तो यह हुआ आज का खुशनुमा जीवन की बातें। तो बस हमेशा अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखें और सदैव खुश रहें। तो आइए, समय हो चला है फिर से आपको एक गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में परवल का अचार। परवल की सब्जी तो हम बनाते ही है, आइए आज आपको अचार बनाना सिखाएंगे। तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और सामग्री लिखिएगा 250 ग्राम परवल, फिर आप लीजिए 2 चम्मच राई के, 2.5 चम्मच सौंफ लेना है और 1.5 चम्मच लीजिएगा जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, थोड़ी सी हींग ले लीजिए चुटकी भर और 3 कच्चे आम ले लीजिए, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो ये हो गए परवल के अचार की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। परवल 250 ग्राम, 2 चम्मच ले लीजिए राई और 2.5 चम्मच सौंफ लेना है, फिर आप 1.5 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए और कच्चे आम ले लीजिए 3, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद परवल का अचार कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है परवल का अचार। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। परवल, राई, सौंफ, जीरा, हल्दी, हींग, कच्चे आम, सरसों का तेल और नमक। आइए अब अचार बनाएंगे। आप पहले तो परवल की धुलाई कर लीजिए, पोंछ लीजिए इसको स्वच्छ कपड़े से, फिर परवल को खुरच कर गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है? फिर राई बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीस लीजिए। अब आप एक पतीले में पानी उबाल लिए और जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ठीक है? जिससे परवल हल्का नरम हो जाएगा। इसे अब धूप में कपड़े पर सूखने डाल दीजिए। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम को कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो इस तरह परवल का अचार बन गया है। अगर आम न हो तो, आम नहीं मिलता हो तो अमचूर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? फिर इस मिश्रण को आप एक बर्नी में भर दीजिए। यदि तेल कम हो तो ऊपर से तेल डाल दीजिए और 8-10 दिन धूप दीजिए। धूप में लगा करके फिर आप हींग डालिए बारीक, ठीक है? बारीक थोड़ी सी हींग डालिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और बस, फिर आप खाइए और खिलाइए। तो इस तरह परवल का अचार बनाया जाता है। पुनः विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परवल की धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके खुरच करके गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है? फिर राई को बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीसना है। अब आप एक पतीले में पानी उबालिए, जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए ताकि परवल हल्के से नरम हो जाए। फिर इसे अब धूप में कपड़े पर सुखाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है? स्वच्छ कपड़े पर सुखा दीजिए और धूप लगाइए इसको, ठीक है? फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम अगर हो तो कद्दूकस करके डालिए, नहीं है तो बस आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए इसमें, और इस मिश्रण को एक बर्नी में भर दीजिए। और इसमें अगर तेल कम हो तो डाल दीजिए, तेल तरमा रखिए, मसाला डूब जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको 8-10 दिन धूप में लगाइए बर्नी को। उसके बाद बस आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके अब आप खा सकते हैं। तो ठहरिए, खाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले क्या करेंगे? आप सभी को पता है, तो लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में परोठे रखिए, क्योंकि अचार के साथ परोठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो परोठे रखिए, अचार रखिए, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा परवल के अचार का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आइए, अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, और आप छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके ही वंशज है। तो मनीषा जी पोर्टले हमारे साथ बने हुए हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो आपको पहले ही बताया है कि आप छत्रपति शिवाजी के चौदह वंशज हैं, उनके ही कुल की बहू रानी हैं। फिर VIT आपने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं, और आप MBA HR एंड मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट है आप, और माइंड साइकोलॉजी का भी आप काम करते हैं, सोशल वर्कर भी है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब किन किन विशेषताओं का आपके सामने बताऊं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आइए उनसे मिलेंगे और आज हमको बहुत ही अच्छे सामान्य जानकारी देंगे कि गर्भवती

0: में, जैसे कि शिवाजी जब जीजाबाई के गर्भ में थे तो किस तरह जीजाबाई ने शिवाजी को अच्छे अच्छे संस्कार दिए गर्भ के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बातें हमको बताएंगे। मनीषा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
1: नमस्कार सभी श्रोतागणों का।
0: तो मनीषा जी आप हमें बताइएगा कि किस तरह गर्भवती बहने जो है वो अपने बच्चों को गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे सके।
1: पहले तो गर्भ संस्कार, हम तो पहले से जानते हैं कि शिशु एक चैतन्य जीव है जो अपनी माता के गर्भ में ही हर बातें माता की ग्रहण करता है, सुनता है और जो भी व्यवहार है वो सभी आदि को ग्रहण करता है। हमारे पूर्वजों के काल से ही ये बातें सुनते आए हैं कि गर्भ संस्कार होते हैं और वो हम जानते हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। जैसे कि आपने कहा कि शिवाजी महाराज की माता छत्रपति शिवाजी को अपनी माता जीजा माता ने उनको अपने गर्भ में ही तलवारबाजी से लेकर हर एक कला उन्होंने गर्भ में ही सिखाई। वो हर कला से निपुण थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पूरा गढ़ जीत लिया था। ये जो है ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है। पहले तो हम गर्भ संस्कार का ज्ञान और विज्ञान के बारे में समझते हैं। बच्चे के गर्भ में आने से ही उसके विकास की जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता की होती है। उनके योगदान भी, उनका सहयोग भी उनके माता पिता का बच्चे की विशेष जीवन यात्रा को सुधारने में मदद करता है। पहले तो गर्भ संस्कार क्या है? मैं तो संस्कार तो हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्भ में क्यों और संस्कार क्या है? माँ का हर क्षण हर पल बच्चों से जुड़ा होता है। वो माता की हर बात को ग्रहण करता है। माता की हर बात इंक्लूडिंग माँ का खाना पीना, विचारधारा, मानसिक स्थिति और परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में रह रही है, इन सभी बातों का सूक्ष्म असर अपने बच्चों पे पड़ता है।
0: गर्भ में भी?
1: गर्भ में भी,
0: चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो,
1: वो सभी परिस्थिति को वो महसूस करता है। चैतन्य जीव है तो उसको हर चीज ग्रहण कर लेता है। तो इस सभी बातों को गहराई से समझने की बात है। इनका परिणाम हम प्रत्यक्ष जो समय के बाद ही देख सकते हैं। अभी तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले तो जानते हैं कि हमारा साइंस भी इस बात से सहमत है और उसको सिद्ध कर चुका है। हम लोगों ने देखा है, साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे गर्भ के बच्चों में असर पड़ता है माता का। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक प्रिंसेस है, उन्होंने मतलब जिस परिस्थिति में किसी लड़के से शादी किया तो वो सामान्य घर का था। इसका उसके माता की वजह से, उसके परिवार में जो बच्चे उसके गोद में था उसकी वजह से उनको जो रॉयल फैमिली बिलोंग्स करती थी, तो उनका जो भी बच्चा हुआ वो बहुत रॉयल हुआ। उसके पिता का कोई भी संस्कार उसने ग्रहण नहीं किया। हालांकि ये ऐसा तभी हो सकता है जब माता पूरी तरह से वो खुशी, वो रॉयल्टी को महसूस करे। और अगर वो परिस्थिति में वो रॉयल्टी को, जिस परिस्थिति में वो 13 हफ्ते, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं गर्भ के, तो 13 हफ्ते को उन्होंने बहुत रॉयल्टी से इंजॉय किया, हर चीजों ने उनमें रॉयल्टी से देखा, इसलिए उनके बच्चों पर उनके पिता का कोई असर नहीं हुआ। सिंगल पेरेंट माँ एज अ माँ वो हर अपने बच्चे को अपने जैसा बना सकती है। वो जैसा चाहती है, जिस तरह का संतान चाहती है, जिस तरह की चरित्र से लेकर स्वभाव, उसकी हर चीज को वो स्वतः ही बिल्ड कर सकती है। वो माँ खुद जिम्मेदार होती है और पिता का कर्तव्य है कि वो उनको सहयोग दे, प्यार और सहयोग उनका उनके बच्चों को हेल्प करता है। ये सारी बातें उनके इज्जत करती है। तो जानते हैं कि माताओं का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माताओं की आदतें कैसी होनी चाहिए, उनका इच्छा क्या चल रही है, उनकी इच्छा मनोकामनाएं जो है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। ये शारीरिक, मानसिक और इच्छाएं ये भावनात्मक स्वास्थ्य बनाती है बच्चों की। स्वास्थ्य तो हेल्थ भी होता है, लेकिन ये जो है माइंड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये सब बचपन में डेवलप होता है। ये 13 हफ्तों के अंदर ही डेवलप हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने सुना है महाभारत में, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अभिमन्यु एक चक्रव्यूह को काटने के लिए कौरवों ने अर्जुन को बहुत फुसलाकर दूर लेके गया। जब वो चक्रव्यूह में पड़े फंसे तो 23 साल का अभिमन्यु बोला कि मैं जानता हूँ इस चक्रव्यूह को कैसे काटा जा सकता है। तो उससे पूछा गया कि युधिष्ठिर ने कि आप कैसे जानते हो, तो उसने बताया मैं अपने माता के कोख में, सुभद्रा के कोख में जब था तब मेरे माता को लेबर पेन से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह को कैसे काटना चाहता, कैसे भेदा जा सकता है, तब मैंने वो बात सुनी थी और अब मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। इसका ये सिद्ध प्रमाण है जो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, महाभारत में ये जो घटना दिखाई गई है उससे स्पष्ट होता है कि ये होता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। हम समझते हैं कि जो भी गर्भ का संस्कार है वो कैसे दे सकते हैं। वैसे तो 14वें दिन तक कुछ होता नहीं है बॉडी में चेंजेस, लेकिन आफ्टर 14 डे पोस्ट न्यूरॉन डेवलप होता है और उसके बाद ही हर 2.5 घंटे में हर एक मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, वो पूरे ब्रेन साइकिल पूरे बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो उनमें छोटा सा ही होता है। हमें करना क्या चाहिए? उसके बाद जो शरीर डेवलप होता है, ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है, उसमें हम विशेष योगदान माँ का क्या हो सकता है, उनका आहार कैसा होना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, शरीर और मानसिकता, उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है?
0: बिल्कुल मनीषा जी, ये सब हम आपसे जानेंगे जरूर कि ये क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी समय का ध्यान में रखते हुए अभी तो एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद आपसे फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, मनीषा जी हमारे साथ बने हुए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि गर्भ में किस तरह माँ के हर क्रिया का असर पड़ता है बच्चे में। तो माताएं चाहे तो गर्भ में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया है अभिमन्यु का, शिवा जी का। तो इस तरह आप जिस तरह अपने बच्चे को चाहती है उस तरह का आप बना सकती है, गर्भ के अंदर ही तैयार कर सकती है, ठीक है ना? तो इस बारे में और भी विस्तृत जानेंगे, लेकिन तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। मधुबन।

उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है मधुवन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे? है कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं कि किस तरह दूषित जल से स्वयं को बचाना है और स्वस्थ रखना है तो आप तुलसी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। और खुशनुमा जीवन की भी बहुत ही अच्छी बातें की है, अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए, सचमुच खुशियां हमारे सामने खड़ी है। और परवल का जो अचार बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और मनीषा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह गर्भ में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आज की किचन टिप्स इस प्रकार है, आलू की सब्जी बनाते समय नमक सब्जी बन जाने के बाद डालिए। ऐसा करने से सब्जी स्वादिष्ट बनने के साथ साथ जल्दी गल भी जाएगी। आज का अनमोल वाणी इस प्रकार है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआ की होती है, जो जुबा तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, आपको एक प्यारा सा भजन भी सुनाऊंगी और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है। परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
2: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनूंगी

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
1: अपनी अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विनय खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
1: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनि वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मैंने पूरा विश्वास है।
3: साथी डारे छोरा छोरी जद देखू जद घर भरियो घुमड़ियो घुमड़ियो रहू मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हाल रियो।
4: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
5: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
4: अरे वाह वाह बीननी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कही राजू, तू बीननी ने कही क्यों जो बीननी उदास लाग रही?
5: माँ, थारी बीननी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
4: देख बीननी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
6: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
4: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठाकोनी में सब समझू। डिलीवरी अपना घर में वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे कोनी जानो समझी और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
6: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मैंने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद को नहीं आवे और हर बहू खुश रह सके।
4: कई सोच में पड़गी बीननी।
6: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास को नहीं माँ हो।
7: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिल कर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिर दाम समाओ।
6: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना सब सफाई कर ले, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेली मनाई?
6: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
8: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
9: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊं।
1: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊं मठड़ी।
0: मैं बनाऊं मोहन थाल।
6: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
10: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सु करजे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
6: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करूँ।
10: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
9: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
10: वाह, हावरो वे तो एड़ो। रखू बेटा फोन, मारे तो खुशी का आंसू आ गया।
8: बिन्नी ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊ, थारी भी पहली दिवाली है, आसू यो थारो है।
0: बिंदनिया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आजसू छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
6: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुख सुकयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है, आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणे खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिलियो, मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थाने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊ पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया, तो वे सब मिली मारा ननदोई जी ने खूब समझायो। अच्छे वे सगला रे सामने माफी मांगी, हाज आज हूँ अबे हल्की होगी। मारा सास ससुर मारो खूब मनोबल बढ़ायो और मारो खूब साथ दियो।
1: काई बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया नहीं?
2: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, ढीला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनि डिसीजन सो तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही है कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
2: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
4: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ, पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो जाते थे शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको, बोला आप तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ, वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही जो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया भाई, कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ, तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं, और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके भी मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे, उनके पति गुजर गए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो अपनी माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार ज़बरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
5: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, यानी कि 35 साल हो गई। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, वी के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे है, मेरा पीर का दियड़ो दहेज है, मार पीर की दियड़ी कोई भी चीज़ है, भी कोई अधिकार नहीं जमाई और सब जो भी मारू मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे यहाँ करो था को जो चीज़ बाप दादा को ले आ वह आपको ही अधिकार है, तुम्हारे सासू छू लगा नण दे रणी जिठाणी कोई मारा हक नहीं जमाया, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी जैसे भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी 50 की करी, जो मारे मन में हुई कि वह चीज़ खरीदनी है वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा मान दो मैं कोई सामान लेवा करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे, और जो भी सिलाई करो भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे कोई काज बटन करो रहे कोई भी काम करा आप तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ, और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी ने लेनो देनो हो चाहे आगे सास ससुराल ने कोई देनो लेनो हो तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो, तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर भी खेऊँ और कहते डरो मत कोई भी मत डरो अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो सबने साथ में लेट चालनो है। और जो आप काम करा और बीमे भी कोई तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूँ नहीं करनो और यूँ करवाऊँ आगे आपने अच्छे काम हुई आगे पैसा टक्का घर बार परिवार सब आपने चलानो है तो सब भी हिसाब चालो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वही बात पूछे के भाभी साहब मैं तो यूँ परेशाना घर हूँ देश की खातरी मन लड़े मगर आदमी भी कोई यूँ मान लड़े टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूँ खे देवे कि भाई थे थाना यूँ लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ, मैं एक ही बात कहूँ कोई अलग नहीं होना कोई इशू भी जो भी कह आपने काम करना मजबूती के साथ करो मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
6: नमस्कार मेरा नाम तमन्ना है, हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं, उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने के, उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं रही है, उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए पोती नहीं चाहिए, पोतिया मतलब बड़ी होगी इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है, इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना, वो इतने सास ससुर से परेशान हो जाए, वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है एक बेटी हमसे पालनी जा रही है या दूसरी पे ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई, फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई, फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, अब वो क्या करे वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
3: तो सुना दोस्तों हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहें और उनको साथ दें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते तो आज हमें खुशी है, क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं, और बच्चे शिकलियत होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबर ब्लॉक और अबरोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही, सभी बच्चे बच्चों के हिस्सा लेंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है, तो अपना नाम कौन सा क्लास और कौन सा फॉलेज से आते हैं बताएंगे।
1: मेरा नाम आरोही कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 साल की है।
0: वेरी गुड। और आपका मम्मी पापा क्या करते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा घर पे ही रहते हैं।
0: खेती बाड़ी है?
1: नहीं सर।
0: पशुपालन?
1: नहीं।
0: क्या करते हैं पापा?
1: मेरे पापा मंदिर में रहते हैं।
0: मंदिर, अरे वाह, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को हम कभी भूल नहीं पाते, वहाँ प्रार्थना होता है। और बड़े होकर क्या बनेगी?
1: बड़े होकर टीचर बनेंगे।
0: वेरी गुड, मैम बनेंगे, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अपना नाम?
2: मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती।
0: हाँ, और
2: मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं 14 साल की हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
2: टीचर बन।
0: टीचर, बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने, आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट,
3: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल्ली से आते, कौन सा गाँव, कहाँ से?
3: बहादुरपुरा।
0: ओके, नेक्स्ट।
4: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गांव का नाम भातेपुर।
0: वेरी गुड।
5: मेरा नाम दस्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
1: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला आज।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
1: जी
0: फायदा होगा
1: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना का रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब इनकी आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेंगे ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
0: हाँ यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पार्ट पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं माँ बाप। बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता देखी बहन?
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा दादी, नाना नानी।
0: हाँ इसको कैसे बोलेंगे भाई, दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया
2: बहन,
0: और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचते लगते बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते, वो भी हमारा दीदी, बड़ा भाई, अच्छा।

0: सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पूरा पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे बच्चे
1: जी।
0: जब तक कॉलेज है तब तक पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे, जोर से बोलो
1: मेहनत
0: मेहनत, 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे, सर्विस, क्या लेंगे, सर्विस, नौकरी लेंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुम क्या बोलेंगे, बड़े होकर टीचर तो बने इसलिए मेहनत करती है तुम
1: जी।
0: फिर नाम बताओ।
2: हिना कुमारी।
0: हिना मेहनत करती है
2: जी।
0: वेरी गुड, ये तो जी जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझ कर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गाँव में आते हैं और बड़े क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं तो हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बादबुरा गाँव का हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
1: जी खेलते हैं।
0: कौन सा खेल खेलते हैं?
1: कबड्डी।
0: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
1: शरीर मजबूत बनता है।
0: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा है भाई। शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
1: टीचर बनना।
0: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर मीन पीटीआई सर बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त, हेलो क्या नाम है?
2: मोती राम।
0: वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गाँव का नाम पूरा बताओ।
2: बहादुरपुरा।
0: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
2: जी।
0: क्या नाम बताओ?
2: जगदीश।
0: कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए हेलो, नाम बताओ?
3: रमेश।
0: रमेश हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा? फूल का नाम बताओ देखी।
3: कमल
0: फूल। वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना उसका कीचड़ नहीं लगता है लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड। तुम्हारा नाम?
4: जी सर, मैं बादुरपुर में रहता हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगा?
4: पुलिस वाला।
0: वेरी गुड, पुलिस बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ और छोटा सा।
5: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
0: और अच्छा भोजन करते हैं ना, क्या खाते हैं? अच्छा कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
5: दाल रोटी।
6: मेरा नाम किशन कुमार, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
7: मेरा नाम गमा राम है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
8: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
0: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है बहादुरपुरा के आसपास गांव?
5: सरीफली।
0: हाँ।
5: चनार।
0: मुंगथला
5: जी।
0: फतेहपुरा।
5: फतेहपुरा।
0: डांगफली। साकोड़ा। बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
5: मई खेड़ा।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे, सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और काम का आसपास क्या है सुनने को जा रहे, तो रेडियो मधुबन आज इनको सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
0: सोनिया बहुत अच्छा, सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
1: बाप ने।
0: क्या नाम बाप का?
1: कान्हा राम।
0: अच्छा,
2: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पंकू कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बादरपुरा में रहती हूँ।
0: बादरपुरा के?
3: मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी।
0: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना, मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
3: जी।
0: क्या करता पुलिस? चोर को
3: पकड़ता है,
0: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा उसको जेल में
3: डालेंगे।
0: नेक्स्ट।
4: मेरा नाम सीता कुमारी है, गाँव का नाम बादरपुरा है, मेरे पिता का नाम कान्हा राम है, माता का नाम अंजा देवी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी?
4: डॉक्टर।
0: सीता है ना नाम? वाह, सीता रामायण में है ना, महाभारत में सीता किस में है? सीता
4: रामायण में।
0: रामायण में सीता और राम और सीता, श्री राम और श्री सीता कहते हैं, और महाभारत में द्रौपदी क्या बोलते हैं?
4: द्रौपदी।
0: सबको अच्छा लगा
4: जी?
0: क्या अच्छा लगा? एक बात बताओ, ज्ञान अच्छा लगा ना, रेडियो अच्छा लगा ना, खुद अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा बोलो? अच्छा लगा ना, सब बुरा लगा, क्या अच्छा लगा रे बहन? ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान माने समझ, समझ में आया
4: जी?
0: समझ में आया
4: जी?
0: तुमको समझ में आया
4: जी?
0: तुम कौन हो, सीता ना आत्मा?
4: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
0: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
3: मैं आत्मा, मेरा नाम पंकज।
0: मेरा नाम,
2: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
0: समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई।

0: किंतु मेरा, इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी, सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहां से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इनाम कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती
3: हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: तेजल बोलो, 9th क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी,
0: माँ, आई लगता है गलबा राम सरपंच से पहले। हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कुमार, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा आज कार्यक्रम? कैसे लगा सभी को? अच्छा लगा होगा ना? बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम? आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे?
7: हाँ जी,
0: हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे, मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है? और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को, भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?
8: भाई को।
0: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते हैं?
8: बहन को भी देते हैं।
0: बहन को भी देते हैं पीछे?
8: हाँ।
0: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए?
8: नहीं नहीं,
0: नहीं होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है तो बराबर होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं और सरकार का जो मंच है आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी चाहे प्रशासन गांव के संघ हो सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जो इस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज राजकीय विद्यालय में पहुंचे हमारा सभी छात्राओं को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब को जाता है और सभी स्टाफ को जाता है। उनका परमिशन के चलते आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे और बारी बारी सभी का आवाज सुनने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ होनहार बच्चे तो अपना परिचय देंगे और कहां से और कौन सा क्लास में और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे सभी सुनेंगे। चलिए हमारा पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ छात्राएं अपना नाम बताएंगे।
3: मेरा नाम है अनिता कुमारी
2: जी। और कौन सा क्लास?
3: 10th
2: क्लास। और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे अनिता? राजकीय
3: माध्यमिक विद्यालय
2: मईखेड़ा, जो कि बादबुरा ग्राम पंचायत में आता है। ये एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया क्योंकि पहले 8वीं क्लास, इसके बाद 10वीं क्लास, इसके बाद 12वीं क्लास है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में? 10th में। अच्छा, बोर्ड परीक्षा होगा इस बार, परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। हा? और घर में कौन कौन है अनिता?
3: बाप, आई
2: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
3: विज्ञान।
2: विज्ञान।
4: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ। सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते हैं। क्या नाम है? सभी सभी बच्चे उनका दोस्त है। चलिए, सब शर्माते, शर्मानंद से नहीं होगा क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

पूजा और उनका साथी आए हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से। नन्हे नन्हे सितारे आए हैं, तो इस कार्यक्रम में पूजा को भी स्वागत करते हैं। पूजा साथी

जीवन में कुछ

0: मत बैठो।
1: धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी क्या नाम बताए थे फिर अपना आरोही बस आरोही अवरोही ने आरोही मीन्स ऊपर उठना है अवरोही मैंने नीचे डाउन इनका नाम है आरोही क्या नाम है
1: आरोही
0: वाह कितना सुन मैंने पहला बार सुना आरोही है ना कौन नाम रखा है आरोही
1: मेरी बहन
0: आरोही का मतलब क्या जानते ना आरोही मतलब उठना चढ़ना उड़ना आरोही मतलब चढ़ना चलिए शुरू करिए।

0: आराम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्मिक जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए। और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चिया आएंगे बर्थडे को हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे, और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म उन्नति किए, आत्म अनुसंधान किए, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए, खुद को महसूस किए। हाँ, ये खुद को महसूस किए। हम सब कौन है? हाँ, देखा समझ में, आत्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति हुआ ना, इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन, और गॉड रियलाइजेशन भी किए, परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते
1: लीजिए। श्रोताओं, रविवार हो गया है और हमराही के एक और ताजा ताजा गर्मा गर्म एपिसोड को लेकर के हाजिर हूं मैं संदीप कुमार त्रिवेदी रेडियो मधुबन के इस बेहद खास मंच पर। जाहिर सी बात है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम हमराही पर प्रतिक्रियाएं हमेशा हर बार देते रहो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे इस कार्यक्रम को अलग बनाती हैं, अनोखा बनाती हैं और कहीं ना कहीं आप सब तक कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरित भी करती हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और श्रोताओं, जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम इन्हें जब जानते थे बचपन में या सीनियर क्लासेस में, तो अक्सर हम सब ये कहा करते थे कि अरे यार तुम्हारा क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सीधा साधा इंसान, बहुत ही एकदम हर बात को सादगी के साथ रखना और अपने मतलब किसी के प्रति मन में कोई भी जो है खटपट नहीं रखना, इस तरह का इनका व्यवहार हुआ करता था। इस वजह से इन्हें हर कोई बहुत ही सीधा साधा इंसान मान करके चलता था और निश्चित रूप से वो हैं भी, आज तक भी हैं और उनको देख करके लगता है कि वो आगे भी रहेंगे। ऐसे में अपना अध्ययन पूरा करना, उसके बाद समाज परिवार के बीच में रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपनी मेहनत के बल पर राजकीय सेवा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना और ये सब हो जाने के बाद अपने हमराही की तलाश पूरी करना, ये सब इन्होंने कर लिया है। कहने का मतलब ये है श्रोताओं कि अगर आपका प्रयास सकारात्मक है, आपके मन में किसी के प्रति कोई भी गलत तरह की भावना अगर नहीं है और आप बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। बहुत सारी भूमिका हो गई, आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ चले गए हम, कौन सी भावनाओं में बह गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज के हमारे जो मेहमान हैं ये हाल ही में विवाह सूत्र में बंधे हैं 25 अक्टूबर को, तो जो लोग जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे और जो नहीं समझे हैं उनको बता दूं मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए कि आज के हमारे मेहमान हैं डूंगरपुर राजस्थान से राकेश पांचाल और उनकी श्रीमती जी निव्रता पांचाल। तो राकेश जी और निव्रता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू रिकॉर्डिंग क्लब एवं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्ते और आपने हमें इस प्रोग्राम में अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: जी जी राकेश, नहीं निश्चित रूप से अवसर तो हमने दिया भी है और आपने लिया भी है, क्योंकि अब आप विवाह सूत्र में बंध गए तो इस कार्यक्रम में तो लाना ही था आपको। और वैसे भी जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत सालों से जानता हूं आपको, तो निव्रता जी जरा आप भी अपनी आवाज सुनवा दें हमारे सुनने वालों को।
3: नमस्ते
1: जी। जी तो आज निव्रता जी से ही शुरुआत करते हैं। निव्रता जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह की दिव्यांगता है और है या नहीं है, और आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है।
3: हाँ सर, मेरा नाम है निव्रता, मैं ना डूंगरपुर की रहने वाली हूँ
1: जी।
3: और मेरे बचपन यानी 5 साल के थे तब मेरे पोलियो हो गया।
1: ओ अच्छा।
3: पोलियो की वजह से दोनों पैर यानी विकलांगता आ गई।
1: जी जी जी।
3: फिर बाद में बड़ी बहुत इलाज भी करवाया मेरे मम्मी पापा ने
1: जी।
3: सब कुछ किया पर कुछ प्रतिफल यानी कुछ परिमाण सामने नहीं आए।
1: अच्छा।
3: फिर 2-3 बार तो ऑपरेशन भी हुआ, फिर मेरे फिर पहले यानी वैसाखी की सहायता से मैं अभी चल रही हूँ।
1: अच्छा।
3: और बाकी सब घर का भी काम कर लेती हूँ फिलहाल। अच्छा। मेरे सेल्फ पर सब कुछ कर लेती हूँ
1: जी।
3: मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 5 बहने हैं
1: जी,
3: और भैया एक ही है यानी स्टेप मदर का है, और मेरी रियली मम्मी है नहीं।
1: अच्छा।
3: और 5 यानी 4 बहनों की शादी भी हो गई, वो भी अच्छे हैं, उनके घर पर खुश है, और मेरी भी अभी इनके साथ शादी हो गई है।
1: बहुत बढ़िया।
3: और मैंने मेरे ना शिक्षा मैंने यानी एसटीसी बीएड किए और बड़ी मुश्किल से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है। सब जगह रहे, हमारे गांव में स्कूल था नहीं, यानी दूसरी जगह रह के मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है।
1: तो ये जो जी हाँ बताइए। दो बार,
3: हाँ दो बार मैंने रीट में भी दिया, रीट तो मेरे 55.33% बना था, पर विकलांग की यानी ओबीसी में आ रही थी ना, इसकी वजह से मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। और 2013 में हुआ, पर केस लड़ा है उसमें कुछ सुनवाई हुई नहीं मेरी।
1: ओ, अच्छा।
3: जोधपुर मैंने केस किया है पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक, 2.5 साल हो गए।
1: अरे बाप। तो निवृत्ता, आपको जो ये पोलियो की परेशानी जो रही है, इसका अब कोई इलाज संभव नहीं है?
3: संभव तो पहले हमारी स्थिति मेरे पापा की ऐसी थी, फिर धीरे धीरे वहाँ दवाइयाँ बहुत करवाई, यानी अहमदाबाद में भी सिविल हॉस्पिटल में भी करवाई, बहुत कुछ किया, पर इसके बाद में यहाँ कैंप ही लगा था भिलवाड़ा में, तो एक डॉक्टर बोल रहे थे यानी विशाखापट्टनम में आपका इलाज अच्छा हो सकता है, पर इतना हमारे पास में बैलेंस था नहीं, फिर हमने कुछ ज्यादा उनको बोला नहीं। अभी मैं अपने बेसके की सहायता से सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना सब काम कर लेती हूँ, यानी डूंगरपुर आना जाना और घर का भी काम, घर में भी कुछ भी काम लाना हो ले जाना वो भी मैं कर लेती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, और ये जो विशेष तरह की जो साइकिलें और जो गाड़ियां होती हैं वो चला लेती हैं आप या नहीं?
3: यानी मुझे स्कूटी मिली है पर मैं चला नहीं पा रही हूँ।
1: अच्छा, अरे कोई बात नहीं।
3: ये दो बार ऐसे गिर गई है ना इसलिए।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें लगता है कि अब राकेश जी ये संभव बनाएंगे कि आप एक दिन स्कूटी भी चलाने लगे।
3: हाँ सर, ये तो आज से मेरे मैं चलाऊंगी ऐसा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब निवृत्ता जी को सुना, अब राकेश जी को सुनते हैं। जी राकेश जी।
4: जी सर।
1: थोड़ा जरा तो, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और अपनी समस्या के बारे में भी बताएं
2: जी। तो रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को एक बार फिर राकेश लोहार का प्यार भरा नमस्ते। तो मैं हमारे लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर के ऋषभ देव के एक छोटे से गाँव से हूँ, कल्याणपुर
1: जी।
2: और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड
1: जी।
2: तो दरअसल ये ब्लाइंडनेस बचपन से ही है, और हमने डॉक्टरों से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि वेन में ब्लड सूख चुका है।
1: अच्छा।
2: तो इसकी कोई संभावना नहीं है। अहमदाबाद में ये डॉक्टर नागपाल हैं, उस समय हमारी स्थिति भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन मामा वगैरह सक्षम थे तो उन्होंने भी काफी इस संबंध में कहा, तो डॉक्टर ने कहा कोई संभव नहीं है। तो इसके बाद में मैं उदयपुर अंध विद्यालय से 8th क्लास की पढ़ाई की मैंने
1: जी,
2: और 9th से 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंध विद्यालय अजमेर से
1: जी,
2: और ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास जोधपुर से कोटा बीएड से, और एमए मैंने किया जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से
1: जी।
2: सर
1: जी बहुत बढ़िया। तो राकेश जी आप जॉब कब से कर रहे हैं?
2: सर मेरा जॉब लगा ये 2017 में, 16 मई 2017 में मेरी थर्ड ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी, जो वैसे मेरा चयन हो चुका था 2012 में, परंतु वो कोर्ट के में अटक गई थी वो भर्ती। तो 2017 से थर्ड ग्रेड में मैंने ज्वाइनिंग की, फिर 18 अक्टूबर 2018 को सेकंड ग्रेड में सोशल स्टडीज से मैंने ज्वाइन किया, अभी मतलब कम से कम 27 महीने हुए हैं, 27-28 महीने सेकेंड ग्रेड में जी सर।
1: बहुत बढ़िया। तो राकेश भाई आप मुख्य रूप से थोड़ा सा बताएं आपके जिंदगी के अभी तक के क्या अनुभव रहे हैं, विवाह पर तो हम आएंगे लेकिन उसके अलावा आपका अपना अनुभव क्या रहा है अभी तक
2: जिंदगी में? सर ये मेरा अनुभव ये रहा है कि सर हालांकि कहीं भी जैसे पढ़ते हैं तो या जहाँ भी हम रहते हैं तो सब प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अपने अंदर किसी के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो मिलती रहती है। जैसा कि मैं उदयपुर में भी रहा तो वहाँ सभी साथियों का सहयोग मिलता था, और अजमेर में जहाँ भी रहा, तो मेरा ये मानना है कि बस अपना कर्म करते चलो
1: जी,
2: और सबके प्रति अच्छी सोच रखो तो अपने आप सहयोग मिलता रहता है, और ये सभी की दुआओं का परिणाम भी होता है कि हम जीवन में सफल होते हैं तो बहुत से लोगों का कहीं कहीं हमारे सहयोग में हाथ होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
1: निश्चित रूप से।
2: और जो अपना रिकॉर्डिंग क्लब है इसके जरिए हमको, जैसे हम लोग ऑडियो कैसेट से पढ़ते हैं तो जो तैयारी करते हैं उसमें भी बहुत योगदान रहता है, सीडी वगैरह हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो हर प्रकार से कहीं कहीं हमारी मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए तो सहयोग अपने आप मिलता रहता है सर।
1: जी बहुत खूब राकेश भाई। तो थोड़ा सा अब बात कर लें कि कब से सोचना शुरू कर दिया था शादी के बारे में या कभी सोचा ही नहीं था?
2: नहीं सर, शादी के बारे में तो सोचना शुरू हुआ था कि ये जो मैडम है
1: जी,
2: इनसे शुरुआत करूंगा कि सर ये हमारे जब भाई साहब की शादी हुई तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन या एमए कर रहा था तब बहुत बार हमारे मतलब ये तो मेरे परिवार में था कि माता पिता को भाई को सबको कि भाई इनकी शादी तो करवानी
1: है, करवानी है जी।
2: हाँ, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये चाह रहे थे कि भाई इनकी शादी हो, और मैडम को भी बोला कि और हम मम्मी को भी बोलते थे कि इनसे शादी हो जाए इनकी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कि भाई ये कोई भी शॉप वगैरह चला कर रहे हैं, अपना काम कर सकते हैं अगर इनकी जॉब में लेके। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि नहीं, शादी किसी से भी हो कहीं भी हो लेकिन सेल्फ डिपेंड होना जरूरी था, और मेरी मम्मी का भी यही मानना था। इस जरिए से फिर प्रक्रिया फिर मुझ तो शादी का वहां से मामला शुरू हुआ सर। लेकिन मैं बहुत बार ये सोचता था कि यार शादी तो होगी लेकिन कोई ब्लाइंड से हो शायद तक वो अपन को समझ पाए। फिर मैं जॉब में आया, इसके बाद मैं प्रयास शुरू किया तो एक दोस्त ने बताया भी सही कि भाई एक ब्लाइंड व्यक्ति है तुम्हारे समाज का, तो भाई तुम जब भी जॉब लगोगे तब देखना ही। मैंने कहा जॉब के बाद, और लकीली ये हुआ कि मेरा सेकंड ग्रेड में जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी उस दिन उसका फोन आया।
1: अच्छा,
2: मैंने कहा चलो देखेंगे। फिर हमारे फादर आए कुवैत से और वहां फिर चर्चा चली, चलो हमने प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले मैडम की आई, उन्होंने कहा चलो विचार करेंगे। तो फिर बस इनके साथ जो ईश्वर ने लिखा था और अच्छा है इनसे हो गई।
1: बहुत खूब, लेकिन मतलब ये सब कुछ बहुत आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना राकेश जी?
2: नहीं सर, इसमें बड़ी दिक्कतें भी रही थोड़ी दिक्कतें रही कि पहले वो अभी आगे मैडम बताएंगे कि इनको भाई साहब ने भी बोला, फिर इन्होंने कहा कि चलो।
1: आपके आपके बड़े भाई की बात कर रहे हैं आप?
2: जी सर।
1: अच्छा,
2: मेरे बड़े भाई साहब।
1: जी जी जी।
2: और फिर इनको बोला, फिर उनका चलो देखेंगे।
1: अच्छा एक बात बताओ राकेश जी, इनको आप पहले से जानते थे निव्रता जी को?
2: हाँ जी, ये आते जाते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन मैंने उन टाइम पे कोई खास गौर नहीं किया हुआ, चलो कभी बोल लेते आते
1: जी,
2: कभी मतलब बहन के हिसाब से भाभी के यहाँ, ना इन्होंने कभी ना गौर किया हुआ चलो
1: जी,
2: कोई अगर वैसे मानसिक सहयोग चलो भाई कुछ बताना होता एक अलग बात है, बाकी कोई भी इस प्रकार इंटरेस्ट नहीं लिया
1: जी,
2: ना हमने ना इन्होंने
1: जी। मतलब इनके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं था?
2: नहीं सोचा था, मेरा तो मानना यह था कि नहीं हो सकता है कि अपन को कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी। मैं बहुत बार जब चर्चा चली और तब भी मैं बहुत बार इनसे पूछा करता था कि भाई देखो आपका इंटरेस्ट है, किसी के प्रेशर में तो नहीं
1: सही
2: आप हाँ भर रहे हो? और क्योंकि मुझे बहुत बार ये लगता था कि शायद तक अपना मुझे कोई ब्लाइंड लड़की समझ पाएगी या वो मेरी फीलिंग को समझ पाएगी या ऐसा फील होता था, तो इसलिए मतलब मैंने तब तक सोचा भी नहीं था। हाँ फिर थोड़ा बाद में जब चर्चा हुई तब दिमाग में लगा चलो कोई बात नहीं।
1: अच्छा
2: हाँ सर
1: जी। तो निव्रता जी,
3: हाँ सर,
1: आपके तो आपने बताया कि जैसे माता जी आपकी है नहीं, तो
3: मेरी मम्मी है अभी फिलहाल, यानी स्टेप मदर है, तो भी यानी रियली माँ से भी बढ़कर है।
1: अरे वाह,
3: उन्होंने मुझे बहुत कुछ सहायता दी, हर समय हर पल हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे मम्मी पापा।
1: ये बहुत कम देखने में आता है निव्रता जी।
3: हाँ सर,
1: बहुत बढ़िया, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको स्टेप मदर भी बहुत अच्छी मिली। तो आपके घर परिवार ने आपके बारे में सोचना कब से शुरू कर दिया था?
3: बहुत मेरे जीजू बोलते थे, आए दिन आते थे ना, तू कर दे कर दे शादी। फिर मैंने ज्यादा गौर किया नहीं, चलो जो भी होगा परिवार वाले सोचेंगे, अपनी भी जिंदगी अपना तो फैसला ही करना ही है, पर मम्मी पापा से बढ़कर तो कर भी नहीं सकते अपन।
1: जी, जी,
3: फिर जी, मैंने सोचा वह मम्मी पापा से बात की मेरी दीदी ने और मेरी जीजू ने, तो मम्मी पापा ने बोला तो उनसे बात करो पहले, उनको है ना पसंद है नहीं है उसके बारे में, उनके साथ में रहना पूरी जिंदगी इसको निकालनी है, हमारे तो कुछ नहीं, हम ऐसा भी फैसला करके हम शादी करवा देंगे पर इसके साथ में कुछ अच्छा होना चाहिए इसे। मुझे भी ऐसा लगा उनको देखकर, नहीं वो मुझे समझ सकते हैं, यानी उनकी हर भावना को मैं ऐसा हो गया कि या मुझे हर पल हर समय कभी भी किसी भी चीज के बारे में दुख नहीं देंगे, यानी अच्छा समझते हैं।
1: तो निवृता जी, जैसा कि हम लोग सोचा करते थे इनके बारे में कि बहुत सीधा साधा इंसान है, आपको भी ऐसा ही लगा इनको देख करके?
3: सर तो हाँ, ऐसा ही अच्छा ही नेचर, सरल है, सरल सरल है ना, स्वभाव है, अच्छा है, साफ दिल वाले, कुछ कहते हैं तो भी कुछ नहीं।
1: ये बात तो सही है। नहीं तो फिर आपको पहली बार किसने बताया राकेश जी के बारे में कि भाई इनसे शादी करवानी है तुम्हारी?
3: मेरी दीदी ने बोला था।
1: आपकी दीदी ने बोला था?
3: हाँ।
1: वो कब की बात रही होगी?
3: यानी 3 साल पहले की बात है कि तुझे कैसे लगते मेरे देवर, वो ऐसे बोला तो मुझे तो अच्छे लग रहे, वह मुझे समझे ऐसा इंसान होना चाहिए ऐसे।
1: देखो शादी की बात शुरू हुई आप लोगों की और पीछे डीजे भी बजना शुरू हो गया आपके यहाँ।
3: हाँ सर।
1: तो वो मतलब, तो निवृता जी फिर मतलब आपको कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पूछें कि कंफर्म करें यार कि भाई इंसान वाकई में मेरा ध्यान रख पाए? जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि ये अपना काम कैसे कर लेते होंगे, ये वो आपके मन में भी सारी भावनाएं रही होंगी?
3: हाँ सर रही है, मुझे लगा कि वो अपना अपना काम कर लेते हैं या मुझे करना पड़ेगा या मैं ना कैसे कर पाऊंगी, ऐसे तो सवाल तो उठता ही है। फिर मैंने उनसे बात की, नहीं मैं तो अपना सब काम कर लेता हूँ और कहीं जाना हो कहीं आना हो तो मेरी मम्मी है वो साथ में आएंगे। मेरे देखो मैं तो दोनों यानी विकलांग हूँ, मैं आ नहीं जा सकती और मैं स्कूटी भी नहीं चला सकती, यानी स्कूटी चलाती तो भी मैं उनको हर जगह ले जाऊं या सब कुछ करवा सकूं, पर मैं स्कूटी चला नहीं पाती इसलिए फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं अपन सेट हो जाएंगे।
1: मतलब जो कुछ था वो आपने साफ साफ कह दिया।
3: हाँ सर,
1: ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपने जीवन साथी को, दोनों को, एक दूसरे को ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए कि भाई किसकी क्या सीमाएं हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों?
3: हाँ सर ये सही बात है।
1: फिर आपकी माताजी तैयार हो गई थी तुरंत?
3: मेरी मम्मी यहाँ मुझे बोला कि तेरे क्या विचार है तू बता, तू यस बोलेगी तो मैं भी यस बोल दूंगी, तू ना बोलेगी तो मैं भी ना बोल दूंगी, तेरे पर पूरा डिपेंड करता है कि तुझे फैसला लेना, ये पूरी जिंदगी का सवाल है।
1: सही बात है।
3: मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कहा कि देख 10 बार यानी इस जिंदगी में आने से पहले अपने बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी नॉर्मल लोग होते उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और ऐसे होते हैं ना तो उनको ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी जीवन भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ हर तरह से सोचना जरूरी होता है,
1: बहुत जरूरी। जी जी,
3: मम्मी पापा के भी ऐसे ही था कि नहीं मेरी बेटी कहीं भी जाए यानी दूसरी जगह भी शादी करवाए पर उसका ना उसको समझने वाला यानी भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे करके मम्मी पापा तो यश ही थे।
1: तो एक जो हमारा प्रश्न हर किसी से रहता है निवृता जी, वो आपसे भी है।
3: हाँ
1: कि क्या और भी कहीं आपके रिश्ते की बात चली थी?
3: हाँ सर आते थे रिश्ते तो बहुत आते थे।
1: फिर क्या
3: मैंने
1: उसके बाद
3: मैंने कुछ जवाब दिया नहीं और मेरे घर वालों ने भी नहीं बोला कि नहीं नहीं करनी। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं सरकारी जॉब करूं, बस शादी तो देखी जाएगी, जॉब के बाद में भी शादी हो जाएगी ऐसे
1: जी,
3: पर नसीब तो बस कहाँ ले जाता। इसलिए जॉब आई थी वो भी चली गई, फिर दुख तो होता ही है।
1: थोड़ा सा निवृता जी मैं अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत। हम और हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जब दोनों पैर इंसान के काम नहीं करें तो देखिए हमें आंखों का पता है कि आंखें अगर नहीं हो, रोशनी नहीं हो तो क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन दोनों पैर अगर काम नहीं करते हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा सा ये आप अपने अनुभव से बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
3: सर दोनों पैर नहीं होते तो अपन यानी ऐसे ही मोहताज हो जाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते ऐसे। पर मैंने इतने ITI यानी कुछ पढ़ा कहानी और प्रेरणा ली दूसरों के बलबूतों से कि नहीं पैर नहीं हो तो भी अपन सब कुछ कर सकते हैं, अपन दोनों हाथ तो है अपन सब कुछ काम कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने ना रीढ़ की तैयारी यानी कोचिंग की, मैंने 3 मंजिल चढ़कर मैंने कोचिंग की सीढ़ियों से।
1: जी जी जी, वाह क्या बात है जी।
3: हाँ सर। तीन तीन मंजिल यानी गुरुकुल हमारे डूंगरपुर में गुरुकुल सेंटर था ना उसमें हौसला होता है तो कुछ भी कर है ना गुजर सकते हैं, हौसला नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते, आत्मविश्वास मनोबल ज्यादा होना चाहिए इंसान के अंदर।
1: बहुत अच्छी। आपने अभी कहा कि आपने कईयों की कहानियां पढ़ी, तो कुछ याद है कि किस किस की कहानियां पढ़ी आप?
3: यानी जैसे कि पर्वतारोही में जैसे वो नहीं प्रेमिला अग्रवाल थी, उनके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे, उन्होंने तो भी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया, दिव्यांग पर्वतारोही का नाम रोशन किया।
1: और अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना आपने?
3: हाँ सर
1: जी जी
3: वो भूल गई सॉरी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, जब शादी के बाद तो फिर निवृत्ता घर परिवार के भी बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और थोड़ा सास ससुर को भी बहू से कुछ उम्मीदें होती हैं, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर रही हैं आप?
3: अभी तो फिलहाल तो अच्छा ही चल रहा है, यानी मैं भी काम वाम कर लेती हूँ, मेरी सास यानी मेरी मम्मी जी है वो भी हेल्प करने लगते हैं, और कहीं जाना है तो भी हेल्प मिल जाती है, उनका सपोर्ट रहता है, घर वालों का भी रहता है।
1: अच्छा, और ये जो खाना वगैरह बनाने में?
3: खाना मैं बना देती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं, खाना बनाना कपड़े धोना ये कर लेती हूँ,
1: सारा काम कर लेती हैं आप?
3: हाँ सर मैं कर लेती हूँ।
1: अच्छा, एक ये जो जयपुर फुट जो होता है काफी फेमस है, तो वो आपके केस में वो नहीं काम आ सकता?
3: नहीं सर, मेरे यानी कमर से है ना इसलिए नहीं काम।
1: अच्छा, इसलिए काम नहीं आ सकता जी। हाँ तो राकेश
2: जी सर,
1: तो विवाह तो आपका 25 अक्टूबर को हुआ?
2: जी सर, 25 नवंबर सर।
1: 25 नवंबर को, अच्छा अच्छा जी जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको।
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। तो
1: जी जी बताइए,
2: इसके बीच की सर एक और मैं बताना चाहूंगा।
1: हाँ जरूर जरूर,
2: बताया था कि
1: हम सुनना चाहेंगे।
2: जोधपुर से बात चली तो फिर सडनली एक दिन हम उदयपुर गए, हमारे हालांकि हमारे मन में भी था कि नहीं अपन चलो जहां तक संभव हो सके यहीं, बस मन में ये था कि क्या पता कि इनकी फैमिली वाले अगर मना करें या फिर इनको क्या पता मतलब ब्लाइंड व्यक्ति से करना उचित लगे नहीं लगे। तो हम दरअसल एक बार उन्हीं दिनों में फादर मम्मी और मैं उदयपुर गए थे, तो हमारे एक सर हैं जो उदयपुर में वीरेंद्र जी सर, तो वहां गए तो फिर जैसे जॉब के तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मम्मी को कि भाई इनकी शादी के लिए क्या कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो? फिर हमने कहा कि वो हमारे भाभी जी की बहन है उनसे कोशिश कर रहे हैं, चलो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। फिर उन्होंने भी इनसे बातचीत की, उनका बहुत बढ़िया फिर इनका स्वभाव, फिर तब से फिर हमने और कहीं सोचना और मतलब पहले से इच्छा थी लेकिन उनकी फैमिली ने भी फिर हमको बोला कि नहीं नहीं अब चलो यही करेंगे 5-6 महीने बाद। तो फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत शुरू हुई फोन पर, और इनको मैं बस एक ही बात पूछा करता था कि आपके मन से की इच्छा है ना मेरे प्रति, हाँ कि मैं जो भी हुआ संभव आपका सहयोग करूंगी और हम दोनों एक दूसरे को समझे वही बहुत है। तो कम से कम हमारी सगाई सर रही 1.5-2 साल और फिर 25 नवंबर को फिर अभी इस साल शादी हुई अरेंज मैरिज।
1: तो आप जो सर के पास गए थे?
2: जी सर।
1: तो ऐसे ही सर को मिलने गए थे या मतलब यही सब राय लेने गए थे कि हम करें क्या?
2: ऐसे ही मिलने गए थे।
1: अच्छा, मिलने गए थे
2: वहाँ उदयपुर आए थे तो वैसे ही मिलने गए थे, उस समय तम भी वहाँ चलो साल भर ही हुआ था तो वहाँ हमारे काम था तो हम वैसे ही गए थे, तो वहाँ फिर थोड़ी देर बैठे और फिर सर ने जानकारी दी, क्योंकि हमारे दिमाग में ही था चलो भी पहला प्रयास को तो यही करेंगे और कहीं नहीं।
1: तो ये जो आपके घर वाले क्या सोच रहे थे इनको लेकर के, जैसे आप लोगों की आपस में बातें होती होंगी?
2: जी सर।
1: हाँ, आपके घर तो परिवार में क्या चर्चा चलती थी निवृत्ता को लेकर के?
2: घर परिवार में तो मेरे माता पिता भाभी सब तो तैयार थे कि कोई नहीं बहुत अच्छी बात है कि भाई परिवार जाना पहचाना सब कुछ आप एक दूसरे को जानते भी हैं फैमिली में तो अच्छी बात है अगर, और मेरी मम्मी की भी ये इच्छा थी कि भाई मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी अगर जो काम वो नहीं कर सकते हैं और आराम से जीवन चलेगा। तो शुरू से उनका ये मानना, वो तो चाहते थे कि बस हमको इनकी ओर से इंतजार था कि भाई क्या वो चाहते हैं कि नहीं।
1: अच्छा राकेश ये बताइए, लगभग 4 महीने हो गए आप दोनों की शादी को, तो 4 महीने में मतलब कभी कोई ऐसा पल आया कि किसी वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक और थोड़ी बहुत खटपट लड़ाई हुई?
2: नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं तो मैं भी समझ जाता हूँ, और मैं भी कोई भी काम है या कोई बात है कहता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर क्या है कि थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर।
1: दिक्कतें होती हैं?
2: दिक्कतें है सर, कहने का मतलब जैसे मान लो जैसे सबूत की कोई, जैसे हालांकि ये मेरे सब काम में जैसे अभी कॉपी चेक करने में है
1: जी, जी, जी,
2: या अन्य कामों में भी सहयोग कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से कभी
1: कभी ये व्यस्त हो किसी और काम में।
2: हाँ, तो
1: और भी आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी करना पड़ेगा ऐसा?
2: कभी कभी सर ऐसा हो जाता है कि कभी मैं कहता हूँ नहीं यार कल देनी है, अभी टेस्ट है ये कल देना है, वह कोई फिर वो फिर कैसे करके एडजस्ट करके कभी कर भी देते हैं। और फिर मैं भी क्या है फिर मैं भी समझ लेता हूँ नहीं कोई बात नहीं, अगर अभी क्या है इन दिनों में विशेष कर ये तैयारी कर रहे हैं
1: जी।
2: तो मैं इनको फिर क्या है ज्यादा
1: परेशान नहीं करते हो?
2: नहीं करता हूँ, चलो इनका भी अगर फ्यूचर बन जाए और अच्छी बात है, हर किसी की तमन्ना रहती है सर कि भाई इतना कुछ पड़ा है संघर्ष करके तो जो पाना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राकेश
2: जी,
1: आपके मतलब शादी से पहले
2: जी
1: आपने बहुत सारे साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को देखा होगा जो विवाहित रहे हैं, तो उनकी जिंदगी को भी देख करके कुछ आप अध्ययन करते थे अपने मन में कि यार ऐसा होता है वैसा होता है या हमारा कैसे क्या होगा, इस तरह से कुछ सोचते थे आप?
2: हाँ मैं बहुत बार सोचता था, जैसे कई बार ये देखता था
1: जी
2: कि यार जैसे किसी की जॉब लगी
1: जी
2: 3-4 साल तक जैसे शादी नहीं हो पाई, कई बार 5-7 साल तक बहुत सुखी।
1: हाँ
2: तो फिर मैं सोचता था ये लोग इतने टैलेंट है, मतलब टैलेंट का मतलब इतने चतुर भी है, समझदार भी है, और जब यार इनकी दिक्कत आई है तो क्या पता कोई अपने लिए ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि अपन को समझ पाएगा या अपने जी, को जी, अपनाएगा
1: जी,
2: ऐसा बहुत बार ख्याल आता था
1: जी जी जी
2: सर कि वाकई।
1: फिर आप मतलब थोड़ा दुखी हो जाते थे, थोड़ा निराश हो जाते थे ऐसे में कि भाई मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ होता था मन में?
2: फिर मैं ये सोचता था कि नहीं ईश्वर सबकी व्यवस्था करता है तो कहीं कहीं उसने अपना भी कुछ इंतजाम कर रखा होगा। जैसे सर मेरा जो भी काम होते हैं वो बड़ी मुश्किलों के बाद होते हैं।
1: जी जी जी जी जी,
2: तो
1: वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए, क्यों है कि नहीं, वो काम ही क्या जो आसानी से हो जाए।
2: हाँ सर सही बात है, और मुश्किल है जब इंतजार के बाद कुछ चीज मिलती है तो उसका मजा कुछ और है सर।
1: तो अब मजा आ रहा है?
2: हाँ सर आप सभी।
1: अच्छा कहीं कभी आप दोनों का अकेले इधर उधर जाना हुआ?
2: नहीं सर अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि नवंबर के बाद छुट्टियां भी नहीं मिली और इसलिए अभी तक तो नहीं होना पाया हो पाया सर।
1: अच्छा निवृत्ति को गुस्सा कितना आता राकेश? निवृत्ता को
2: नहीं बहुत कम
1: कम आता है। अच्छा अच्छा, और आपके मम्मी पापा और बाकी भाई भाभियों से सबसे अच्छा इनका तालमेल है एकदम?
2: हाँ नहीं अच्छा है, और सभी इनको घर में अच्छा इनकी वैल्यू करते हैं और इनका सबसे अच्छा तालमेल है, सभी प्यार से रखते हैं इनको और सबसे अच्छा तालमेल है।
1: तो जैसे आमतौर पर होता है इस तरह की शादियों में कि लोग बड़े उत्सुकता से देखना चाहते हैं, अरे और एक ब्लाइंड व्यक्ति की और एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी है, तो आप लोगों के केस में भी ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग आए होंगे?
2: हाँ सर हुआ ना, ये जब हमारी बातचीत चल रही थी तभी बहुत कहते थे अरे यार फिर आपकी लाइफ कैसे मैनेज होगी, फिर वो आपको कहीं जाओगे तो भी यार इससे अच्छा तो तुम कहीं जैसे बाहर से ले आओ, कोई दिखने वाले ले आओ।
1: अच्छा,
2: लेकिन मेरा मानना सर हमेशा से ये रहा कि कोई अपने समकक्ष होगा समस्याग्रस्त व्यक्ति, वो अपने को ज्यादा अच्छे से या बाहर से ले आओ मैंने कहा। और जब शादी हुई हमारी तो बहुत से लोग उस उत्सुकता वश ही इनको मिलने आते थे, चलो देखने चले कैसी है क्या है।
1: पीछे इसी कार्यक्रम में हम एक ऐसे परिवार से मिल चुके हैं राकेश जी, तो जैसे गोपाल जी और उनकी जो मैडम थी वो लोग बहुत ही उत्साह से और बहुत मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और गांव में रह करके उनकी भी कहानी आपकी तरह ही मतलब रही है जी।
2: तो सर हमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस अच्छे से बढ़िया एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अच्छे से लाइफ चल रही है सर।
1: वेरी
2: और फैमिली का फुल सहयोग हमारे मामले में है सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो निव्रता,
3: हाँ सर,
1: कोई शिकायत आपको राकेश जी से?
3: नहीं अभी तक तो कुछ नहीं।
1: बोल दीजिए आज तो इस मंच पर बोल दीजिए आज तो।
3: नहीं है।
2: आज तो बोल दो कोई शिकायत।
1: नहीं कभी लगता नहीं है कि ये भी चाय बना करके मुझे पिलाए है?
3: वो ऐसा कभी लगता है? मुझे रोज बोलते हैं मुझे चाय बनाना सिखाओ ऐसा। अच्छा, मैं तो आ गई हूँ।
1: अरे वाह, क्या बात
2: है। मैं बोलता हूँ यार मुझे प्रेस करना सिखा।
1: अच्छा,
3: सब कुछ मैं कर लेती फिर आपकी क्या जरूरत है।
1: नहीं लेकिन क्या होता है ना निव्रता कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर सीखने की एक लगन होती है ना।
3: हाँ सर,
1: वही लगन राकेश जी के, वही लगन राकेश जी के अंदर भी है। तो एक ये होता है कि हमें भी आनी चाहिए ये चीज। क्यों?
3: हाँ सर,
1: चलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके।
3: हाँ सर,
1: और कुछ अपने जिंदगी का कोई अनुभव जो रह गया हो आप बताना चाहें निव्रता?
3: हाँ सर, तो अनुभव तो क्या, बस सबका सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते ही जाएंगे, सबका सहयोग मिलेगा, आपका भी मिलेगा सर।
1: हाँ नहीं नहीं वो तो खैर है ही, हम लोग तो सब साथी हैं आपस में, और इसका कार्यक्रम का और रेडियो मधुबन का और हम सब का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे का साथ हम सब निभाते चले जाएं और समाज जो कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हट जाता है, तो उस समाज को भी हम समझा पाए कि दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति की या सहारे की जरूरत नहीं है, उसको तो बराबरी की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है।
3: हाँ सर,
1: है कि नहीं?
3: हाँ सर, पक्का ही है।
1: तो कभी ऐसा लगता है आपको कि भाई आप दोनों को मतलब देख करके लोग जो हैं वो सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको?
3: हाँ सर, होता है। तो होता है? जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सामने सामने देखते हैं लोग
1: जी।
3: बाहर भी यानी वो शर्म आती है निकलते तो भी।
1: ओ अच्छा। कोई बात नहीं, उनको देखने दो, अपने को क्या करना है।
3: हाँ यही तो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
1: है कि नहीं? और आपके क्या क्या शौक है निव्रता ये बताइए, इसके अलावा आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करती हैं?
3: मैं एक तो पढ़ाई यानी बुके पढ़ना अच्छा लगता है,
1: बुक्स पढ़ना
3: यानी अभी पढ़ना यानी हाँ अच्छी वाली कहानियां यानी प्रेरणा मिले ऐसी कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना है, गाने गुनगुना है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो राकेश जी के लिए कौन सा गाना गुनगुना रही हैं आज आप? बताइए।
3: बीच में से स्टार्ट करो या शुरू से?
1: कहीं से भी करो आप, तो जहाँ से करना है करो।

もうちょっと色に地震を立ち上げる永遠に変わらぬ打ち込む

0: एक प्यार का नगमा भी मोजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया,
0: सर,
1: बहुत शानदार। लगता है आपका बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये,
0: हाँ सर,
1: काफी
0: मुझे
1: दिल
0: ना
1: से।
0: पुराने गानों से बहुत लगाव है। कि
1: और सर राज की बात ये कि ये भी मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला
0: अच्छा,
1: कि
0: ओहो
1: मैडम
0: हो,
1: गाती भी है यूं। क्या बात है, क्या बात
0: एक
1: है,
0: दिन
1: ओहो।
0: मैंने भी पूछ लिया बस यूं ही, तो बताया कि मैं कॉलेज में भी जब एसटीसी कर रही थी तब सांस्कृतिक प्रोग्राम में गाती थी, और कभी स्कूल में जैसे प्रार्थना सभा होती प्रार्थना थी
1: सभा
0: तो
1: होती थी
0: उसमें
1: उसमें।
0: कमांड भी मैं करती थी और गाना भी अच्छा लगता था।
1: तो ये राज
0: क्या
1: मुझे
0: बात,
1: भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा तो राकेश,
0: जी सर,
1: निवृता जी ने तो गा दिया, अब आप क्या गाएंगे?
0: मैं इनके
1: जी
0: लिए एक गाना गाना चाहूंगा, थोड़ा सा दो लाइन
1: जी जी
0: बस।
1: जी बताइए बताइए।
0: एक गाना है सर,
1: लगता है,
0: जिंदगी से जंग
1: हाँ
0: जीत
1: हाँ
0: लेंगे
1: वाह
0: हम
1: वाह,
0: साथी।

0: जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो तो। सर
1: वाह वाह वाह गजब, बहुत बढ़िया, सच में बात सच है, बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा राकेश, एक बात बताइए कि ये जो इलाका है जहाँ के आप रहने वाले हैं,
0: जी सर,
1: थोड़ा सा अपेक्षाकृत ये मतलब इलाका पिछड़ा हुआ है,
0: जी सर,
1: और हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये सुनना चाहेंगे।

0: मैं क्या होगा ये सोच रहती है। और फिर जब धीरे धीरे मुझे देखते मतलब पढ़ के कभी उदयपुर से आता तब लोगों को लगता हाँ भाई कि अब कुछ कर पाएंगे। बाकी अभी सोच में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मेरे विवाह के संबंध में भी करे भाई बहुत सारे लोग कहते हैं यार इनकी शादी करा के क्या करोगे यार ये तो बड़ी दिक्कत रहेगी अभी आप फोन फिर बाद में इनका कैसे जीवन चलेगा। तो बहुत से लोग ये बात करते हैं।
1: कोई घटना ऐसी आपके साथ कोई हुई हो बहुत करीब से इस तरह का? अच्छा, स्कूल में जहाँ पढ़ाने जाते हैं
0: हाँ
1: वहां
0: जी
1: भी
0: सर
1: लोगों के, क्योंकि आपका तो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलना जुलना रहता होगा, माँ बाप से भी मिलना जुलना रहता होगा, तो वहां पर लोगों का क्या रुख रहता है?
0: हाँ सर वहां पर सर जैसे कहीं भी शुरू शुरू में ज्वाइनिंग होती है तब तो स्टाफ भी जैसे वो रोकता ही है कि जय अरे यार इनका तो बड़ी दिक्कत ही है क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने काम को देखा और अच्छा तो पेरेंट्स भी मिलकर बड़े खुश होते हैं। हाँ बस कई लोगों का कुछ कुछ ये मानते हैं कि वाह चलो भाई आज आ रहे हैं जा रहे हैं वाह इनका चल रहा है। बाकी अब जो है पेरेंट्स का भी अच्छा सोचना है कि जब बच्चे घर जाके कहते हैं कि नहीं ये इनको दिखा नहीं परंतु अच्छा पढ़ाते हैं और अपना आना जाना समय पे सब करते हैं तो वो जब भी आते हैं मीटिंग्स में तो मुझे देखकर जरूर आवाज लगाते हैं सर नमस्ते कैसे हो क्या है और लोगों को कहते हैं कि भाई ये तो आवाज से पहचान जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और हमारे बच्चे घर पे आकर बताते हैं कि भाई हमारे जो सर आए हैं वो अच्छा पढ़ा लेते हैं तो अब सकारात्मक सोच आने लगी है सर
1: कुलना के
0: वहां।
1: अब जो है वो परिवर्तन होने लगा है।
0: हाँ बस शुरू शुरू में कहीं भी सर जैसे ज्वाइनिंग होती है लाइन की तो बहुत समय तक बच्चे पेरेंट्स स्टाफ सब में ये रहता है कि यार चलो ठीक है वाह बहुत। तब मेरे को ज्वाइनिंग में भी ऐसी दिक्कत रही
1: क्या?
0: जब सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करने गया यार इनके तो जहाँ पास में है अभी जैसे मैं जाता हूँ तो वहां कम से कम 15-20 किलोमीटर है तो अरे यार इनको अभी पास में ही रहते तो ठीक था तो अभी एक सेकंड ग्रेड में क्यों ज्वाइन किया मतलब दिक्कत आती आएगी इनको कैसे आएंगे जाएंगे 15-20 किलोमीटर क्योंकि वहां पर हाईवे है। तो फिर जब उन्होंने देखा अभी मुझे आते जाते कम से कम वहां 2 साल हो गए। एक सोम कागदर नहर है सर वहां मेरी पोस्टिंग है
1: अच्छा
0: ऋषभ देव के आगे
1: जी,
0: तो वो कहते कि नहीं यार ये हमसे पहले आ जाते हैं और समय पे आते हैं।
1: क्या बात है।
0: यार हम तो सोच ही नहीं रहे थे कहा पापा हो गए यार 20 किलोमीटर और
1: अच्छा,
0: हाईवे पार कैसे करोगे। हाँ
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो निव्रता,
0: हाँ सर
1: आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा कॉलेज में या घर परिवार में समाज में कि भाई लोग विकलांगता को लेकर के थोड़ा सा कुछ परेशान करते हैं, इस तरह की कोई बात रही हो आपके साथ?
0: हाँ सर लोगों की तो सोच ऐसी होती है तो उनके नतीजे के अनुसार तो ऐसा ही होता है कि ये ना क्या कर पाएंगे दोनों पैरों से ऐसे हैं विकलांग हैं ने उसको कौन यानी भविष्य इसका कैसा होगा शादी कौन करेगा सो सवाल लोग उठाते हैं। यानी शिक्षा ऐसी चीजें लोगों को उनकी सोच भी बदल देती है यानी एकदम परिवर्तन कर देते हैं। यानी सिर्फ लोग होते हैं एक दूसरे से अपन अटैच में रहते हैं तो उनके बारे में अपनी चर्चा निकलती है अपना सभा होता है अपना कुछ भी होता है तो लोगों के बीच में बात निकलती है तो वो उनका यानी सोच परिवर्तन हो जाता है। नहीं ये भी हमारे जैसी ये नॉर्मल है यानी सब कुछ कर सकते हैं। और मैं मुझे यानी ऐसा लगता है हम एक घर पर काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जिससे ना लोग होते हैं वो काम नहीं कर पाते तो आप है ना इतना काम कर ले तो क्या बात है। हाँ
1: अच्छा, और आपके कोई साथ रहे हैं इस तरह के, आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी और को समस्या रही हो कुछ भी दिव्यांगता की, ऐसा कोई रहा है आपके आपके दोस्तों में किसी को और, किसी और कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जानने वालों में जिसको भी ये विकलांगता रही हो?
0: नहीं नहीं है
1: ऐसा
0: मेरे
1: कोई नहीं
0: दोस्तों
1: है?
0: में कोई भी नहीं मेरे तो सब नॉर्मल ही है और अच्छे ही है सब।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ मैं तो जहाँ भी जाती हूँ यानी 2 मिनट भी नहीं लगते तो दोस्ती बना देती हूँ। हाँ
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, क्या बात है।
0: यानी इंटर्नशिप में भी जाती थी ना स्कूल में पढ़ाने के लिए वह भी मेरे 2 दिन में पहचान बन गई सर से पूरे स्टाफ वालों से बच्चों से। फिर बच्चों भी बोलते नहीं मेरा माँ भी आना और आप ही हमको पढ़ाना।
1: जी जी

0: मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तुरंत याद हो जाता है, तुरंत याद रहता है इसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं काबिलियत होनी चाहिए। चलिए, आप दोनों को रेडियो मधुबन की तरफ से हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से आप भी जो है आपकी भी जॉब लग जाए। और जो है राकेश जी,
2: जी सर,
1: अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम, तो
2: जी हाँ सर,
1: आप हमारे सुनने वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे?
2: वह सर अपने अनुभव से मैंने महसूस किया कि जीवन में हर सकारात्मक काम होने से पहले समस्याएं बहुत आती है, कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं ईश्वर आपके लिए उससे कहीं बेहतर अच्छा सोच के रखता है, बस उसको पाने में समय लगता है। तो बस जीवन में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ में जिए और ईश्वर पर भरोसा करें, वो समस्याओं का हल स्वतः ही करेगा अगर आप प्रयास करते रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब जी। और निवृता जी, आप क्या संदेश देंगी सुनने वाली अपने जैसी सहेलियों को और बाकी साथियों को?
0: मैं भी यही इच्छा रखती हूँ कि यानी ब्लाइंड या विकलांग कोई भी है, उनको ना नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक रूप देखना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला देना चाहिए। यानी
1: जी
0: हर काम यानी हर संभव काम कर सके, यानी ये नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ नहीं कर पाते से,
1: जी
0: उनको आगे हौसला बढ़ाते रहना चाहिए और अभी प्रेरित करना चाहिए कि वो हर काम कर सके और आगे बढ़ सके, वही कहना चाहिए।
1: बहुत खूब। तो निवृता जी और राकेश जी, आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए,
2: धन्यवाद
1: और
2: सर,
1: एक बड़ा ही
0: थैंक
1: अलग तरह का अनुभव रहा आप दोनों से बात करते हुए, कि बहुत साधारण तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग हमेशा जो है वो चलते रहें, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपसे भी समाज को प्रेरणा मिले। तो
2: जी
1: श्रोताओं
2: सर,
1: जी जी राकेश जी
2: और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अवसर प्रदान किया
1: जी
2: रेडियो मधुबन के तहत अपनी कहानी को बताने का और प्रोग्राम में इनवाइट किया, धन्यवाद सर।
1: जी जी जी तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमराही आज का। उम्मीद है आप सबको कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें 94-14-15-14-15 पे। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड का ऐप, और इसके अलावा यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in आपका इंतजार करता ही रहेगा हमेशा। तो एक बार पुनः सुनते रहें रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो अगर आप विवाहित हैं और आपकी कहानी कुछ खास है और आप अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आपकी बातों से शायद किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, तो हम सबको आपका इंतजार रहेगा हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो बस आज के लिए इतना ही श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान, हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है, हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह जन्मदिन में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं, हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं, शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं, हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सकें, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं काहीं मनवार करूँ, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुक झुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 9 जुलाई 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है सतगुरुवार और सतगुरुवार को वृक्षपति देव भी कहा जाता है। वृक्ष अर्थात बीज, क्योंकि वृक्ष का आरंभ बीज से होता है। वो बीज परमपिता परमात्मा भी है, साथ ही साथ वृक्ष पति कहा तो पतियों का पति भी है। वो जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। वो बीज रूप परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं और सभी आत्माओं को अविनाशी सुख की दुनिया में ले चलते हैं। ये विनाशी दुख धाम समाप्त होना है। बृहस्पति की दशा उन बच्चों पर बैठती है जो जीते जी मरते हैं, अर्थात जीते जी बाप के बनते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा उन बच्चों पर बैठती है जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिन्हें निश्चय है कि परमात्मा इस वक्त इस संसार में परिवर्तन के लिए आते हैं और वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। बाबा कहते तुम बच्चों का ही गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के प्रति आज बाप दादा के मधुर महावाक्य है जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती और उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मनिश्चय करते हैं उनके ऊपर ही बृहस्पति की दशा बैठती। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी घूम नहीं हो सकती। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। वृक्षपति डे को कहा है बृहस्पति, उनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। सतगुरु परमात्मा को बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, बीज अर्थात पिता। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। बाबा कहते अविनाशी
वृक्ष पत्ति की दशा है क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है सुखधाम, लेकिन खाली सुखधाम नहीं कहते, सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, अर्थात 2500 साल तक वो अविनाशी सुखधाम चलता है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। आधा कल्प चले तो जरूर उसको अविनाशी ही कहेंगे, और क्योंकि अविनाशी वृक्षपति ऐसे सतयुगी सुखधाम की स्थापना करते हैं इसलिए उसको अविनाशी टाइटल दिया है। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करने हैं। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही न आए। देवताओं को अगर यह चक्र का ज्ञान हो फिर तो राजाई का मजा ही खत्म हो जाए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राजाई लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? बाबा कहते हैं अभी भी कई बच्चों को यह ख्याल चलता है कि क्या राजाई लेकर फिर हमारी यह हालत होगी, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। परमधाम में जो उल्टा वृक्ष है, बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है, यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्र में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है,

जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है चार। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा गीता कब सुनाई गई? बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, द्वापर में स्थापन हुआ। संगम बीतने के बाद जैसे द्वापर शुरू हुआ तब स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्र में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मामेकम याद करो, दे के सब धर्म त्यागो, किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और देह के सब धर्म त्यागो, ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। देह के सब संबंधों को भूल, सब धर्मों को त्यागना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो, निश्चयात्मक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो? हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलती है। बाबा कहते अगर कम याद करेंगे तो आत्मा के ऊपर जो जंक है, कट है, वो भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी। जितनी आत्मा प्योर उतनी खुशी जास्ती, और पद भी कम पाएंगे तो खुशी भी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। अगर खुशी गायब हो जाती है तो कहा जाता बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया या दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारे देवी देवता धर्म भी सोने कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हम पापी कपटी है। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर बचती है। बाबा कहे इस समय

राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं और चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। विजय से नौ कला है। बाप भी समझाते हैं, कुल देवी देवताओं के भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। बाबा कहे रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस होती है, तुम वहां भी जाकर समझा सकते हो। क्या समझाएंगे? ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? तो बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र शिव बाबा आकर यज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। रुद्र कहो शिव कहो, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो ये सब है जिस्मानी यज्ञ, इतना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है। घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव है तुम्हारा यह रथ। स्थूल में घोड़ा स्वाहा करने की बात नहीं है, वास्तव में तुम्हारा यह रथ, शरीर रूपी रथ को स्वाहा करना, अर्थात बे अभिमान को स्वाहा करना। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मुंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। बाबा कहते यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहां तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी, हम लोग ने कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहां ना कहां मनुष्य जाते जरूर है, हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, बाबा कहते यह भी अभी पता पड़ा है,
कि बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। द्वापर से ही वाम मार्ग यानी विकृत मार्ग आरंभ होता है। उनकी भी निशानियां है। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। जिस रंग के चश्मे पहने होंगे वैसा ही तो सब नजर आएगा। तो मनुष्य की विकारी वृत्ति हुई, विकारी दृष्टि हुई, तो उसी दृष्टि से देवताओं को भी देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहां भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है, बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। जो पहले बाबा से अलग हुए परमधाम से नीचे आए वही आकर सबसे पहले बाबा से मिलते हैं। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख कर नदी से उस पार ले गए। राजाए आदि कुछ नहीं दिखाई है, उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है। अभी तुम जानते हो इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है। नंबर वन में गया है, उसके पिता ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है व देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। बाबा कहते मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है व देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी दो चार वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्होंने बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। बाबा कहते अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, इसलिए चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा यानी सजा अगर नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का। यानी सजा खाकर फिर थोड़ा बहुत पद पा लिया तो क्या काम का।
धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? कि धर्मराज का मोचरा न खाए यानी सजा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने यह किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितने जन्म जन्मांतर खाते हैं। हाँ बाबा, हर चीज का पहले साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यह किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितने जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिला उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, सजाओं को तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोतामिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। बाबा कहते अगर धन नहीं तो कोई बात नहीं, तन मन तो है ना। उनको श्राफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो? बाबा हम आपका हूं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके हैं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, दम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, दम चक्कर मचाते रहेंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है अपने कल्याण के लिए। डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती, सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है,
ऐसे शक्ति